0: श्रोताओं, अभी आपने सुना उस्ताद रजा का विचित्र वीणा पर वादन राग अहिरी तोड़ी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में प्रसारित होंगे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत 10,021 करोड़ रुपए से अधिक है। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा करने की योजना है। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सभी 7 अधिक यात्री भार वाले रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है।
2: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान ICRISAT संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम सिकल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुँच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1,66,000 से अधिक रिफंड यानी वापसी भुगतान की शिकायतों का समाधान किया है। इससे 35 क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 105 करोड़ रुपए से अधिक का वापसी भुगतान मिला है। ये शिकायतें 25 अप्रैल 2025 से 31 जुलाई 2026 तक की 15 महीने की अवधि के दौरान दर्ज की गई थी। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। राजस्व खुफिया निदेशालय ने पिछले 10 दिनों में देश भर में विभिन्न स्थानों पर 6 बड़े अभियान चलाए हैं। निदेशालय ने 2 तेंदुए की खाल, 180 जीवित भारतीय तारा कछुए, 12 जीवित टोके गेको, लगभग 24 किलोग्राम पेंगोलिन के शल्क और लगभग 500 ग्राम बाघ की हड्डियां

नमस्कार, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:10 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:40 होने को है।

सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का जन्म कोलकाता में एक बंगाली परिवार में हुआ था। बैनर्जी ने स्वाधीनता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सन 1905 में बंगाल प्रांत के विभाजन का विरोध करने वाले सुरेंद्रनाथ सबसे प्रमुख सार्वजनिक नेता थे। पूरे बंगाल व भारत में आंदोलन और संगठित विरोध, याचिकाओं और व्यापक जन समर्थन के क्षेत्र में बैनर्जी के अग्रणी होने के कारण ब्रिटिश को अंत में मजबूर होकर 1912 में विभाजन के प्रस्ताव को वापिस लेना पड़ा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। वे विदेशी उत्पादों के खिलाफ भारत में निर्मित माल की वकालत करते थे। उनके इन्हीं गुणों ने उन्हें बंगाल के साथ ही पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया था। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को बंगाल के बेताज राजा के नाम से जाना जाता था। एक दिन सायंकाल कोलकाता में कोई बड़ी राजनीतिक सभा होने वाली थी। उस सभा को सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को ही संबोधित करना था। दुर्भाग्यवश उसी दिन प्रातः उनके बेटे की असामयिक मृत्यु हो गई। सभा बेहद महत्वपूर्ण थी। जल्दी ही यह दुखद सूचना चारों ओर फैल गई और इसके साथ ही सभा का स्थगन भी लगभग निश्चय सा हो गया। सभी ने सोच लिया था कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के पुत्र का निधन हो गया है। इतने बड़े आकस्मिक आघात के साथ उनके द्वारा सभा का संबोधन तो असंभव ही था। फिर भी आयोजकों ने सभा की तैयारियां की हुई थी। सभा में देश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी थी। जैसे ही सभा का समय हुआ, वैसे ही सभा स्थल पर बैठी पूरी जनता अपनी आंखों से यह देखकर दंग रह गई कि सुरेंद्रनाथ बैनर्जी शांत कदमों से मंच की ओर बढ़े चले आ रहे थे। वे चुपचाप मंच पर पहुंचे और पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार उन्होंने बिल्कुल सहज भाव से सभा को संबोधित करना शुरू कर दिया। वे सभा को ऐसे संबोधित कर रहे थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुछ नेताओं ने जब उनसे अपनी यह जिज्ञासा प्रकट की तो वह सहज भाव से बोले, जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपने कार्यों और संघर्ष से अंग्रेजों को यहाँ से अवश्य खदेड़ा जा सकता है। जो हमें छोड़कर जा चुका है वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता। यह बोलकर उनकी आंखें नम हो गई। उनकी नम आंखों की नमी को वहां उपस्थित हर व्यक्ति ने महसूस किया और भीड़ की आंखें भी नम हो गई। पूरी भीड़ सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे व्यक्तित्व को देखकर नम थी और उनके आगे अपना सिर झुकाए खड़ी थी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 6:45 होने को है। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस में

0: वाल्मीकि आश्रम में पहुंच दंडवत प्रणाम कुशल क्षेम की औपचारिकताओं के पश्चात श्री राम ने ऋषिवर से कोई ऐसा स्थान बताने की विनती की जहां पत्तों घास आदि की कुटी बनाकर वो कुछ काल निवास कर सकें। ऋषि बोले, हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और जनक नंदिनी माया स्वरूप हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप वाणी तथा बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नेत नेति कहकर उसका वर्णन करते हैं। इस दृश्य जगत के आप दृष्टा हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश आपके इंगित पर गतिशील होते हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तो अन्य कोई कैसे जान सकता है? आपको वही जान सकता है जिसे आप जानने देते हैं, और जानते ही वो आपका स्वरूप बन जाता है। ऐसे आप भला मुझसे पूछ रहे हैं कि कहां रहें, किंतु मुझे आपसे यह पूछने में संकोच हो रहा है कि आप वो स्थान बता दें जहां आप नहीं हैं।
1: Thank you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने 20,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य प्रमुख मार्गों पर लाइन क्षमता बढ़ाना, परिचालन दक्षता में सुधार करना और भीड़भाड़ कम करना है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कल सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 10,783 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 3 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों को कवर करेंगी। इसके साथ ही मौजूदा रेलवे नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर का विस्तार होगा। लगभग 1021 करोड़ रुपए की लागत वाली अन्य 5 परियोजनाएं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों को कवर करेगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि सरकार ने लगभग 11,000 किलोमीटर लंबे सभी 7 उच्च घनत्व वाले रेलवे कॉरिडोर को चौगुना करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं पर मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी और माल ढुलाई क्षमता में वृद्धि होगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में 3 दिवसीय ग्लोबल ड्राईलैंड सम्मेलन 2026 को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और अंतर्राष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान संयुक्त रूप से कर रहे हैं। भारत 22 से 27 सितंबर तक चीन के शंघाई में आयोजित होने वाली 48वीं विश्व कौशल प्रतियोगिता में पहली बार 11 नई कौशल श्रेणियों में भाग लेगा। टीम स्किल इंडिया कुल 64 में से 63 कौशल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेगी, जिसमें लगभग 70 प्रतियोगियों का दल शामिल हो रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि लखपति दीदी पहल के अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं। दिल्ली नगर निगम MCD ने खतरनाक इमारतों, अनधिकृत निर्माण और दिल्ली मास्टर प्लान तथा भवन उपनियमों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। ये अभियान निगम के सभी 12 जोन में चलाया जा रहा है। MCD ने कल 34 ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई की। इसके अलावा 17 संपत्तियां सील की गई, 22 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और 4 ध्वस्त करने संबंधी आदेश पारित किए गए। मंगलवार को भी MCD ने कार्रवाई करते हुए 17 संपत्तियों को ध्वस्त किया और 5 अन्य संपत्तियों को सील किया था। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उनकी इस यात्रा के दौरान सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ चल रहे सहयोग की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही विकास और सामुदायिक पहलों पर सहयोग की संभावनाओं का भी पता चलेगा। आगा खान विकास नेटवर्क के अध्यक्ष प्रिंस रहीम आगा खान उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के निमंत्रण पर इस महीने की 15 तारीख तक भारत दौरे पर हैं। केरलम में अलपुजा और एर्णाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज वर्षा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे पिछले 3 दिनों से पड़ रहा भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। शुक्रवार और शनिवार के लिए 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज ने आज से कल सुबह तक तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय इलाकों में ऊंची लहरों और समुद्र के कटाव को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका ओपन टेनिस में अमेरिका के बेन शेल्टन और 11वीं वरीयता के खिलाड़ी फ्रांसिस टियाफो के बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल मुकाबला होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के ठीक 7:10 और 15 सेकेंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम संगीतिका। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजनों का। आपके साथ संगत करेंगे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप आनंद उठा रहे थे करण किशोर मिश्रा द्वारा गाए भजनों का। आपके साथ संगत कर रहे थे सितार पर अकील अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना, तबले पर ऋतु मिश्रा और हारमोनियम पर दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। 7:30 और पूरे 40 सेकंड्स हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

जी हाँ, सुप्रभात दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट मॉर्निंग शो और मैं हूँ आपकी आज की रेडियो दोस्त एंड होस्ट अर्चना। स्वागत करती है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम में। दोस्तों, सुबह का समय है, चाय की प्याली है और एक नया दिन हमारे सामने खड़ा है। लेकिन आज जरा अपने दिन की शुरुआत करने से पहले खुद को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए। जी हाँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि घर से निकलने के बाद दो कदम चलकर अचानक लगता हो कि अरे भाई, गैस बंद की थी कि नहीं, ये सोचा है कभी? फिर वापस जाकर देखते हैं तो गैस बंद होती है। लेकिन देखिए, इससे कैसा पता चलता है ना कि आप कितने सतर्क हैं अपनी सेफ्टी को लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेके और गैस को लेके। क्योंकि गैस अगर बंद नहीं होगी ना दोस्त, तो पूरे दिन आप बाहर रहेंगे और वो गैस चलती रहेगी और बहुत बड़ा वाला ना नुकसान हो जाएगा। या फिर कभी ऐसे भी हुआ है कि मोबाइल हाथ में लेकर 5 मिनट तक मोबाइल को ही ढूंढते रहे हो, जस्ट लाइक दैट कि चश्मा सर पे लगा हुआ है और घर में पूरी जगह आप ढूंढ रहे कि अरे भाई, मेरा चश्मा कहाँ है, मेरा चश्मा कहाँ है। तो ऐसा होता है ना, तो बस आज हम ना कुछ ऐसी ही आदतों के बारे में बात करेंगे।

जी सच ही कहा जाता है कि कुछ कुछ आदतें ऐसी होती है जिससे आपका दिन वाकई में गजब हो जाता है, और इस गजब दिन के साथ अपना पूरा दिन निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीजें है ना जो थोड़ी सी मैसअप हो जाती हैं और उन्हें सॉर्ट आउट करने के चक्कर में लाइफ की तो बस लग जाती है।

दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो नहीं, खैर अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह सो रहे होते हैं और हमारा अलार्म बजता है और हम सोचते हैं यार बस 5 मिनट और सो जाए, 5 मिनट और सो जाए, बस 5 मिनट और सो जाए, उसके बाद आराम करूँगा या फिर आराम से उठूँगा, ऐसा हम अक्सर सोचते हैं। लेकिन जब आँख खुलती है ना दोस्तों, वो जो 5 मिनट है ना, वो आधा घंटा, 1 घंटा और कभी कभी तो 2 घंटे में तब्दील हो चुका होता है। और जो आपका काम शुरू करने का वक्त होता है ना, वो ऑलमोस्ट निकलने के कगार पर होता है और आप अटक जाते हैं अपनी उस लाइफ में कि यार वो 5 मिनट अगर मैं उस वक्त उठ जाता या उठ जाती तो आज इतना लेट नहीं होता, हमारे की जो काम है ना वक्त पर शुरू हो चुका होता।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसी कितनी ही छोटी छोटी आदतें होती हैं जिनके बारे में हम किसी से बात नहीं करते, लेकिन यही छोटी आदतें हैं ना हमारी पर्सनालिटी का एक मजेदार हिस्सा बन जाती हैं। एक छोटी सी बात कभी गौर किया है आपने कि कुछ लोग चाय पीने से पहले चाय की खुशबू लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं कि चाय में से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। कुछ लोग किताब खोलकर पहले उसका पहला पन्ना सूंघते हैं। एक मतलब बहुत ही कहते हैं ना, कुछ कुछ लोगों की वियर्ड आदतें होती हैं, वियर्ड हैबिट्स होती हैं जिनके बारे में अभी हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये उन्हीं आदतों के में एक वियर्ड आदत है कि जैसे नई कोई बुक आती है या नई कॉपी आती है, बच्चे भी अक्सर आपने देखा होगा कि उसे फर्स्ट पेज को सूंघते हैं, उसकी खुशबू को महसूस करते हैं। कुछ लोग खाना खाने से पहले उसकी फ़ोटो लेते हैं। ये तो आजकल का वैसे भी ना देखा जाए तो ट्रेंड हो चुका है कि अगर आप बाहर कहीं खाना खाने जा रहे हैं या घर में भी आपने कुछ अच्छा सा बनाया है ना, तो आप सबसे पहले उसकी फ़ोटो खींच के अपने स्टेटस में डालेंगे और साथ में इमोजी डाल देंगे, एक टेस्टी वाली, जो टेस्ट वाली जो होती है ना, जिसमें से लार टपक रही होती है, वैसी वाली इमोजी डाल देते हैं और लिख देते हैं यम फूड। और कुछ लोग कोई नया सामान खरीद कर उसका पैकेट खोलने में इतनी खुशी महसूस करते हैं कि सामान से ज़्यादा ना पैकेजिंग की याद रहती है। यही तो है मज़ेदार, जो ज़िंदगी को और भी मज़ेदार बनाता है, मज़ेदार आदतें जो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाते हैं। क्या हो रहा है आज? हम सोचते हैं कि हमारी आदतें हैं ना बहुत छोटी हैं, लेकिन कई बार इन्हीं छोटी चीज़ों में हमारा असली स्वभाव छुपा होता है दोस्तों। जैसे कि आप हमें बताइए कि आपकी ऐसी कौन सी आदत है जिसे आपके घर वाले सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये बंदा अगर उठा है या जा रहा है तो ये काम ज़रूर करेगा, ये इसकी आदत में शुमार है। तो बस खैर, आप हमें बता तो नहीं सकते, लेकिन हाँ, हम आपसे बात करके आपको बता सकते हैं कि अक्सर लोगों में ऐसी कौन सी आदतें होती हैं, ऐसी कौन सी वियर्ड आदतें होती हैं जो दूसरों के लिए तो वियर्ड होती है बट उसके पर्सनालिटी में वो इंक्लूड होती है, वो जुड़ी हुई होती है उसकी पर्सनालिटी के साथ।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना। बात यहाँ चल रही है, गीत भी बहुत खूबसूरत चल रहे हैं, लेकिन बात यहाँ चल रही है ना वो ये कि ऐसी कौन सी आदतें जो आपके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं, बस उन्हीं के बारे में कुछ कुछ बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं आप अपने आज के शो में। दोस्तों पता है क्या होता है कि हमारी कई आदतें वो ऐसी होती हैं जो बचपन से हमारे साथ चलती आती है। बचपन में कोई अपना पसंदीदा खिलौना लेकर सोता था, कोई कहानी रोज सुनना चाहता था और कोई कहानी बगैर सुने सोना नहीं चाहता था। कोई स्कूल बैग रात में ही तैयार करता था तो कोई सुबह सुबह उठकर जल्दी करता था। वैसे ये आदत जो है ना वो आज भी, मतलब होता है ना कि बचपन में तो बचपन से आप जब जवान हो जाते हैं बड़े हो जाते हैं तब तक आपके साथ रहती है, लेकिन वो जो स्कूल बैग है ना वो ऑफिस के बैग में तब्दील हो जाता है और आदत वही रहती है कि भाई रात को लगाना है या फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर जल्दी जल्दी उठ के उसको सेट कर लेना है अपने बैग को, ऑफिस बैग हो चाहे मतलब स्कूल बैग तो खैर होता ही है बच्चों का होता है, लेकिन अगर आप बड़े हो गए तो आप ऑफिस जा रहे तो उस बैग को रात को लगा सकते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग में भागते भागते भागते भागते कहते हैं ना कि भाई ये सामान रह गया वो सामान रह गया उस बैग में डाल देते हैं। और जब उम्र बढ़ गई, स्कूल से कॉलेज गए, कॉलेज से नौकरी और जिंदगी आगे बढ़ती गई, लेकिन वो आदतें जो है ना वो हमारे साथ अभी तक रहती है। मतलब कहते हैं ना कि बस जब तक आप काम करते रहेंगे जीते रहेंगे तो वो आदतें आपके साथ हमेशा बनी रहेंगी, तो कुछ ऐसी ही आदतें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ रहती है। लेकिन कहते हैं कि शायद यही आदतें हमें हमारे पुराने वर्जन से भी जोड़े रखती है। वाकई में जो आपकी बचपन की आदतें होती है ना, अगर आपके साथ जवानी में भी वो आदतें आपके साथ हैं तो आपको आपके बचपन से कभी भी दूर नहीं ले जाती हैं दोस्तों, वो हमेशा आपके आसपास रहता है, आपके करीब रहता है, आपके दिल में रहता है।

जी हाँ, कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और बात यहाँ चल रही है कुछ ऐसी आदतों की जो आपकी पर्सनालिटी के साथ है ना जुड़ जाती है, और सामने वाला आपको देखते ही बोल देता है कि भाई ये आया है ना तो जरूर ये काम जरूर करेगा, क्योंकि इसकी आदत में शुमार है ये आदत। जैसे कि कुछ लोग दरवाजा लॉक करने के बाद 2-3 बार हैंडल खींच खींच कर चेक करते हैं, और कई बार तो क्या होता है ना कि लोग लॉक्स जब लगाते हैं ना तो उसको भी खींच खींच कर चेक करते हैं कि वाकई में ठीक प्रकार से बंद हो गया है कि नहीं हो गया है। कुछ लोग सोने से पहले मोबाइल की बैटरीज को चेक करते हैं कि भाई कितनी है। अच्छा, ये वाली आदत ना मुझ में भी है, मैं भी जब सोती हूँ ना उससे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की ना बैटरी फुल करके सोती हूँ। वो आदत भी कह सकते हैं उसको, और उसको ये भी कह सकते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए और अगर हमारा फ़ोन बैटरी नहीं है उसमें तो हम उस इमरजेंसी टाइम पर फ़ोन को कैसे यूज़ कर पाएंगे। तो भाई मेरी तो ये आदत है कि अर्जेंसी को देखते हुए अपने फ़ोन की बैटरी ना मैं हमेशा फुल रखती हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि 90% तो ऑलवेज रहे, हमेशा रहे, उससे कम होती तो मुझे टेंशन हो जाती है। ये एक बहुत अजीब सी आदत है, मुझे मैं खुद परेशान हो जाती हूँ, मेरे घर वाले भी कई बार कहते थे कि परेशान हो जाते, कहते कि अरे भाई फ़ोन तो पूरी बैटरी पे है, 90% है और इससे ज़्यादा कितना चाहिए, 70% है और कितना चाहिए, इतना ही चलता है, बहुत रहेगा। लेकिन नहीं, मेरी आदत है मैं अपनी बैटरी को हमेशा फुल करके रखती हूँ, हमेशा अपने साथ बैटरी बैंक भी जो है ना वो कैरी करती हूँ, ताकि मुझे कहीं पे भी ना अपने फ़ोन को सिर्फ इसलिए उसको छोड़ना ना पड़े कि भाई मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, या किसी को डिसअपॉइंटमेंट ना हो मेरी तरफ से कि भाई मैंने कॉल नहीं किया जस्ट बिकॉज कि मेरे फ़ोन की बैटरी नहीं थी। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कमरे में जाकर भूल जाते कि वहाँ आखिर वो गए क्यों थे। कई बार होता है जैसे हम किचन में जा रहे हैं, फ्रिज पानी पीने जा रहे हैं, लेकिन पानी नहीं पीकर आते, वापस आ जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं यार पानी क्यों नहीं पिया, मतलब प्यास लग रही है, पानी पीने गए थे, पानी क्यों नहीं पिया। होता है ना, कई बार ऐसी आदतें हमारे साथ होती है और अक्सर हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा भी बन जाती है। तो अब इसी बात पर एक छोटी सी शायरी जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अजीब सी आदतों का भी अपना अंदाज होता है, अजीब सी आदतों का भी अपना अंदाज होता है, कभी हंसी कभी यादों का एहसास होता है, कभी चाय की चुस्की कभी कोई पुराना गीत, कभी चाय की चुस्की कभी कोई पुराना गीत, इन्हीं छोटी छोटी बातों में छुपी जिंदगी का एहसास होता है। वाकई में ये जो छोटी छोटी वियर्ड सी आदतें हैं ये हमें हमेशा अपनी जिंदगी के साथ और उसे अच्छे तरीके से जीने के लिए ना प्रेरित करती है।

जी हमारी जिंदगी में जो हमारी आदतें होती है ना, वो भी कुछ इसी तरीके से हमारी जिंदगी को संवारती भी है और कभी कभी ना हम मुश्किल में भी डाल देती है। कुछ लोगों को भूलने की भी आदत होती है। ये

अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग कुछ चीजों को भूल जाते हैं और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो इस आदत को थोड़ा सा सुधारिए जनाब, ताकि आप हर मुश्किल से जो है ना अपने आप को बचा सकें और अपनी जिंदगी को खूब खुशी के साथ एंजॉय कर सकें।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग और आपके साथ हूं मैं आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। फिलहाल वक्त हो चुका है 7:57 और ये हुए पूरे 25 सेकंड्स। बात यहां चल रही है हमारी आदतों की, जो हमारे अक्सर जो है ना पर्सनालिटी को सूट करती है या पर्सनालिटी के साथ जुड़ जाती है। और हमें देखते ही लोग जो कहते हैं ना अक्सर कि भाई ये आए हैं, ये हैं तो ये ज़रूर होगा, ये काम ज़रूर करते हैं, इनकी एक ये आदत है कि ये तो ज़रूर ही करते हैं, ऐसी अक्सर बातें सुनने को मिलती हैं। तो भाई कुछ आदतें होती हैं अच्छी होती है जो दूसरों को खुशी देती है, और कुछ आदतें होती हैं जो थोड़ी सी वियर्ड होती है, दूसरों के लिए मुश्किल का सबब बन जाती है। तो बस ऐसी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी छोटी छोटी आदतों के साथ आप यूं ही जो है ना अपने जीवन को चलाएं, अपने जीवन को जिए और खुशी के साथ जिए। और होपफुली आपको ये कार्यक्रम भी पसंद आया होगा, हमारे द्वारा यहाँ से पेशकश जो होती है गीतों की वो भी आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से आप ना हमारे साथ जुड़े रहे और अपना प्यार जो है ना वो हम तक यूं ही लुटाते रहे, क्योंकि आपका जो जुड़ाव है हमारे साथ वही आपका प्यार है हमारे साथ। और इसी आशा के साथ है कि जल्दी आपसे फिर से मिलूंगी कुछ नई अच्छी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों के साथ, बहुत खूबसूरत गीतों के साथ। इसी आशा के साथ आपसे विदा चाहती हूँ मैं, आपकी आज की रेडियो होस्ट एंड दोस्त अर्चना गुप्ता। और आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, बुजुर्गों का ख्याल रखिए, स्वच्छता रखिए। टेक केयर, बाय बाय।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी।

0: दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने परमाणु नियमों का पालन न करने को लेकर ईरान का मामला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को भेजा। मौसम विभाग ने आज उड़ीसा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और अमरीकी ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में अमरीका के दोनों खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफू आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6,528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: मंत्रिमंडल ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिलों में 5 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 540 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 52 लाख की आबादी वाले लगभग 2100 गांवों की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने सबसे व्यस्त सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लाइन का बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली हावड़ा, मुंबई हावड़ा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली गुवाहाटी, दिल्ली चेन्नई, हावड़ा चेन्नई और मुंबई चेन्नई शामिल है। इनमें से करीब 2000 किलोमीटर रेल मार्ग को पहले ही 4 लाइन का बनाया जा चुका है।
1: वापी से सूरत का 100 किलोमीटर का सेक्शन, पहला सेक्शन ओपन करेंगे 2027 में। कंस्ट्रक्शन करीब करीब दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा और जो ट्रेन बन रही है वो ट्रेन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जो फर्स्ट कोच टेस्टिंग के लिए बन रहा है वो टेस्टिंग का कोच लास्ट वीक बन के रेडी हुआ है और उसको अब पहला टेस्ट होता है उसका स्क्वीज टेस्ट है। उसके बाद में उसका क्लाइमेट टेस्ट होगा, उसके बाद में फर्निशिंग और नेक्स्ट बाकी के कोच बनेंगे। अगले साल मई जून तक ट्रेन पटरी पे आ जाएगी।
0: मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के बारे में श्री वैष्णव ने कहा कि ये सेवा अगले साल शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य प्रगति पर है और सूरत से वापी तक प्रारंभिक 100 किलोमीटर का खंड जल्द ही खोल दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से विरासत और वन्यजीव पर्यटन को विशेष बढ़ावा मिलेगा और साथ ही लॉजिस्टिक लागत कम करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, business

0: businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास पर बड़ी भूमिका निभा सकें। श्री गोयल ने बताया कि भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: लखपति दीदी पहल का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक प्रगति में उनकी भागीदारी बढ़ाना है। ब्रिक्स देशों के बीच संवाद और सहयोग से सदस्य देशों, साझेदार देशों और पूरी दुनिया के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का रास्ता तैयार होगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत ने 2047 तक अपनी अर्थव्यवस्था को मौजूदा $4 trillion से बढ़ाकर $30 trillion करने का लक्ष्य रखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। रक्षा मंत्री ने डॉक्टर हरिणी अमरसूरिया को श्रीलंका और भारत दोनों में महिलाओं के लिए एक आदर्श और महिला सशक्तिकरण तथा नारी शक्ति का प्रतीक बताया। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 35 सदस्यीय बोर्ड ने कल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव के पक्ष में 23 वोट पड़े, 5 विरोध में और 8 सदस्य मतदान से दूर रहे। ये प्रस्ताव अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने पेश किया था। रूस, चीन और नाइजर ने इसके खिलाफ वोट किया। ये कदम अमरीका और ईरान के बीच महीनों से जारी सैन्य टकराव और बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय शिष्टमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
3: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। एक रिपोर्ट।
4: 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। इनमें कीचड़ बचाव सूट, गैस डिटेक्टर, श्वास यंत्र, पोर्टेबल जनरेटर, प्रकाश टावर और जल निकासी पंप शामिल हैं। पीड़ितों की पहचान में सहायता के लिए भारत ने डीएनए किट, अर्भिक्रमक और डीएनए प्रोफाइलिंग उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने नेपाल के मंत्री महावीर पुन को राहत सामग्री सौंपी। इस बीच भारत के विशेष सुरंग बचाव दल ने नेपाल की सेना के साथ मिलकर चिले में और लोंगटोंग में दो उच्च जोखिम वाले स्थलों पर संयुक्त अभियान शुरू किया। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2 से 3 दिन के भीतर पूरा होने की आशा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। केरलम में अलपुजा और एर्नाकुलम जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल तक राज्य के कई हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से 3-4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। अमरीकी ओपन पुरुष एकल सेमीफाइनल में बेन शिल्टन की टक्कर फ्रांसिस टियाफो से होगी। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शिल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ये दिवस दुनिया भर में आत्महत्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
5: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताज़ा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद प्रियंका। भारत में आयोजित होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन से जुड़ी खबरों को कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। ब्रिक्स इंडिया सम्मेलन शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार सीमा पार डिजिटल सेवा आसान करेंगे ब्रिक्स देश। ब्रिक्स देशों की डिजिटल सेवाओं के कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 48%, दुनिया में 5वां स्थान। राजस्थान पत्रिका का कहना है, ब्रिक्स पर भारत का बड़ा दाव, सीमा पार व्यापार और स्थानीय मुद्रा में भुगतान पर जोर। पत्र ने लिखा है, चीन से सीधी उड़ान, ईरान से चाबहार और रूस से सुखोई फाइटर पर होंगे समझौते। नवभारत टाइम्स के आर्थिक पन्ने की खबर है, कच्चा तेल $100 के पार, पश्चिम एशिया में तनाव, तेल की कीमतों में तेजी से 3 महीने के निचले स्तर पर बाजार। जम्मू कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के शुभारंभ पर वंदे मातरम के पूरे गायन पर कांग्रेस की आपत्ति के जवाब में दैनिक जागरण ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान प्रकाशित किया है, वंदे मातरम कितना और कैसे गाना है, कांग्रेस यह सहयोगियों को ना सिखाए। जनसत्ता की खबर है, ओडिशा में बालासोर के जंगल में मिले 5 वनमानुष, मलेशिया, इंडोनेशिया, बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों में पाए जाने वाले इन वनमानुष के ओडिशा पहुंचने की जांच शुरू। लौटते मानसून से होगी राजस्थान समेत कई राज्यों में अच्छी बारिश, राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, 11 से 15 सितंबर तक चलेगा नया दौर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मंत्रिमंडल के इस फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। भारत ने ब्रिक्स देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए अवसर बढ़ाने की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान किया। भारत ने नेपाल में राहत कार्य तेज किए, राहत सामग्री के साथ 8वां विमान, विशेष सुरंग टीम और फोरेंसिक विशेषज्ञों को भेजा। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800.

0: Referring Iran to the Security Council opens the country to possible sanctions and asset freezes. However, such punitive measures are unlikely because Iran's allies Russia and China are permanent Security Council members and can veto any punitive action. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actually gambling, splitting large amounts into multiple small transactions, and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gaming as a major risk. India Meteorological Department, IMD, has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic West Bengal, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Kerala, Mahe and Uttarakhand during the next 2 days. The Met Department has forecast thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Andhra Pradesh, Telangana, Sub-Himalayan West Bengal and Sikkim till the 15th of this month. Similar conditions are likely to prevail over the Andaman and Nicobar Islands, Arunachal Pradesh, East Uttar Pradesh and Madhya Pradesh till tomorrow. Hot and humid weather over coastal Andhra Pradesh is likely today. In the US Open, Americans Ben Shelton and 11-seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's single semifinal. In the women's single semifinals on Friday, defending champion Aryna Sabalenka will face 3rd-seed Jessica Pegula, while 4th-seed Coco Gauff will play Elena Rybakina of Kazakhstan. In the men's singles quarterfinals, 8th-seed Shelton stunned defending champion Carlos Alcaraz in a 5-set thriller. Tiafoe defeated fellow American Alex Mitchelson in his quarterfinal match. Both Shelton and Tiafoe are chasing the first Grand Slam final. In the other men's quarterfinals, 28-seed Belgian Alexander Blok is currently playing against unseeded Russian Karen Khachanov, while top-seed Alexander Zverev of Germany will play Dutchman Botik van der Zandschulp today. News just in Philippines, 5 people have died and 86 remain unaccounted for after a fire broke out on a ferry off the Palawan province. The country's coast guard says the fire erupted on the MV June Aster as it neared its destination at the tourist hotspot of Coron in Palawan province. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakkal.
1: Thank you, Abhishek. Defence Minister Rajnath Singh's meeting with the Sri Lankan President in Colombo is noticed prominently by the dailies. Hindustan Times quotes the Sri Lankan President Anuradha Kumara Dissanayake as saying, "Won't allow our soil to be used for anti-India activities." Delhi turns into a diplomatic fortress as BRICS leaders arrive, reports the Pioneer. Following the tragic Satyaniketan tragedy in Delhi, the Asian Age writes, Delhi surveys 1,200 PGs, launches big crackdown. In another story, the Asian Age says, BJP to mark Prime Minister's 25 years in service with birthday outreach. And finally, century on, Oxford set to return Naga ancestral remains. Well, the Tribune reports that 39 Naga ancestral skulls, some taken more than a century ago during British colonial rule, are to be brought home from Oxford to Nagaland. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Dina. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet approves Railways 8 multi-tracking projects worth over 20,800 crore rupees. Prime Minister Narendra Modi says Cabinet decision will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. India calls upon BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. India ramps up Nepal flood relief with 8th aid flight, specialized tunnel team and forensic experts. IAEA refers Iran to UN Security Council over nuclear non-compliance. IMD issues red alert for heavy rainfall in Odisha today. And in tennis, Ben Shelton and Francis Tiafoe set up an All-American men's single semifinal at the US Open in New York. And with that, we are in the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैनुल अक्वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक्वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक्वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। और टेनिस में US ओपन में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में दो अमरीकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। काबीना की मीटिंग के बाद नामा निगारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों में से 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्टों पर 10,783 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जनाब वैष्णव ने कहा कि इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में तकरीबन 656 किलोमीटर का इजाफा हो जाएगा। मगरबी बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिले इनके दायरे में आएंगे। जनाब अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन प्रोजेक्टों को 2029-30 तक मुकम्मल किए जाने का मंसूबा है।
3: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे 4th लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाए। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
2: जनाब वैष्णव ने बताया कि दीगर 5 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट तकरीबन 10,021 करोड़ रुपए की लागत से मंजूर किए गए हैं। इनसे रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 540 किलोमीटर का इजाफा होगा और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के 17 जिले इसके दायरे में आएंगे। इन प्रोजेक्टों से तकरीबन 2,100 गाँव के लिए कनेक्टिविटी में इजाफा होगा, जहाँ तकरीबन 52 लाख की आबादी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि सरकार ने ज्यादा भीड़भाड़ वाले सभी 7 रेलवे कॉरिडोर को 4 लेन वाला बनाने का फैसला किया है। इनमें दिल्ली से हावड़ा, मुंबई से हावड़ा, दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से गुवाहाटी, दिल्ली से चेन्नई, हावड़ा से चेन्नई और मुंबई से चेन्नई रूट शामिल हैं।
3: दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस मुंबई, ये हो गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 7 हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स हैं, उन कॉरिडोर्स की 4 लाइनिंग का काम चल रहा है। तो करीब करीब 2000 किलोमीटर ऐसे हैं जो ऑलरेडी 4 लाइनिंग हो चुके हैं।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेजी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि जुनूबी भारत में 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 5 रेल प्रोजेक्टों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी की राह हमवार होगी और लाखों लोगों को फायदा होगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 3 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों से मुतालिक फैसले से छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में इजाफी रेलवे नेटवर्क कायम होगा और कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। जनाब मोदी ने कहा कि इससे सियाहत की हौसला अफजाई होगी और लॉजिस्टिक्स लागत भी कम हो जाएगी। कॉमर्स और सनतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैनुल अक्वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख्वातीन और ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। वजीर मौसूफ ने ख्वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए तरक्की और मौक़ों को बरूएकार लाने के लिए क्रेडिट और मार्केट्स तक रसाई को सहल बनाने और कारोबार के ज़ाब्तों में सहूलत पैदा करने पर भी जोर दिया। जनाब पीयूष गोयल नई दिल्ली में ब्रिक्स की ख्वातीन की ज़ेरे क़यादत तरक्याती कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। जनाब गोयल ने कहा कि भारत ने ख्वातीन को माली एतबार से, समाजी एतबार से, नीज तालीम, हुनरमंदी और बेहतर मेयार ज़िंदगी के ज़रिए बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की है ताकि ख्वातीन मुल्क की तरक्की में कायदाना रोल अदा कर सकें। जनाब गोयल ने कहा कि भारत में तकरीबन 30 करोड़ बैंक खाते ख्वातीन के हैं और खुद अपना कारोबार शुरू करने की ख्वाहिशमंद ख्वातीन को आसान शराइत पर कर्जे दस्तियाब होते हैं। वज़ीर मौसूफ ने इस बात को उजागर किया।

0: से आजाद बनाना है। जनाब गोयल ने इस बात को भी उजागर किया कि भारत ने 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की मईशत बनने का निशाना तय किया है, जबकि आज वो 4 ट्रिलियन डॉलर की मईशत है। मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल के रोज GFF का इफ्तिताह किया था। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मुंबई में जारी ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ सेशन का एहतमाम किया गया है। मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकॉनमी के उनवान से सेशन से खिताब करेंगे। RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा अगली दहाई की फाइनेंस टेक्नोलॉजी एतमाद और इख्तरा की तश्कील के उनवान से एक सेशन से खिताब करेंगे। SEBI के चेयरमैन तुहिन कांत पांडे, UIDAI के साबिक चेयरमैन नंदन नीलकनी और SBI के चेयरमैन CS शेट्टी भी दिन के दौरान अहम सेशन से खिताब करने वाले हैं। मुंबई से प्रार्थना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इंसानी हमदर्दी की इमदाद बढ़ा दी है। 35 टन इमदादी सामान के साथ भारतीय फजाइया का 8वां हवाई जहाज कल काठमांडू में उतरा। उधर नेपाल में अचानक सैलाब आने से मुतासिरा इलाकों में बचाव कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इसमें रसुआ के मुकाम पर वाके टनल भी शामिल है, जहाँ भारतीय एहलकारों की टीम तलाश और बचाव की कार्रवाई में नेपाल की फौज के साथ मिलकर काम कर रही है। नेपाल की कुदरती आफात से पैदा हालात से निमटने वाली अथॉरिटी के मुताबिक अब तक 13,646 अफराद को बचाया गया है, जबकि तकरीबन 5,132 अफराद लापता हैं। लापता लोगों में नेपाल की फौज, पुलिस और मुसल्लह पुलिस फोर्स के अहलकार, सरकारी मुलाजमीन, बैंक और माली इदारों के मुलाजमीन और गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। एटमी तवानाई से मुतालिक बैन अल-अक़वामी एजेंसी IAEA ने गुज़िश्ता 20 साल में पहली बार ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। एजेंसी ने कुछ मुकामात पर यूरेनियम आसार पाए जाने के मामले की तवील अरसे से चली आ रही छानबीन में ताउन करने में ईरान के नाकाम रहने का हवाला दिया है। ईरान ने इन मुकामात के बारे में पहले से कोई इंकशाफ नहीं किया था। IAEA के 35 अरकान पर मुश्तमिल बोर्ड ने 5 के मुकाबले 23 वोटों की हिमायत के साथ मुतालिका करारदाद मंजूर की, जबकि 8 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस, चीन और नाइजर ने इसकी मुखालफत में वोट दिया। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने यह करारदाद तजवीज़ की थी। ईरान का मामला सलामती कौंसिल के सुपुर्द किए जाने से ईरान के खिलाफ पाबंदियाँ और असासों पर रोक लगाई जा सकती है। अलबत्ता इस तरह के ताज़ीरी इकदामात का इम्कान नहीं है, क्योंकि ईरान के इत्तेहादी मुल्क रूस और चीन सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर हैं और वो किसी भी ताज़ीरी कार्रवाई को वीटो कर सकते हैं। उधर मगरबी मुल्कों के ओहदेदारों ने यह ख्याल जाहिर किया है कि यूरेनियम के आसार एटमी हथियारों के खुफिया प्रोग्राम की जानिब इशारा करते हैं और हो सकता है कि ईरान 2003 तक ये प्रोग्राम चलाता रहा हो। दूसरी तरफ ईरान ने एटमी हथियार हासिल करने की बात से इनकार किया है और जोर देकर कहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन है। माली उमूर से मुतालिक एक्शन टास्क फोर्स FATF ने माली जराइम के लिए गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म के बढ़ते हुए बेजा इस्तेमाल के बारे में मुल्कों को खबरदार किया है। FATF ने कहा है कि जराइम का इर्तिकाब करने वाले अफराद रकम को एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक पहुंचाने के लिए गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने गैर कानूनी और बगैर लाइसेंस वाले ऑनलाइन गैम्बलिंग को एक बड़ा खतरा करार दिया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश और कहीं कहीं इंतहाई तेज़ बारिश होने के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में अगले 2 दिन के दौरान तेज़ बारिश होने का इम्कान है। इधर तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और सिक्किम में इस महीने की 15 तारीख तक गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की पेशगोई की गई है। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन MCD ने शहर के सभी 12 जोन्स में

0: खतरे वाली खस्ताहाल इमारतों, गैर कानूनी तामीरात और दिल्ली मास्टर प्लान नीज तामीरात से मुतालिक ज़ैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों के ताल्लुक से अपनी मुहिम तेज कर दी है। कल अंजाम दी गई सरगर्म कार्रवाई के तहत MCD के सभी 12 जोन्स में 34 इन्हदामी कार्रवाइयाँ की गईं। इसके अलावा 17 इमलाक को सील कर दिया गया, 22 को वजह बताओ नोटिस जारी किया गया और इन्हदाम से मुतालिक 4 अहकाम मंजूर किए गए। मंगल के रोज भी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने कार्रवाई की थी, जिसके दौरान दिल्ली मास्टर प्लान और तामीरात से मुतालिक ज़ैली कवानीन की खिलाफ वर्जियों की पादाश में 17 इमलाक मुनहदिम की गईं, जबकि 5 इमलाक को सील किया गया। कौमी राजधानी में पेइंग गेस्ट PG इमारतों के बड़े पैमाने पर सर्वे के तहत ऐसी तकरीबन 1,243 इमारतों की निशानदेही की गई जो PG सहूलियात के तौर पर काम कर रही हैं। इनमें तकरीबन 24,000 अफराद रिहाइश पजीर हैं। पूरी दिल्ली में सर्वे का अमल जारी है और ये सर्वे आज मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं। US ओपन टेनिस में मर्दों के सिंगल्स सेमीफाइनल में 2 अमेरिकी खिलाड़ियों बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो के दरमियान मुकाबला होगा। क्वार्टर फाइनल में 8वें नंबर के खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के सनसनीखेज मुकाबले में पिछली बार के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हरा दिया, जबकि टियाफो ने अपने हमवतन एलेक्स माइकलसन को शिकस्त दी। इधर खवातीन सिंगल्स के सेमीफाइनल में कल पिछली बार की चैंपियन एरिना सबालेंका का मुकाबला 3रे नंबर की खिलाड़ी जेसिका पेगुला से होगा, जबकि 4थे नंबर की खिलाड़ी कोकोगाफ कजाखिस्तान की एलिना रिबाकीना का सामना करेंगी। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने आज अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार बरताव ने हुकूमत के जरिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में रेल लाइनों की सलाहियत बढ़ाने के लिए 5 प्रोजेक्टों को मंजूरी दिए जाने की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव के हवाले से लिखता है, इन प्रोजेक्टों से रेल नेटवर्क में 540 किलोमीटर का इजाफा होगा। इसी अखबार की एक और सुर्खी है, वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने श्रीलंका से समुद्री ताउन बढ़ाने पर दिया जोर, कहा महफूज समुद्री रास्ता और बिला तातुल तजारत ज़रूरी। नेपाल में 26 अगस्त को आए तबाहकुन सैलाब के बाद भारत की जानिब से इमदाद और बचाव का ऑपरेशन बदस्तूर जारी, इस खबर को इनकलाब ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। अखबारात ने नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन के इस बयान को भी नुमाया किया है कि कबायली बिरादरियाँ भारत का मुस्तकबिल संवारने में शराकत दार हैं।
0: खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने रेलवे के 20,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 8 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना के फैसले से मुसाफिरों की तेज़ी के साथ आमदोरफ्त, मजबूत कनेक्टिविटी और बारबरदारी की सलाहियत में इजाफे को यकीनी बनाया जा सकेगा। भारत ने ब्रिक्स मुल्कों पर जोर दिया है कि वो बैनुल अक़वामी तजारत में कारोबार करने वाली ख़वातीन और ख़वातीन की ज़ेर क़यादत इदारों के लिए मौके बढ़ाने की खातिर मिलकर काम करें। भारत ने सैलाब से मुतासिरा नेपाल के लिए इमदादी सामान की 8वीं परवाज मखसूस टनल टीम और फॉरेंसिक माहिरीन के साथ इमदाद तेज कर दी है। एटमी तवानाई से मुतालिक बैनुल अक़वामी एजेंसी ने एटमी मामले पर ताउन न करने पर ईरान का मामला अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के पास भेजा है। मौसमियात महकमे ने आज उड़ीसा में शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप आनंद उठाएंगे ऋत्विम सान्याल द्वारा राग जौनपुरी में गायन का। आपके साथ संगत कर रहे हैं पखावज पर श्रीकांत मिश्रा।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप आनंद उठा रहे थे। ऋत्विम सान्याल द्वारा राग जौनपुरी में गायन का। आपके साथ संगत कर रहे थे पखावज पर श्रीकांत मिश्रा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 9:15 होने को है। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम उद्योग पत्रिका।

0: नमस्कार, उद्योग पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। सभी श्रोताओं को कमल किशोर का नमस्कार। साथियों, आज चिकित्सा सेवाओं का दायरा केवल दवाओं के निर्माण और वितरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें संसाधनों का कुशल प्रबंधन, गुणवत्ता नियंत्रण, आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल तकनीक और रोगी केंद्रित सेवाएं भी शामिल हैं। इन्हीं पहलुओं पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर संगीता जी मगन जी को। संगीता जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद, प्रशिक्षक, लेखिका और सलाहकार हैं और आपको फार्मेसी, प्रबंधन शिक्षा, नेतृत्व विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में 3 दशकों से भी ज्यादा का अनुभव आपके पास है। आज आप हमारे साथ फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान के विकसित होते संबंधों, स्वास्थ्य सेवा में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य की संभावनाओं पर अपने विचार साझा करेंगे, हम आपसे जानकारियां लेंगे। संगीता जी, जब भी कभी हम बाजार जाते हैं कोई दवाई लेने के लिए, तो अक्सर हम फार्मासिस्ट, केमिस्ट और ड्रगिस्ट, इन 2-3 शब्दों से रूबरू होते हैं, तो क्या इनमें कोई समानता है या कोई अंतर है?
1: पहले तो थैंक यू सो मच, मेरे लिए ही ऑनर है कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ आप लोगों के बीच में। बात करते हैं फार्मासिस्ट की, केमिस्ट की और ड्रगिस्ट की। तो बेसिकली आज हम इन तीनों वर्ड्स को इंटरचेंजेबल यूज करते हैं, इनमें कुछ खास डिफरेंस है भी और कई जगहों पे एक सा ही लगता है। तो हर केमिस्ट शॉप पे जहाँ केमिस्ट्री से रिलेटेड सामान, दवाइयाँ, जिसको ड्रगिस्ट बोलेंगे, ये चीजें मिलती है। फार्मासिस्ट बेसिकली वो है जो एक क्वालिफाइड है, जिन्होंने ड्रग्स के बारे में, दवाइयों के बारे में पूरी एक सर्टिफाइड स्टडी करी है, तो उनको हम एक क्वालिफाइड पर्सन समझते हैं जो ये ड्रग्स को या दवाइयों को डिस्पेंस करने के योग्य हैं। तो जब हम केमिस्ट कहते हैं तो वो केमिकल से ज्यादा रिलेटेड स्टडी है। ड्रगिस्ट कहते हैं उनको जहाँ पे मेडिसिन सोल्ड किए जाते हैं।
0: जी जी।
1: सो इन सब की स्टडी करके, जो पूरी अच्छे से उनकी पढ़ाई करके, क्वालिफिकेशन लेकर वहाँ बैठ कर जिसको बेचने का हक है दवाइयों को, उसको फार्मासिस्ट कहते हैं।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी। और ये जो दवा उद्योग है, जो कंपनीज है, इनमें और प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट साइंस के बीच में क्या संबंध है?
1: देखिए, दवाइयों का काम है हील करना, ट्रीटमेंट करना।
0: जी।
1: जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आज एक फार्मेसी जो है या फार्मासिस्ट जो है, कुछ साल पहले, जैसे मैं कहूंगी कि जब मैंने एक फार्मेसी पढ़ा था, मैं 1986 की बात कर रही हूँ, तो जब हमने पढ़ा था तो फार्मेसिस्ट का काम था दवाइयां देना। तो अब जो है, मैनेजमेंट के बिना एक फार्मासिस्ट सिर्फ फार्मासिस्ट ही बनकर रह जाता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी आने वाले बच्चे हैं जो फार्मेसी पढ़ रहे हैं, वो एक स्टेप ऊपर बढ़े, क्योंकि इसमें अब इतना इवोल्यूशन हो चुका है, इतने सारे नए रोल्स आ चुके हैं, ताकि उनको सिर्फ और सिर्फ दवाइयां देने का काम नहीं करना है। तो उन सब चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है।
0: तो मैनेजमेंट जो स्किल है वो क्यों जरूरी है?
1: मैनेजमेंट स्किल का मतलब है आप लोगों से क्या बात करते हैं, कैसे अपने प्रोफेशन को चलाते हैं और कैसे अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम एक सोचें कि एक केमिस्ट या फार्मेसी शॉप है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो उसका रोल सिर्फ दवाई देना तो नहीं है, उसका रोल है कि वो अपने वेंडर्स के साथ कैसे बात करेगा, सप्लाई चेन कैसे मैनेजमेंट करेगा, अपनी टीम को कैसे लीड करेगा। तो मैनेजमेंट उन सब चीजों को सिखाता है, अकाउंटेंसी भी सिखाता है उनको, उनको लीडरशिप भी सिखाता है, उनको टीम स्किल्स भी सिखाता है, उनको ये भी सिखाता है कि मेरी दवाइयों की स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, मेरी दवाइयां किस तरह से रखी जानी चाहिए ताकि इजी एक्सेस हो और हर समय अवेलेबल हो, शॉर्टेज ना हो। तो ये सब चीजें जो है मैनेजमेंट के थ्रू ही हम सीख सकते हैं।
0: यानी कि मैनेजमेंट की भूमिका एक फार्मासिस्ट के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है, और इसके बिना हम कह सकते हैं कि अगर किसी अस्पताल में, किसी क्लिनिक में, किसी हॉस्पिटल में अगर फार्मासिस्ट है, अगर उसको मैनेजमेंट नहीं पता है या फिर नहीं कर सकता है, कम स्किल्ड का है, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है,
1: बहुत सी परेशानी हो सकती है। बिकॉज हमारे को ये सोचना है कि ये क्रिटिकल दवाइयां हैं, इसकी मेरे को कितनी जरूरत पड़ती है और इसका मेरे पास में कितना स्टोरेज होना चाहिए।
0: और खासकर इसमें तो जो डॉक्टर्स जो दवाइयां लिखते हैं उनको जो अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाता है वो फार्मासिस्ट है।
1: फार्मासिस्ट ही है। देखिए, डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट ये दोनों पार्टनर्स हैं हेल्थ केयर सिस्टम। आज जो सिस्टम है वो सिर्फ हेल्थ सिस्टम नहीं है, हेल्थ सर्विसेज नहीं है, ये हेल्थ केयर सर्विसेज है। तो हम कहते हैं कि हर रोल जो प्ले हो रहा है एक हॉस्पिटल के अंदर, वो किसी का ज्यादा और कम नहीं है। सबसे ज्यादा जो इन टच में आते हैं वो या तो नर्सेज आती हैं जो इन पेशेंट्स हैं, और जो आउट पेशेंट्स हैं उनके लिए फार्मासिस्ट आता है।
0: आपने नर्स की बात की, तो नर्स को भी एक फार्मेसी का ज्ञान होना जरूरी है?
1: बिल्कुल जरूरी है, लेकिन होता नहीं है। उनको दवाइयां देना आता है, लेकिन उनको दवाइयों का डोसेज का स्टडी और जो ड्रग इंटरेक्शंस का स्टडी है वो नहीं होता है। तो सब अपनी अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि ये सब पार्टनर्स हैं। ये टीम ऐसी है कि एक की गलती से भी डिस्पेंसिंग एरर हो गया, उनको देने का एरर हो गया, तो डॉक्टर की पूरा काम जो है वो निल हो गया,
0: फेल हो जाता है,
1: फेल हो जाता है। तो ये सब पार्टनर्स हैं, तो तभी वो सिस्टम जो है अच्छा स्ट्रांग बन सकता है।
0: हम ये कह सकते हैं कि सभी एक दूसरे के प्रति जो कॉम्प्लीमेंट्री है,
1: बिल्कुल।
0: तो जो अस्पतालों में या जो केमिस्ट के पास या फार्मेसियों में जो एक इन्वेंट्री होती है, जो भंडारण होते स्टोर होता है, और जो एक सप्लाई चेन जो होता है, जो प्रबंधन किया जाता है, उसमें रोगियों के यानी कि पेशेंट के देखभाल पर किस प्रकार का असर करता है, किस प्रकार प्रभावी होता है?
1: देखिए, बहुत सी ऐसे दवाइयां हैं जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए, प्रॉपर उनको किसी को फ्रिज में रखना है, किसी को रेफ्रिजरेटर में रखना है, किसी को सिर्फ एक कूल डार्क प्लेस पे रखना है, तो वो अलग अलग चीजें हैं, ये फार्मासिस्ट का ही काम है। कितनी दवाइयां मेरे हॉस्पिटल में यूज होंगी उसकी प्लानिंग भी एक फार्मासिस्ट
0: इन्वेंट्री जो है,
1: इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सब फार्मासिस्ट ही कर सकता है। बिकॉज डॉक्टर तो ये नहीं बता सकते हैं कि इतने पेशेंट्स हैं इतनी दवाई रखो, फार्मासिस्ट ये बता सकता है कि इस दवाई के मेरे पास में ये चार तरह के मेडिसिन अवेलेबल हैं, और वही डॉक्टर्स को दिखाते हैं कि ये चार हमारे पास में अवेलेबल ऑप्शंस हैं, तो इसमें से हम लिख सकते हैं। तो ये सभी का रोल रहता है उस इन्वेंट्री को मैनेज करने के
0: जी,
1: लिए।
0: जी जी, तो अस्पताल मेडिकल टीम और दवा उत्पादक, और कहना चाहिए कि फार्मासिस्ट केमिस्ट में एक बेहतर तालमेल होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए।
1: बिल्कुल, देखिए एक हॉस्पिटल में जब आप एंटर करते हैं, आज एक रोगी सिर्फ नहीं जाता है, उसके साथ उसकी फैमिली भी जाती है।
0: जी
1: ठीक है, एक रोगी एंटर करता है एक हॉस्पिटल के अंदर, तो सबसे पहले कौन मिलता है उसको? एक गार्ड। अगर वो गुस्से से, बदतमीजी से, डिसरिस्पेक्टफुल मैनर में बोलता है, तो वहीं पे इंप्रेशन हॉस्पिटल का खराब हो जाता है। उसके बाद आते हैं लिफ्ट पे, उसके बाद आते हैं ओपीडी में, रिसेप्शनिस्ट है, ये सभी जो हैं वो भी एक पार्ट हैं। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पेरिफरी के ऊपर बैठे हैं, बाहर की साइड पे। उसके बाद जब अंदर की टीम की हम बात करते हैं, तो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, फार्मासिस्ट हैं, और इन्हीं का रोल है मेजरली उस पेशेंट को सैटिस्फाई करने का। देखिए, हमने आज साइंस इतनी एडवांस कर चुकी है, लेकिन हम अमर तो नहीं है, हम सबका कुछ ना कुछ एंड है, लेकिन दवाइयों से हम ट्रीटमेंट करते हैं, फिर भी करते हैं। और जो उम्मीद हमें चाहिए, जो कंपैशन, जो एम्पथी हमें चाहिए, वो पूरी टीम मिलकर ही दे सकती है।
0: बिल्कुल, जब कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेकर, डॉक्टर ने दवाई लिखी और छोड़ दिया, उनसे कोई बात नहीं होती है, लेकिन उसी बात को अच्छी तरह से फार्मासिस्ट समझाता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ही समझाता है, वही संतुष्ट कर सकता है कि डॉक्टर ने क्या कहा और आपको दवाई किस प्रकार से लेनी।
1: देखिए, वो ट्रस्ट बिल्ड करने का काम जो है वो एक फार्मासिस्ट का है। हॉस्पिटल के बाहर ही मैंने बहुत वजह से, हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जाते हैं, हम फार्मेसी की ट्रेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम उसी हॉस्पिटल के बाहर बोर्ड्स देखते हैं जो केमिस्ट के लगे हैं, 70% ऑफ ऑन मेडिसिन। तो हम असली दवाइयां इस हॉस्पिटल की फार्मेसी से क्यों लें, हमें जो 70% ऑफ पे बाहर मिल रही है। तो केमिस्ट और जो फार्मासिस्ट वहां क्वालिफाइड बैठा है, उसको अपना ट्रस्ट बिल्ड करने की जरूरत है कि हमसे दवाई क्यों लें।
0: यानी कि ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा,
1: ये भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है,
0: किस प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड करना,
1: ट्रस्ट बिल्ड करना है।
0: मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है कि जो सिंपैथी, एम्पैथी और ट्रस्ट, इन सब की बात करें, आज जमाना है नई तकनीक का, AI का और टेलीमेडिसिन युग का है। कुछ ही चंद घंटों में आपको दवाइयां हाजिर हो जाती हैं, आपके पास आ जाती हैं दवाइयां, आपको उसका समाधान मिल जाता है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि जो बदलाव हो रहा है रोगी पर, किस प्रकार का असर हो रहा है, या कह सकते हैं कि जो मानवीय जो संवेदनाएं हैं, आत्मीयता है, वो कम हो रही है, ऐसा आपको नहीं लगता है? और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं?
1: देखिए, मुझे क्या लगता है, आज का जो पेशेंट है ना, वो बहुत इन्फॉर्म्ड है। आज चैट के ऊपर डाल दीजिए अपने थोड़े से सिम्टम्स, वो आपको आपकी बीमारी बता दे
0: जी।
1: तो क्या डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है हमें?
0: बिल्कुल
1: गलत हो जाएगा। तो इसी तरीके से AI कितना भी डेवलप कर ले, जब तक एक ह्यूमन कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो काम जो हम चाहते हैं वो नहीं होगा। हमने दवाई ली, हमारा ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन हीलिंग प्रोसेस के लिए हमें ह्यूमन कनेक्टिविटी की जरूरत है। और वही जो हीलिंग है आती है बिकॉज लोगों में एम्पथी है, कंपैशन है, बात करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं, वो आपको AI नहीं दे सकता।
0: बिल्कुल, दवाइयां केमिस्ट तक पहुंचती हैं, जो दुकानों तक पहुंचती हैं, उनकी जानकारी एक MR देता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी भूमिका बड़ी भूमिका होती है। आप इसे किस प्रकार देखती हैं?
1: देखिए, जो मेडिकल रेप्स हैं यूजुअली वो भी फार्मासिस्ट ही होते हैं। अच्छी जो कंपनीज हैं वो हमेशा फार्मेसी ग्रेजुएट्स को पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाती हैं मेडिकल रेप्स के लिए।
0: अच्छा,
1: बिकॉज उनको एक्सपर्टीज पता है, डॉक्टर उसमें कुछ भी पूछे उनकी नॉलेज बिल्कुल अप टू डेट है और उन्हें पूरा के पूरा उस ड्रग के बारे में सब कुछ पता है, तो वो ऑलरेडी उनके पास में एक्सपर्टीज है, तो वो एक फार्मासिस्ट ही होते हैं यूजुअली। अच्छी कंपनीज जो है वो फार्मेसी ग्रेजुएट्स को या एम फार्म पोस्ट ग्रेजुएट्स को ही उठाते हैं, इसीलिए आज हम मैनेजमेंट के साथ में जोड़ रहे हैं इसको कि अगर हमने फार्मेसी मैनेजमेंट सीख लिया है, एक अलग से कोर्स MBA करा है, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटीज और हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ दवाइयां डिस्पेंस नहीं करनी है, हमारे पास में और बड़े रोल्स आ जाते हैं जो एक हॉस्पिटल में निभाए जाते हैं।
0: संगीता जी, अभी हमें जो सुन रहे हैं मुझे लगता है कि बहुत लोगों को फायदा होगा और कई लोग सोच भी रहे होंगे कि इस क्षेत्र में हमें जाना चाहिए। कई स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे, जो श्रोता हैं सोच रहे होंगे, आप उनको क्या सलाह देंगे कि फार्मेसी के क्षेत्र में जाने के लिए किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए और आगे इसका क्या भविष्य है?
1: तो भविष्य हमारे पास में बहुत सारे ऐसे रोल्स आ चुके हैं एक हॉस्पिटल के अंदर ही। पहले सिर्फ फार्मासिस्ट जो था अपनी फार्मेसी शॉप तक लिमिटेड था, अब वो क्लिनिकल डिसीशंस के अंदर भी आ चुके हैं। तो क्लिनिकल ये जो फार्मेसी है वो एक पूरा का पूरा, वो भी डॉक्टर्स के जैसे पूरे राउंड्स लेते, तो इसलिए जो रोल्स हमारे पास में और उभर कर आ रहे हैं आजकल के बच्चों के लिए जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं वो और बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ उनको दे सकते हैं। तो वो इंडस्ट्री फार्मेसी में भी जा सकते हैं, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं, उनके पास में ऐसे बहुत सारे रोल्स हैं जो नए निकल कर आ रहे हैं फार्मेसी की स्टडी से, क्योंकि हर सिचुएशन जो है एक्सपैंड हो रही है। जैसे मैंने कहा हेल्थ केयर सिस्टम, तो इस केयर सिस्टम के अंदर बहुत से नए अपॉर्चुनिटीज हम फार्मासिस्ट्स के लिए निकल कर आ रहे हैं।
0: तो हम ये कह सकते हैं कि जो फार्मेसी का कोर्स है उसके साथ साथ में जो मैनेजमेंट है वो भी साथ साथ चलता है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: और दोनों का साथ साथ होना जरूरी है।
1: बिल्कुल, देखिए जो स्टूडेंट्स आज MBA करने के लिए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स नहीं होते, क्योंकि MBA का मतलब बिजनेस को मैनेज करना है। वो बिजनेस फार्मेसी का हो सकता है, वो बिजनेस हॉस्पिटल का हो सकता है, वो बिजनेस अकाउंट से रिलेटेड हो सकता है, ट्रैवल से रिलेटेड हो सकता है, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो इसलिए MBA करने का मतलब है या मैनेजमेंट स्टडी करने का मतलब है कि हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हैं।
0: जी संगीता जी, अब चलते चलते क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम होता है और वक्त का ख्याल रखना पड़ता है, तो ये कई बार हम सुनते हैं फार्माकोलॉजी, ये क्या है?
1: फार्माकोलॉजी का मतलब है दवाइयों की और डिजीजेस की स्टडी। किस डिजीज के लिए कौन सी दवाई जरूरी है, किस डोज में जरूरी है, इन सब चीजों की स्टडी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं।
0: तो क्या ये फार्मासिस्ट से बिल्कुल ही अलग है?
1: नहीं, ये फार्मेसी के अंदर का ही एक कोर्स है।
0: अच्छा,
1: फार्मेसी का मतलब सिर्फ एक फार्मेसी नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है जो आयुर्वेद से रिलेटेड है, तो बहुत सी स्टडी कर एक फार्मासिस्ट बनता है। सो ये हम ना सोचें कि वो स्टडी नहीं करके आए, उनकी बहुत सी एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं वो। इनफैक्ट लॉ भी पढ़ते हैं फार्मेसी से रिलेटेड, अकाउंट्स भी पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़कर वो आते हैं। तो फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट एक और एंटायर ब्रांच निकल कर आ रहा है जिसके अंदर डिजीजेस की और एक्सटेंसिव स्टडी होगी और उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या डोसेज, क्या ड्रग इंटरेक्शंस, किस तरह से दवाई देनी है, कब देनी है, और वो हर केमिस्ट्री उससे जो रिलेटेड है उसकी स्टडी से वो पढ़ते हैं।
0: यानी कि हम ये कह सकते हैं चलते चलते कि जो फार्मेसी है, फार्मेसी का कोर्स है, फार्माकोलॉजी है, कम्प्लीटली वो मैनेजमेंट स्किल पे डिपेंड करता है। अगर ये दोनों साथ साथ रहे तो फार्मेसी फार्माकोलॉजी ये और भी ज्यादा आत्मीयता, संवेदनशीलता और पेशेंट के साथ में जो रिलेशन है वो ज्यादा मजबूत हो सकता है, अच्छा हो सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए जब हम फार्मेसी पढ़ते हैं तो हम सिर्फ फार्मेसी की पढ़ाई करके आए हैं, जब हम मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो हम बाकी सब चीजें भी अंडरस्टैंड करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम उसमें बहुत से आजकल ऐसे मॉड्यूल्स भी डाले जाते हैं जिसको हम पीपल्स स्किल्स कहते हैं, लोगों से कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, उन सब चीजों की स्टडी भी करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है।
0: तो श्रोता मित्रों, फार्मेसी और प्रबंधन विज्ञान का समन्वय स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी, सुरक्षित और सुलभ बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भविष्य में भी ये साझेदारी स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के विकास के लिए प्रमुख आधारशिला बनी रहेगी और इसमें और भी इनोवेशन होते रहेंगे और भी डेवलपमेंट होते रहेंगे। संगीता जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने वक्त निकाला और इतनी अच्छी अच्छी जानकारी आपने साझा की इस विषय पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: धन्यवाद।
0: और इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
2: उद्योग पत्रिका। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के ठीक 9:30 होने को है। ये वक्त होता है अपने श्रोताओं को पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक सुनवाने का।

पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लैके मैं तुहाडी सेवा च हाजिर हां हरजीत कौर। अज असीं तुहानू सेहत संभाल प्रोग्राम च आत्म हत्या दी प्रवृत्ति दी रोकथाम विषय ते डॉक्टर MS पाटिया नाल कीती गलबात सुनवावांगे ते कुछ लोकगीत भी सुनांगे। श्रोतियो अज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे यानी विश्व आत्म हत्या रोकथाम दिवस है। तुसी वेखते हो अजकल आत्म हत्या दे मामले वधदे जा रहे ने, बच्चे तो लैके

0: बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जिस तरह बीमारियां, साइकोसिस है, स्किजोफ्रेनिया है, और एडिक्शन है. आजकल एडिक्शन भी बड़ा कॉमन है, जो नशा करना. तो नशे की प्रवृत्ति के विच भी आदमी नूं कई बार सुसाइड की जिहड़ी इंटेंशन है वध जांदी है, तो सुसाइड कर सकता है. तो यह सारे जिहड़े कारण ने ना, मेन कारण ने. बाकी फैमिली दे सुसाइड किसी ने किया होए या उन्हें पहले कभी कोशिश की हो, तो वो रिस्क जिहड़ा वध जांदा है. मतलब जिन्होंने कहने से जेनेटिक कारण, जेनेटिक कारण इनडायरेक्टली मानसिक रोग बढ़ाते हैं, जिस तरह डिप्रेशन का चांस ज्यादा हो जाएगा, स्किजोफ्रेनिया ज्यादा होएगा, उधर सुसाइड का रिस्क भी हो सकता है. बाकी फैमिली मेंबर ने रिस्क बढ़ जाता है.
1: मतलब देखा देखी भी कर लेंगे,
0: देखा देखी भी कर लेंगे
1: कि मतलब किसी वे ने घर इदा किया, तो छोटा बच्चे के मन च कोई किसी तरह का कोई दबा आया, तो उस दबा के उन्हें वे कदमों से तुरना शुरू करता, तो उससे उन्हें भी उही कदम चुके जो वे चुके से, सुसाइड कर लिया. इदा भी हो जाता.
0: कई बार तुम्हें देखा होगा खबर भी आदि ने, जिस तरह फैमिली पैक्ट कहने से, फैमिली पैक्ट जिस तरह एक आदमी ने सुसाइड की टेंडेंसी हैगी, वो मरना चाहता है, वो बाकी लोगों ने भी मोटिवेट करता है कि भाई तुम भी हूँ बचा कुछ नहीं है, तुम सुसाइड करो. जिस तरह हसबेंड ने वाइफ नू पॉइजन कर दिता, फिर बच्चों कर दिता, फिर अपने आप सुसाइड कर लिता. तेन फैमिली पैक्ट करना है. जिस तरह कोई बर्डन होंगे, जिस तरह तुम कह लो कि किसी ने कोई फाइनेंशियल बर्डन है, लोन लिता हुआ है, तो उन्हें कोई ना परेशानी है कि उन्हें लगता है मेरी जॉब चली गई, हूँ मैं फैमिली वास्ते भी लुक आफ्टर नहीं कर सकता, और ना ही मैं लोन वापस कर सकता, तो वो भी सुसाइड कर लेंदा है. तो ऐसी ऐसी कंडीशंस ने जिन्हें अभी फैमिली पैक्ट करने हैं, पूरी फैमिली की फैमिली खत्म हो जाती है. अजकल खबरें काफ़ी आदि ने कि जिद फैमिली पूरी की पूरी खत्म हो जाती है.
1: ते लक्षण की होंगे, कि असं कि पछाणीए कि यह बंदा हूँ सुसाइड करने जा रहा है, यह बजुर्ग जो है उन्होंने की लक्षण, क्या बच्चों के व्डियां लक्षण वक्रे वक्रे भी होंगे ने, कि इको जी के लक्षण होंगे सारे. हाँ,
0: एक ये जी अस कहने गलत भावना हैगी कि कोई जिस तरह बच्चे और बुजुर्ग आदमी सुसाइड नहीं कर सकते, जबकि है उल्टा. बिल्कुल, बच्चे भी सुसाइड करते हैं और बुजुर्ग आदमी भी सुसाइड जोड़ा काफ़ी कॉमन है. और उन्हें सब तो इंपॉर्टेंट होंगे कि कोई भी बच्चा या बुजुर्ग या कोई भी फैमिली कहता है कि भाई मैं मरना चाहना वा, तो वो एक इंडिकेशन है जिन्हों बड़ा मतलब सीरियसली लेना चाहिए, बड़े गंभीर रूप से रहना चाहिए, और किसी भी मनोचिकित्सक या मनोवैज्ञानिक नूं मिलना चाहिए कि भाई उन्हें एक बार यह गल कही है. अजकल काफ़ी सारे पेरेंट्स ने जड़े मतलब कॉशियस हो गए ने. ज़्यादातर लोग किसी ना किसी तरीके ना कम्युनिकेट करते हैं, अपना इंडिकेशन देंगे ने कि भाई असं मरना चाहते हैं, कि भाई साड़ी फैमिली दे साड़ी कुछ बचे नहीं अगे लाइफ दे विच, तो इंडिकेशन है. और यह जरूरी नहीं कि वो कोई दूसरे लक्षण मनोरोग दे हों, जिस तरह उदास रहना, नींद ना आना, लोगों ना गलबात ना करना, अपना काम ते ना जाना, यह सारे सुसाइडल आइडिएशन असं मनने हैं और इनू सीरीयसली लेना चाहिए. तो यह जो सवाल पूछा तो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ आई हुई है कि फैमिली दे विच ज़्यादातर सुसाइड बचाइया जा सकती हैं अगर इनू सीरीयसली लिता जाए.
1: मोटे मोटे की लक्षण होंगे ने कि जितो पछाण हो जाए जल्दी तो जल्दी मन में सुसाइडल थॉट भी आते पे उस बंद बचाया जा सके.
0: उदा तरीका यही है जिस तरह छोटे बच्चे ने, छोटे बच्चे इंडिकेशन देंगे ने, उन्हें स्कूल तो एबसेंट हो जाना, स्कूल जाने तो मना करना, उन्होंने जी परफॉर्मेंस है स्कूल के वो घटनी शुरू हो जाए, और टीचर भी जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होंगी वो इंडिकेशन देंगे ने कि बच्चा उस तरह का इनवॉल्व नहीं हो रहा पढ़ाई दे, बड़ा अच्छा बच्चा थी पर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा. तो अकैडमिक जिन्होंने कहने ना अकैडमिक या स्कॉलरस्टिक या स्कूल की जी डिकलाइन आती है ना परफॉर्मेंस, इको इंडिकेशन है. दूसरा बच्चा किसी ऐसे ग्रुप में है जिसे नशा करते हैं बच्चे, अच्छा नशा बड़ा कॉमन है, तो वो नशा करते हैं उस ग्रुप में, वो भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा वो बच्चे के. वो अलावा आदमी सो नहीं रहा, लोगों ना गलबात नहीं कर रहा, कोई सोशल इवेंट फैमिली हो रहे उसे अवॉइड करता नहीं जाना, ऑफिस नहीं जा रहा, अपनी ड्यूटीज तो ऑफ रह रहा, भुखने लगना, खाना ना खाना, यह सारे इंडिकेशन ने कि जड़े इंडिकेट करते हैं कि वो प्रॉब्लम कुछ ना कुछ शुरू हो गई है. डिप्रेशन के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां ने, जिस तरह स्किजोफ्रेनिया है, स्किजोफ्रेनिया हैलूसिनेशन वगैरह होंगे ने कि आदमी को आवाज़ा आदियां ने, आवाज़ा कहदियां ने कि तू अपने आप को खत्म कर ले, तो वो आवाज़ा करके जी साइकोसिस असं कहने या स्किजोफ्रेनिया, वो भी आदमी सुसाइड कर सकता है. सोशल, ऑक्यूपेशनल या अकेडमिक इन्वॉल्वमेंट डिकलाइन होना शुरू हो जाए, तो वो इंडिकेशन है कि भाई कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है. और कोई स्ट्रेस भी है, जैसे किसी उत्ते कोई लोन का स्ट्रेस है, और स्ट्रेस के बारे बार बार गल कर रहा है, वो भी एक इंडिकेशन है कि भी वो पूछना चाहिए भाई तेनों किस तरह का सपोर्ट चाहिए है. वैसे कहने फैमिली एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और फैमिली जी खुद भी असैस कर सकती है कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है. पर ज़्यादातर लोगों से असं देखे कि लोग जो परिवार के लोग ने उस चीज़ को एक्सैप्ट नहीं करते, वो यह नहीं एक्सैप्ट करते कि भाई इन्हों कोई मनोरोग है. जो सवाल तुम पूछे ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ

0: परफॉर्मेंस स्ट्रेस बहुत ज्यादा आएगा बच्चे, दूसरा उन्हें प्रेशर रहेगा कि भाई
1: टारगेट सेट कर
0: टारगेट सेट कर देने ने। तीसरी होना चाहिए इनसिक्योरिटी है कि सारी जॉब कल है या नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने या किसी आदमी ने लोन लेता होया है, कार लोन, होम लोन है, सारे लेते हुए ने, और जॉब सडनली चली जाए तो वो वास्ते बड़ा स्ट्रेसफुल हैगा। वो स्ट्रेसिस ने इन्हों कट करने वास्ते एमएनसीज ने कैरियर काउंसलिंग सेंटर बना देते, उन्होंने स्ट्रेस काउंसलिंग सेंटर बनाए ने, वर्कशॉप्स होंदिया रहिंदियां रेगुलरली। ऐसा ही हुण अजकल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दिता है और UGC ने और नैशनल मेडिकल काउंसिल ने कहा कि सारे कॉलेज जिन्हें भी कॉलेज ने उन्हें स्टूडेंट वेलनेस सेंटर होने चाहिए ने। उसका मेन मकसद है कि सुसाइड जी है स्टूडेंट्स के बढ़ रही है, उन्होंने रोकना ऐसे किसी तरीके। तो सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के कमेटी बनी हुई है और सारे कॉलेज UGC का डायरेक्टिव है कि अगर 500 तो घट बच्चे ने तो एक काउंसलर, ज़्यादा बच्चे ने 2 काउंसलर मिनिमम हर कॉलेज के हर स्कूल के होने चाहिए ने, ताकि मैन पावर के भी घट इस्तेमाल हो और लोगों अवेयरनैस वे, ताकि वो भी अगर किसी चीज़ को पहचान पाते हैं तो उन्होंने रैफर कर ट्रीटमेंट वास्ते। और तीसरा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जरा ऑडियो मेजल मीडिया है जिस तरह साड़ा यह प्रोग्राम है कि लोगों तक मैसेज पहुँचाना कि भाई तुहानू कोई अगर प्रॉब्लम है लगती है या किसी और व्यक्ति दे विच है, साढ़े जिहड़े पेशेंट्स ठीक होकर जाते हैं ना वो कम्युनिटी लीडर का काम करते हैं, वो दूसरे दसते हैं देखो भाई यदा इलाज है, मैं ठीक हो गया तुम भी ठीक हो सकते हो, तुम जाओ जाके ट्रीटमेंट कराओ। साड़ी फैमिली दे विच एक मेंटर होना चाहिए जिहड़ी यह सारी चीज़ों डिस्कस करे, डिस्कस करे और सोल्यूशन भी दसे।
1: ते मनोविज्ञान भी एक तरह के मेंटर ही होंदे ने जे तुहानू सही राह ते चलना दसदे ने कि जिंदगी हारन दा नाम नहीं जित्तन दा नाम है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब इस तों इलावा इलाज बारे सानू जानकारी दो कि इहदा ते डॉक्टरी इलाज किवें हुंदा है।
0: डॉक्टरी इलाज दे जिहड़ियां दवाइयां ने वो काफ़ी इफेक्टिव ने, पर उहदे विच सब तो वड्डी गल जिहड़ी लोगों नू समझनी चाहिए कि जिहड़ी दवाइयां दित्तियां जांदियां ने उहदा इलाज रेगूलरली कराना चाहिए। बहुत सारे सिमटम्स ने जो एकदम ठीक नहीं होंगे, लंबा इलाज है। और डिप्रैशन वैसे असं कहने डिप्रैशन जोड़ा 6 to 9 महीने रहा है। बहुत सारे पेशेंट साढ़े को अजकल रैफर हो रहे हैं जिन्हें सिर दर्द है, एसिडिटी है, पर असं एक्चुअली उन्होंने देखने से पता लगता है कि वो डिप्रैशन है। वो डिप्रैशन दवाइया करके भी असं इलाज करने दवाइया के नाल इफेक्ट आने थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, पर इलाज एवरेज टाइम 3 to 6 महीने रहा है और सडनली बंद नहीं करना। एक हैबिट है लोगों के बीच या फैमिली मैंबर कि हूँ तो सानू बच्चा ठीक लग रहा है हूँ दवाई बंद कर देनी चाहिए, डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं बंद करनी चाहिए क्योंकि वो फिर ज़्यादा डिप्रैशन होएगा तो ज़्यादा एग्रेसिव होएगा, उसमें ज़्यादा कंप्लीकेशन होंगे। और नाल ये नाल मनोविज्ञानिक चिकित्सा जिन्होंने असं साइकोथेरेपी कहने, साइकोथेरेपी भी बच्चों जिस तरह असं दें या बिहेवियर थेरेपी है या काउंसलिंग है उसके नाल भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है।
1: डॉक्टर साहब तुसीं दस्सिया कि इहदा इलाज लंबा चलता है, मनोविज्ञानिक तौर पर भी दवाई के तौर पर भी थोड़ा लंबा इलाज चलता है। कि इस तरह भी होंदा है कि कई बार जिहड़े बच्चे नूं आत्महत्या का एक विचार आया उहदे मन विच उस टाइम तो ठीक तो हो गया फिर तो वो आत्महत्या वाल तुर पैंदा है, इस तरह भी कोई केस सामने आते हैं या बहुत कॉमन है इस तरह के केस?
0: नहीं, ऐसे केस काफ़ी कॉमन ने। अगर आत्महत्या की कोशिश की है या आत्महत्या के विचार पहले रहे हैं वो दोबारा भी किसी ना किसी स्ट्रेस विच प्रेसिपिटेट हो सकते हैं।
1: जिंदगी विच कोई भी स्ट्रेस आया तो फिर दोबारा हो जाते हैं?
0: हाँ, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। जिस तरह थायरॉयड प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तुम थायरॉयड के विच अगर थायरॉयड हारमोन जोड़ा है ना वो घट जाए, हाइपोथायरॉयड कहने ऐसी मिक्सिडीमा, उस डिप्रैशन बड़ा कॉमन है और डिप्रैशन की सुसाइडल टेंडेंसी बड़ी कॉमन है। शुगर है, डायबिटीज़ है, अगर कंट्रोल नहीं आ रही वह भी कारण हो सकता है कि डिप्रैशन करके हो रहा है, कि आदमी जोड़ा ना दवाइया रेगूलरली नहीं लै रहा या स्ट्रैस इन्ना ज़्यादा है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो वह भी सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। साढ़े फिर जोड़े पैलिएटिव केयर असं कहने कैंसर वाले पेशेंट ने या लंबी बीमारी वाले पेशेंट ने उन्हें भी यह टेंडेंसी काफ़ी बढ़ जाती है। और एक बार अगर टेंडेंसी आती है तो फिर वो टेंडेंसी दोबारा किसी भी स्ट्रेस से प्रेसिपिटेट हो सकती है।
1: कि औरतों और मर्दों में भी इन सुसाइडल या आत्महत्या के डिफरेंस पाए गए ने?
0: हाँ जी, यह तो फर्क है क्योंकि जी कोशिश करते हैं उस असं कहने कि लेडीज़ से भी ज़्यादा कॉमन है, जी औरतों ज़्यादा कॉमन है, पर जो कंप्लीट कर लेंगे सुसाइड वो ऑलमोस्ट 3 times आदमियों के ज़्यादा कॉमन है। और मैथड भी थोड़े डिफरेंट ने, मैथड जिस तरह लेडीज ज़्यादातर कॉमन होंगे ने दवाइया ले लीती है ज़्यादा डोज के बीच, या घर कोई कॉमन इनसैक्टीसाइड है वो पी लिता फिनाइल वगैरह, तो आदमियों के जिस तरह हैंगिंग है मतलब अपने आप को फांसी लगा लीती, ड्रॉनिंग है, जंप कर गए, वो काफ़ी की कहते हैं कॉमन है। तो ऑलमोस्ट 3 times जोड़ा ना साढ़े जी लास्ट सेंसस होया 3 times ज़्यादा कॉमन है आदमियों के बीच। बच्चों के असं कह नहीं कह सकते क्योंकि बच्चे जड़े ने उन्होंने कोई अलग तो कोई स्टडी हुई नहीं स्कूल के बच्चों के वो असी कॉमनली जो देखने चाहे वह बॉयज ने चाहे गर्ल्स ने उन्हें इक्वली कॉमन ही है आत्महत्या की बात।
1: अजकल जरा असी ट्रेंड देखते दे पे हाँ कि सोशल मीडिया का या फोन विच स्क्रीन का बच्चे ते बजुर्ग नौजवान भी स्क्रीन नू ज़्यादा टाइम देंदे ने परिवारिक तौर पर एक दूजे नाल घट विचरदे ने कि ये सब कुछ अजकल जो आने वाले समय विच परिवार विच रहिंदे होया भी इंसान एक कल्लापन महसूस करता है उस कल्लेपन नू किवें दूर किया जाए तो इस कल्लेपन तो बचन लई की किया जा सकता है।
0: अकेलापन जड़ा एक बहुत वड्डा चैलेंज है साड़ी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन भी कहती है कि सब तो वड्डा चैलेंज आने वाले टाइम यही है लोनलीनेस कि आदमी अकेला तो है पर परिवार ही रह के अकेला है। तुम बैठे हो अगर डिनर कर रहे हो या खाना खा रहे हो तो सारा आदमी अपने मोबाइल फोन पर बिजी हैगा उन्होंने सब तो वड्डा तरीका जड़ा असं पहले भी अपनाते साडे परिवार जैसा कॉमनली होंदा सीगा कि यह सारिया जिहड़ी चीज़ां ने मोबाइल फोन नू डिसाइड करके आपस में कि भाई हुण असीं एक घंटा खाना खाना है मोबाइल फोन सारे ऑफ कर दो और परे रख दो एक टेबल बना दो जिथे रख दो हुण असीं आपस ही गलबात करांगे तो आपस ही इंटरैक्शन जड़ा है ना बहुत जरूरी है अकेलेपन नूं दूर करन वास्ते। हसबैंड वाइफ को पूछ सकदा है कि भाई अज का दिन थोड़ा किस तरह निकले अज के दिन के बारे दसो और कोई खास प्रॉब्लम तुहानूं फेस
1: मतलब पूरे दिन की जानकारी परिवार नूं एक दूसरे तो लेनी चाहिए है किसी तरह का माड़ा दिन निकलिया या चंगा निकलिया वह सारी जो आपस शेयर हो जाते हैं
0: डिप्रेशन घट जाता है क्योंकि बहुत सारी ऐसे कहने साइकोथेरेपी भी मिलती है सजेशन मिलती है दूसरे लोगों तो
1: सपोर्ट
0: भी मिलता है तो दूसरे लगता है कि मेरी गल्ला सुनने वास्ते परिवार लोग है यह बहुत जरूरी है।
1: डॉक्टर एम एस पाटिया अज तुसीं साडे प्रोग्राम सेहत संवाद विच सानू आत्म हत्या की रोकथाम बारे जानकारी दित्ती तुहाडा इस प्रोग्राम विच आने लई ते सानू इन्नी लाहेवंद जानकारी देने लई बहुत बहुत शुक्रिया।
0: हाँ मेहरबानी।
2: सेहत संभाल प्रोग्राम च हुणे तुसीं आत्म हत्या दी प्रवृत्ति दी रोकथाम इस विषय ते डॉक्टर एम एस पाटिया नाल कीती गलबात सुन रहे सी। इन्हां नाल गलबात कर रहे सन परविंदर कौर ते हुण कुछ लोक गीत सुन लैंदे हां। आओ सुनिए सुनवे कैंठे वालिया मैं बोला ते कुपत्ती गायिका ने उषा सेठ।

0: ना जाए ना नल पट्टी तू सुन वे कैंट वाले मैं बोला ते पट्टी तू सुन वे कैंट वाले
1: लोक गीत तुसी उषा सेठ दी आवाज विच सुन रहे सी ते हुण तुहानू सुणाउंदे हां अपने समय दा बड़ा ही मशहूर गीत लोक गीत लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माइया आवाज सुरिंदर कौर दी।

तौर दे गाए इस लोक गीत दे नाल ही पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक खत्म हुंदा है। छेती ही अगले प्रोग्राम च तुहाडे नाल फिर मुलाकात होएगी। उदों तक लई हरजीत कौर नूं इजाजत दिओ।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में है। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। इनमें खड़गपुर झारसुगुड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल है। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे

0: बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कौशल विकास और बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान दे रहा है ताकि वे देश के आर्थिक विकास में बड़ी भूमिका निभा सकें।
1: Women, we opened their bank accounts.
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल कोलंबो में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉक्टर हरणी अमरसोरिया से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से विकास के क्षेत्र में सहयोग सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, नवाचार और अनुसंधान सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा भी की गई। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने ईरान के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भेजने का फैसला किया है। करीब 20 साल बाद ऐसी पहली बार हुआ है जब IAEA बोर्ड ने ईरान को इस तरह सुरक्षा परिषद के सामने भेजा है। इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज, बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर 8वां भारतीय वायुसेना विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। अमेरिकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में दोनों अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमेरिकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में गत चैंपियन कार्लोस अल्कराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने अमेरिकी खिलाड़ी एलेक्सिस मिशेलसन को हराया। कल महिला सिंगल सेमीफाइनल में मौजूदा चैंपियन आर्याना सबालेंका का सामना 3री वरीयता प्राप्त जेसिका पेगुला से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रिकेल। The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishna said 3 projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers to the existing railway network.
4: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi. In between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
3: Prime Minister Narendra Modi has said the cabinet decision on railway multi-tracking projects will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. He said the projects will strengthen rail connectivity in South India and benefit lakhs of people. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-led Development Conference in New Delhi. India has stepped up its humanitarian assistance to flood-hit Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies that landed in Kathmandu yesterday. Ministry of External Affairs MEA said the latest consignment includes National Disaster Response Force NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies and replenishment supplies for Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. International Atomic Energy Agency, IAEA, has referred Iran to UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5 with 8 abstentions. Russia, China, and Niger voted against it. The resolution was proposed by the United States, Britain, France, and Germany. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actually gambling, splitting large amounts into multiple small transactions and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gambling as a major risk. Today is third day of Global FinTech Fest 2026 in Mumbai. Union Minister Jyotiraditya Scindia will address a session titled Connected India Empowered Finance, Building Trust Digital Infrastructure for the AI Economy. India Meteorological Department has issued a red color warning for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. In the U.S. Open, Americans Ben Shelton and 11th seed Francis Tiafoe have set up an All-American men's singles semifinal. 8th seed Shelton stunned defending champion Carlos Alcaraz in a 5-set thriller in quarterfinal yesterday. He won by 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6. The other semifinalist, Tiafoe, defeated fellow American Alex Michelson in the quarterfinal. Both Shelton and Tiafoe are chasing their first Grand Slam final. And that is the end of this news bulletin.
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है सुबह के 10:10 और पूरे 15 सेकंड। और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद।

जी हाँ दोस्तों, हम भी आ गए हैं अपना दिल लेके और ये कार्यक्रम लेके जिसका नाम है आपकी पसंद। और मैं हूँ आपकी दोस्त आरती कौर, जो आपके साथ बनी रहेगी अभी 11 बजे तक। इस कार्यक्रम में आप अपने संदेशों के जरिए शामिल हो सकते हैं, जैसा कि आप ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि संदेशों की बारिश तो कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही हम पर होने लगती है। लेकिन हमेशा की तरह मेरे पास भी कुछ बातें होती हैं आपसे करने के लिए, लेकिन आप में से कई लोग तो हमसे रूठ जाते हैं और फिर हमें मनाना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज रूठने मनाने पर ही कुछ बात कर ली जाए, कैसा रहेगा। चलिए इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल सुनेंगे ये खूबसूरत सा गीत। और इससे पहले आपको ये भी बता दूं कि IP Radio Delhi@gmail.com पर करना है आपको मेल।

0: बड़ी बहू
1: ये तुम्हारी ना,
0: इतनी भी क्या जल्दी थी।
1: अरे और छोटी ये तुम्हारे ना,
0: और ये
2: मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स्ड डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो।
2: क्या
4: आरबीआई कहता है।
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: दोस्तों आप सबका स्वागत है, कार्यक्रम है आपकी पसंद। मैं हूं आपकी दोस्त आरती गौड़ और आप जुड़े हैं इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मेल आपके आने शुरू हो गए हैं और आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो है रूठना और मनाना। जी हाँ, मेरी एक दोस्त

भी मुझसे कल नाराज़ हो गई थी क्योंकि उसका बर्थडे था जो मैं भूल गई थी, लेकिन शाम को मैंने फाइनली उसको मना ही लिया और इस बात पे बात सेटल हुई कि जब भी अगली बार हम मिलेंगे तो फिर मैं उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट खिलाऊंगी। तो हमारी तो भाई लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन अगर आपने भी कभी किसी से ऐसे रूठने मनाने वाली जो बातें हुई हैं ऐसा कुछ आप शेयर करना चाहें तो बिल्कुल बताइए कि आपका जब कोई दोस्त, कोई जानकार, कोई भी रिश्तेदार या कोई भी ऐसा जो आपके दिल के बहुत करीब है आपसे रूठ जाता है तो आप उसे कैसे मनाते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ आप खुद रूठ जाते हैं तो आपको कैसे मनाया जाता है, ये भी हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन फिलहाल मैं नहीं भूल रही हूँ आपके मेल को। ये हमारे पास मेल आया है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा लिख कर भेजा है रूठने मनाने पर कि रूठना भी रिश्तों की एक प्यारी सी अदा है और मनाना उस रिश्ते की खूबसूरत वफा है। कभी छोटी सी बात पर रूठ जाना, फिर प्यार से किसी का पास आकर मनाना, यही तो वो पल हैं जो रिश्तों में मिठास घोल जाते हैं। जिंदगी की इस फिल्म में कभी नाराजगी का सीन आता है तो कभी प्यार से मनाने वाला किरदार सब कुछ ठीक कर जाता है, क्योंकि जहां सच्चा अपनापन होता है वहां रूठना भी प्यार होता है और मनाना भी प्यार होता है। बस यूं ही प्यार बना रहे, मुस्कुराटे बनी रहें और हर रूठने के बाद कोई अपना दिल से कह दे चलो जनाब अब गुस्सा छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके बिना ये कहानी अधूरी अधूरी सी लगती है। बहुत ही सुंदर लिखा है और ये लिखने वाले हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन। चलिए आपकी इस खूबसूरत सी बात पर मैं भी आपको एक प्यारा सा गीत सुनवा ही देती हूँ।

जी हाँ, लड़ झगड़ के आखिर मिलेगा भी क्या, क्योंकि आना तो फिर एक दूसरे के पास ही है। रह कहाँ पाते हैं जब अच्छे दोस्तों में, चाहे कितना भी झगड़ा हो जाए, कितनी भी दूरी हो जाए, लेकिन काम भी नहीं चलता एक दूसरे के बिना। और चलिए, हमारा काम भी नहीं चल रहा है आपके इन मेल के बिना, और इतने प्यारे प्यारे मेल हम तक आए हैं। कार्यक्रम को बहुत तरीके से सुना जा रहा है, तभी तो कितने अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए जा रहे हैं। फिलहाल हमारे पास जो संदेश आया है वो है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा का, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा का। कहते हैं, रूठना और मनाना रिश्तों की एक खूबसूरत मिठास है। कभी किसी का अपने से रूठ जाना प्यार को और गहरा कर देता है, और उसे मनाने की कोशिश रिश्ते की अहमियत बता देती है। हम तो हर बात को लेट गो कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन पता है कभी कभी

थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ा सा रूठना मनाना भी रिश्ते में बड़ी खूबसूरती लेकर आता है। लेकिन हाँ, उसको थोड़ा ही रखिएगा। अगर ये ज़्यादा हो गया ना, तो कभी कभी डोर इतनी खिंच जाती है ना कि फिर वो ज़िंदगी भर के लिए एक ऐसी डोर बन जाती है जो फिर बाद में जुड़ नहीं पाती और एक दिन उसके बीच में पड़ जाती है गांठ। तो कोशिश कीजिएगा, रूठिएगा भी, मनाइएगा भी, लेकिन साथ में एक दूसरे को दिल से याद भी करते रहिएगा और जब कोई मनाए तो मान भी जाइएगा।

तो दोस्तों बढ़ते हैं आप सबके संदेशों की तरफ, और ये संदेश मेरे पास आया है स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया का। एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना भाटिया कहते हैं, मेरा दोस्त जब मुझसे रूठ जाता है तो मैं अच्छा बाबा माफ़ करो और सॉरी बोलने से ही तो वो मान जाता है, यही है सच्ची दोस्ती। जी हाँ, तो भाई इन्होंने तो बता दिया कि ये अपने दोस्त को कैसे मनाते हैं। अगला जो संदेश हमारे पास आया है वो है ऊपरकोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और समस्त अब्बासी परिवार के सदस्य कहते हैं, हम तो जादू की झप्पी देकर हर किसी को मना लेते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। भाई मुन्ना भाई ने कुछ तो अच्छा सिखाया ही है। और अगला जो संदेश हम तक पहुंचा है वो है नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन, अनम यशफ, रसीद बारसी और किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से ये लिखते हैं। इसके साथ ही अगले संदेश में हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयू सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का।

जी हाँ, कितने खूबसूरती से इस गीत में ये बात कह दी है कि भले ही कितनी भी नाराजगी हो जाए लेकिन दिल में दोनों की यही चल रहा होता है कि बात करनी है, जल्दी से कुछ ऐसा हो जाए कि मना लें, लेकिन बीच में आ जाती है एक छोटी सी ईगो कि मैं रूठी हूँ तो मैं क्यों मानूँ, और दूसरा कहता है कि मैं क्यों मनाऊँ, रूठी खुद है। तो बस कुछ ऐसा ही चलता है, लेकिन ये ईगो ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने संदेश की तरफ। ये है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार कहते हैं बेहतरीन प्रस्तुति के साथ बेहतरीन नगमे आप सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आनंद उठाकर साथ ही रूठने मनाने की बात हो रही है। जिंदगी में रूठना मनाना तो चलता ही रहता है और अपनों से ही रूठा जाता है और अपनों को ही मनाना पड़ता है, यही जीवन है, एक दूसरे के बिना हम नहीं रह सकते और आपका चैनल और आपके कार्यक्रम को सुने बिना भी नहीं रह सकते। आपसे हम कभी रूठते हैं तो आप बड़ी खूबसूरती से मनाते हैं। जी हाँ, यही तो दोस्ती की अदा होती है, रूठना भी जरूरी है लेकिन मान जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ज्यादा देर तक रूठेगा मत। अगला जो संदेश हमारे पास आया है ये है आशा चुग, अश्वनी चुग, गोविंद दीवान, लव दीवान, राधे भावे ढींगरा, ये दिल से शुक्रिया कर रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए। इसके साथ ही जो अगले श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अपने संदेश को कई बार भेज चुके हैं और हम उनका संदेश ले भी चुके हैं पर शायद वो कार्यक्रम को ध्यान से सुन नहीं रहे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। ये है हमारे पास प्रकाश गोगिया, सत्यप्रकाश गोयल, मनोहर लाल गांधी, नन्हे पहलवान, अनिल त्यागी दिल्ली से कहते हैं अगर हमारा कोई दोस्त रूठ जाता है तो हम कैसे हैं, तुम रूठे हम छूटे, तो कुछ दिन रूठने के बाद वापस आ जाता है और मान जाता है। जी हाँ, तो इनका ये कहना है कि भाई रूठ भले ही जाता है लेकिन ये प्यार से उसे मना कर वापस ले ही आते हैं।

जी हाँ, चलो जाने दो इस खट्टी मीठी नोकझोंक को। भले ही आप इस तरीके से करते रहिए, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा लंबा मत होने दीजिए। फिलहाल बढ़ते हैं आपके संदेश की तरफ। यह है किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईंराज और विशाल हमारे साथ जुड़े हैं। अगले जो श्रोता हैं वो हैं प्रकाश गोगिया। मेरे ख्याल से इनका संदेश हमारे पास दोबारा आया है। और ये है कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा। रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल कहते हैं, आकाशवाणी की तरंगों से पैगाम भेजा है, रूठे हुए दिलों को फिर से जोड़ा है। श्रोता परिवार का यही तो है कहना, रूठो कभी तो मना लेना, रिश्ता बनाए रखना। जी हाँ, रिश्ते बने रहने चाहिए, बाकी रूठना मनाना तो चलता है। और रूठता इंसान किससे है? अपनों से ही तो रूठता है, जिस पे हम अपना अधिकार समझते हैं, हक समझते हैं, जिसको अपना समझते हैं। क्योंकि गैरों से भला कोई रूठता है? तो अगर कोई आपसे रूठ जाए तो इस बात

को भी अपनी खुशनसीबी समझिए। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी। इन्होंने संदेश भेजा है, कहते हैं आरती जी हम किसी को मौका ही नहीं देते हमसे कोई रूठ जाए, लेकिन कभी कभी कोई मित्र रिश्तेदार या कोई अपना रूठ ही जाता है तो हम अपनी गलती या भूल स्वीकार कर लेते हैं और उसे मनाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आरती जी हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्यौहार

आप सभी को पोला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर किसान नहीं है तो फिर भारत का आप देख लीजिए हालात क्या होंगे, क्योंकि जो अन्न है ना, अन्नदाता को कभी भूलना नहीं चाहिए। और आपके यहाँ जो ये आयोजन हो रहा है इसके लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने ये एक नई चीज़ के बारे में मुझे बताया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। ये है व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं विजय महोबिया, कविता विशाल, सोनू मोनू रानू, सपना शिवी सलोनी, अनन्य अनाया महोबिया और पेंटर बाबू, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट हमारे साथ जुड़े हैं। एक और हमारे साथ श्रोता हैं, ये हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा चंडीगढ़ सिटी से, कहते हैं दोस्त से मोहब्बतें बनाए रखें क्योंकि दोस्त रब का रूप होता है और जिसे हम दिल की सारी बातें बता दिया करते हैं। ये सबसे बड़े हकीम होते हैं जो अपने अल्फाजों से इलाज कर दिया करते हैं। मैंने कोशिश यही रखी कि इनको दूर ना होने दूं और अब तक कृपा बनी हुई है। भाई मैं भी यही चाहूंगी कि दोस्त तो जिंदगी में होने ही चाहिए। जो बातें हम किसी से नहीं कह पाते, कभी कभी तो शायद खुद से भी नहीं कह पाते, वो अपने दोस्त के साथ हम दिल खोल के करते हैं क्योंकि वहां पर हमें कोई जज नहीं कर रहा होता है।

जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हालात कुछ ऐसे बन जाते हैं कि हम किसी को इतना सता देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि वो फिर हमसे इस कदर नाराज़ हो जाता है कि रिश्ते ही अलग हो जाते हैं। ऐसा लोगों की ज़िंदगी में, कईयों की ज़िंदगी में होता है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी रहा हो कि किसी से एक वक्त में बहुत बातें होती हों, लेकिन आज उससे बात करने को आप तरसते हों, क्योंकि बीच में या तो आपकी ईगो आ रही है या फिर शायद इस कदर सताया गया है कि मनाने के लिए अब रास्ता बचा ही नहीं है। ऐसा भी होता है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। लिखा है, मेरा बस इतना कहना है, रूठा करो पर इतना नहीं कि मनाने वाला ही रूठ जाए, और मना लिया करो पर इतना मत झुकाओ कि मनाने वाला ही टूट जाए। रिश्ता रेडियो की फ्रीक्वेंसी जैसा है, थोड़ा सा ट्यूनिंग बढ़े बिगड़े तो शोर आता है, पर थोड़ा सा ठीक करो तो फिर से साफ आवाज़ आने लगती है। लिखने वाले हैं कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल। बहुत ही खूबसूरत सी बात की है। देखिए, हमारे रेडियो के जरिए ही उन्होंने कितनी अच्छा एग्जाम्पल देकर हम सबको समझाया है कि जरा सा आप रेडियो को थोड़ा सा छेड़ते हैं तो शोर आता है और वो सुना नहीं जाता, लेकिन थोड़ा सा सेट करते हैं तो आपको आवाज़ आने लगती है और फिर दिल के तार कनेक्ट हो जाते हैं।

हमारे साथ श्रोता जुड़े हैं हरियाणा से, अंकित और मोहित, प्रिंस बोट सीताराम कांगड़ा और साहिल कांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही अगले श्रोता जुड़े हैं गोवर्धन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, और ये कहते हैं हम भी रेगुलर आपके साथ जुड़े रहते हैं। इसके साथ ही अगले श्रोता हैं राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशु, निर्मला चौधरी वास से। साथ ही हमारे साथ जो श्रोता हैं वो हैं जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना, और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगन्नाथ। इसके साथ ही हमारे साथ जो अगले श्रोता जुड़े हैं वो भी बहुत जल्द बताऊँगी, लेकिन चलिए गीत तो सुनते हैं।

किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास आशा देवी हमारे साथ जुड़े हैं, और इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में वो हैं राजू अग्रवाल, विवेक और चौधरी वास। और ये कहते हैं कि हमारी ईमेल हमेशा रह जाती है, देखिए इस बार नहीं रही, आपकी ईमेल शामिल हो चुकी है। हमारे साथ अगले जो श्रोता जुड़े हैं वो हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज और साहिल बजाज हमारे साथ जुड़े हैं। इसके साथ ही अगले जो श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना संदेश बार बार भेज रहे हैं, और हमेशा हम आपको यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने संदेश को एक या दो से ज़्यादा बार मत भेजिए। यह हमारे पास चरणदास, राजू अग्रवाल, पंकज और चौधरी वास जुड़े हुए हैं।

जी हाँ, यही तो जज्बा होना चाहिए कि चाहे दोस्त कितना भी रूठ जाए, मनाने की हिम्मत होनी चाहिए। और वैसे भी अगर दोस्ती सच्ची है तो ज़्यादा दिन तक वो रूठ कर रह भी नहीं सकता। जैसे हमारे ये दोस्त हैं, ये लिखते हैं, दीदी आरती जी, मेरा सबसे प्यारा दोस्त है रेडियो, जिसका नाम, जिसको हम अपनी ज़िंदगी से, जान से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। कभी धोखा नहीं देता, हमेशा आसपास ही रहता है। देखिए ना भाई, रेडियो तो हमेशा आपके पास ही रहेगा, क्योंकि आप श्रोताओं के बिना हम सबकी भी कोई लाइफ नहीं है। क्योंकि आप हमें सुन रहे हैं, आप हम तक अपने संदेश पहुंचा रहे हैं, इसी से तो पता चलता है कि हम एक दूसरे को देखे बिना भी एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से दोस्ती निभा रहे हैं। और अगर थोड़ा बहुत रूठना मनाना चल भी जाए, दोस्ती में तो इतना चलता है, कभी आप रूठिए कभी हम।

अब आप भी मत रूठ जाइएगा मुझसे, क्योंकि कार्यक्रम का जो समय है वो हो रहा है समाप्त। आपसे विदाई ले रही हूँ मैं इस शो से, लेकिन बिल्कुल भी मत रूठिएगा क्योंकि दोबारा मिलने के वादे के साथ जा रही हूँ। इसलिए बिल्कुल ना मैं रूठी हूँ ना आपसे उम्मीद लगाती हूँ, लेकिन अगर आपका कोई दोस्त आपसे रूठा है तो प्लीज़ मना लीजिए, क्योंकि आपको तो पता होगा ना कि उसको कैसे मनाना है। और आप भी थोड़ा बहुत रूठना चाहें, थोड़ा सा दिखाना चाहें अपना एटीट्यूड, तो बिल्कुल दिखाइए, क्योंकि ये तो दोस्ती का दस्तूर है ना, दोनों साइड से चलती है। फिलहाल रूठने मनाने का ये दौर यूं ही जारी रहे, लेकिन ये रिश्ता आप सबका हमेशा ऐसा ही बना रहे, हमारे साथ भी आपका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। फिलहाल अपनी दोस्त आरती को दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नमस्कार कहिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
2: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का एक पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
3: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।

0: सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
1: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फॉरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। 26 अगस्त से शुरू किए गए निरंतर सहायता अभियान में भारत ने विशेष तकनीकी उपकरण भी भेजे हैं। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धर्मपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। अगले दो दिन में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरला, माहे और उत्तराखंड में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency, and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said three projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers to the existing railway network.
4: Secunderabad to Kajipet, if you look at it, it basically connects one major corridor which is towards Vijayawada and another corridor which is towards Mumbai. These two corridors get connected by this project. Already from Wadi to Secunderabad, work is going on. It has been approved earlier. And now from Hyderabad to Secunderabad to Kazipet. So the two major corridors where the connection points are Kazipet and Wadi. In between there is Secunderabad. These two corridors get connected by a quadrupled, by a four lining corridor. So this makes a huge traffic interchange can happen between these two corridors and many trains which have to go from east to west or from south to east or from south to west, they can all use this corridor for their connectivity.
3: Prime Minister Narendra Modi has said the cabinet decisions on the railway multi-tracking projects will ensure faster passenger movement, stronger connectivity and additional freight capacity. He said the projects will strengthen rail connectivity in South India and benefit lakhs of people. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women, entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easy access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India is focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth. India has stepped up its humanitarian assistance to flooded Nepal with the 8th Indian Air Force aircraft carrying 35 tons of relief and rescue supplies that landed in Kathmandu yesterday. Minister of External Affairs MEA said the latest consignment includes National Disaster Response Force, NDRF equipment, rescue gear, forensic supplies, replenishment supplies for the Indian Army teams involved in the ongoing relief and rescue efforts. International Atomic Energy Agency IAEA has referred Iran to the UN Security Council for the first time in 20 years, citing Tehran's failure to cooperate with a long-running probe into uranium traces found at undeclared sites. The IAEA's 35-member board approved the resolution by 23 votes to 5, with 8 abstentions. Russia, China and Niger voted against it. The resolution was proposed by the United States, Britain, France and Germany. The Financial Action Task Force, FATF, has warned countries about the growing misuse of gaming and gambling platforms for financial crimes. FATF said criminals are using gambling platforms to move money without actually gambling, splitting large amounts into multiple small transactions and placing unusual or coordinated bets to avoid detection. It has also flagged illegal and unlicensed online gambling as a major risk. Prince Rahim Aga Khan V, the 50th hereditary imam of the Ismaili Muslim community and chair of the Aga Khan Development Network, has arrived in New Delhi on his maiden visit to India. He was welcomed by an Indian delegation on his arrival. The Minister of External Affairs extended a warm welcome to Prince Rahim Aga Khan V. Mizoram Disaster Management and Rehabilitation Minister Lalnil Auma has urged people affected by the ongoing heavy rains to remain calm and immediately report landslides, road blockages and other emergencies to authorities for swift response. In a video message, Lalnil Auma said heavy rainfall in recent days had triggered landslides and disrupted roads at several locations across the state. And that is the end of this news bulletin.
0: आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। इस समय इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर्स यानी 819 किलोहर्ट्ज़ पर इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया जा रहा है। इंद्रप्रस्थ के श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत, और साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी ऑडियंस इस कार्यक्रम से जुड़ी है, सभी का पुनः अभिनंदन। कार्यक्रम में आज स्वरांजलि में हमने आमंत्रित किया है उस्ताद कमाल साबरी साहब को सारंगी वादन के लिए। उस्ताद कमाल साबरी प्रतिष्ठित मुरादाबाद घराने की 7वीं पीढ़ी हैं, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत और सारंगी को समर्पित हैं। पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान जी के सुपुत्र और शिष्य उस्ताद कमाल साबरी ने समृद्ध संगीत विरासत को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारंगी वादन में नए नए प्रयोग करते हुए युवा पीढ़ी के बीच भी सारंगी को खूब लोकप्रिय बनाया है। भारत में काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई, दिल्ली जैज फेस्टिवल, राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान विशेष प्रस्तुति के साथ ही विदेशों में भी प्रतिष्ठित कार्यक्रमों में आपने प्रस्तुतियां दी हैं और संगीत प्रेमियों का स्नेह और सम्मान अर्जित करते आए हैं। नॉर्वे, डेनमार्क, चीन, इटली, अमेरिका, रूस सहित अन्य कई देशों में आपने गणमान्य अतिथियों, राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के समक्ष अपनी प्रस्तुतियाँ दी हैं। एकल कलाकार, संगीत गुरु, सांस्कृतिक दूत और शिक्षक के रूप में देश विदेश में आपको अनेक सम्मानों से नवाजा गया है। ग्लोबल आइकन आर्टिस्ट अवार्ड आपको मिला है, 2023 में कंपोजर ऑफ द ईयर अवार्ड आपको दिया गया, ग्लोबल म्यूजिक अवार्ड आपको प्रदान किया गया है, दादा साहब फाल्के आइकन फिल्म्स इंटरनेशनल अवार्ड आपको मिला है, और अभी हाल ही में अमेरिका में इंटरकॉन्टिनेंटल म्यूजिक अवार्ड भी आपको प्रदान किया गया है। आज आपके साथ संगत कर रहे हैं तबले पर उस्ताद अख्तर हसन। सारंगी पर साथ निभाएंगे अदनान हुसैन साबरी और तानपुरे पर हैं साबिर हुसैन।

आज की हमारी प्रथम प्रस्तुति है राग बिंद्रा बनी सारंग में दो रचनाएं, मध्य लय रचना रूपक ताल में और तीन ताल में निबद्ध है। कलाकारों से अनुरोध है कृपया प्रस्तुति आरंभ करें।

स्वरांजलि कार्यक्रम में उस्ताद कमाल साबरी सारंगी वादन की प्रस्तुति दे रहे हैं। अगली प्रस्तुति गौड़ सारंग की रचना तीन ताल में निबद्ध है।

तो इस मधुर सी धुन के साथ ही स्वरांजलि कार्यक्रम का समापन हुआ। आकाशवाणी के प्रसारण भवन में भारत रत्न पंडित रविशंकर स्टूडियो में आयोजित स्वरांजलि कार्यक्रम में आज उस्ताद कमाल साबरी साहब ने सारंगी वादन की प्रस्तुति दी। आप सभी से अनुरोध है करतल ध्वनि से हमारे कलाकारों के प्रति आभार प्रकट करें, उनका अभिनंदन करें। तबले पर साथ निभाया उस्ताद अख्तर हसन ने, सारंगी पर सहयोग दिया अदनान हुसैन साबरी ने और तानपुरे पर थे साबिर हुसैन। इस कार्यक्रम का आनंद YouTube के माध्यम से भी लिया गया और साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमारे श्रोताओं ने इस कार्यक्रम का आनंद सजीव प्रस्तुति के रूप में लिया। तकनीकी सहयोग प्रदान किया प्रकाश थपलियाल ने, बी जयवंधन, सुनील सैन और सुशील भटनागर ने। हमारे सभी साथियों के लिए, सहयोगियों के लिए करतल ध्वनि तालियां। प्रस्तुति सहयोग था विशाल, दिव्या और रेवती राजन का। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे स्पर्शिता श्रीवास्तव और प्रदीप अग्रवाल। तो इसी के साथ मैं नीलम अलकानिया स्वरांजलि कार्यक्रम से अब आप सभी से लेती हूं अनुमति। नमस्कार, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल संपर्क बढ़ाने के लिए 9 राज्यों में 20,800 करोड़ रुपए से अधिक की 8 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में हैं। इससे भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में लगभग 656 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें खड़गपुर झारसुगड़ा चौथी लाइन, कटनी पेंड्रा रोड चौथी लाइन और बिलासपुर पेंड्रा रोड तीसरी लाइन शामिल हैं। इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाएगा।
1: खड़गपुर से लेके उड़ीसा में झारसुगुड़ा तक का पूरा प्रोजेक्ट है, जहाँ पे फोर्थ लाइन बन। ये लाइन बन जाने से बहुत बड़ा जो कंजेशन होता है इस एरिया में वो खत्म होगा, कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और जो ट्रैफिक की सीरियस प्रॉब्लम्स आती थी वो सारी प्रॉब्लम्स इससे सॉल्व हो। तो इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। इसके सारे डिटेल्स है प्रोजेक्ट के, 367 किलोमीटर, 6528 करोड़ रुपीज का और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल के फैसले से यात्रियों की आवाजाही तेज होगी, रेल संपर्क बेहतर होगा और माल ढुलाई की क्षमता बढ़ेगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
3: आर मेंबर्स ऑफ 9 मिलियन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे।

0: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिनकांत पांडे, यूआईडीएआई के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और एसबीआई के अध्यक्ष सीएस शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचम अपनी पहली भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उनका स्वागत किया। प्रिंस रहीम आगा खान आज उपराष्ट्रपति से बातचीत करेंगे। दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान आगा खान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे गृहमंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर भारत ने मानवीय सहायता तेज करते हुए 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। भारत ने खोज बचाव और फोरेंसिक अभियानों में सहयोग के लिए 54 विशेषज्ञ कर्मियों को भी तैनात किया है। नेपाल स्थित भारतीय दूतावास ने कल बताया कि 35 टन राहत और बचाव सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का 8वां विमान काठमांडू पहुंचा। तमिलनाडु में मदुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16 तारीख है। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 19 तारीख है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच शाम 8 बजे दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज दोपहर के कारोबार में गिरावट दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 43 अंक गिरकर 74,722 जबकि निफ्टी 21 अंक गिरकर 23,411 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams. Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal has called on BRICS countries to work together to expand opportunities for women entrepreneurs and women-led enterprises in international trade. The minister also stressed the need for easier access to credit, markets and predictable rules of business to leverage growth and opportunities for women-led enterprises. He was addressing the BRICS WBA Women-Led Development Conference in New Delhi. Mr. Goyal said India has focused on empowering women financially, socially and through education, skills and an improved quality of life with the objective of making women drivers of the country's growth.
3: 100 million women in rural India, in the villages, are members of 9 million self-help groups who get together to experiment, to work on an idea. Women who earn about 100,000 Indian rupees, which is probably barely $1,000, but which means a lot for a woman who didn't.
2: Defense Minister Rajnath Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defense Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defense partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi in New Delhi last month. The defense minister said mutual exchanges of visits, such as Exercise Veer Guardian, further strengthens this synergy. The government has cleared 8 railway multi-tracking projects involving an investment of over 20,800 crore rupees. The projects are aimed at increasing line capacity, improving operational efficiency and easing congestion on key routes. Briefing the media after the cabinet meeting yesterday, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said 3 projects costing over 10,783 crore rupees will cover 14 districts across West Bengal, Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and Chhattisgarh, adding about 656 kilometers to the existing railway network. Director General of the World Health Organization, WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, met Union Health Minister Jagat Prakash Nadda on the sidelines of the 79th session of the WHO Regional Committee for Southeast Asia in Delhi, Timor-Leste. Dr. Tedros congratulated Mr. Nadda.

घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन में आप सभी का स्वागत है। आज हूँ मैं आपके साथ प्रतिभा, तो स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के श्रोता हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलोहर्ट्ज़ पर। घर आंगन की आज की कड़ी में हम लेकर आए हैं जानकारियां और मनोरंजन भी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए आपका अपना कार्यक्रम घर आंगन। तो सबसे पहले आज बात करेंगे हम दिन विशेष की। जी हाँ, आज के दिन विशेष में हम याद कर रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत जी को। हर वर्ष 10 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। वे स्वतंत्रता सेनानी, कुशल प्रशासक और देश के प्रमुख नेताओं में उनका नाम शामिल रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और आप उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे और काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया, और बाद में वे भारत के गृह मंत्री भी बने। देश के लिए उनके योगदान को सम्मानित करते हुए उन्हें 1957 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। गोविंद वल्लभ पंत जी का जीवन देश सेवा, जन कल्याण और दृढ़ नेतृत्व की प्रेरणादायी मिसाल है। उनकी जयंती पर हम उनके योगदान को याद करते हैं और उन्हें हम नमन करते हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी ममता। और श्रोताओं, आज बात करेंगे एक माँ के संकल्प की, जिसने ठान लिया कि वो अपनी बेटियों की पढ़ाई में आने वाली हर मुश्किल का सामना कर उनके शिक्षा के सफ़र को रुकने नहीं देगी। उस सफ़र में अपनी बेटियों के लिए वो दाल बना रही है, खाना बना रही है, उनके साथ चली और यहाँ तक कि दौड़ी भी। महाराष्ट्र के बीड जिले की 47 वर्षीय रमाबाई रणवीर इसकी मिसाल है। पति के निधन के बाद उन्होंने अपनी दो बेटियों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। रमाबाई अपने शहर के एक एकेडमी में, वहां की रसोई घर में काम करती हैं, वहां हॉस्टल में बच्चों के लिए वहां पर खाना बनाती हैं और रोज़ वो 200 से ज़्यादा रोटियां वहां पर बनाती हैं। तो सारा दिन वो वहां बिजी रहती हैं। और एक दिन हुआ ये कि उनकी जो छोटी बेटी है उसने पढ़ाई, अपने खाने और किराए के लिए उनसे पैसे मांगे, क्योंकि उनकी बेटी नांदेड़ में एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। तो उस समय रमाबाई के पास पैसे नहीं थे। उसी दौरान उन्हें पता चला कि अगले दिन बीड़ शहर में एक मैराथन दौड़ का आयोजन हो रहा है, जिसमें उन्होंने भाग लिया। रमाबाई ने कभी दौड़ की कोई खास ट्रेनिंग नहीं ली हुई थी, फिर भी अगले सुबह वो उस दौड़ में साड़ी पहनकर चली गई। और ना उनके पास ट्रैक सूट था, ना ही फॉर्मल शूज़ थे, मतलब कोई ऐसे दौड़ने के लिए उनके पास जूते भी नहीं थे, तो वो अपनी चप्पलों में ही वहाँ पर दौड़ने लगी। तो दौड़ते दौड़ते उनकी चप्पल में पैर फिसलने लगा, स्लिप करने लगा, तो उन्होंने चप्पल उतार दी और फिर वो बिना रुके नंगे पांव दौड़ती रही, उनके कदम बिल्कुल नहीं रुके। 3 किलोमीटर की इस दौड़ में उन्होंने खूब मशक्कत की। सामने सिर्फ और सिर्फ उन्हें मंजिल नज़र आ रही थी और वो थी कि उनकी बेटी की पढ़ाई वो पूरी होनी है, उसकी ज़रूरत के लिए उन्हें वो इनाम जीतना बहुत ज़रूरी था। तो वो इस दौड़ में जीत भी गई और इनाम की राशि उनको मिल गई। श्रोताओं, रमाबाई की कहानी हमें याद दिलाती है कि माँ का हौसला परिस्थितियों से कहीं बड़ा होता है। उनके लिए ये दौड़ सिर्फ दौड़ नहीं थी, बल्कि ये अपनी बेटी के सपनों को थामे रखने की दौड़ थी।
1: अच्छी

राजा और रंक, अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। और देखिए श्रोताओं, बात सही भी है, माँ बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होती है, और हर बच्चे के लिए माँ बहुत खास होती है। उसके सुख दुख हर समय की, हर क्षण की साथी माँ ही तो होती है। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की व्यस्त और भागदौड़ भरी जिंदगी की। आज जिंदगी इतनी व्यस्त हो चुकी है जैसा कि हम सभी जानते हैं, और इस भागदौड़ भरी जिंदगी ने ना हमसे हमारा और अपनों का वक्त चुरा लिया है। हम व्यस्त हैं पर फिर भी हम कहीं ना कहीं मानसिक तनाव और दबाव को झेल रहे होते हैं। मन में चलता द्वंद्व डिप्रेशन, तनाव और चिंता का कारण बनता है, और ऐसे में जरूरत होती है एक सकारात्मक संवाद की। टेलीमानस मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ये सकारात्मक पहल है। इसके तहत टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स को देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन के रूप में शुरू किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यक्ति टेलीफोन आधारित मनोचिकित्सा, मनोरोग परामर्श और रेफरल सेवाओं, जिनमें आपातकालीन देखभाल भी शामिल है, का लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, टेली मानस उन व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा

प्रोस्टेट्स को देशव्यापी टोल फ्री हेल्पलाइन के रूप में शुरू किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए व्यक्ति टेलीफोन आधारित मनोचिकित्सा, मनोरोग परामर्श और रेफरल सेवाओं, जिनमें आपातकालीन देखभाल भी शामिल है, का लाभ उठा सकते हैं। श्रोताओं, टेलीमानस उन व्यक्तियों के लिए जीवन रेखा का काम करता है जिन्हें मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। टेलीमानस का प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एक प्रमुख डिजिटल घटक के रूप में 24/7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से सभी को समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। ये सेवा भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध है। देश भर में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को बढ़ाना इसका उद्देश्य है और यह सुनिश्चित करना कि भारत भर में कोई भी व्यक्ति प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में इस समर्पित टेली मानसिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से किसी भी समय सहायता प्राप्त कर सके। ये अलग अलग स्तर पर काम करती है और इसमें होता यह है कि आप इसके टोल फ्री नंबर पर आपको जब जरूरत है कॉल कर सकते हैं। हम आपको इसका टोल फ्री नंबर बता दें जो कि है 1-4-4-1-6। जी हाँ, 1-4-4-1-6 या 1-800-891-4-4-1-6। ये पूरी तरह से टोल फ्री नंबर है। इस पर होता ये है कि आप जब इस पर फोन करते हैं या आपको किसी आपको या आपके किसी अपने को विशेष इलाज की जरूरत होती है तो उसे जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम या मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञों के पास रेफर किया जाता है, जिसमें वीडियो कंसल्टेशन, ई संजीवनी के माध्यम से या आमने सामने की मुलाकात शामिल होती है। श्रोताओं, ये टेलीफोन सेवा 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है ताकि लोग अपनी पसंद की भाषा में बात कर सकें। इस पर की जाने वाली हर कॉल पूरी तरह से और सलाह भी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। तो यदि आप या आपका कोई अपना मानसिक समस्या से जूझ रहा है तो आप टेली मानस के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। श्रोताओं, जो व्यक्ति उदास है, जो बात करना चाहता है, उनसे बात करिए। अगर ज़रूरत पड़े तो टेली मानस से सहायता लीजिए।

मंगेशकर और मन्ना डे को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी रात और दिन। श्रोताओं, महिला अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती। वो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना करना जानती है और उन मुश्किलों को पार कर आत्मनिर्भर भी बन रही है। ऐसी ही मिसाल पेश की है गाजियाबाद की बबीता शर्मा ने। बबीता शर्मा अकेले अपने 3 बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही हैं। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सड़क किनारे पूजा सामग्री बेचने का छोटा सा ठेला लगाया। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है, जरूरत होती है बस आत्मविश्वास की। तो रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं और बबीता शर्मा को जब पीएम स्वनिधि योजना के तहत आर्थिक मदद मिली तो उन्होंने इस मदद के जरिए अपने ठेले को एक पक्की दुकान में बदल लिया और अपने कारोबार का विस्तार किया। आज बबीता आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर जीवन भी दे रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उनके संघर्ष और सफलता की सराहना की और देश के लिए उन्हें प्रेरणा स्रोत भी बताया है। हम बबीता जी को उनके इस अथक प्रयास और सफलता के लिए बधाई देते हैं। और श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि हमने बबीता शर्मा जी से आकाशवाणी के स्टूडियो में उनको बुलाकर उनसे बात की है, तो बहुत ही जल्दी आप बबीता शर्मा की बातचीत किसी दिन इसी कार्यक्रम में सुनेंगे।

किशोर कुमार और आशा भोसले को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी सीता और गीता। अब बात करते हैं ट्रेवल इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए एक अच्छे करियर विकल्प की। जी हाँ, एयर टिकट बुकिंग से लेकर टूर प्लानर, टूर गाइड बनकर महिलाएं अपने भी शौक को पूरा कर सकती हैं और लोगों के घूमने के शौक को पूरा करवा सकती हैं। एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जो उड्डयन उद्योग है, का ये एक ऐसा क्षेत्र है जो सम्मान, अच्छी सैलरी और देश विदेश के लोगों से जुड़ने का

है वो 24/7 होता है, जिसे आप अपनी सुविधा के अनुसार शिफ्ट भी चुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं ज़रूरी योग्यता की। इस फील्ड में एंट्री करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद कुछ कोर्सेज कर सकती हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एंड एयर टिकटिंग, डिप्लोमा इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। इसके अलावा अच्छी बातचीत करने की कला, यानी कि आपके पास अगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, अंग्रेजी और किसी अन्य विदेशी भाषा का ज्ञान है, तो वो भी खास मायने रखता है। कोर्स पूरा करने के बाद महिलाओं के लिए कई तरह के अवसर खुलते हैं, जैसे कि एयरलाइंस टिकटिंग एग्जीक्यूटिव, एयरलाइन या एयरपोर्ट ऑफिस में जॉब, ट्रेवल कंसल्टेंट, या आप एजेंट्स भी बन सकते हैं, और बड़ी ट्रेवल कंपनियों में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ के तौर पर आपको काम मिल सकता है, आप यहां पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपका भी सपना है देश विदेश की यात्रा करना, लोगों को यात्राएं करवाना, तो ये एविएशन इंडस्ट्री यानी कि जो उड्डयन उद्योग है वो आपके लिए है।

0: लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी गाइड। श्रोताओं, आज बच्चे अपने सपनों को पूरा करने के लिए घरों से दूर जाते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें, और माता पिता भी उनके भविष्य निर्माण में उनका पूरा सहयोग करते हैं। आज शैक्षणिक संस्थानों में कहीं कहीं रहने की सुविधा की कहीं कमी के चलते घरों से दूर बच्चों को आज हॉस्टल्स और पीजी में रहना पड़ता है, लेकिन आज जरूरी हो गया है कि कुछ सुरक्षा मानकों का ध्यान रखा जाए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अगर आप अपने बच्चों के लिए पीजी देख रहे हैं या बच्चे खुद भी देख रहे हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, जैसे कि सुरक्षा, सफाई, पानी, भोजन और सुविधा के आधार पर पीजी की रेटिंग क्या है। जी हाँ, रेटिंग चेक करना बहुत जरूरी है। पीजी और किराए के भवन की सुरक्षा जांच हो रखी है या नहीं, ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ एक लिखित एग्रीमेंट होना भी खास है, क्योंकि एग्रीमेंट में सब कुछ जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं, जो शर्तें होती हैं, वो सब लिखी रहती हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आग से बचाव के लिए पुख्ता इंतज़ाम है या नहीं। सुरक्षित निकास और आपातकालीन नंबर पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई जो बच्चों को, अभिभावकों को ध्यान रखने की ज़रूरत है जब वो पीजी लेने जाएं या किसी बाहर हॉस्टल में कमरा अपने बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं या बच्चे खुद ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा जो बिल्डिंग मालिक हैं, जो इन पीजीज को चला रहे हैं, उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन है कि उनको भी इमारतों की सुरक्षा के लिए स्थानीय नियमों का पालन करना चाहिए। इमारतों के लिए उनके पास आवश्यक सर्टिफिकेट होने चाहिए, जैसे कि फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट अवश्य लें। समय समय पर वे इमारत का सुरक्षा ऑडिट भी करवाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि जो छात्र और छात्राएं हैं, जो बच्चे बाहर से आते हैं, वो सुरक्षित रहें, जो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे भी लिए भी अच्छा है, हमारे बच्चों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि छात्र छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो मुनाफे को अलग रख बच्चों की सुरक्षा को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

भूपेंद्र और रूना लैला की आवाज़ में अभी आप ये गीत सुन रहे थे। फिल्म थी घरौंदा। श्रोताओं, आज मार्केट में सुंदर सुंदर और सुगंधित मोमबत्तियाँ बड़ी ही सुंदर पैकेजिंग और ग्लास जार में मिलती है, जो ना केवल घरों की सुंदरता बढ़ाती है बल्कि अरोमा थेरेपी के लिए भी एक शानदार गृह उद्योग है, जो ना केवल महिलाओं की रचनात्मकता को बढ़ाता है साथ ही कमाई का बेहतरीन साधन भी ये बन सकता है। कि अगर कोई महिला इस मोमबत्ती उद्योग से जुड़ी, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस उद्योग से जुड़ी हुई और जो अपने घर में शुरू होने वाले इस कम लागत वाले बिजनेस को अपने घर से ही शुरू कर रही हैं, और जो ऐसा जो महिलाएं कर रही हैं आज वो आत्मनिर्भर भी बन गई हैं। तो अगर आप में से भी कोई ऐसी महिला है जो इस व्यवसाय से जुड़ना चाहता है और जुड़कर स्वयं को सशक्त करने का सपना देख रहा है, तो जुड़िए कैंडल मेकिंग से और अपनी रचनात्मकता को दीजिए उस उड़ान के पंख जो आपको कामयाबी का आसमान देगा। और सबसे खास बात यह है कि आप कई तरह के विशेष प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे तनाव कम करने के लिए लेवेंडर, लेमन ग्रास, वेनिला जैसी सुगंध वाली मोमबत्तियाँ, त्योहारों, शादियों, पार्टियों के लिए रंग बिरंगे और अलग अलग आकार में बनी हुई मोमबत्तियाँ आजकल लोगों में काफ़ी लोकप्रिय है। और साथ ही साथ आजकल लोग केमिकल फ्री सोया वैक्स या बी वैक्स से बनी मोमबत्तियों को भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि आप कम लागत से इस उद्योग की शुरुआत कर सकती हैं और अपने बनाए बेहतरीन प्रोडक्ट्स को सोशल मीडिया, ई कॉमर्स वेबसाइट और स्थानीय बाजारों में आसानी से बेच सकती हैं। त्योहारों के सीजन में स्थानीय मेलों, सोसाइटियों या प्रदर्शनियों में स्टॉल लगाए जा सकते हैं। गिफ्ट शॉप्स, इवेंट प्लानर्स से आप टाई अप करके थोक ऑर्डर भी प्राप्त कर सकती हैं। और अगर सफलता के मूल मंत्रों की बात करें कि अगर आप इस व्यवसाय से जुड़ना चाहती हैं तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, एक सुंदर और आकर्षक पैकेजिंग आपकी मोमबत्ती की कीमत और उसकी वैल्यू को बढ़ाएगी। यानी कि जब आप इस उद्योग में आएं तो आप सिर्फ उसकी बनाने पर ध्यान नहीं दें, उसके आप पैकेजिंग का भी ध्यान देंगे, आप उसकी जो आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इसेंशियल ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं या जो वैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसकी क्वालिटी से समझौता बिल्कुल नहीं करेंगे, आप हर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हाँ, कि अगर आप बिगनर हैं तो छोटे से कोर्स से आप शुरुआत कर सकते हैं या ऑनलाइन आप इसको सीखते रहिए, ताकि आपके काम में जो है ना वो बेहतरी से वो काम होता रहे और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिफ़ाइन करते जाएं और अपने उद्योग को आगे बढ़ाते जाएं।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कारवां। श्रोताओं, ये कार्यक्रम घर आंगन है जहां आप हमसे जुड़ते हैं और हम आपसे जुड़ते हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो ये रिश्ता है ये आवाज़ का ज़रिया है जिसके द्वारा हम आपसे संवाद करते हैं, और आपके जो संवाद होते हैं वो हमारे साथ होता है आपकी प्रतिक्रियाओं से, आपके सुझावों से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आप हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़ते रहिए कार्यक्रम घर आंगन में, अपने मेल के ज़रिए, अपनी प्रतिक्रियाओं के ज़रिए, क्योंकि आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रियाएं हमें अपने कार्यक्रम को बेहतर बनाने का अवसर देती है। तो हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहता है, और आप सभी जानते हैं कि आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। जी हाँ, fmgoldga@gmail.com।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आप सुन रहे हैं, फिल्म है इंतकाम। और देखिए, घड़ी मुझे इशारा कर रही है कि मैं अपने श्रोताओं से लूँ अनुमति, तो आज के इस सफ़र में आपको यहीं छोड़ जाती हूँ इस गीत के साथ। तो मुझे यानी प्रतिभा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमा के कृषि मंत्री मिननोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों से महिला उद्यमियों और महिलाओं के नेतृत्व वाले कारोबार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स से WBA महिला नेतृत्व वाले विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने महिलाओं के लिए ऋण और बाजार तक आसान पहुंच तथा कारोबार के लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों की आवश्यकता पर बल दिया।
1: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
0: मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का आज तीसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका उद्घाटन किया था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के तीसरे दिन आज एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन और क्वांटम प्रौद्योगिकी पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, कनेक्टेड इंडिया, एम्पावर्ड फाइनेंस, बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द AI इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष नंदन निलेकणी और SBI के अध्यक्ष CS शेट्टी भी आज महत्वपूर्ण सत्रों को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली पुलिस ने 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत ये आदेश जारी किया है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें ये संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसे हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में मधुरंतकम और धरपुरम आरक्षित विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 6 अक्टूबर को होंगे। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि इस महीने की 16

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मिनी वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।
1: Hey guys! आज तो पार्टी चाहिए।
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
4: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
4: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है दोपहर के 1:10 और ये हुए पूरे 54 सेकंड। स्वागत है आप सभी का। और ये जो वक्त है, ये वक्त है उस कार्यक्रम का जिसका नाम है एक ही फिल्म से। और आज आपके साथ जो फिल्म लेकर मैं आ रही हूँ वो अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म है, बहुत संगीतमय फिल्म है। और आप ये जो सफर तय करेंगे, जी हाँ, ये सफर आप तय करेंगे आपकी रेडियो हम सफर सोनाली के साथ। कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार। दोस्तों, कभी कभी कोई फिल्म अपने समय में उतनी चर्चा नहीं पाती, लेकिन उसके गीत बरसों बाद भी यादों के किसी कोने से निकलकर सामने आ जाते हैं। ऐसी ही एक फिल्म है संगीत। माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ की मुख्य भूमिकाओं वाली यह फिल्म 1992 में आई थी और इसका निर्देशन किया था दक्षिण भारतीय सिनेमा के दिग्गज फिल्मकार के विश्वनाथन ने। फिल्म की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी आंखों में रोशनी नहीं है, लेकिन जिसके भीतर संगीत की दुनिया बेहद उजली है। वह अनाथ है, नेत्रहीन है और गायिका बनने का सपना देखती है। उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है जो उसके हुनर को पहचानता है और उसकी इस यात्रा में उसका साथ देता है। तो इस यात्रा में साथ तो वो व्यक्ति देता ही है उसका, लेकिन इस यात्रा को हम भी यहाँ शुरू करते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत का ये पहला गीत।

जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म संगीत की। और इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खासियत थी ना, वो थी माधुरी दीक्षित की दोहरी भूमिका। उन्होंने माँ और बेटी दोनों किरदार निभाए हैं। और एक तरफ वो एक ऐसी लड़की है जो अपनी आवाज़ के सहारे दुनिया को महसूस करती है, और दूसरी तरफ वो एक माँ है जिसके भीतर अपनी संतान से बिछड़ने का दर्द है। दोनों किरदारों के स्वभाव और भावनाओं में फर्क पैदा करना आसान नहीं था, लेकिन माधुरी दीक्षित ने इसे बहुत खूबसूरती से निभाया। और शायद के विश्वनाथ की संवेदनशीलता का असर भी यहाँ दिखाई देता है दोस्तों। उन्होंने फिल्मों में संगीत केवल गीतों के बीच आने वाला विराम नहीं होता था, मतलब अगर देखा जाए तो फिल्मों में उनका जो संगीत होता था वो हमेशा कहानी को आपस में जोड़ता था, कनेक्ट करता था। और संगीत फिल्म में भी वही बात हमने बार बार महसूस की है। और ये जो कहानी का एक हिस्सा बन गया इस फिल्म का संगीत, और चूंकि नाम भी फिल्म का संगीत है तो इसके गीतों का अलग तरह का होना बहुत लाजमी है। फिर अगर हम इसकी बात करते हैं फिल्म संगीत में जो म्यूजिक था, म्यूजिक डायरेक्टर हैं आनंद मिलिंद, इनकी धुनें हैं और जो गाने लिखे हैं वो संतोष आनंद ने लिखे हैं। और एक तरफ तो बहुत सारे भावुक और मधुर गीत भी हैं इस फिल्म में, लेकिन इस फिल्म का एक गाना जो हम लोग हमेशा याद करते हैं और अभी भी सुन करके एक अलग सी ऊर्जा और एक अलग सी चंचलता महसूस होती है, वो है जॉली मुखर्जी की आवाज़ में गाना है। और वो गाना देखिए कौन सा है। मैं मानती हूँ आप भी इस गाने को सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें एक अलग सी मस्ती है और इसमें जैकी श्रॉफ का जो एक अलग अंदाज आपको नजर आएगा वो आपको इस गाने को सुनकर दोबारा आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे जब आपने शायद पहली बार इस फिल्म को देखा था। तो आप इसे किस किस ने संगीत फिल्म को देखा ये मुझे बताइए, और आपको इसमें कौन सा गाना सबसे बेहतरीन लगता है ये भी जरूर बताइएगा। लेकिन आप जब तक मुझे ये सवालों के जवाब दें तब तक मैं आपको ये वाला गाना, जी हाँ कौन सा, ये वाला जरूर सुनाना चाहूंगी।

जी हाँ, आप लोगों से पता पूछने की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बकायदा बहुत खूबी के साथ हमारे साथ जुड़ जाते हैं और इतनी खूबसूरत बातें आपके साथ में हम लोग यहाँ पे शेयर करते हैं ना। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, ये स्टेशन रोड जमशेदपुर से हैं। इनके साथ हैं एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और तमन्ना भाटिया। फिर हमारे साथ हैं जगराम साहू, और ये हैं हमारे साथ ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। और ये कह रहे हैं कि हमने ये फिल्म देखी है पर बहुत पहले, और आज आपके साथ इस फिल्म को दोबारा देख रहे हैं। देखिए, यही तो बात है ना कि हम लोग हमेशा पुराने लम्हों को दोहराते रहते हैं और यही रेडियो का सबसे बेहतरीन रूप है, है ना। और देखिए यहाँ पर हमारे साथ फिर कौन है, ये हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांतिनगर सोनीपत से। और संगीत पिक्चर के बारे में वो कह रहे हैं कि इन्हें इन्फॉर्मेशन मूवी

सॉन्ग सब बहुत अच्छे लग रही है. थैंक यू सो मच. फिर है हमारे साथ हीरामणि वर्मा तत्रंगी भाटापारा से, और इन्हें भी फिल्म के बारे में बातें सुनकर अच्छा लग रहा है. संजय ढींगिया जी हैं, नमन ढींगिया अपार ढींगिया बागपत उत्तर प्रदेश से हमारे साथ हैं. यशमीत साहू, यशमीत यशु माफ कीजिएगा, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, और ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. देखिए फिर अपने चिर परिचित अंदाज में कौन हमारे साथ है, धर्मेंद्र छीपा जी, और ये इन्होंने सब कुछ बता दिया है कि इसमें क्या क्या है, और इन्हें अच्छी लग रही है जानकारियाँ. ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, और शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. आपके साथ है कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, और फिर हैं संदीप मक्कड़ जी, इनके साथ हैं ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, धर्मवीर जी, और ये धर्मवीर जी दिल्ली वाले पिंगा वाला चौक गोरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हैं. फिर देखिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए हमारे साथ. फिर बाकी दोस्तों के बारे में भी बताऊंगी कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन उसके पहले आइए हम लौटते हैं फिल्म संगीत की ओर, जहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म संगीत के बारे में, जिसमें माधुरी दीक्षित की दोहरी भूमिका आई थी, साथ में थे जैकी श्रॉफ. और अगर हम इस फिल्म की बात करते हैं ना, तो दोस्तों इस फिल्म में ना एक बहुत अलग सी बात है. देखिए इसमें प्रेम तो है, दो रोमांस है, प्रेम है, लेकिन इसके साथ में प्रेम के कई रूप हैं. एक है हुनर पर विश्वास करना, खुद पर विश्वास करना, किसी का हाथ थामकर आगे बढ़ना, और फिर है माँ और बेटी का एक रिश्ता, और सबसे बढ़कर है अपने होने की पहचान तलाशना. एक नेत्रहीन लड़की के लिए संगीत सिर्फ कला नहीं है, वो उसकी दुनिया को समझने का माध्यम है. और हम दुनिया को आंखों से देखते हैं, लेकिन वो उसे सुरों से महसूस करती है. और यही इस फिल्म का सबसे सुंदर विचार लगता है कि दुनिया को देखने के लिए आंखें जरूरी हैं, लेकिन उसे महसूस करने के लिए संवेदनशील मन सबसे ज्यादा जरूरी है ना.

अनुराधा पोंटवाल के साथ आप सुन रहे थे सुरेश वाडकर की आवाज में ये बहुत प्यारा संगीत। और देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म संगीत की, तो इसमें सेतु की भूमिका में जैकी श्रॉफ थे और निर्मला यानी माँ की भूमिका में माधुरी दीक्षित और संगीता फिर से माधुरी दीक्षित। तो अपने डबल रोल के साथ हमें माधुरी दीक्षित इस फिल्म में नजर आई है। इनके साथ में जो बाकी कलाकार थे वो थे नीतीश भारद्वाज, परीक्षित साहनी, शफी इनामदार, अरुणा ईरानी, आशा शर्मा, सतीश शाह और अंजन श्रीवास्तव। देखिए, फिल्म का जो अगर हम कथानक की बात करते हैं, तो अगर संक्षेप में आपको कहानी के बारे में बताऊं तो जो सीनियर माधुरी दीक्षित है मतलब निर्मला जी सेतु को एक लोक गायक को सुनती है एक जगह परफॉर्म करते हुए, वही वाला गाना सुनो हसीना काजल वाली, तो वो सुनकर के वो उसे अपने यहाँ पर अपनी पार्टी में इनवाइट करती हैं कि आप यहाँ पर आकर के यहाँ पे अपना यहाँ पर हमें अपने गाने सुनाइएगा, परफॉर्म कीजिएगा। लेकिन चूंकि घर वालों को इस तरह के छोटे आदमी का इतना ज़्यादा मेल जोल अपनी घर के साथ में या घर वालों के साथ पसंद नहीं आता इनकी हस्बैंड को, मतलब इनके पति को निर्मला जी के, तो बस वहीं से कहानी मोड़ लेती है। लेकिन चूंकि बेटी को प्यार हो जाता है सेतु के साथ, तो कहानी में एक अलग ही मोड़ आते हैं और ये सारे मोड़ आपने अपने आप देखे हैं। और कहानी को दोहराने की अभी आपको मैं उस दौर में ज़रूर ले जाना चाहूँगी जब आपने इस कहानी को ज़रूर देखा होगा, दोबारा आप उस चीज़ को महसूस भी करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूँ हमारे साथ कौन कौन जुड़े हैं। देखिए, हमारे साथ जुड़े हैं अब्दुल गफ्फार जी, नागचुन रोड, संजय कॉलोनी, खंडवा से। और इनके साथ हैं, देखिए इनका तखल्लुस कितना अच्छा है, अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, फिर हैं अब्दुल हक डावर, जिया उल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी जी। फिर हमारे साथ जुड़े हैं देखिए ये हैं चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा। और इन्होंने लिखा है सुनो हसीना काजल वाली के बारे में लिखा है, वो तो गाना मैंने आपको सुना दिया सर। फिर हमारे साथ हैं ये हैं अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, भावेश कुमार भावसार और सनी भावसार, सूर्य संगम रेडियो श्रोता संघ। और ये है वीरम गाम गुजरात से हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। फिर है पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर, नलेश्वर नगर, नरवील, जिला बुलढाणा से हमारे साथ जुड़े हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और हमारे साथ हैं सहारनपुर, कुमार हैड़ा से सैयद मसरूर, शाइना हसन अक्सा, अदीब नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम, और इन्होंने भी फिल्म के बारे में बात की है, शुक्रिया। और हमारे साथ बस आप लोग बने रहिए, अच्छा लगता है। देखिए ये कौन है, ये है आपको हमारी प्रस्तुति सुंदर लगी उसके लिए शुक्रिया, ये है लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथ पूरा, जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से। तो शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। हम बात कर रहे हैं 1992 में रिलीज हुई फिल्म संगीत की, आइए सुनते हैं इसी फिल्म का एक और गाना।

दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संगीत की, और अगर इस फिल्म के बारे में बात करें तो कहते हैं कि हर फिल्म की कीमत उसकी कमाई से तय नहीं होती, और इस फिल्म को अगर बॉक्स ऑफिस में इसकी कमाई की बात करें तो ये असफल फिल्मों की श्रेणी में आती है, लेकिन इस फिल्म का जो एक गीत है वो पुरस्कारों तक ज़रूर पहुंचा। मैं बात कर रही हूँ ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, इस गाने की। इस गाने में ना अनुराधा पौडवाल को 1993 के फिल्म फेयर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका की श्रेणी में नामांकन मिला था, और माधुरी दीक्षित के लिए भी यह फिल्म खास थी क्योंकि इन्होंने इसमें दोहरी भूमिकाएँ निभाई थी। और इसके बाद में उन्होंने अगले ही साल एक और फिल्म में फिर से माँ बेटी की भूमिका निभाई है। तो आज हमने याद किया, फिल्म संगीत के बारे में हमने बातें की, और इस फिल्म के गानों के जरिए इस फिल्म को दोबारा आप तक लाने की कोशिश हमने की। लेकिन अपनी उनकी धुनें समय के साथ अपनी जगह बना लेती हैं, जिनकी धुनें हमारे दिल में जगह बना लेती हैं, है ना। संगीत भी शायद ऐसी ही फिल्म है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की अपनी आवाज़ के सहारे अपनी आवाज़ अपनी पहचान तलाश रही है, और हमें आखिर में यही बात याद रह जाती है कि आवाज़ को रास्ता दिखाने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं होती, अगर सुर सच्चे हों तो संगीत अपना रास्ता खुद बना लेता है, और ये इस फिल्म के गीतों के जरिए हमें बखूबी समझ में आता है। तो आज हमने याद किया 1992 की फिल्म संगीत को, और एक ऐसी फिल्म जिसकी कहानी भी सुरों से कही गई और रिश्ते भी, और शायद इसीलिए इतने साल बाद भी जब इसका कोई गीत बजता है तो लगता है कुछ धुनें पुरानी नहीं होती, बस हमारी यादों में थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है।

दोस्तों आप सुन रहे थे एक ही फिल्म से कार्यक्रम, और इसमें आज हमने सुना फिल्म संगीत के बारे में, हमने अपनी यादों को ताज़ा किया। ये कार्यक्रम आपने अपनी रेडियो हम सफ़र सोनाली के साथ तय किया। अब दीजिए मुझे इस कार्यक्रम से अनुमति। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, 1:40 होने वाले हैं, आइए सुनते हैं पंजाबी में समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरें इस बुलेटिन में अमन देव। पहला खास खबर, पंजाबी उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार महिला उद्यमियों के औरतों के अगुवाई वाले उद्यमों की मौके बढ़ाने रल के काम करने का सद्दा दिता है। भारतीय नेपाल भयानक खड़े के मद्देनजर मानवतावादी सहायता तेज करने 130 टन से वध की राहत सामग्री भेजी है। पंजाब के सबक मंत्री भगत सिंह का अज जलंधर लंबी बीमारी मगरों देखांत हो गया है। अज विश्व खुदकुशी रोकथाम दिवस है। यह दिन दुनिया भर में आत्महत्याओं रोकने और मानसिक सेहत बारे जागरूकता पैदा करने में मनाया जाता है। महिला एशिया कप क्रिकेट बोर्ड पहले सेमीफाइनल अज भारत का मुकाबला बंगलादेश नाल होगा। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों और औरतों की अगुवाई वाले उद्यमों की मौके बढ़ाने लिए रल के काम करने का सद्दा दिता है। वह नई दिल्ली में ब्रिक्स WBA महिला अगुवाई विकास सम्मेलन में औरतों की अगुवाई वाले उद्यमों के विकास और मौके बढ़ाने लिए कर्जे बाजार और व्यापार के स्पष्ट नियमों तक आसान पहुंच की लोड़ पर जोर दिता। श्री गोयल ने कहा कि भारत ने औरतों को आर्थिक और समाजिक तौर पर समर्थ बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया है। शिक्षा हुनर और बेहतर जीवन पद्धत राही देश के विकास का चालक बनाया है। औरतों की वित्तीय शमूलियत बारे श्री गोयल ने कहा कि देश में लगभग 3 करोड़ महिला बैंक खाता धारक हैं और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छुक औरतों बिना किसी गारंटी के कर्जे दिए जाते हैं।
2: भारत में करीब 30 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते हैं। अपना काम शुरू करने वाली महिलाओं को बिना किसी जमानत के ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत करीब 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं।
1: ब्रिक्स देशों दरमियान वधेरे सहयोग की मांग करदे उन्होंने कहा कि गलबात ते कूटनीति मैंबर देशों भाईवाल देशों ते दुनिया लई एक वधेरे खुशहाल भविख दा राह ने। संयुक्त राष्ट्र के सैक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस एतवार को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन संबोधन करेंगे। उन्होंने बुलारे स्टीफन डुजारिक ने दसा है कि वह अपने संबोधन में दुनिया की बदल गई बहुत ध्रुवी हकीकतों को सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि गुतरेस इस गल से जोर देंगे कि अज की आर्थिक जनसंख्यिकी भू राजनीतिक हकीकत 1945 हकीकतों को वखरिया ने। ब्रिक्स देश इस बदलती हकीकत नुमाइंदगी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ होने वाला यह सम्मेलन लचकीलापन नवीनता सहयोग और स्थिरता निर्माण विषय पर आधारित है। श्री डुजारिक ने कहा कि गुतरेस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनफिंग समेत होर नेतावान दुवलियां मीटिंगा करने की उम्मीद है। नेपाल में आए भयानक हड़ों के मद्देनजर भारत ने मानवतावादी सहायता तेज करने 130 टन तो वध की राहत सामग्री भेजी है। भारत ने पाल बचाव और फोरेंसिक कार्यों में मदद की 54 माहर सेवाएं मुहैया कराई ने। नेपाल भारतीय दूतकार ने कल दसा कि भारतीय हवाई फौज का आत्मा जहाज 35 टन राहत बचाव सामग्री लैके काठमांडू पहुंचा। अधिकारियों ने दसा कि हड़ों कारण मरने वाले की गिनती बढ़ के 1370 हो गई जबकि 5000 तो वध लोग हालांकि लापता ने। राष्ट्रीय आफत जोखम प्रबंधन अथॉरिटी ने दसा कि सब तो वध 364 मौत चितवन में दर्ज की गई हैं जिस तो बाद 228 मौत नवलपरासी पूर्व और 222 नवलपरासी पश्चिम हुई ने। प्रभावित इलाकों में 13600 तो वध लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के लड़ाकू जहाजों की पहली भारत फेरी में भारत जापान रक्षा भाईवाल में

0: पत्थर दस रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट च श्री सिंह ने कहा कि यह दोनों देशों विचकार वध रहे विश्वास हिंद प्रशांत खेत्र शांति स्थिरता प्रति उन्होंने सांझी वचनबद्धता दर्शाता है। श्री सिंह ने कहा कि फैसला पिछले महीने नवी दिल्ली उन्होंने जापानी हमरूपा शिंजीरो कोजुमी सार्थक विचार वटांदर तो बाद लिया गया। रक्षा मंत्री ने कहा कि वीर कारकिन अभ्यास वर्गे दुबले दौरे तालमेल होर मजबूत होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीलंका के दो दिन दौरे ते ने अज उन्होंने कोलंबो च श्रीलंका के सबक क्रिकेटर अरविंद डिसिल्वा सुनीत जयसूर्या के चमंडा वास मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट च श्री सिंह ने कहा कि भारत के लोगों ने क्रिकेटर के शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। यह खबर आकाशवाणी से सुनते हो। फेसबुक पेज @RNU-AIR जलंधर यूट्यूब चैनल @RNU-AIR जलंधर। पंजाब के सबक मंत्री भगत चुनीलाल का अज जलंधर लंबी बीमारी मगरों देहांत हो गया। वो 94 साल के सन। साल 2012 में श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार दौरान कैबिनेट मंत्री रहे श्री भगत ने उस समय की प्रकाश सिंह बादल सरकार में स्थानक सरकार मेडिकल सिक्ख्या जंगलात जंगली जीव कित विभागों के मंत्री वजो जिम्मेवारी निभाई। उन्होंने तीन बार 1997 2007 2012 जलंधर पश्चिमी विधानसभा हल्के की नुमाइंदगी की। उन्होंने पंजाब विधानसभा में डिप्टी स्पीकर वजो सेवा निभाई। उन्होंने अंतिम संस्कार अज शामी 5 बजे जलंधर मॉडल हाउस नेड़े शमशान घाट विखे किया जाएगा। पंजाब सरकार ने उनके सम्मान में अज अद्धे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। अज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। यह दिन दुनिया भर में आत्महत्या रोकने के मानसिक सेहत बारे जागरूकता पैदा करने लिए मनाया जाता है। यह दिन सानू याद दवाउंदा है कि भावनात्मक तनाव और मुश्किल हालात नाल जूझ रहे लोगों को समय सिर सहायता समझ और ढुकवी देखभाल की लोड़ होती है। माहिरां दा कहना है कि तीरजां और बिना किसी अगाऊ धारणा के उन्होंने सुनना उन्होंने मदद लेने लिए उत्साहित कर सकता है। इस मौके पर लोगों को अपने आए दौरे लोगों की भावनात्मक सेहत प्रति जागरूक रहने और लोड़ पैण से परिवार किसी भरोसेमंद व्यक्ति तो मानसिक सेहत माहर तो मदद लेने उत्साहित करने की अपील की जाती है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने अज परमवीर चक्कर नाल सम्मानित कंपनी क्वार्टर मास्टर होल्डर अब्दुल हामिद उन्होंने शहीदी दिवस की श्रद्धांजलि भेंट की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि अब्दुल हामिद ने 1965 की भारत पाकिस्तान जंग दौरान अदुत हिम्मत और बेमिसाल हुनर का प्रदर्शन करदे देश में सर्वोच्च कुर्बानी दी। श्री बिरला ने कहा कि अपनी हिम्मत और हाजिर धमाकी नाल अब्दुल हामिद ने दुश्मन के कई टैंकों को तबाह किया। मुश्किल हालात के बावजूद मोर्चे पर डटे रहे। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि राष्ट्र उन्होंने की बहादुरी और कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा। बिहार में हड़ां संबंधी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। कई नदियों में पानी का पत्थर हुआ घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। केंद्रीय खेतीबाड़ी के किसान भलाई मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मलेशिया तिमोर लेस्टे और म्यांमार के अपने हमरुतबा में कुछ 15 डोलियां मीटिंग की। मलेशिया के खेतीबाड़ी मंत्री मोहम्मद बिन साबू नाल अपनी मुलाकात में श्री चौहान ने ज्ञान महारत और वधिया अभ्यासों साझा करने की अहमियत पर जोर दिया। मीटिंग दौरान दोनों मंत्रियों ने कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देश इस गल से सहमत हुए कि बहुत सारे दुवाले मुद्दों को गलबात राही हल किया जा सकता है। श्री चौहान ने म्यांमार के खेतीबाड़ी मंत्री मिन नोंग नाल भी मुलाकात की। मीटिंग दौरान मंत्री ने कहा कि खेतीबाड़ी के सहायक खेतों के सहयोग में मजबूत कर ले दोनों देशों का एक समझौता पत्र अंतिम पड़ाव में है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश नाल होगा। यह मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने अपने ग्रुप पड़ा के 3 मैच जीते हैं। कल दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका और पाकिस्तान आमो सामने होंगे। यूएस ओपन टेनिस मर्दों के सिंगल्स के सेमीफाइनल में आज अमरीकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमो सामने होंगे। शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में मौजूदा चैंपियन कार्लोस कलासू 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 नाल हराया। 11वां दर्जा प्राप्त टियाफो ने हमवतन एलेक्स मिशेलसन नूं हराया है। महिला सिंगल सेमीफाइनल में भारतीय मौजूदा चैंपियन एलिना सबालेंका का मुकाबला जैसिका नाल होगा। दूजा सेमीफाइनल कोको गोल्फ के एलिना अरबिकिना विचकार खेडिया जाएगा। अंत विच चौनिया खबर एक नजर। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ब्रिक्स देशों अंतरराष्ट्रीय व्यापार में महिला उद्यमियों के औरतों की अगुवाई वाले उद्यमों ने मौके दिखाने के लिए रल के काम करने का सद् दिता है। भारतीय व्यापार में पानीखड़ों के मद्देनजर मानवतावाद की सहायता पेश कर सबक मंत्री जलंधर लंबी बीमारी मगर खान हो अज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। इस दिन दुनिया भर में आत्महत्या रोकने और मानसिक सेहत बारे जागरूकता कार्यक्रम मनाया जाता है। अगले एशिया कप क्रिकेट में पहले सेमीफाइनल में अब भारत का मुकाबला बांग्लादेश नाल होगा। इस दौरान खबरों का बुलेटिन खत्म होगा। सारा प्रादेशिक खबरों का बुलेटिन शाम 6:20 से होगा। नमस्कार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। ज़राअत के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ दोतरफा मीटिंगें की हैं। आलमी सेहत तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने जच्चा बच्चा की सेहत देखभाल के सिलसिले में भारत की नुमाया हुसूरियाबियों की सताइश की है। उन्होंने तिमोर लेस्ते में सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज ओडिशा में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। क्रिकेट में आज शाम दुबई में खवातीन एशिया के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा और यूएस ओपन में आज मर्दों के सिंगल्स का सेमीफाइनल खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। ज़राअत और किसानों की बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमा के अपने हम मनसबों के साथ आला सतही दोतरफा मीटिंगें की। नई दिल्ली में ज़राअत और जंगलात से मुतालिक नवें आसियान भारत वजारती मीटिंग के मौके पर कल ये मीटिंगें हुई। मलेशिया के ज़राअत और खुराक की यकीनी फराहमी के वजीर मोहम्मद बिन साबू के साथ मुलाकात के दौरान जनाब चौहान ने मालूमात, महारत और बेहतरीन तौर तरीकों के तबादले की अहमियत पर जोर दिया। वजीर मौसूफ ने मुश्तरका ज़रई तहकीक टेक्नोलॉजी और इख्तरा के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने पर भी दिलचस्पी का इजहार किया। इस दौरान जनाब चौहान ने म्यांमा के ज़राअत के वजीर मिन नाउंग के साथ मीटिंग की। मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने कहा कि ज़राअत और उससे वाबस्ता शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने की खातिर दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमतनामे आखिरी मरहले में हैं। आलमी सेहत तंजीम WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अधानोम गेब्रेसिस ने तिमोर लेस्ते के दिल्ली में जुनूब मशरकी एशिया के लिए WHO की इलाकाई कमेटी के 79वें इजलास के मौके पर सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात की। डॉक्टर टेड्रोस ने खासतौर से जच्चा बच्चा की सेहत और गैर मुतअद्दी बीमारियों से निमटने के सिलसिले में सेहत के मामले में भारत की नुमाया हुसूलियाबियों की सताइश की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए भारत ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और आम कैंसर के सिलसिले में स्क्रीनिंग को मुस्तहकम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की आशा वर्कर सेहत की देखभाल की एक और ताकतवर मिसाल हैं, जो जहां लोग हैं वहां पहुंचती हैं और माओं और बच्चों को हमल से लेकर बाद तक मदद फराहम करती हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि टीकाकारी में तौसी और इदाराजाती जच्चगी में इजाफे से जच्चा बच्चा अमवात में खातिरखा कमी आई है। ब्रिक्स समिट 2026 से पहले दिल्ली पुलिस ने बढ़ती हुई सिक्योरिटी तशवीश के मद्देनजर इस माह की 14 तारीख तक आज से कौमी राजधानी में ड्रोन उड़ाने और मुख्तलिफ दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी नाफिज कर दी है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अनुराग कुमार ने समिट के लिए सिक्योरिटी बंदोबस्त के एक हिस्से के तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की दफा 163 के तहत ये अहकाम जारी किए हैं। ये पाबंदी पीर के रोज तक जारी रहेगी। तमिलनाडु में मदुरानताकम और धारापुरम रिजर्व असेंबली हलकों का जिमनी चुनाव 6 अक्टूबर को होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन आज जारी किया जा रहा है। कागजात नामजदगी इस महीने की 16 तारीख तक दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 19 सितंबर है। इधर डीएमके पार्टी ने दोनों हलकों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। ये चुनाव अहमियत का हामिल है, क्योंकि असेंबली इंतखाबात के बाद इत्तेहाद बदल गया है। TVK یعنی تملگا ویتری کڑگم کی زیر قیادت اتحاد کو سیکولر سوشل جسٹس وکٹری الائنس کا نام دیا گیا ہے اور کانگریس VCK IUML اور MDMK جیسی پارٹیاں اس کی نئی اتحادی پارٹیاں ہیں جو پہلے DMK اتحاد میں شامل تھیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے مطابق ایران جنگ نومبر میں ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے بعد تک جاری رہے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ خام تیل کی قیمتیں اس سے قبل نیچے نہیں آئیں گی۔ جناب ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان انتخابات کے بعد جنگ فوری طور پر رک جائے گی۔ انہوں نے اپنے اس دعوے کے بارے میں شواہد پیش نہیں کیے کہ ایران ان انتخابات کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 7 مہینے سے جاری اس جنگ نے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ٹرمپ کی منظوری کی درجہ بندی کو متاثر کیا ہے، جس کے سبب ریپبلکن اس جنگ کو ختم کرنے کا دباؤ بنا رہے ہیں۔ جولائی کے بعد سے کل پہلی مرتبہ خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل پر تھیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے آج کے لیے اڈیشہ میں شدید سے بہت شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے اگلے 3 سے 4 روز کے دوران آسام، میگھالے، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورا، گنگا کی ترائی والے مغربی بنگال، بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، ماہے اور اتراکھنڈ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل، آندھرا پردیش، تلنگانہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں اس ماہ کی 15 تاریخ تک گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے اور تیز ہوائیں چلنے کی بھی پیشگوئی کی ہے۔ بہار میں کئی ندیوں کی آبی سطح نیچے آنے کی وجہ سے سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ بچاؤ اور راحت کاری کی کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: گنگا، سون، پنپن، گنڈک اور باگمتی ندیوں کی پانی کی سطح نیچے آ گئی ہے، جس کے سبب سیلاب کی صورتحال میں بہتری آئی ہے۔ بچاؤ اور راحت کارروائیوں میں تیزی آ گئی ہے۔ پٹنہ، ویشالی، سارن، منگیر، بھاگلپور اور ارول سمیت 14 اضلاع میں 40 لاکھ سے زیادہ افراد اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ راحتی کیمپ کھانے کا سامان، طبی سامان اور مدد اور دیگر اشیاء فراہم کر رہے ہیں۔ سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا ہے، جبکہ تقریباً 700 دیہی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، جس سے سڑک کنیکٹیویٹی متاثر ہوئی ہے۔ سڑکوں کی تعمیر کے وزیر انجینئر کمار شیلیندر نے افسران سے سڑکوں پر قریبی نظر رکھنے کو کہا ہے اور جیسے ہی پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے ان سڑکوں کی مرمت کرنے کے احکامات دیے ہیں۔ ندھی شری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
1: بھارتی جنتا پارٹی نے ایک مکمل 270 رکنی ریاستی ایگزیکٹو کمیٹی کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی صدر سامک بھٹاچاریہ کی ہدایات کے تحت وزیر اعلیٰ شبھیندو ادھیکاری لسٹ میں سر فہرست ہیں اور انہیں تملک تنظیمی ضلع کے لیے ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم کے مرکزی وزیر مملکت سکانتا مجومدار کو ساؤتھ دیناجپور کی ذمہ داری دی گئی ہے، جبکہ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر مملکت کو بونگاؤں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ نیپال کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد بڑھا دی ہے۔ 35 ٹن امدادی سامان کے ساتھ بھارتی فضائیہ کا 8واں ہوائی جہاز کل کاٹھمانڈو میں اترا۔ ادھر نیپال میں اچانک سیلاب آنے سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ کارروائی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں راسوا کے مقام پر واقع ٹنل بھی شامل ہے، جہاں بھارتی اہلکاروں کی ٹیم تلاش اور بچاؤ کی کارروائی میں نیپال کی فوج کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ کرکٹ میں دبئی میں خواتین ایشیا کپ کے سیمی فائنل میچ میں بھارت کا مقابلہ بنگلہ دیش سے ہوگا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 8 بجے شروع ہوگا۔ بھارت ٹورنامنٹ میں اپنی جیت کا سلسلہ جاری رکھنا چاہے گا۔ ہرمن پریت کور کی ٹیم نے تھائی لینڈ، ہانگ کانگ اور پاکستان کو آسانی کے ساتھ ہرا کر سبھی 3 گروپ میچ جیتے ہیں۔ گروپ بی میں بنگلہ دیش سری لنکا کے بعد دوسرے مقام پر ہے۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے ساتھ 24 T20 میچوں میں سے 21 میچ جیتے ہیں اور بھارت کی ٹیم پچھلے 8 میچوں میں بنگلہ دیش کے خلاف کوئی میچ نہیں ہاری ہے۔ بنگلہ دیش نے بھارت کے خلاف ایشیا کپ میں 2018 میں جیت حاصل کی تھی، جب اس نے بھارت کو ہرا کر خطاب اپنے نام کیا تھا۔ یو ایس اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگل سیمی فائنل میں 2 امریکی کھلاڑیوں بین شیلٹن اور فرانسس ٹیافو کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ کوارٹر فائنل میں 8ویں نمبر کے کھلاڑی شیلٹن نے 5 سیٹوں کے سنسنی خیز مقابلے میں پچھلی بار کے چیمپئن کارلوس الکاراز کو ہرا دیا، جبکہ ٹیافو نے اپنے ہم وطن الیکسس مائیکلسن کو شکست دی۔ شیلٹن اور ٹیافو دونوں ہی اپنا پہلا گرینڈ سلیم جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر خواتین سنگلز کے سیمی فائنل میں کل پچھلی بار کی چیمپئن آریانا سبالنکا کا مقابلہ 3رے نمبر کی کھلاڑی جیسیکا پیگولا سے ہوگا۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے مشترکہ زرعی تحقیق ٹیکنالوجی اور اختراع کے سلسلے میں اشتراک

0: Singh has described the maiden visit of Japan Air Self-Defense Force fighter aircraft to India as a significant milestone in the India-Japan defense partnership. In a social media post, Mr. Singh said it reflects both nations' growing trust and shared commitment to peace and stability in the Indo-Pacific. Mr. Singh noted that the development follows highly productive discussions held with his Japanese counterpart Shinjiro Koizumi in New Delhi last month. The defense minister said mutual exchange of visits such as Exercise Veer Guardian further strengthens this synergy. The seventh edition of the Global FinTech Fest, GFF 2026, one of the world's largest and most influential annual fintech conferences, is underway in Mumbai. The theme of GFF 2026 is Potential to Impact Agentic AI, Tokenization, Quantum-Trusted, Connected Global Systems for Inclusive Finance. More from our correspondent.
1: Today is the third day of the Global FinTech Fest in Mumbai. Addressing a session titled Agentic AI and the Future of Banking in a Billion User Nation, State Bank of India Chairman C.S. Shetty said that the next phase of India's banking transformation will be driven by artificial intelligence. RBI Governor Sanjay Malhotra, SEBI Chairman Tuhin Kanta Pandey and former UIDAI Chairman Nandan Nilekani are scheduled to address various sessions on Agentic AI, tokenization and quantum technology today. In the evening, Union Minister Jyotiraditya Sindhia will address a session titled Connected India, Empowered Finance, Building Trusted Digital Infrastructure for the AI Economy. Prarthana, Akashwani News, Mumbai.
0: In Nepal, the death toll from flash floods rose to 1,377 today as rescue teams recovered more bodies, while more than 5,000 people remained missing, authorities said. The National Disaster Risk Reduction and Management Authority said the highest number of deaths was reported in Chitwan with 364, followed by Navalparasi East with 228 and Navalparasi West with 222. More than 13,600 people have been rescued from affected areas. The floods, triggered by an ice rock avalanche near the Nepal-Tibet border on August the 26th, swept through towns and villages, destroying homes, vehicles, roads and bridges, and damaging hydropower projects. At least 43 people were also killed on the Chinese side, while more than 500 remain missing in Tibet, according to Chinese media. Meanwhile, India has intensified its humanitarian assistance to Nepal in the wake of the devastating flash floods, delivering over 130 tons of relief material and deploying 54 expert personnel to support search, rescue and forensic operations. The India Meteorological Department, IMD, has issued a red colour warning for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Odisha for today. The weather agency has forecast heavy rainfall over Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura, Gangetic, West Bengal and Bihar for next 3 to 4 days. The flood situation in Bihar improved slightly as water levels receded in several rivers. Relief and rescue operations have been intensified, a report.
2: Flood situation has improved slightly in the state as water levels in the Ganga, Son, Punpun, Gandak and Bagmati rivers have receded. Relief and rescue work has been stepped up. More than 4 million people in 14 districts, including Patna, Vaishali, Saran, Munger, Bhagalpur and Arwal, are affected by floods. Relief camps are providing food, medical camp and essential supplies. Hundreds of houses have been damaged, while nearly 700 rural roads remain underwater, affecting road connectivity. Road Construction Minister Engineer Kumar Shailendra has asked officials to keep a close watch on the roads and repair them as soon as the water recedes. The Education Department is also making arrangements to continue the studies of children in flood-affected areas. Meanwhile, the situation remains concern in Baltara, in Khagadia, in Kursela, in Katihar, where the Kosi is flowing about 1.5 meters above the danger mark. Teams of the Water Resources Department and District Administration are keeping a close watch on the situation. Nidhishri for Akashwani News, Patna.
0: In cricket, India will take on Bangladesh in the semi-final match of Women's Asia Cup today in Dubai. The match will begin at 8 p.m. IST. India will look to maintain their dominant run in the tournament. Harmanpreet Kaur's team won all three group matches, beating Thailand, Hong Kong and Pakistan convincingly. Bangladesh finished second in Group B behind Sri Lanka. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi meets philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi, discusses partnership in healthcare, rural development, youth and women's empowerment. WHO Chief Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus praises India's significant health gains in maternal and child care and non-communicable diseases. Brent crude oil prices continue to trade above $100 per barrel as Iran-US conflict intensifies. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall in Odisha today. And in cricket, India to take on Bangladesh in semi-final of Women's Asia Cup in Dubai this evening. With that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों तथा भारत एवं विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मलेशिया, तिमोर लेस्ते और म्यांमार के कृषि मंत्रियों के साथ कल उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। बैठकों में कृषि क्षेत्र में सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। श्री चौहान ने मलेशिया के कृषि मंत्री मोहम्मद बिन साबू के साथ बैठक की। दोनों मंत्रियों ने विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की और समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत के जरिए करने पर सहमति जताई। म्यांमार के कृषि मंत्री मिन नोंग के साथ बैठक में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कृषि व्यापार की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। बैठक में दालें, कपास, डेयरी विकास और कृषि शिक्षा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में चल रहा है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इम्पैक्ट, एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन, क्वांटम, समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय, आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुंबई में आयोजित हो रहे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आज तीसरा दिन है। एजेंटिक एआई एंड द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग इन अ बिलियन यूजर नेशन विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने कहा कि भारत में बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन के अगले चरण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडे और यूआईडीएआई के पूर्व चेयरमैन नंदन निलेकणी एजेंटिक एआई, टोकनाइजेशन और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर आयोजित विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे। शाम को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कनेक्टेड इंडिया एम्पावर्ड फाइनेंस बिल्डिंग ट्रस्टेड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द एआई इकोनॉमी विषय पर आयोजित सत्र को संबोधित करेंगे। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस अधनॉम घेब्रियसस ने स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात तिमोर लेस्ते में विश्व स्वास्थ्य संगठन की दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र के दौरान हुई। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर टेड्रोस ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य और गैर संक्रामक रोगों के खिलाफ भारत की उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत के करीब 1,60,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के जरिए लोगों को उच्च रक्तचाप, मधुमेह और सामान्य कैंसर की जांच की सुविधा मिल रही है। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं की भी सराहना की जो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक माताओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि टीकाकरण और संस्थागत प्रसव में बढ़ोतरी से मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिली है। उन्होंने भारत के तपेदिक उन्मूलन, चिकित्सा उत्पादों के बेहतर नियमन और WHO को समर्थन देने के प्रयासों की भी सराहना की। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@airnewshindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2026 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से इस महीने की 14 तारीख तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया। एक रिपोर्ट।
6: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, VIP और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: ब्रिक्स सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 2 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा कि गुजरात महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है। श्री कुमार ने कहा कि वे राज्य के बूथ लेवल अधिकारियों, BLO और चुनावी साक्षरता क्लब ELC के सदस्यों से बातचीत करेंगे। श्री कुमार आज शाम अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के प्रमुख नागरिकों के साथ भारत में चुनाव विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विषय पर संवाद करेंगे।
7: गुजरात की पावन भूमि पर आने पर मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसी महान विभूतियों की जन्मभूमि भी और कर्म भूमि भी रहा है गुजरात। अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन के सदस्यों के साथ भी और गुजरात के कर्मठ बूथ लेवल ऑफिसर्स, वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स, छात्र और छात्राओं के साथ आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों में संवाद करेंगे।
3: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 270 सदस्यों वाली पूर्ण राज्य कार्यकारिणी की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को सूची में प्रमुख स्थान दिया है और उन्हें तमलुक संगठनात्मक जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तमिलनाडु में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमिलगा वेत्री कषगम TVK के नेतृत्व वाले सेकुलर सोशल जस्टिस विक्ट्री गठबंधन ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। गठबंधन ने धरपुरम से सत्यबामा और मधुरंतकम से मरगथम कुमारवेल को मैदान में उतारा है। विपक्षी DMK ने मधुरंतकम से पारदंथमन और धरपुरम से S. सुगन्या को उम्मीदवार बनाया है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। उपचुनाव के लिए नामांकन 16 सितंबर तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 17 सितंबर को होगी और 19 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि सबसे अधिक मौतें चितवन में हुई, जहां 364 लोगों की जान गई। प्रभावित क्षेत्रों से 13600 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। इस बीच भारत ने विनाशकारी बाढ़ के मद्देनजर नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है, जिसके तहत 130 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी गई है। बिहार में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है। कई नदियों का जलस्तर घट रहा है। राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: गंगा, सोन, पुनपुन, गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में कमी से राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हालात में थोड़ा सुधार हुआ है। जलस्तर में कमी के बाद प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य और तेज कर दिए हैं। पटना, वैशाली, सारण, मुंगेर, भागलपुर, अरवल समेत 14 जिलों में इस समय 40 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से पीड़ित है। विभिन्न स्थानों पर लगाए शिविरों के माध्यम से भोजन, मेडिकल सहायता और राहत सामग्रियां प्रभावितों तक पहुंचाई जा रही है। वहीं लगभग 700 ग्रामीण सड़कों के जलमग्न हो जाने से सड़क संपर्क टूट गया है। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर कुमार शैलेंद्र ने सड़कों की स्थिति पर निगरानी बनाए रखने और पानी निकलते ही इन्हें तत्काल ठीक करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग ने प्रभावित क्षेत्रों के स्कूली बच्चों की पढ़ाई के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से निरीश्री।
3: मौसम विभाग ने आज ओडिशा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। उत्तरी ओडिशा के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। विभाग ने आज मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिन के दौरान असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरलम, माहे और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखें अपडेट expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी आने की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। हालांकि ईरान लगातार परमाणु हथियार बनाने की कोशिश से इनकार करता रहा है। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से जहाजों पर किए गए सबसे बड़े हमलों के बाद आपूर्ति में और अधिक व्यवधान की आशंका जताई जा रही है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड 0.1% बढ़कर 101 अमरीकी डॉलर और 86 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। सेंसेक्स 40 अंक बढ़कर 74,804 पर, जबकि निफ्टी 12 अंक की बढ़त के साथ 23,443 पर था। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन ने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के फ्लीट कमांडर रियर एडमिरल अनीता विलियम से मुलाकात की। अधिकारियों ने दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच सहयोग और संयुक्त रूप से काम करने की क्षमता बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की नौसैनिक क्षमताओं, प्रस्तावित रक्षा खरीद और दोनों नौसेनाओं के बीच अधिक परिचालन सहयोग के अवसरों पर विचार विमर्श हुआ। दक्षिण पूर्वी चीन के जियांगशी प्रांत में तेज बारिश से हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। सुइचुआन काउंटी से 18,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज की है। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कल श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत ने महिला हॉकी जूनियर विश्व एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोके में आज भारत ने पाकिस्तान को हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई, जबकि सनिका चंद्रकांत माने, मधु सिद्धार्थ, सुप्रिया और रोशनी एंड ने दो दो गोल किए। भारत 12 सितंबर को सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से खेलेगा। अमरीकी ओपन पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में कल बेन शेल्टन का मुकाबला फ्रांसिस टियाफो से होगा। कल क्वार्टर फाइनल में 8वीं वरीयता प्राप्त अमरीकी खिलाड़ी शेल्टन ने 5 सेटों के रोमांचक मुकाबले में पिछले वर्ष के चैंपियन कार्लोस अल्काराज को हराया। 11वीं वरीयता प्राप्त टियाफो ने हमवतन अमरीकी खिलाड़ी एलेक्स मिशेलसन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में समाज सेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास, युवाओं और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में साझेदारी पर चर्चा। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और दुबई में महिला एशिया कप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत खैर मकदम करती हूँ। मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं, कार्यक्रम एक ही कलाकार में हम हर रोज आपको मिलवाते हैं एक अलग कलाकार से, एक ऐसे कलाकार से जो प्रतिभाशाली है और अपने हुनर से, अपनी प्रतिभा से उसने हर किसी के दिल पर कब्जा किया हुआ है। तो आज इसी कड़ी में हम आपको, आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे व्यक्ति को जिसने फिल्मी दुनिया में बड़े बड़े सपने बनाए, और जब वो फिल्में बनाई तो वो भी बहुत ही ज़्यादा भव्यता के साथ, और उनकी फिल्मों में रिश्तों की जो महक थी वो एक अलग तरह की होती थी। और अगर हम बात करें बॉलीवुड सिनेमा की कि उसको उन्होंने क्या दिया, तो भाई बॉलीवुड सिनेमा को दिया उन्होंने एक नया आसमान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं धर्मा प्रोडक्शन के संस्थापक, सिनेमा जगत के दिलदार और मसीहा करण जौहर के पिता यश जौहर जी को।

जी दोस्तों, कोई मिल गया और वाकई में बॉलीवुड सिनेमा को कोई मिल गया और वो कोई थे यश जौहर साहब। दोस्तों कहते हैं जो सपने हैं वो देखना बहुत आसान होता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करना, बड़े पर्दे पर पूरी भव्यता के साथ में उन सपनों को दिखाना हर किसी के बस की बात नहीं होती, और ये काम किया यश जौहर साहब ने। ये वो एक सिर्फ निर्माता नहीं थे बल्कि वो कहानियों में जान फूंकने वाले जादूगर थे। गाइड, ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रोडक्शन संभालना शुरू किया, और उसके बाद अग्निपथ, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम जैसी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी, जिनसे हर किसी ने प्रेरणा ली। और आज भी अगर कोई फिल्मी दुनिया में बनना चाहता है, निर्माता निर्देशक, तो वो उनकी इन्हीं फिल्मों से सीखता है। तो आज का ये कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित है। तो दोस्तों करते हैं इस कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में।

दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब महान बनता है या बड़ा सफ़र शुरुआत करता है तो उसकी जो शुरुआत होती है वो अक्सर छोटी छोटी गलियों में लेकिन बड़े बड़े सपने देखते हुए होती है। और बिल्कुल ऐसी ही कुछ कहानी है यश जौहर साहब की। फिल्मी दुनिया में इतना बड़ा नाम कमाने से पहले यश जौहर का जो लाइफ है वो भी बहुत स्ट्रगल से भरी हुई थी। और उनकी शुरुआत हुई लाहौर में उनकी पैदाइश से। उनका जन्म लाहौर में हुआ। विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली पहुंचा और यहाँ जौहर स्वीट्स के नाम से उनकी मिठाई की दुकान थी। उनका परिवार जब लाहौर छोड़कर दिल्ली आया तो सब कुछ छूटा। परिवार थोड़ा तंगी का सामना उन्होंने किया, लेकिन यश जौहर साहब ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से शिक्षा दीक्षा हासिल की। और उसके बाद उनकी फैमिली चाहती थी कि वो कोई सुरक्षित नौकरी लें, कोई गवर्नमेंट जॉब करें या फिर बिजनेस करें, लेकिन यश जी का जो दिल था वो धड़कता था सिनेमा के लिए। फोटोग्राफी का उन्हें जुनून था और अपने इसी जुनून को पूरा करने के लिए अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और कुछ पैसों को लेकर वो पहुँच गए बॉम्बे। बॉम्बे यानी कि मुंबई। मुंबई आकर उन्होंने न्यूज़पेपर में और पत्रिकाओं में एक फोटोग्राफर के रूप में काम करना शुरू किया। और यहीं से उनके कांटेक्ट में आए फिल्मी कलाकार, कुछ फिल्मी निर्माता निर्देशक, इन सब के संपर्क में आए और यहीं से उनके जो उनका करियर है उसमें आया टर्निंग पॉइंट। जी हाँ दोस्तों, यश जी के काम और उनके काम को लेकर डेडिकेशन को देखकर अभिनेता देवानंद जी ने उन्हें अपने बैनर नवकेतन फिल्म्स में शामिल किया। नवकेतन में आने के बाद में उन्होंने एक सहायक के रूप में वहाँ पर काम किया और उसके बाद गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी जैसी फिल्मों में उन्होंने एक सहायक के रूप में काम किया। तो लीजिए, बाकी के सफ़र को हम अभी थोड़ा विराम देते हैं और सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में ज्वेल थीफ फिल्म से ये खूबसूरत सा गीत।

0: उनकी सफ़र की शुरुआत हो चुकी थी नवकेतन से, और यहीं पर उनकी ज़िंदगी में एक और बदलाव आया। जी हाँ दोस्तों, नवकेतन फिल्म्स में वो प्रोडक्शन कंट्रोलर के रूप में काम किया। उन्होंने गाइड ज्वेल थीफ जैसी सुपरहिट फिल्मों के पीछे उन्हीं का कुशल प्रबंधन था, और उसके बाद वो संपर्क में आए सुनील दत्त साहब के। जी हाँ, सुनील दत्त साहब ने जब उनको देखा कि वो काम को लेकर कितने डेडिकेटेड हैं और ईमानदार भी हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई आप दूसरों के लिए काम करते रहते हैं, आप दूसरों के लिए काम करने के लिए नहीं बने, बल्कि अपने खुद के लिए काम करो, अपनी खुद की कंपनी शुरू करो। उनके दिए हुए इसी हौसले की वजह से 1976 में नींव पड़ी धर्मा प्रोडक्शन की। जी हाँ दोस्तों, धर्मा प्रोडक्शन 1976 में बना, और उसके बाद अग्निपथ फिल्म उन्होंने बनाई, जो कि यश जी के दिल के बेहद करीब थी। अमिताभ बच्चन की भारी और कड़क आवाज़ वाला जो एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट उसमें किया था, वो बिल्कुल नया था। वैसे यश जी जो हैं, वो अपनी जो उनकी एक शैली थी उस पर वो पूरा भरोसा रखते थे, और वाकई में वक्त ने बिल्कुल साबित किया कि यश जी की जो पारखी नज़र है वो कितनी सही थी। तब वो फिल्म अग्निपथ भले ही ना चली हो, मतलब उतना ज़्यादा उसने अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज आज के वक्त में अग्निपथ इंडियन सिनेमा की एक सबसे बड़ी क्लासिकल फिल्म मानी जाती है। लीजिए सुनते हैं उसी फिल्म से एसपी बाला सुब्रमण्यम और अलका याग्निक की आवाज़ में ये गीत।
1: मेरे जानो,
2: मुझे डर लगती है।
1: मेरे बालम,
2: तेरा भाई हमको मारती।
1: तुझे सलाम, मेरे हीरो, मेरे जानो, मेरे बालम, तुझे सलाम।
2: अय्यो कृष्णन अय्यर यम, ये के इतने सारे नाम।
1: तूने क्यों मुझे बचाया?
2: बस अपना फर्ज निभाया।
1: क्या तू कुछ भी कर जाता?
2: कर जाती।
1: कर जाती नहीं, कर जाता बोलो।
2: अच्छा अच्छा, कर जाता।
1: मेरे लिए मर जाता?
2: हाँ मर जाता।
1: ओ माय गॉड, यू आर इन लव।
2: हाँ यू आर इन लव।

यश जौहर साहब फिल्मों को जब बनाते थे उस वक्त सेट पर कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती थी। हर छोटे बड़े क्रू मेंबर का ध्यान रखना बिल्कुल अपने परिवार की तरह वो अपनी जिम्मेदारी समझते थे। और जब उनके बेटे करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है से फिल्म निर्देशन में कदम रखा तो यश जी ने प्रोडक्शन का जो लेवल था वो सेट पर शूटिंग नहीं बल्कि किसी फेस्टिवल के जैसा किया। जी हाँ दोस्तों, सेट पर काम करने वाला हर इंसान के लिए वो एक निर्माता से ज़्यादा पिता के समान थे। एक पिता की तरह वो ध्यान रखते थे हर एक क्रू मेंबर का। और उनका जो ये अपनापन था, ये जो रिश्तों को गर्माहट देने का जो तरीका था यश जी का, वो एकदम अलग था। और शायद यही वजह है कि वही गर्माहट उनकी फिल्मों में भी दिखाई देती है। लीजिए सुनते हैं दोस्तों एक और खूबसूरत सगी दुनिया की फिल्म से।

तो आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं यश जौहर साहब के बारे में। हमारे साथ जुड़े हमारे कुछ श्रोता जिनके संदेश हम शामिल कर लेते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। वस्तुपुरा मऊ से हमारे साथ जुड़े हैं मजहर अली अंसारी, राजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से जुड़े हैं आज़ाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल आज़ाद। अगला जो संदेश हम तक आया है उसको भेजने वाले हैं धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया आयान बाबू। इशाक मोहम्मद जी हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, इनके साथ हैं खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा के साथ। अगला संदेश हम तक आया है और उसको भेजने वाले हैं कराची से अमर रमेश कुमार खत्री टेलर, मास्टर कृष्ण लाल खत्री और शंकर गुल शर्मा बेरानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भवरपुर बसना से राधेश्याम देवांगन, श्रीमती चंपा देवांगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा जुड़े हैं हमारे साथ और बिहारी कॉलोनी शादरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तुलसी मस्कीन, रीना मस्कीन जी के साथ, आशीष राजा, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित और केशु रिदान खुराना हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ आपने कार्यक्रम का आगाज़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चिरमिरे कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव और ऋषभ सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवा गो प्रेम कपिल शिवांश संगीता जी हमारे साथ जुड़े हैं जिला पश्चिम सिंह भू चाई बासा झारखंड से। गावना थाना पंजाब से अरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी और सीता गीता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमारे साथ जुड़े हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक जी के साथ में। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन से और शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हीरामणि वर्मा जी जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा से और नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुधार, मनोज हिमांशु सुधार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये अगला संदेश आया बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन और अपार ढींगिया का। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गोड जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान छिपा और पूजा परिहर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लिखते हैं कि इन्हें दोस्ताना मुकद्दर का फैसला, गुमराह, कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम जो है वो फिल्में इन्हें बहुत पसंद है। और अगला संदेश आया है सुदर्शन मुखी अनिता जी का सिमरन मुखी के साथ शांतिनगर सोनीपत से और ये अगला जो संदेश है वो हम तक पहुंचाया है प्रकाश वर्मा प्रिंस और निखिल यशस्वी वर्मा जी ने और छत्तीसगढ़ पलारी से। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं हम तक देवशंकर तामुरिया जी, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, राधिका, प्रभा देवी तामुरिया के साथ और इनके साथ हैं पोता मास्टर अल कबीर और ये डोंडी लोहार बालोद छत्तीसगढ़ से उन्होंने हम तक ये संदेश पहुंचाया है। दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार और जो वक्त का पहिया वो बहुत तेज़ी से दौड़ता जा रहा है, पता ही नहीं चला कब ये वक्त हमारे अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। और आज हमने इस कार्यक्रम में याद किया एक ऐसे महानिर्माता को जिन्होंने हमें सिखाया कि सिर्फ पर्दे पर नहीं बनती हैं फिल्में बल्कि वो सीधे दिल में उतर कर करोड़ों करोड़ों दिलों पर राज करती हैं। यश जौहर साहब की जितनी भी फिल्में बनी हैं उनके संस्कार, सादगी और सिनेमा के लिए उनका जो निस्वार्थ प्रेम था वो उनकी फिल्मों में दिखाई देता है और भारतीय सिनेमा के पन्नों में उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। दोस्तों अब चलते चलते यश जी के जिंदगी के दर्शन को समेटते हुए मैं यही कहूँगी, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं बल्कि सपने तो वो हैं जो हमें सोने ही ना दें और हम उन सपनों को पूरा करें जैसे कि यश जी ने किया। तो दोस्तों अब मैं प्रीति आपसे चाहूँगी इजाज़त, फिर से मिलने के वादे के साथ मैं लूँगी अनुमति, फिर आएंगे किसी और कलाकार के साथ। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए उन्हीं की एक और खूबसूरत सी फिल्म से, सोनू निगम की आवाज़ में ये खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का। ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और वक्त हुआ है हम सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज का। मैटिनी मेलोडीज, जिसमें हम वो सुनहरे दौर को याद करते हैं, उस गोल्डन एरा को याद करते हैं, जिस एरा के गीत आज भी, चाहे बच्चा हो या बड़ा, चाहे उस वक्त का व्यक्ति हो चाहे इस वक्त का हो, हर किसी को पसंद आते हैं वो गोल्डन एरा के सॉन्ग। तो वही गोल्डन एरा को हम याद करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में हम अपने थोड़े से सफ़र को, जो हमारा एक सफ़र कुछ दिन पहले चला था, उसको थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। यानी कि जब मैंने आपसे पिछले कार्यक्रम में बात की थी गोल्डन एरा की रोमांटिक फिल्मों के बारे में, उनके रोमांटिक सॉन्ग्स के बारे में, और उस वक्त की मोहब्बत कितनी अजीब थी, यही बात हुई थी ना, है ना, जब प्यार जज्बातों की खुशबू से महकता था जी, जब हाथ थामने भर से हमारे दिल की धड़कनें तेज हो जाया करती थी, और जब बारिश की पहली बूंद के साथ एक ही छाते के नीचे दो दिल हमेशा के लिए एक हो जाते थे। नाजुक निगाहें, घूंघट की ओट, खामोश इशारे, और लता जी, रफी साहब, आशा जी, किशोर जी और हेमंदा की मखमली आवाजों का खूबसूरत सा जादू। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने दिल के दरवाजों को खोल देते हैं और चलते हैं उसी सफर पर, उसी हसीन राह पर, जहाँ हवाओं में आज भी वही पुरानी चाशनी और नगमों में वही मिठास भरी है। जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, दीवाना हुआ बादल। वाकई में इस गाने को सुनकर ना बादल के साथ साथ हम भी दीवाने हो गए। और सबसे ज़्यादा इस गीत में अगर हम देखें, खूबसूरती थी कि सबसे पहले तो बंद कमरा नहीं था, बारिश की बूंदें नहीं, कोई भी सीरियस शायरी का नहीं था इसमें। और भाई ये तो था पूरी तरह से एक ऐसा गीत जो कि खूबसूरत वादियों में बनाया गया। कश्मीर की डल झील में तैरता हुआ शिकारा, ढलती हुई शाम, वाह वाह वाह। और ऊपर से खूबसूरत शर्मिला टैगोर जी, और वो भी कश्मीरी पोशाक में, वाह, बहुत ही खूबसूरत ये गाना और इतना रोमांटिक गाना। और उस पर सबसे बड़ी बात यह कि शम्मी कपूर साहब ने जिस मस्त मौला अंदाज में इस गीत को निभाया है, जिस तरह से उस गीत में उन्होंने अपना अंदाज डाला है, वाकई में वो एकदम ही अलग था। क्योंकि मोस्टली जो भी रोमांटिक सॉन्ग्स होते थे उसमें नायक थोड़ा शर्माते, थोड़ा झिझकते थे कोई अपनी प्रेमिका के सामने, वहीं शम्मी कपूर ने पूरी दीवानगी के साथ में अपने इस गीत में पूरी एनर्जी अपनी डाल दी है। और ऊपर से इसमें जो ओपी नैयर साहब का संगीत है ना, बस उसने तो और भी चार चांद लगा दिया। और उसके ऊपर रफ़ी साहब की रेशमी आवाज़, वाह, मतलब एकदम ही खूबसूरत। और इन सब चीज़ों ने मिलकर उसको और भी चार चांद लगा दिए। तो इसी तरह से एक और खूबसूरत सा रोमांटिक सॉन्ग सुनते हैं हम, उसी हमारे गोल्डन इरा से। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये गीत सुन कर के ना बहुत चीज़ें याद आएंगी, और वो गीत में आप ऐसा झूम जाएंगे कि बस पूछो नहीं। बताइएगा ज़रूर कि आपको हमारे गीत कैसे लग रहे हैं।

आगे में कितनी अजीब सी दास्तान है ये, है ना। और इस गीत का रोमांटिक एंगल भी एकदम अलग है। सोचिए एक जहाज में चारों तरफ रोशनी है, सब लोग हाथ में जाम लेके खड़े हैं और सबके बीच में खड़ी है मीना कुमारी। और इस गाने का जो असली रोमांटिक एंगल है वो इस तरीके से दिखाया गया है ना कि वाकई में कमाल का है। मतलब एक तरफ वो इंसान जिससे आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो किसी और का हाथ थामे हुए हैं, यानी कि जो आपका प्यार है वो किसी और के साथ है। और उस पल में भी आप अपने प्यार को खो देने के गम में भी आप अपने प्यार की खुशी में खुद को भूल गए हैं। वाकई में बहुत खूब, मतलब उस वक्त के गानों में जो पाकीज़गी थी वो वाकई में कमाल की थी। तो चलिए दोस्तों, अपने इस गोल्डन इरा की मोहब्बत के सफ़र को थोड़ा और आगे चलाते हैं और एक थोड़ा अलग से रोमांटिक एंगल को आपको दिखाते हैं, सुनवाते हैं और सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत। इस गीत के बारे में भी बात करेंगे इस गीत के बाद।

जी दोस्तों, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से ये खूबसूरत संगीत, किशोरदा और मधुबाला जी की बेमिसाल जुगलबंदी का ये खूबसूरत सा नगमा। और ये एक ऐसा नगमा जिसमें मतलब सोचिए ना, चलती गाड़ी में दोनों एक दूसरे को छेड़ते हुए जा रहे हैं, बच्चों की तरह से बेफिक्री के साथ वो गाते हुए जा रहे हैं, है ना, एक अलग ही चीज़ रोमांस की। वैसे अगर हम बात करें तो ये वाली जो फिल्म है, ये फिल्म ही एक अलग तरीके का मतलब रोमांस का एक अनोखा अतरंगी तालमेल था जो इस फिल्म में दिखा, जो कि उस वक्त के सिनेमा में पहले कभी भी देखने के लिए नहीं आया था। क्योंकि एक तरफ थी मधुबाला जी की वो मासूमियत और वो शर्मीली सी मुस्कान, वहीं दूसरी तरफ किशोरदा की वो पागलपंती और उनकी अजीबो गरीब आवाज़ें निकालने की बातें। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत फिल्म, खूबसूरत गीत। तो चलिए चलते हैं अब अपने अगले सफर पे और सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत।

1960 की बेहतरीन फिल्म सदाबहार फिल्म काला बाजार से ये एक बेमिसाल गीत आपने सुना है ना। और 1960 के दशक में रोमांस को एक नया मिजाज, एक नई उड़ान, एक नई कोशिश, एक नई कशिश देने की कोशिश इस गाने से की गई। याद कीजिए ना वो मंजर जहां पहाड़ों की हरियाली, दूर तक फैला हुआ आसमान और हाथ में एक गाइड बुक लिए हुए देवानंद साहब का वो सिग्नेचर अंदाज और साथ में वहीदा रहमान जी। और गाने में हीरो सीधे सीधे बात नहीं कर पाता अपनी महबूबा से, बल्कि वो चांद और तारों को अपना साक्षी बनाता है और उनसे अपनी बातें करता है, है ना, एक अलग तरह का अंदाज। बिल्कुल ये अंदाज, ये तरीका प्रयोग किया गया फिल्म काला बाजार में। और ऊपर से एसडी बर्मन साहब का संगीत, मोहम्मद रफ़ी साहब की खूबसूरत आवाज़ ने तो इस गीत में और भी चार चांद लगा दिए। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने एक और अगले सफ़र पर।

0: ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत 1964 की मास्टरपीस फिल्म वो कौन थी से है ना। कितना खूबसूरत ये गीत, उस मंजर को याद कीजिए जहाँ पर रात का गहरा सन्नाटा, धुंधला सा माहौल और मनोज कुमार के सामने खड़ी बेहद खूबसूरत साधना। और इस गाने में प्यार पूरी तरह से है चारों तरफ, लेकिन साथ ही दिल के किसी कोने में ये डर भी लगा हुआ है कि शायद ये पल आखिरी हो। मदन मोहन साहब के संगीत की, संजीत की और लता जी की आवाज, वाकई में शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। रोमांस केवल दो शरीर का साथ आना नहीं, बल्कि ये वक्त की वो मिन्नत बन जाता है। ये इस गीत में दिखाया गया है कि किस तरह से वो पाकीज़गी, मोहम्मद की पाकीज़गी इस गीत में दिखाई गई है ना। वाकई में बहुत खूब रही। और अभी जो गीत आपको हम सुनवाने वाले हैं ना, वाकई में वो भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत है, कह सकते हैं नहीं बल्कि है ही। और इस गीत में जो नज़ाकत है, जो मिठास है, वो वाकई में बहुत ही अलग है। 1961 की क्लासिकल फिल्म, हम दोनों से एक रोमांटिक गीत ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। और वाकई में इस गीत में साधना जी जिस तरह से जाने की इजाज़त मांगती हैं देवानंद साहब से, जिस नज़ाकत के साथ और हक से उनका हाथ थाम कर मिन्नतें करती हैं, बहुत ही प्यारा, एक अलग सुकून देने वाला, बहुत ही प्यारा सा जो एहसास है, नटखटपन है, मीठापन है, वो इस गीत में दिखाया गया है। वाकई में बहुत खूबसूरत पल है। और इसी तरह से अब मैं भी आप सभी से अनुमति चाहूँगी इस कार्यक्रम की समाप्ति की। छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए फिल्म हम दोनों से ये खूबसूरत सा गीत मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में। लेती हूँ अनुमति, नमस्कार।
1: अभी न जाओ छोड़ कर।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम और दो मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम अंदाज़े नज़र। इस प्रोग्राम के तहत हम अदबी, समाजी और सियासी मौजूआत के साथ साथ अखलाकी मौजूआत पर माहिरीन के ख्यालात से आपको आगाह कराते हैं। मौजूदा दौर बहुत पुरआशोब है। दुनिया के हर हिस्से में तशद्दुद और बेरारवी के साथ साथ कत्ल गारतगरी आम हो रही है। ऐसे में सहाफियों, अदीबों और शायरों की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और समाजी जिम्मेदारियां कैसी होनी चाहिए, इन्हीं सवालों के साथ आज इस मुबाहिसे का मौजू है, क्या अदब ज़रूरी है। जी हाँ सामईन, अदब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि अदब हमारी ज़िंदगी पे असर अंदाज होता है। अदब की कई शक्लें हैं, समाज की शक्ल में हमारे सामने आता है, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक दूसरे के साथ हमारे जो मरासिम है उसकी शक्ल में अदब नज़र आता है। हम फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, ड्रामा देखते हैं, उसमें अदब नज़र आता है। हम शायरी सुनते हैं, शायरी करते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कहानियाँ बुनते हैं, हर जगह हमें अदब नज़र आता है। और इन अदब का हमारे ऊपर यानी समाज के ऊपर क्या असर पड़ता है, समाज अदब से क्या अखज़ करता है और अदब समाज से क्या लेता है, इन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मौजू है, क्या अदब ज़रूरी है। तो लीजिए समाअत कीजिए इस मौजू पर ये कारामद गुफ्तगु। हमारे शुरका हैं जनाब क़ुरबान अली, जनाब मासूम मुरादाबादी, प्रोफेसर अनवर पाशा और निजामत के फरायज अंजाम दे रहे हैं डॉक्टर शफी अय्यूब। तो लीजिए समाप्त कीजिए।
2: हिंदी के महान साहित्यकार कथाकार थे राम वृक्ष बेनीपुरी। एक बहुत ही मशहूर निबंध है आपका, ललित निबंध गेहूं और गुलाब। उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, कालम निगार और फिल्मकार ख्वाजा अहमद अब्बास का मशहूर अफसाना है गेहूं और गुलाब। उसी नाम से उनका अफसानवी मजमुआ भी है गेहूं और गुलाब। इस मौजू पे बहुत बहस होती रही है, जिंदगी के लिए गेहूं जरूरी है या गुलाब जरूरी है। इस बहस से यह सवाल भी निकला और ये सवाल इसी में पोशीदा है कि हमारी जिंदगी के लिए अदब की जरूरत है भी या नहीं। अदब, जिसे हिंदी में साहित्य और अंग्रेजी में लिटरेचर कहते हैं, उसे हमें क्या मिलता है, अदब क्यों जरूरी। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में इल्म अदब की दुनिया से, सहाफत की दुनिया से तीन अहम शख्सियात मौजूद हैं। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, मुल्क के मुमताज नक्काद और दानिश्वर प्रोफेसर अनवर पाशा, सहाफत की दुनिया में गुज़िश्ता 35-40 वर्षों से अपनी मनफरद शनाख्त कायम करने वाले, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसां तौर पे मकबूल जनाब क़ुरबान अली, उर्दू में सहाफत के मौजू पे कई अहम किताबों के मुसन्निफ, मशहूर कालम निगार, कई अहम उर्दू अखबार के मुदीर जनाब मासूम मुरादाबादी के साथ मैं शफी अय्यूब आज गुफ्तगू करते हैं अदब क्यों जरूरी। सबसे पहले शुरू करते हैं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में उस्ताद जो अदब पढ़ाते हैं, प्रोफेसर अनवर पाशा साहब से, ये जो बुनियादी सवाल है कि क्या अदब जरूरी है भी या नहीं।
3: जी शुक्रिया। पहले तो मैं ये वाजे कर दूं कि गेहूं और गुलाब जिस कंटेक्स्ट में ये कहानी लिखी गई थी और जो आपने ख्वाजा अहमद अब्बास का जिक्र किया और आपने राम वृक्ष बेनीपुरी का जिक्र किया, उनके हवाले आपने दिए, उनके मजमून का हवाला आपने दिया, वो कंटेक्स्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है
2: जी।
3: ये वो तनाजुर है जब अदब और ज़िंदगी के हवाले से मबाहिसे सरस चल रहे थे। जाहिर है कि उस वक्त अदब बराए अदब और अदब बराए ज़िंदगी की बहस थी, उस कंटेक्स्ट में वो कहानी भी लिखी गई थी और ये राम वृक्ष बेनीपुरी का जो मजमून है जिसका जिक्र आपने किया वो लिखा गया था। लेकिन ये अदब ज़रूरी क्यों
2: जी,
3: ये उससे कहीं बड़ा सवाल है
2: जी।
3: अदब और ज़िंदगी, यहाँ यह है कि अदब एज सच, अदब का जो वजूद है और ख़ास तौर से आज के तनाजुर, ये सवाल बहुत अहम हो जाता है कि आज जो टेक्नोलॉजी का दौर है
2: जी,
3: साइंस के फ़रोग का जिस तरह का दौर है, आईटी में जिस तरह की तब्दीलियां, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है हमारी, उसमें जिस तरह से रोज़ बरोज़ इनकलाबात जिस तरह से आ रहे हैं, उस तनाजुर में ये महसूस किया जा रहा है कि क्या अदब इस तरह के अहद में जब ज़िंदगी बिल्कुल मशीनी बन के रह गई है, जब साइंस और टेक्नोलॉजी जिसकी तरफ हर आदमी दौड़ रहा है, एक रेस है उसमें, हर आदमी दौड़ रहा है, आदमी मशीन बना हुआ है, और अदब एक तरह से साइडलाइन होता जा रहा है। साहित्य लिटरेचर अब सबसे आखिरी तरजीह में से है, अदब अब किसी की पहली तरजीह नहीं है। अगर आप दानिशगाहों को देखें तो दानिशगाहों में जो डिसिप्लिन्स, जो उलूम, जो मजामीन वहाँ ऑफर किए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, उनमें आप देखेंगे कि अदब सबसे पिछले पायदान पे एक तरह से है, सबसे बिल्कुल लिस्ट प्रायोरिटीज में अदब है, सबसे कम तरीन जो तरजीहात में से है अदब। जिसको कहीं कुछ नहीं मिला वो अदब की तरफ आ गया, लिटरेचर की तरफ आ गया, लैंग्वेज की तरफ आ गया। तो इस तनाजुर में अगर आप देखें तो अदब लगता है कि अब हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है, या अदब का पढ़ना पढ़ाना, अदब तख्लीक करना गोया एक तरह से कार्य लाहासिल है, बेकार है। इससे जो संजीदा लोग हैं, संजीदा जहन रखने वाले, माशरे को, इंसानी जिंदगी और कायनात को संजीदगी से देखने वाले जो अफराद हैं, वो उनके लिए बहुत ही एक तशवीश का एक सबब है, क्योंकि अदब हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है कि अदब अगर ना हो हमारी जिंदगी का हिस्सा, न बने। अदब क्या है? माशरे का तर्जुमान होता है, फर्द का भी तर्जुमान है, माशरे का भी तर्जुमान है। तो उस तरह से अगर आप देखें कि जिंदगी में अदब की हमारी अहमियत क्या है, यानी अदब हम क्यों पढ़ते हैं, अदब हम क्यों लिखते हैं, आप ये सवाल कर सकते हैं कि एक फर्द अपने अफकार, अपने तस्वुरात, अपने ख्यालात का इजहार करता है। बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि अदब तो एक फर्द का इजहार है, एक फर्द वाहिद का इजहार है, एक फनकार का इजहार है, लेकिन वो इस पहलू को भूल जाते हैं कि वो फनकार इसी माशरे का हिस्सा होता है, और उस माशरे के वो तमाम जो लवाजमात हैं उससे उसका एक बड़ा गहरा रिश्ता होता है, तो उन सब के साथ वो जी रहा होता है। तो वो जब इजहार करता है अपना, वो जाती इजहार ही क्यों ना हो, अपनी जात के हवाले से ही वो इजहार क्यों नहीं कर रहा हो, वो इजहार एक तरह से इज्तमाई इजहार का मजहब भी बन जाता है, क्योंकि वो उसी माशरे में जी रहा होता है। तो जब हम अदब की बात करते हैं, अदब के वजूद की बात करते हैं, अदब की अहमियत की बात करते हैं, अदब क्यों की बात करते हैं, तो जो जहन में सबसे पहले सवाल आता है कि आखिर हम अदब जब पढ़ते हैं तो हम क्या हासिल करते हैं, एक कारी के तौर पर, एक सामे के तौर पर, और एक तख्लीकार के तौर पर। तख्लीकार जब लिखता है तो उसके सामने भी कुछ मकासद होते हैं, वो किसी मकसद को पेश नजर रख करके अदब तख्लीक करता है, बेमकसद अदब नहीं हो सकता, ऐसी कोई लकीर दरमियान में नहीं खींची जा सकती कि ये अदब मकसदी अदब है और ये जो है गैर मकसदी अदब है, बगैर मकसद के अदब की तख्लीक मुमकिन ही नहीं। तो हर अदीब एक मकसद के तहत अदब तख्लीक करता है, कारी भी जब उसे पढ़ता है तो उसका भी एक मकसद होता है। हर तरह के अदब को हर कारी नहीं पढ़ सकता, हर कारी का अपना अलग ज़ौक होता है। बाज़ कारी ऐसे होते हैं जिनकी दिलचस्पी सिर्फ शायरी में, अदब के सिर्फ एक पहलू शायरी में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ नावल पढ़ने में, बाज़ लोगों की दिलचस्पी सिर्फ अफसाना पढ़ने में है। तो जाहिर है कि उसी तरह से और भी दीगर असनाफ की तरफ है। तो ये जो ज़ौक है लोगों का, ये ज़ौक क्या है, इस ज़ौक के तकाजे क्या हैं, अब अदब तख्लीक करने का ज़ौक हो या अदब पढ़ने का ज़ौक हो, ये हमारी जो फिक्र है, हमारा जो जज्बा है, हमारे जो एहसास हैं, या हमारी जो जमालियाती एक कहने की एक ज़रूरत है। जमालियात इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा अंसर है, बहुत अहम अंसर है। हम एस्थेटिक्स को, जमालियात को अलग रख करके इंसान का तस्वीर नहीं कर सकते, इंसान जमालियात के बगैर जी नहीं सकता। उसकी अपनी जो पसंद और नापसंद है, और जो खूबसूरती है दुनिया की, कायनात की, ज़िंदगी की, गिरदोपेश की, वो उसकी तरफ फितरी तौर पर मायल होता है, और उस खूबसूरती में इजाफा भी करता है अपनी फिक्र से, अपने एहसास से, अपने जज्बात से। तो अदब को अगर आप पढ़ते हैं तो जाहिर है कि अदब पढ़ना इसलिए ज़रूरी है, और अदब की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है कि अदब हमारी फिक्र को सैकल करता है, हमारे जमाल को सैकल करता है, उसको संवारता है, और एक बेहतर इंसान, एक बेहतर हिस्सियत वाला इंसान बनने में अदब मदद करता है।
2: कुरबान अली साहब, आप तो सहाफ़ी होने के साथ साथ एक मुसन्निफ़ भी हैं, कई अहम किताबें आपने लिखी हैं। प्रोफेसर पाशा जो बात कह रहे हैं कि आज हमारी तरजीहात बदल गई हैं शायद, और अदब जो है वो बहुत पिछले पायदान पर है, क्या भी इतफ़ाक़ रखते हैं? दानिशगाहों के हवाले से आपने इजहार ख्याल किया, आपकी क्या राय है?
4: मैं अनवर पाशा साहब से थोड़ा सा इतफाक़ नहीं करूँगा कि चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, लेकिन हम इसी दौर में ये भी देख रहे हैं कि अदब की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे वो सहाफ़त हो, चाहे वो पार्लियामेंट की डिबेट्स हों, चाहे वो किसी हेड ऑफ स्टेट का एड्रेस हो, उसमें भी हम ये देखते हैं आमतौर पे कि शेर व शायरी और अदब का सहारा लिया जाता है। और अभी गुज़िश्ता कुछ बरसों में हमने ये देखा कि

0: उर्दू के बारे में ये ख्याल किया जा रहा था कि उर्दू ख़त्म हो चुकी है
1: जी
0: और उसकी कोई कलीदी हैसियत नहीं रह गई है, लेकिन इसी शहर में जब रेख्ता के प्रोग्राम हुए तो लाखों वो लोग जो उर्दू से, उर्दू स्क्रिप्ट से
1: जी
0: नावाकिफ़ थे,
1: जी
0: वो उसमें आए, क्योंकि और उनमें नौजवान ख़ास करके नॉन
1: हाँ
0: मुस्लिम, तो उनको ये लगा कि उनकी इजहार मोहब्बत का इससे बेहतर मीडियम शायद कोई और नहीं।
1: नहीं।

0: फिल्म में इस्तेमाल किया गया है इसको, और कई बार रिपीट किया गया है
1: जी
0: इस शेर को, और वो बहुत कामयाब फिल्म मानी जा रही है अभी। तो अदब का जो सिलसिला है वो लगता ये है कि हम एक जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं वो बहुत ही
1: जी
0: एक मसनूई सी दुनिया है, लेकिन चूंकि अदब इंसान की रूहानी जरूरत है
1: जी
0: तो इसलिए वो कभी शायद खत्म हो नहीं पाएगा, उसका तरीका बदल सकता है।
1: जी
0: क्योंकि आप देखें पब्लिकेशन किसी भी जबान का लें आप, उसमें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू और तो जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें खूब शायरी हो रही है, खूब अदब छापा जा रहा है, खूब बिक रहा है, और वो लोगों की रोजी रोटी का बायस भी बन रहा
1: जी
0: है। और आप यहाँ हिंदुस्तान को छोड़कर के पूरी दुनिया में देखिए, ज़्यादातर लोग जो हैं उनको कभी ना कभी ज़िंदगी के किसी हिस्से में अदब की ज़रूरत महसूस होती
1: कुरान साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि शायद अदब जो है वो कालीब बदल रहा हो। आपने सियासतदानों का जिक्र किया। मासूम साहब, मुझे याद है कि सियासतदानों के हवाले से हमारे एक साबिक वजीर आजम ने पार्लियामेंट में ये शेर पढ़ा था कि कभी शाख व सब्जा वो बर्क पर, कभी गुंचा वो गुल बुखार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ मेरा हक है फसले बहार पर। ये शेर मुरादाबाद से आया था, जिगर मुरादाबादी का शेर है और आपका शहर भी मुरादाबाद है। तो कि इसी हवाले से हम अदब के इस बदलते तनाजुर में मासूम मुरादाबादी की राय भी जान लें।
2: देखिए, जहाँ तक अदब का ताल्लुक है और उसकी ज़रूरत का ताल्लुक है, इसके दो पहलू हैं।
1: जी
2: एक पहलू तो यह है कि आज हम जिस सारिफ समाज में ज़िंदा हैं
1: जी
2: उसमें हर चीज़ को एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा जाता है
1: जी
2: कि जो कुछ तख्लीक हो रहा है वो एक प्रोडक्ट के तौर पर हमारे सामने आता है कि ये सारफियत है और ये
1: जी
2: एक ऐसा समाज है जिसमें सिर्फ पैसा कमाना जो है ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है, जिसका
1: जी
2: जिक्र अभी अनवर पाशा साहब ने भी
1: जी
2: किया। लेकिन अदब जहाँ से तख्लीक होता है, जहाँ से इसके सोते फूटते हैं,
1: जी
2: वो कौन लोग हैं जो अदब तख्लीक करते हैं? वो समाज के वो लोग होते हैं जो बहुत हसास होते हैं,
1: जी
2: जिनकी निगाह बड़ी बारीक भी होती है और जो अपनी सोच का दायरा बहुत वसी रखते हैं। वो महज इसको इस चीज़ से नहीं नापते कि उन्हें कोई फन पारा या शहपारा तख्लीक करने का मुआवजा क्या मिल रहा है।
1: जी
2: खासतौर से हम जिस जबान में काम करते हैं,
1: उससे बेनियाज होकर वो अदब तख्लीक कर रहे हैं।
2: तो आप ये देखिए कि चाहे हमारा क्लासिकल लिटरेचर हो,
1: जी
2: चाहे और दूसरा पिछले ज़माने का, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, चूँकि आज का आज जो अदब तख्लीक हो रहा है, ज़्यादातर हमारे जो लिखने वाले हैं वो अदब तख्लीक करने के बजाय ख़ुद को तख्लीक करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पॉपुलर लिटरेचर है हमारा,
1: जी
2: उसकी मकबूलियत ने जो रिकॉर्ड कायम किए, चाहे वो जासूसी दुनिया हो,
1: जी हाँ
2: चाहे वो दूसरी चीज़ें, लेकिन उसके मुकाबले में आज जब आप देखिए, आपको रिसाला उठा के देखिए, उसमें कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अदब के दायरे में आती हैं,
1: जी
2: कोई तख्लीकियत उसमें नहीं होती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में जो कशाकश है, जो
1: जी
2: पेचीदगी है और जो परेशानियाँ और हंगामा आराइयाँ हैं, इंसान सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िंदगी कशाकश से परेशान है
1: जी
2: और वो ये सोचता है कि इससे कैसे पनाह हासिल की जा सके। एक शख्स है आयज़ुल क़रनी, अरबी का एक अदीब
1: जी
2: है,
1: जी
2: उसने एक किताब लिखी ला ताहज़नू, ये कुरान का एक
1: जी
2: वो
1: हाँ
2: है, उसका उर्दू तर्जुमा होता है गम ना करें। वो किताब उर्दू में छपी,
1: जी
2: मैं समझता हूँ कि वो बेस्ट सेलिंग किताब है इस वक्त, गम ना करें। वो एक
1: जी
2: गतरीफ शहबाज नदवी ने उसका तर्जुमा किया।
1: जी
2: वो ये बताता है अदब के हवालों से, शेर के हवालों से और ज़िंदगी की मुख्तलिफ रवैयों के हवाले से कि इंसान जो सबसे ज़्यादा गम में मुब्तला है, उसकी उसने तर्दीद की है कि इंसान को गम नहीं करना चाहिए, और मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हैं। और ऐसी गज़ब की उसकी सोच है कि मैंने जब वो किताब पढ़ी तो
1: जी
2: मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इंसान की ज़िंदगी में रंजो गम जो है ये बिल्कुल फजूल चीज़ है, क्योंकि उसके कंट्रोल में कोई चीज़ है नहीं।
1: जी
2: जो कुछ होता है वो कुदरत की तरफ से होता है और कुदरत ही चीज़ों को क्रिएट करती है, वही उनको सॉल्व करती है।
1: वो एक तरह इलाज भी कर रहा है, मुआलिज है आपका
2: इलाज भी
1: अदीब
2: कर
1: जो है
2: रहा
1: वो
2: है
1: मुआलिज है, अदब के जरिए
2: और
1: इलाज भी
2: अदब
1: कर
2: के
1: रहा है।
2: हवालों से ही कर रहा
1: बिल्कुल
2: है।
1: जी हाँ
2: तो ये इसका एक पहलू है। तो हमें इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अदब ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी
1: जरूरी
2: है,
1: है। वो
2: इस
1: एक
2: पर
1: ये अब
2: गौर
1: तक
2: करना
1: अपने
2: चाहिए।
1: प्रोफेसर अनवर पाशा से बात की, कुर्बान अली साहब की बात सुनी, मासूम मुरादाबादी साहब की बात सुनी, ऑल इंडिया रेडियो के इस बहस में कि अदब क्यों जरूरी। इतनी बात तो वाजह है कि अदब जरूरी है, और अगर नई नस्ल में किसी भी वजह से अदब से दूरी हो रही है या अदब नहीं पढ़ना चाहते हैं या अदब कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई सर्वे हमारे पास हो तो यकीनी तौर पर हमें रागिब करने की भी जरूरत है कि नई नस्ल भी अदब पढ़े। अदब का एक कमाल यह भी है कि वो हमारी तहजीब करता है, नज़रो दिल को वसअत देता है, हमारे रवैयों को मोतदिल बनाता है, हमारी रूह और फिक्र को बालिदगी अता करता है। गोया ادب کا مطالعہ ہمیں آدمی سے انسان اور انسان سے اور بہتر انسان بناتا ہے، اور اسی لیے

0: अदब को तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, प्रोफेसर पाशा ख़ुद एक बहुत ही मुमताज़ यूनिवर्सिटी में ज़बान व अदब के उस्ताद हैं, यूनिवर्सिटी के निसाब में न सिर्फ शायरी, नावल, अफसाने और गैर अफसानवी जो अदब है वो भी शामिल है, खाके हैं, उनसे हमें उसात मिलती है। पाशा साहब, अदब पढ़ाते हुए जब तालिब इल्मों से जो रुझान सामने आते हैं, उनके जो तासुरात सामने आते हैं, उसकी क्या नवीयत होती है?
1: इससे कबल के आपके सवाल का जवाब दूं, मैं एक गलत फहमी का इजाला कर दूं। कुरबान भाई ने एक बात कही कि शायद मैंने अदब को दरकिनार कर दिया और अदब की अहमियत से इनकार किया। मैंने अपनी गुफ्तगू में अदब की अहमियत से इनकार नहीं किया, मैंने इस हकीकत का इजहार किया है कि अदब आज की जो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, साइंस का जो दौर है, तो उसकी रीच जो है वो महदूद होती जा रही
0: जी।
1: उसकी तरफ लोगों की जो रगबत है वो महदूद होती जा रही, कम होती जा रही। अदब अपने आप में एक ऐसी चीज है कि जो इंसान की जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको आप निकाल नहीं सकते इंसान की जिंदगी से, इंसान की तखलीक में। तखलीक सिर्फ ये नहीं कि हम पैदा हो जाते हैं, इंसान बनने में। अब देखते हैं कि बच्चा पैदा होता है, जब वो 3-4 साल का होता है तो उसकी अम्मा या उसकी दादी या उसकी नानी, पहले जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, वो बच्चों को कहानियां सुनाती थी, वो उनको नज़में सुनाती थी, जो आज भी स्कूलों में जब जात बच्चों को डालते हैं प्ले स्कूल में या दूसरे, तो वहाँ राइम्स उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है। सबसे पहले छोटी छोटी कहानियाँ, जो हमारे यहाँ पुरानी जो किस्से कहानियाँ होती थी, हकायतें होती थी, चाहे पंचतंत्र के तर्जुमे उससे हुए हों, ये तो बदेश के तर्जुमे वगैरह हुए, उन सब पे उन्हीं पर बेस्ड अलग अलग कहानियाँ बनानी लोगों ने अलग अलग अपने तरीके से, वो पढ़ने को दिया जाता है। तो गोया अदब तो इंसानी जहन की तख्लीक में, उसकी तश्कील में, बच्चों की शख्सियत की तामीर में एक बड़ा रोल प्ले करता है। अदब का रोल बहुत कलीदी है हमारी जिंदगी में, उसकी अहमियत तो कम नहीं कह सकता। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि अदब को लोगों ने बिल्कुल एक तरह से लास्ट तरजीहात में डाल दिया है, उसके पढ़ने का जो अमल पहले सिलसिला जो था वो धीरे धीरे।
0: तो क्या हमें तरगीब देना चाहिए नई नस्ल की कि वो
1: देखें कि प्रेमचंद
0: जी,
1: प्रेमचंद को देखें आप, प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनको उठा के देखें, और भी मिसालें जा सकती हैं, इकबाल की मिसालें आप देख लें, सर सैयद के जमाने के जो हमारे दूसरे लिखने वाले थे उनको देखें, तरक्की पसंदी के जमाने के अदीबों की तरीरों को देखें, उनकी एक बड़ी रीच थी। प्रेमचंद पहला ऐसा फनकार थे कि जिनके कारीन का हलका बहुत वसी था
0: जी।
1: उसकी वजह यह थी कि प्रेमचंद जिस दौर में उन्होंने लिखना शुरू किया, वो दौर हिंदुस्तान में तालीम की तौसी का एक जमाना था, उससे कबल तालीम बहुत महदूद थी, नए नए स्कूल कायम हो रहे थे, ज़ाहिर 1857 की जो तहरीक चली थी उसके नतीजे में बहुत सारी इस्लाही तहरीकें चली और स्कूल कायम हुए, बहुत सारे मकतब कायम हुए, तालीमी इदारे कायम हुए, तो एक बड़ा हलका पैदा हुआ तालीम हासिल करने वालों का, और तालीम हासिल करने वालों का हलका जब पैदा हुआ तो अदब के पढ़ने वालों का भी हलका उसी से बना। और प्रेमचंद ने जो कहानियां लिखी वो गांव की कहानियां लिखी, गांव से जोड़ा जिंदगी को, अदब को, और उसमें जो कहानियां हैं अदब उनकी, बहुत से मसाइल होते हैं हमारे, हमने उन मसाइल को कभी अपनी जिंदगी में उस तरह से संजीदगी से उसको देखने का हमने कोई रवैया कायम नहीं किया था। हमने मतलब दलित मसाइल को आप देख लें, दही जिंदगी की जो माशरत है, वहां की जो लोगों की जिंदगी की तकलीफ और मुसीबतें हैं, उनको प्रेमचंद जिस तरह से पेश किया, उसकी वजह से हम सेंसिटाइज्ड हुए
0: जी।
1: कारी उस जमाने का सेंसिटाइज्ड हुआ, यानी उसके अंदर हसासियत उसकी बढ़ी कि दलित ऐसी जिंदगी गुजारते हैं, हम तो अपनी दुनिया मगन थे, प्रेमचंद ने हमारी तवज्जो उस तरफ रखी कि हम उनकी जिंदगी को भी देखें, इन मसाइल की तरफ भी तवज्जो दें। तो अदब का दायरा, अदब मैं तो कहता हूं कि अदब जो है वो जितने भी उलूम हैं उन सब की माँ है अदब। लिटरेचर इज द मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स। लिटरेचर को आप सिर्फ लिटरेचर तक महदूद करके मत देखिए, बल्कि उसका इम्पैक्ट साइंस पे भी है, उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे भी है। आपने फिल्म की बात की, फिल्म के अदब ही तो है, ये जो हमारे सीरियल्स हैं वो सब अदब ही है, ड्रामे क्या है वो सब अदब ही है, बगैर अदब की इनकी तख्लीक या इनका तस्वूर नहीं कर सकते आप। तो अदब की अहमियत अपनी जगह है, लेकिन जो ग्राफ गिर रहा है, अदब की अहमियत का ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, पार्लियामेंट में एक शेर पढ़ देना अलग चीज़
0: जी,
1: लेकिन अदब को बचा के रखना, अदब के तख्लीकी सफर को और इर्तिखा की तरफ ले जाना, ये संजीदा लोगों की उनके लिए तश्वीश का सबब है।
0: मैं ये भी जानना चाहता हूँ आपका इलाज क्या है, अगर अदब के तहीं लोगों के रुझान कम हुए हैं या उधर दिलचस्पी कम हुई है, तो कोई एक इलाज भी आप जरा इस पे कि कैसे उनको रागिब किया जाए इस तरह।
1: इलाज तो ये देखिए, लिखने वाले लिख रहे हैं आज भी, और बहुत अहम से
0: कुरबान साहब से
1: बहुत अहम अदबी सहीफे लिखे जा रहे हैं
0: जी।
1: आज भी नावल जाहिर है, चाहे वो मगरिब से या हमारे यहाँ के अपने अदीबों के जरिए लिखे गए जो नावल हैं, अरुंधति जैसे जो और दूसरे लोग जो लिख रहे हैं, ये सब लोग लिख रहे हैं
0: जी।
1: लेकिन मैं ये सवाल करता हूँ कि उनके कारीन का हलका
0: जी
1: क्या बढ़ रहा है या सिमट रहा है इन जनरल,
0: ये एक सवाल है, एक बड़ा सवाल है।
1: उसके लिए आपने कहा ना कैसे इसको कायम किया जाए, बढ़ाया जाए। अदब

0: जानिब से जो एक तरह से लोगों के अंदर बेरुखी है या
1: जी
0: बेतवज्जुही है, उसकी वजह जो ये जो जमाना है मसरूफियत का,
1: जी
0: मशीनी जो दौर है वो भी, और आज इंटरटेनमेंट के बहुत सारे वसीले हैं, आज इल्म हासिल करने के बहुत से वसीले हैं, इसलिए वो उनकी तरफ भी लोग रागिब हो रहे हैं।
1: जी
0: और अदब के लिए कम से कम वक्त है, आज मोबाइल है आपके पास
1: जी हाँ
0: और दिगर तमाम लैपटॉप है, दुनिया आपके सामने है, अपनी अपनी तरजीह के मुताबिक आप उस तरह की चीज़ों को उससे देख लेते हैं और पढ़
1: जी
0: लेते हैं।
1: जी
0: अदब पढ़ने का जाहिर है क्या प्रेमचंद का दौर लौट के नहीं आ
1: जी
0: सकता,
1: हाँ
0: तहरीरी अदब को पढ़ने की तरफ लोग अब फिल्में देख लेते हैं, लोग अब ड्रामे देख लेते हैं, और सब कुछ अवेलेबल है आपके हाथ में,
1: जी
0: ये सब कुछ
1: हाँ
0: मौजूद है, तो वो सिलसिला तो
1: पूरा
0: है,
1: तनाजुर ये
0: अदब
1: बदला
0: है
1: है।
0: अपनी जगह पे,
1: जी
0: अदब की शक्लें बदली
1: जी
0: हुई हैं, यकीन
1: शक्ल
0: इसमें दो राय नहीं,
1: जी
0: मैं बिल्कुल सत्य से इत्तेफाक करता हूँ कुरान साहब से कि अदब की बदली हुई शक्लें हैं टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में,
1: जी
0: वो एक उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि अदब, जैसा कि मैंने अर्ज किया था कि अदब इंसान को बेहतर इंसान बनने में मदद
1: मदद
0: करता है,
1: बिल्कुल
0: उसकी फिक्र को सैटल करता
1: बिल्कुल
0: है, उसकी हसासियत को वो और सैटल करता है, पॉलिश करता है।
1: जी
0: एक बेहतर इंसान वो है जो हिस्सियत जिसके अंदर हो, एक जो हिस्सियत से बिल्कुल मुबर्रा इंसान अगर है तो मैं उसको इंसान नहीं मानता।
1: बिल्कुल
0: अगर वो किसी को दुख में देखकर उसको तकलीफ नहीं होती है, माशरे में बेहंगमी को देख के अगर उसको फिक्र नहीं होती है, जो
1: जी
0: कजरवी है माशरे की हमारी जिंदगी की, उसको देख के अगर उसको फिक्र नहीं होती है, तो मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं है। एक सेंसिटिव इंसान के लिए, एक बेहतर सेंसिटिविटी उसके अंदर और प्रमोट हो, इसके लिए अदब बहुत जरूरी है, अदब की तख्लीक भी जरूरी है, अदब का मुताला भी जरूरी है। मैं एक चीज अक्सर कहता हूँ जब जाता हूँ कहीं, तो ये बात मैं कहता हूँ कि
1: जी
0: आप साइंस को उसकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते, साइंस
1: जी
0: बहुत जरूरी है हमारी जिंदगी में, लेकिन साइंस इंसान तख्लीक नहीं कर सकती है,
1: बेशक
0: टेक्नोलॉजी इंसान तख्लीक नहीं कर सकती, आप रोबोट बना सकते
1: जी
0: हैं लेकिन आप इंसान को इंसान नहीं बना सकते बगैर अदब के। अदब वो काम करता है एक बहुत ही, जिसे कह लें कि एक गैर महजब
1: जी
0: इंसान
1: हाँ
0: को
1: जी
0: अगर अदब पढ़ने की लत लग जाए तो वो, मुझे दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि वो एक बेहतर महजब इंसान बन सकता है। अदब में ये सिफत है, साइंस में ये सिफत नहीं है, ये अदब का मरतबा साइंस से बालातर, मैं
1: बालतर
0: समझता
1: है।
0: हूं।
1: एक अहम बात की तरफ इशारा प्रोफेसर पाशा ने किया। कुरबान साहब वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, हम अपनी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जल्दी से एक रिमार्क आपकी तरफ से इस हवाले से।
0: नहीं, जो अनवर पाशा साहब ने कहा उससे इत्तफाक करता हूँ, वो
1: जी
0: बुनियादी बातें उन्होंने कही हैं। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए
1: जी
0: कि इस
1: हाँ
0: वक्त हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हैं,
1: जी
0: और उसमें
1: बिल्कुल
0: भी अब ये बड़ा जो लोग हैं उनके लिए उनके रोजगार का मसला पैदा हो गया है, लेकिन वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायरी भी कर रही है
1: जी
0: और अदब भी तख्लीक कर रही है, लेकिन अब कैसा होगा वो और उसको आने वाली नस्लें किस तरह से लेंगी
1: जी
0: ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अदब की अहमियत अपनी जगह सादिक है, वो रहने वाली है।
1: ये इस पे एतबार है। और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, अदब के हवाले से इस पे बहस हो रही है इस वक्त कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अदब को फ़रोग देने का काम करेगा या अदब पे रुकावट आएगी, ये आने वाला वक्त शायद बताएगा। मासूम साहब क्या राय है आपकी?
0: देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ताल्लुक से तो बहुत सारे खदशात हैं,
1: जी
0: उसके मुसबत पहलुओं पर लोगों की कम तवज्जो है और उसके मनफी पहलुओं पर ज़्यादा
1: ज़्यादा
0: है
1: है
0: कि क्या तबाही मचने वाली है माशरे के अंदर। एक बात अनवर पाशा साहब ने बड़ी अच्छी कही कि स्कूल में बच्चों को कहानियाँ सुनाई जाती थी। मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूँ, मेरे
1: जी
0: घर में उर्दू के बच्चों के रसाइल भी आते हैं, बड़े भी आते हैं। मेरा एक पोता है 3.5-4 साल का,
1: जी
0: और वो एक उर्दू का रिसाला उठा के लाता है और अपनी दादी से यानी मेरी बीवी से कहता है कि दादी कहानी सुनाओ,
1: जी
0: और वो दादी उसको कहानी सुनाती है, और वो 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे इतनी तवज्जो से उस कहानी को सुनता है।
1: जी हाँ
0: तो इंसान की जो सरिश्त है, यानी अभी वो 3.5-4 साल का बच्चा
1: जी हाँ
0: अभी
1: जी हाँ
0: स्कूल भी नहीं जाना
1: जी
0: शुरू
1: हाँ
0: किया है, लेकिन वो कहानियों से अल्फाज भी सीख रहा है।
1: बिल्कुल, उसकी तरफ प्रोफेसर पाशा ने इशारा किया था कि
0: जी जी
1: बच्चे
0: जी
1: कान में कहानी। जी हाँ
0: तो
1: बिल्कुल
0: अदब इंसान की कितनी बुनियादी ज़रूरत है,
1: जरूरत
0: वो
1: है
0: इंसान को मुकम्मल बनाने में, जिसे अल्लामा इकबाल ने इंसान कामिल कहा है,
1: जी।
0: वो अदब ही बनाता है। अदब के अंदर फ़लसफ़ा, मंतिक और तमाम किस्म के जो उलूम हैं, चाहे कदीम उलूम हो चाहे जदीद उलूम हो,
1: जी
0: और जो साइंस की जैसे बात की जा रही है, साइंस का भी इसमें एक रोल है, आज की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ा रोल है,
1: जी
0: लेकिन अदब के बगैर कोई भी ज़िंदगी का मैदान मुकम्मल नहीं होता। अदब हमारी बुनियादी ज़रूरत है,
1: बिल्कुल
0: हमारे शऊर को बेदार करने में, हमारी इस को बेदार करने में, और हमें एक मुकम्मल इंसान बनाने में अदब एक कलीदी किरदार अदा करता है।
1: बिल्कुल
0: इसलिए अदब की अहमियत से, अफादियत से आप किसी भी तौर इनकार नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: एक पहलू अदब का जो जो
1: जी
0: आपने कहा कि कैसे उसका मुस्तकबिल कैसा हो,
1: जी

0: कैसे उसको बचा के हम रख सकते
1: जी
0: हैं
1: हाँ
0: या कैसे उसको प्रमोट कर सकते हैं,
1: जी
0: बदलते
1: हाँ
0: हैं। आप जमाने की तब्दीली पर आप कोई रोक नहीं लगा
1: जी
0: सकते।
1: हाँ
0: तब्दीली का अपना
1: बिल्कुल
0: निज़ाम है, वो होती रहेगी, तब्दीली चेंजेस आती रहेंगी। ये साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी, जाहिर है आज से 100 साल पहले का तनाजुर देखिए, मंजरनामा आज
1: जी
0: का देखिए, फर्क नजर आएगा। और ये कुदरत का निज़ाम है, लेकिन उसी निज़ाम के साथ हमें अपने सर्वाइवल के लिए भी गुंजाइशें पैदा करनी है,
1: जी हाँ
0: चाहे वो इंसान की जिंदगी के तौर पर बहैसियत इंसान हम उसकी फिक्र
1: जी
0: करें, या बहैसियत इल्म, बहैसियत अदब, डिसिप्लिन के तौर पर आज लोग उसके साथ अपने आप को हम आहंग कर रहे हैं।
1: जी
0: नई टेक्नोलॉजी के साथ भी लोग अपने आप को जोड़ रहे हैं,
1: जी
0: जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ लोग सही रखे। आज आप देखें प्रिंटेड फॉर्म में अदब जो है अब कम है इस वक्त, ज्यादातर डिजिटल फॉर्म में
1: जी
0: आपके
1: हाँ
0: सामने है।
1: बिल्कुल
0: गजल हमारी मुकम्मल हुई, फौरन हमने डाल दिया उसे फेसबुक पे, फौरन हमने उसको व्हाट्सएप पे डाल दिया, फौरन हमने ट्विटर पे उसको डाल दिया, तो उसकी रीच बढ़ रही है, उस तरह से बढ़ रही है।
1: मैं
0: तो
1: एक बात कथा कलाम कहता हूँ, डिजिटल का एक बड़ा फायदा यह है, आपकी कोई चीज छपती है कहीं उस पर आपको रेस्पॉन्स नहीं पता चलता, लेकिन आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर
0: हाँ
1: अपनी
0: जी,
1: कोई
0: दूसरे
1: चीज डालते हैं,
0: फौरन
1: सोशल मीडिया
0: रिस्पॉन्स
1: के
0: आता।
1: जरा
0: अभी
1: से
0: मैंने
1: आपको मालूम
0: एक
1: होता
0: पोस्ट
1: रहता
0: कल
1: है।
0: डाली थी
1: जी
0: तो
1: तो तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों ने उस पर कमेंट्स किए।
0: जी
1: जी
0: और ये कमेंट सिर्फ आपके हिंदुस्तान के, अपने मुल्क के, अपने इलाके के नहीं है,
1: जी
0: वो कोई कमेंट अमेरिका
1: हाँ
0: से कर रहा है, कोई
1: बिल्कुल
0: इंग्लैंड से कर रहा है, कोई फ्रांस से कर रहा है, कोई जर्मनी से कर रहा है, कोई अरब मुल्क से कर रहा है,
1: जी
0: यानी उसकी रीच बढ़ी है। तो हमें इस पर संजीदगी से सोचना होगा कि नई टेक्नोलॉजी के साथ
1: जी
0: हम कैसे खुद को ज्यादा हम आहंग करें और उसका फायदा उठाएं और अपने अदब की रफ्तार को और
1: जैसा कुरान भाई ने
0: ज्यादा।
1: रेख्ता का भी जिक्र किया,
0: जी
1: रेख्ता से
0: वो
1: कितना
0: भी एक शक्ल
1: इस्तफादा
0: है
1: लोग कर
0: फौरन,
1: रहे हैं। जी
0: बिल्कुल
1: हाँ बिल्कुल
0: बिल्कुल।
1: पूरी दुनिया में
0: नॉन उर्दू
1: जी,
0: हल्का,
1: और एक
0: नॉन
1: तो
0: उर्दू हल्का,
1: पाकिस्तान में
0: हाँ
1: कॉम्प्लेक्स पैदा हो गया है कि उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट हिंदुस्तान में है, हमारे पास उर्दू की सबसे बड़ी वेबसाइट। बिल्कुल अदब क्यों जरूरी, इस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे। ज़ाती तौर पे मुझे शफी अयूब को खुशी इस बात की है कि हमारे जो आज के माहरीन हैं वो बिल्कुल मायूस नहीं है इस हवाले से, और उनकी ये मुस्बत राय है कि बहरहाल अदब की ज़रूरत है, अदब की ज़रूरत कल भी थी, अदब की ज़रूरत आज भी है, और अदब की ज़रूरत कल भी रहेगी। अदब अपनी शक्लें बदल सकता है, नावल या शायरी, अफसाने या खाके, या सफरनामे किताबी शक्ल में छपते थे। किताबें कम छपें या ज़्यादा छपें, हम डिजिटल फॉर्म में पढ़ें, लेकिन बहरहाल अदब की ज़रूरत है। हमारे साथ स्टूडियो में अदब क्यों ज़रूरी के मौजू पर बात करने के लिए प्रोफेसर अनवर पाशा, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से साबिक चेयरपर्सन सेंटर ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, जनाबे कुरबान अली साहब, मुल्क के जाने माने सहाफ़ी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यकसां मकबूलियत रखने वाली शख्सियत, जनाबे मासूम मुरादाबादी, न सिर्फ एक अच्छे सहाफ़ी और अखबारात के मुदीर बल्कि बहुत अहम किताबों के सहाफ़त के मौजू पर, तो ख़ासकर बहुत अहम किताबों के मुसन्निफ़, और तीनों हजरात की ज़ाती तजर्बात की बुनियाद पे भी, अपने मुताले की बुनियाद पे भी ये राय है कि अदब हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। मासूम साहब ने भी इस तरफ इशारा किया, कुरबान साहब ने भी इशारा किया, और प्रोफेसर अनवर पाशा ने भी जोर दे के इस बात की तरफ इशारा किया कि इंसानी ज़िंदगी के लिए अदब ज़रूरी है, लिटरेचर ज़रूरी है, उसके फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम अदब का मुताला करते हैं तो हम एक अच्छे इंसान बनकर अपने समाज की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। आप तीनों हजरात स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छी गुफ्तगू की, उम्मीद है हमारे सामईन को भी ये गुफ्तगू पसंद आएगी, और जो लोग अभी तक अदब से ज़रा दूरी बनाए हुए थे वो भी अदब की तरफ रागिब होंगे, अदब पढ़ेंगे, किताबें खरीदेंगे, खुसूसी तौर पे उर्दू अदब की तरफ रागिब होंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे ये दिलचस्प मुबाहसा, मौजू था क्या अदब जरूरी है। शुरका थे जनाब कुर्बान अली, जनाब मासूम मुरादाबादी, प्रोफेसर अनवर पाशा, और उनसे महवे गुफ्तगू थे डॉक्टर शफी अय्यूब। इसी उम्मीद के साथ कि हम ऐसे ही प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते रहेंगे और आपकी खिदमत में इससे और अच्छे प्रोग्राम हम पेश करते रहेंगे, ऐसे ही मेहमान को हम आपके रूबरू करते रहेंगे। चलते चलते आपको ये भी बताते चले कि इस प्रोग्राम की तरतीबो पेशकश इंतजार सैफी की थी। तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मौजूआत के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और सतत अंतरिक्ष

0: क्षेत्र का समर्थन करता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के सिद्धांत पर आधारित है। श्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए आज ये बात कही।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसरो ने हर मिशन और हर सफलता के साथ अपनी प्रतिष्ठा बनाई है और अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों में भारत को गौरवपूर्ण स्थान दिलाया है। भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बनाया और आदित्य L1 सूर्य के रहस्यों को उजागर कर रहा है। उन्होंने वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और वर्ष 2040 तक किसी भारतीय को चंद्रमा पर भेजने के भारत के लक्ष्य पर भी बल दिया। श्री मोदी ने फ्रांस और दुनिया को भारत की अगली अंतरिक्ष यात्रा में सहयात्री बनने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने दिवंगत आगा खान चतुर्थ और विकास कार्यों में उनके अमिट योगदान को याद किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा कृषि ग्रामीण विकास युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा सामाजिक विकास और विरासत संरक्षण में किए जा रहे प्रभावशाली कार्यों और भारत तथा विदेश में आगे की संभावनाओं पर चर्चा की। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का 7वां संस्करण मुंबई में जारी है। ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रभावशाली वार्षिक फिनटेक सम्मेलनों में से एक है। सम्मेलन का विषय है पोटेंशियल टू इंपैक्ट एजेंटिक AI, टोकनाइजेशन क्वांटम समावेशी वित्त के लिए विश्वसनीय आपस में जुड़े और वैश्विक सिस्टम। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से आगामी सोमवार तक दिल्ली में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत इससे संबंधित आदेश जारी किया। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है। उधर नेपाल में आई अचानक विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1377 हो गई है। 5000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। इस बीच भारत ने नेपाल को लगातार मानवीय सहायता जारी रखी हुई है। और खेलों में भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। भारत की पूजा मलिक ने हैट्रिक लगाई जबकि सनिका चंद्रकांत माने मधुसिदार सुप्रिया और रोशनी एंद ने 2-2 गोल किए। इसके अलावा महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi

हमारे पास जो सूचना है वो है नीतू, पिता का नाम है स्वर्गीय सतवीर सिंह, उम्र है 26 वर्ष। आपको आखिरी बार आपके घर पर देखा गया था 12 अगस्त 2026 को, आपको आखिरी बार देखा गया था। आपकी उम्र है 26 वर्ष, लिंग है स्त्री, इखरा शरीर है, रंग सांवला है, आंख नाक कान औसत है, कद 5 फीट है, और आपके पास में एक फोन नंबर है जो हम आपको बता देते हैं। नंबर है 9105343175। मैं दोहरा रही हूँ, 9105343175, जो फिलहाल स्विच ऑफ है। आपके बारे में किसी भी तरह की जानकारी देने पर एक पुरस्कार राशि भी रखी गई है, जिसकी जो है 2000 रुपये। आप किसी भी तरह की जानकारी जांच अधिकारी श्री हरिभान सिंह को मोबाइल नंबर 9871958843 पर दे सकते हैं। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी मनोज कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली दनकौर, गौतम बुद्ध नगर पर दी जा सकती है। लापता व्यक्ति का नाम है सोफिया, पिता का नाम है गोली, निवासी है चिरोड़ी गाजियाबाद, हाल मुकाम है गाजियाबाद में इनका हाल मुकाम है, और इन्हें आखिरी बार 19 अगस्त 2026 को देखा गया था। उम्र है 19 वर्ष, महिला है, शरीर की बनावट सामान्य है, ऊंचाई है 4 फीट 2 इंच। आपके बारे में किसी भी तरह की जानकारी आप दो मोबाइल नंबर हैं हम आपको बता रहे हैं। नंबर है 8595902543, 8595902543। एक और नंबर है 8595902638, 8595902638। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी पंकज शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना कासना, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है। लापता व्यक्ति का नाम है शालू, पिता का नाम है लक्ष्मण सिंह। आपको आखिरी बार शुक्रवार दिनांक 31 जुलाई को घर पर देखा गया था। आपकी उम्र है 18 वर्ष, कद है 5 फीट, आंख नाक कान कद औसत है, इखरा मजबूत जिस्म है, रंग सांवला है। आप इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी जयवीर सिंह, उप निरीक्षक थाना इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर पर दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है प्रवेश कुमार उर्फ कन्हैया, पिता का नाम है हाकिम सिंह। इन्हें आखिरी बार इन्हें घर पर देखा गया था। उम्र है 20 वर्ष, इकहरा बदन है, नाक कान आंख औसत है, रंगे हुआ है, घर से बिना बताए कहीं चले गए हैं। इनके बारे में किसी भी तरह की जानकारी जयवीर सिंह, उप निरीक्षक थाना इकोटेक 3 कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पर दी जा सकती है। एक मोबाइल नंबर भी है 9415187368। खोए हुए व्यक्ति का नाम है प्रियंका, पिता का नाम है सुरेश, निवासी हैं आप सूरजपुर गाजियाबाद। आपके बारे में जानकारी आप आकाश परिमार, उपनिरीक्षक थाना सूरजपुर को दे सकते हैं। इनकी उम्र है 18 वर्ष, खोए हुए व्यक्ति जो है महिला है, आंख नाक कन नाक औसत है, 4 फीट हाइट है, घर से बिना बताए कहीं चली गई हैं। खोए हुए व्यक्ति का नाम है तौफीक अहमद, पुत्र है मुश्ताक अहमद। आप अशोक राणा का मकान गली नंबर 14 सेक्टर 22 नोएडा के निवासी हैं, पुरुष हैं, सामान्य शरीर की बनावट है, कद है 5 फीट 7 इंच। इनके बारे में कोई भी जानकारी सुबोध कुमार तोमर, कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर को दी जा सकती है। नेहा कुमारी नाम है खोए हुए व्यक्ति का, पिता का नाम है सुभाष, 20 वर्ष उम्र है, आंख नाक कान औसत है। इनके बारे में कोई भी जानकारी थाना इकोटेक 3 गौतम बुद्ध नगर भी दी जा सकती है। विकास कुमार नाम है खोए हुए व्यक्ति का, पुत्र श्री राजेश चंद्र मिश्रा, उम्र 37 वर्ष, पुरुष है, इकहरा बदन है, 5 फीट 4 इंच हाइट है। इनके बारे में कोई भी जानकारी आप उप निरीक्षक यतीन्द्र कुमार थाना फेस 2 नोएडा पे दे सकते हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खोए हुए व्यक्तियों से संबंधित सूचना। अब आपको हम सुना रहे हैं युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Think about it. When you are riding a bicycle, you just can't stop and expect to stay balanced, right? And hey, शायद जीना इसी का नाम है और आपके फेवरेट प्रोग्राम का नाम है युववाणी, सिर्फ आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर। दोस्तों, आज की इस मुलाकात में मैं हूँ आपके साथ शिवि।
1: और मैं हूँ स्मृति। दोस्तों, आज बातें होंगी ढेर सारी, कुछ मजेदार, कुछ जरूरी और कुछ बेहद दिलचस्प।
0: आज 10 सितंबर को क्या है खास, इसके बारे में भी करेंगे चर्चा। चर्चा से याद आया स्मृति की शाम हो रही है, चाय का वक्त होने वाला है।
1: शिवी, और चाय पे चर्चा करते हुए मुझे कुछ सजेशंस भी लेने हैं तुमसे। असल में मेरे छोटे भाई के रिसेंटली स्कूल एग्जाम्स हुए थे और उसने कुछ सब्जेक्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो वो बहुत डाउन फील कर रहा है।
0: स्मृति, ऐसे में मैं कहूँगी कि थोड़ा उसके साथ बैठो, उसकी बात सुनो और अभी बस इतना कह दो कि कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छा कर लेंगे। एग्जाम रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स मैटर करते हैं।
1: कभी कभी सेटबैक ही हमें बेटर करना सिखाता है। और चलिए इसी के साथ चलते हैं एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक पे, सुनते हैं गिव मी सम सनशाइन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी थ्री इडियट्स।
2: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो,

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

जिंदगी की तेज रफ्तार में आगे बढ़ते हुए हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि कहीं इस दौड़ की कीमत हमारे अपने रिश्ते और हमारा अपना सुकून तो नहीं चुका रहे। इसी जरूरी सवाल पर हम सुनेंगे हमारी साथी आंचल पुंडीर को, तो आइए उनकी बात सुनते हैं। शायद कुछ पल रुककर हम भी खुद से एक सवाल कर

0: पाए।
1: सितंबर 10 वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आज हम आंकड़ों की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस खामोशी की बात करेंगे जो किसी के जाने के बाद एक घर में रह जाती है। ये एक काल्पनिक खत है, एक माँ का अपने उस बच्चे के नाम जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। बेटा, तुम्हें गए हुए कई महीने हो गए। लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, झूठ। समय ने बस हमें तुम्हारे बिना जीना सिखा दिया। जानते हो, कल तुम्हारे कमरे की सफाई कर रही थी तो तुम्हारी एक पुरानी टी शर्ट मिली, मैंने धोया नहीं, उसमें अब भी तुम्हारी हल्की सी खुशबू थी। डर लगा कहीं वो भी चली गई तो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई, घर दीवारों से नहीं बनता, आवाजों से बनता है, और इस घर की सबसे प्यारी आवाज तो तुम थे। अच्छा जाने दो, एक बात बताती हूँ। आज पार्क में एक माँ अपने बेटे के पीछे भाग रही थी, उसे डांट रही थी, धीरे भागो गिर जाओगे। और पता है, मैं बस सोचती रह गई कि कितनी खुश नसीब है वो माँ जिसके पास अब भी अपने बच्चे को डांटने का अधिकार है। मुझ अभागन को तो वो भी नहीं रहा, अब कोई नहीं कहता माँ भूख लगी है, माँ 5 मिनट और सोने दो ना, माँ राजमा चावल बना दो ना। सच बताऊं, सबसे ज्यादा तकलीफ इन बड़ी बातों से नहीं होती, तकलीफ तो उन छोटी छोटी आदतों से होती है। आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, आज भी कभी कभी लगता है कि तुम दरवाजा खोलकर सीधे अंदर आओगे, लगता है कि फोन बजेगा और स्क्रीन पर तुम्हारा नाम दिखेगा, कभी लगता है कि किसी कमरे से तुम्हारी आवाज, फिर याद आता है कि तुम सच में चले गए। जानते हो, तुम्हारे पापा अब भी मजबूत बनने की कोशिश करते हैं, फिर कभी कभी तुम्हारी तस्वीर से बातें करने लगते हैं। तुमने तो सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि तुम दर्द में थे। मानती हूं मैं शायद बहुत दर्द में थे, लेकिन बेटा एक बात आज भी समझ नहीं पाती, अगर इतना दर्द था तो हमें बताया क्यों नहीं। एक बार तो कह देते कि माँ मैं थक गया हूं, माँ अब मुझसे नहीं हो रहा, माँ मुझे डर लग रहा है, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाती, तुम्हारे सारे सवालों के शायद जवाब नहीं दे पाती, लेकिन तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ती, तुम्हारा हाथ पकड़ लेती और तुम्हें अकेला नहीं रहने देती। काश तुमने उस रात एक फोन कर लिया होता, काश तुमने किसी दोस्त को जगा लिया होता, काश तुमने अपने पापा का दरवाजा खटखटा लिया होता, काश तुमने एक दिन और रुकने का फैसला किया होता, काश तुमने अपनी माँ को ये मौका दिया होता, काश। On this World Suicide Prevention Day, let this be a reminder. If you're struggling, please don't suffer in silence. Talk to someone you trust. You do not have to face it alone. For immediate support in India, you can call Telemanus at 14416 or 1-800-891-4416, available 24/7, or the Kiran Helpline at 1-800-599-0019. Sometimes one conversation can save a life. This is Anshul Pundir signing off.
2: शिवी, मुझे लगता है कि ये हम सबके लिए मच नीडेड थी। हमारे लिसनर्स ने जरूर बहुत कुछ सीखा होगा इस मैसेज से। वैसे शिवी, तुमने सुना है जैसा अन्न वैसा मन, बट सब लोगों के लिए अलग अलग कंफर्ट फूड हो सकता है। दोस्तों, एक खाने की प्लेट कितना कुछ कह जाती है ना। वन प्लेट मैनी वर्ल्ड्स पर हम सुनेंगे हमारी साथी वंशिका शर्मा को।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका शर्मा आज के युवानी प्रोग्राम में आपकी आरजे। आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग पीपल थ्रू फूड। अब आपके मन में सवाल आएगा कि लोगों को खाने से कैसे समझें? तो सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि किसी इंसान को अगर समझना है तो जरूरी नहीं कि हम उसका कल्चर समझें या उसकी लैंग्वेज जाने या उसके फेस्टिवल्स अटेंड करें। कभी कभी बस उसके खाने की प्लेट ही हमें बहुत कुछ बता सकती है। अब ये भला कैसे, क्योंकि एक खाने की प्लेट बनती है जगह की ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से, हिस्ट्री, ट्रेडिशंस और जेनरेशंस भर की नॉलेज से। इंडिया को हम अक्सर कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी,

क्या आपको लगता है कि फूड से बेटर इसका एग्जाम्पल कोई हो सकता है? इंडिया में ही आप देखेंगे बटर चिकन की थाली, बटर पनीर, डोसा, बिरयानी, दाल बाटी चूरमा और पता नहीं कितना सारा खाना बनाए इन्फ्लुएंस्ड होके अपनी जगह की ज्योग्राफी से, क्लाइमेट से। लेकिन अब आपको तो सिर्फ इन्हीं खानों के बारे में पता होगा ना, लेकिन इंडिया का कलिनरी मैप इज जस्ट मच बिगर देन दैट। अगर हम ट्राइबल कम्युनिटीज को कंसिडर करें तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है खाने के लिए। अब जैसे मैं अगर आपको बताऊं, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स की पॉपुलेशन लगभग 11 करोड़ के आसपास थी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन का 8%। तो ट्राइब्स की बात आ ही गई है तो चलिए सेंट्रल इंडिया की तरफ। वहां पे हमें कितनी सारी ट्राइब्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि गोंड, बैगा, भील और बहुत सारी और कम्युनिटीज। और इनके ट्रेडिशनल फूड में लोकल ग्रेन्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फ्लावर्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे बड़ा एग्जाम्पल महुआ। महुआ को अक्सर आप सिर्फ एक ड्रिंक के रूप में देखते हैं, लेकिन बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज में महुआ के फ्लावर्स और सीड्स का फूड और लाइवलीहुड से भी कनेक्शन रहा है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ट्राइबल रिपोजिटरी है, उसमें उनकी डॉक्यूमेंटेड फूड प्रैक्टिसेस में महुआ ऑयल का कुकिंग में भी यूज रिकॉर्डेड है। यानी वो सिर्फ एक फॉरेस्ट रिसोर्स ही नहीं, उस लोकेशन का, ट्राइब्स का फूड है, लाइवलीहुड है, कल्चर भी है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम दूसरी ओर चलते हैं। आज हम इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर और स्नैपचैट पे, कहीं जितनी भी हमारी सोशल मीडिया साइट्स हैं, उस पे हम मिलेट को सुपर फूड बोल रहे हैं। लेकिन इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए मिलेट्स कोई मॉडर्न हेल्थ ट्रेंड नहीं है। हैशटैग हेल्थीफाई, इट्स नॉट समथिंग कि उन्हें अब पता लगाओ। वो ना जाने कितने वर्षों से इन मिलेट्स का यूज कर रहे हैं, ना जानते हुए कि उनकी कितनी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो ओडिशा के धरुआ कम्युनिटी में डॉक्यूमेंटेड फूड प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं कि राइस के साथ साथ बहुत ही सारे मल्टीपल मिलेट्स जैसे कि कांगू, सुआ का मेंशन मिलता है, साथ ही साथ रागी भी। और जब लीन सीजन होता है, जब फसल नहीं उगती इतनी, तो बैम्बू शूट्स, सीजनल फ्रूट्स, ग्रीन लीव्स भी फूड सोर्सेज हैं। और आज साइंस भी मिलेट्स को न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। यहाँ तक कि हमने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स भी कहा था। ICAR भी मिलेट्स को न्यूट्रिशन और क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए बहुत प्रमोट करता है। एंड इंडिया में भी जो ड्रॉट प्रोन रीजंस हैं, वहां पर मिलेट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। तो हमें कई बार फ्यूचर ऑफ फूड समझने के लिए ना पास्ट की फूड की विजडम को भी देखना पड़ता है। अब चलते हैं झारखंड की हो कम्युनिटी की तरफ। उनके ट्रेडिशनल फूड में राइस एक स्टेपल फूड माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ राइस तक ही लिमिटेड नहीं है। ग्रीन लीव्स, वेजिटेबल्स, गार्लिक, ऑनियन, चिलीज, ये सब खाया जाता है। इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी अब आपको पता है और आपके पेरेंट्स भी आपको कहते आए हैं कि बच्चों खा लो ग्रीन लीव्स। बट आपको आपको तो तब सिर्फ बर्गर किंग और मैकडी ही खाना होता था। फूड कैन बिकम अ वे ऑफ सेलिब्रेटिंग, रिमेम्बरिंग एंसेस्टर्स एंड एज वेल एज मेंटेनिंग कम्युनिटी बॉन्ड्स। अब हम चलते हैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो अब वहां हम देखेंगे क्लाइमेट कैसे शेप करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन में फिंगर मिलेट यानी रागी ट्रेडिशनली बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। तवांग में फिंगर मिलेट लोकल सोशल, कल्चरल, रिलीजियस प्रैक्टिसेस से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड है। ट्रेडिशनल फूड जैन यानी रागी बॉल्स भी वहां बहुत पॉपुलर है। अब आप सबने डोरेमोन में राइस बॉल्स तो देखी ही होंगी, कभी रागी बॉल्स ट्राई की है? वो भी ट्राई जरूर करिएगा। सो अब हमने देखा दैट फूड टेल्स अट अबाउट ज्योग्राफी, और यही फूड को इतना फैसिनेटिंग नहीं बनाता। राजस्थान के डेजर्ट में जो फूड सस्टेनेबल हो सकता है, वो नेसेसरीली केरला के ह्यूमिड क्लाइमेट में सेम वर्क नहीं करेगा। हिमालयाज में अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स अलग हैं, नॉर्थ ईस्ट में अलग और कोस्टल इंडिया में अलग। सो क्यूजीन इज जस्ट बेसिकली ज्योग्राफी दैट यू कैन टेस्ट। एंड देन कम्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बट हियर इज द ब्यूटिफुल पार्ट, डिस्पाइट ऑल दीज डिफरेंसेस, फूड फिर भी ट्रैवल करता है, इंग्रेडिएंट्स फिर भी ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया को तो स्पाइस मार्केट कहा ही जाता था। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को इंडिया में कब्जा करना पड़ गया बहुत सारी जगहों पे स्पाइसेस के ही चक्रों में, और अब उन्हें ही बटर चिकन बहुत पसंद है। सो यूनिटी इन डाइवर्सिटी में हमने देखा फूड ऑल्सो ट्रेवल्स, इंग्रेडिएंट्स ऑल्सो ट्रेवल। जैसे कि हमारी स्पाइसेस तो वर्ल्ड फेमस है ही है, और आज हम किसी भी फूड को प्योरली नॉर्थ इंडियन या प्योरली साउथ इंडियन नहीं बोल सकते, क्योंकि फूड हिस्ट्री इज इटसेल्फ फुल ऑफ एक्सचेंजेस एंड अडैप्टेशंस। सो दैट्स व्हाई फूड कैन साइमल्टेनियसली टेल अस वी आर डिफरेंट एंड येट वी बिलोंग टूगेदर। इंडिया की ब्यूटी सिर्फ इसी बात में नहीं है कि हमारी खाने की प्लेट्स बहुत अलग अलग है।

0: कहीं डोसा तो कहीं बटर चिकन, कहीं गार्लिक पनीर और बहुत सारी चीजें। ब्यूटी इज दैट कि ये सारी डिफरेंट प्लेट्स कैन स्टिल बी ऑन द सेम टेबल एंड पीपल कैन ईट टुगेदर, और शायद इसी को कहते हैं वन टेबल मेनी कल्चर्स। धन्यवाद।
1: दोस्तों, ये सुनकर मुझे सच में ऐसा लगा जैसे वाकई में एक खाने की प्लेट आपकी संस्कृति और आपके रहन सहन को भी कितना दर्शा सकती है। साथियों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आज से तेरी फ्रॉम द मूवी पैडमैन।

0: स्मृति, आज जब हम लोग सुबह मिल रहे थे तो तुम्हें याद है हमने सबसे पहले एक दूसरे से क्या पूछा था?
1: हाँ, मैंने पूछा था कैसी हो शिवी।
0: पर तुम्हें ये नहीं लगता कि यह सवाल कुछ अधूरा सा लगता है?
1: हाँ शिवी, तुम ठीक कह रही हो। और सामने से भी ऑलमोस्ट हमेशा एक ही जवाब आता है, मैं ठीक हूँ।
0: और हम भी कह देते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन स्मृति कभी कभी सोचती हूँ कि क्या पता वो इंसान एक्चुअली ठीक हो भी नहीं।
1: बिल्कुल शिवी, हो सकता है उसके दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा हो, कोई टेंशन हो, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, या बस वो मेंटली बहुत टायर्ड हो।
0: हाँ, और हर कोई अपनी प्रॉब्लम को लेकर सामने आ भी नहीं पाता। कभी कभी बस ये वेट होता है कि काश मुझे कोई सुन ले।
1: जैसे सब ठीक है और वो भी जेन्युइनली।

0: एग्जैक्टली, क्योंकि कैसे हो हम आदत में पूछ लेते हैं, लेकिन सच में कैसे हो शायद थोड़ा रुक कर पूछना पड़ता है।
1: और शिवी, एक और चीज है, अगर कोई बात करना शुरू भी करे तो हम तुरंत उसे एडवाइस देने लगते हैं।
0: हाँ वही ना, कि ऐसा करो, ये मत सोचो, पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा।
1: जबकि हो सकता है उस वक्त उसे एडवाइस चाहिए ही ना हो, वो बस चाहता हो कि कोई उसे बिना जज के सुन ले बस।
0: सही कहा स्मृति, और मुझे लगता है यहीं से बात आती है मेंटल हेल्थ की। 10 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेंशन डे।
1: हाँ शिवी, और इस दिन की बात सिर्फ अवेयरनेस तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, अपने आसपास के लोगों को थोड़ा नोटिस करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल स्मृति, जैसे कोई अचानक बहुत क्वाइट हो गया हो, लोगों से मिलना कम कर दिया हो, जबकि पहले वो ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ करता हो।
1: या बार बार कह रहा हो मुझसे नहीं हो रहा, या वो खुद पर ही गिव अप करने लगा हो।
0: तो शायद उस वक्त हमें इसे हल्के में लेने की बजाय एक बार पूछ ही लेना चाहिए कि क्या हुआ, बात करना चाहते हो, मेरे साथ तुम अपना मन हल्का कर सकते हो।
1: और अगर लगे कि सिचुएशन सीरियस है, जैसे उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी दिक्कत होने लगे या सेल्फ हार्म जैसे थॉट्स आने लगे, तो किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेने में नहीं हिचकना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।
0: और ऑनेस्टली स्मृति, मुझे लगता है कि ये सिर्फ 10 सितंबर के लिए नहीं है, ये तो हम कभी भी कर सकते हैं ना, कि कभी किसी पुराने दोस्त को बिना किसी रीजन के कॉल कर लो, या घर में किसी से भी पूछ लो आज का दिन कैसा रहा। और हाँ, तसल्ली से पूछो, सिर्फ जल्दबाजी में नहीं।
1: एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 1,71,000 सुसाइड केसेस होते हैं, और हम बहुत लोग को की जान बचा सकते हैं किसी को ये फील कराकर वो अकेले नहीं है। पॉजिटिव माइंडसेट और एटीट्यूड से हम कोई भी जंग जीत सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, तो इस वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे थोड़ा सा ज्यादा पूछते हैं और थोड़ा सा ज्यादा सुनते भी हैं, और जरूरत हो तो हेल्प लेने और दिलवाने में भी एक दूसरे का साथ देते हैं।
1: जब लो फील करें तो अपनी फीलिंग्स को लिख कर या किसी अपने के साथ शेयर करके अपने आप को उस ओवर थिंकिंग के लूप से बाहर निकालें।
0: दोस्तों, ऐसे में वॉक पर जाएं, म्यूजिक सुने, डीप ब्रेथ्स लें, या नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लें। इसी के साथ अब सुनते हैं खुदा जाने फ्रॉम द मूवी बचना ऐ हसीनो।

0: 10 सितंबर की हिस्ट्री चेक करते करते मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि ये डेट काफी इंटरेस्टिंग है।
1: अच्छा, ऐसा क्या हुआ था 10 सितंबर को?
0: शिवी, इंटरेस्टिंग बात ये है कि 10 सितंबर का कनेक्शन सिर्फ एक फील्ड से नहीं है। इस दिन पॉलिटिक्स, फ्रीडम स्ट्रगल, क्रिकेट और लिटरेचर से भी जुड़ी कई सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स है।
1: तो शुरुआत करते हैं गोविंद बल्लभ पंत से। 10 सितंबर 1887 को उनका जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। वो फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहे, इंडिपेंडेंट इंडिया में उत्तर प्रदेश के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बने और बाद में यूनियन होम मिनिस्टर रहे।
0: यही नहीं, उन्होंने आजादी के बाद इंडियन विलेजेस की जिंदगी बदलने का सपना देखा, पंचायत सिस्टम को मजबूत करने पर जोर दिया और किसानों से कहा कि वे सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपने बच्चों को एजुकेट करें। ईयर 1957 में उन्हें भारत रत्न से ऑनर किया गया था। और शिवी, इसी डेट का कनेक्शन एक और फ्रीडम फाइटर से भी है, बाघा जतन से।
1: बिल्कुल, 10 सितंबर 1915 को जतींद्रनाथ मुखर्जी यानी बाघा जतिन ब्रिटिश फोर्सेस के साथ एनकाउंटर में शहीद हो गए थे।
0: वैसे शिवी, हमारे लिसनर्स जानना चाहेंगे कि उन्हें बाघा जतिन क्यों कहा जाता था? नाम तो काफी इंटरेस्टिंग है।
1: सही कहा स्मृति। 1906 में जतिन अपने गांव कोया लौटे, जहां एक रॉयल बंगाल टाइगर का खौफ था। जंगल में उनका सामना उस टाइगर से हुआ। जख्मी होने के बाद भी उन्होंने खुकरी से उसका मुकाबला किया और उसे मार गिराया। इसी बहादुरी के बाद उन्हें ये नाम मिला, बाघा जतिन।
0: दोस्तों, और भी खास किस्से हैं आज के। 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के हीरो हवलदार अब्दुल हामिद ने दुश्मन के पैटर्न टैंक्स का बहादुरी से सामना किया था और एक के बाद एक टैंक्स को डिस्ट्रॉय किया। उनके इसी बेमिसाल साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित भी किया गया था। और दोस्तों, जहां भी इंडिया की बात होती है, वहां क्रिकेट की बात ना हो, ये हो ही नहीं सकता।
1: दोस्तों, 10 सितंबर 1872 यानी आज ही के दिन जन्म हुआ था कुमार श्री रंजीत सिंह जी का, जिन्हें दुनिया रंजी के नाम से जानती है। और इन्हीं रंजी के नाम पर रखा गया इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट के आइकॉनिक टूर्नामेंट का नाम, रणजी ट्रॉफी।
0: शिवी, वैसे आज के दिन को हम मल्टी टैलेंटेड डे भी कह सकते हैं क्या?
1: अरे, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 10 सितंबर को दुनिया के कुछ और पार्ट्स में भी स्पेशल डेज मनाए जाते हैं।
0: ओ अच्छा, ऐसा है क्या?
1: हमारे यहाँ जैसे टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाया जाता है, चाइना में 10 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है।
0: हाँ,

0: चाइना में टीचर्स को सम्मान देने की ट्रेडिशन सेंचुरीज पुरानी है।
1: और इसका कनेक्शन महान फिलोसोफर और टीचर कन्फ्यूशियस से भी जोड़ते हैं। लेकिन मॉडर्न टीचर्स डे ऑफिशियली 10 सितंबर के लिए चुना गया, जब चाइना में न्यू एकेडमिक सेशन स्टार्ट होना होता है।
0: शिवी, आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं। फिल्म अंदाज का एवरग्रीन सॉन्ग जिंदगी एक सफर है सुहाना।

0: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट क्विक बस पर। दोस्तों जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली की हसल बसल और दूसरी तरफ पहाड़ों के गीत, पहाड़ी खाना और लोक रंग। और ये एक्सपीरियंस लेने के लिए पहाड़ों तक जाने की जरूरत नहीं, उत्तराखंड लोक महोत्सव हो रहा है आपके अपनी दिल्ली में, रामलीला मैदान सेक्टर 16, दोपहर 2 से रात के 10 बजे तक, वो भी फ्री एंट्री के साथ, लेकिन सिर्फ 14 सितंबर तक। तो शिवी, मेरा वीकेंड का प्लान तो तय है।
1: अरे वाह स्मृति, वैसे प्लान तो मेरे पास भी है। मेरे जैसे इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक लवर्स रेडी हो जाओ। इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक सेंसेशन मैंड्रागोरा इज कमिंग टू दिल्ली एट द सोहो क्लब दिल्ली इनसाइड द अशोका होटल चाणक्यपुरी एट टुडे 9 PM।
0: इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, गुड फॉर यू।
1: अरे डोंट वरी, 12 सितंबर सैटरडे को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका में होने वाली है एक सूफी शाम। आहा, सूफी पोइट्री और कव्वाली एक साथ एक स्टेज पर, कितना मजा आएगा।
0: ओ वाओ, तो अब सुनते हैं कॉकटेल का सॉन्ग, तुम ही हो बंधु।

0: चलते हैं अपने वीकली सेगमेंट पर। स्मृति, एक बात बताओ, तुम्हारे लिए क्रिकेट का क्या मतलब है?
1: मेरे लिए बैट बॉल मैच का प्रेशर और लास्ट ओवर में बेवजह हार्ट बीट फास्ट होना, यही मेरे लिए क्रिकेट का रियल मतलब है।
0: अरे ये तो क्रिकेट देखने वाले सभी लोगों के साथ होता है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्रिकेट बिना देखे भी खेला जा सकता है तो तुम मानोगी ये बात?
1: क्रिकेट बिना देखे? मतलब सीरियसली, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल?
0: हाँ स्मृति, सीरियसली। और इसी का एक बहुत इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है दीपिका टीसी। 2025 में उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को इनॉग्रल विमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड जिताने में लीड किया था।
1: और सबसे खास बात, इंडिया पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा था, है ना?
0: हाँ, बहुत बेमिसाल मैच था। दीपिका ने खुद भी 246 रन्स बनाए, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में 91 रन्स की इनिंग्स भी शामिल हैं।
1: पता है शिवी, उनकी स्टोरी का एक और पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। वर्ल्ड कप के बाद वे अपनी मदर के अपनी फर्स्ट एवर फ्लाइट पर लेकर गई थी।
0: दोस्तों, दीपिका ने उस मोमेंट में एक बहुत खूबसूरत चीज कही थी। शी गेव मी विंग्स इन लाइफ, टुडे आई गिव हर विंग्स इन द स्काई।
1: बस ये लाइन ही दीपिका के बारे में कितना कुछ कह जाती है ना, कि वे सिर्फ एक बेहतरीन क्रिकेटर ही नहीं बल्कि एक बेमिसाल पर्सनालिटी भी है।
0: दोस्तों, क्रिकेट की बात हो और एक एनर्जेटिक सॉन्ग ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए सुनते हैं अगला गीत, अले फ्रॉम द मूवी गोलमाल 3।

0: घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आज की हमारी बातों का वक्त अब पूरा होने वाला है।
1: हाँ, लेकिन जाने से पहले हमारे प्यारे लिसनर्स की राय भी तो जाननी है। हम जानना चाहेंगे कि आज कौन सा सेगमेंट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया।
0: जी दोस्तों, हमें जरूर बताइए, अपना फीडबैक, सजेशंस और नए टॉपिक आइडियाज भेजिए yuvvanifeedback@gmail.com पर। yuvvanifeedback@gmail.com पर।
1: तो फिर मिलते हैं अगली मुलाकात में कुछ नए टॉपिक्स, कुछ अनसुनी बातें और ढेर सारी नई यादों के साथ। तब तक सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।
0: तब तक के लिए अनुमति और सुनते रहिए अपना मनपसंद प्रोग्राम युववाणी आकाशवाणी पर। हमारे साथियों, मेंटल हेल्थ इज नॉट अ डेस्टिनेशन बट अ प्रोसेस। इट्स अबाउट हाउ यू ड्राइव, नॉट वेयर यू आर गोइंग।
1: और मैं हूँ स्मृति।
0: और मैं हूँ शिवी। नमस्कार, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। आइए अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इससे अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं, इसलिए टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा इसी विचार को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीमित हैं।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम

0: more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।
0: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में इस्माइली मुस्लिम समुदाय के 50वें इमाम और समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ग्रामीण विकास, युवा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्रों में आगा खान के विकास नेटवर्क के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। श्री सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। 3 दिन का ये सम्मेलन 27 से 29 अक्टूबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी संघर्ष नवंबर में होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद ही समाप्त हो सकता है। उन्होंने कहा कि तब तक तेल की कीमतों में कमी की संभावना नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए संघर्ष जारी रखना जरूरी है। इस बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आज ब्रेंट क्रूड की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी रही। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने आज कश्मीर में मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचारों और कार्यक्रमों तथा पत्र सूचना कार्यालय और केंद्रीय संचार ब्यूरो की गतिविधियों की समीक्षा की। महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। भारत ने ग्रुप चरण के अपने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। उधर भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. He was virtually addressing at the International Space Summit in Paris today.
0: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
2: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said Chandrayaan-3 made India the first nation to land near the lunar South Pole and

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है शाम के 5:10 और ये हुए पूरे 15 सेकंड। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो पायल बहन हम हाजिर हो गए हैं लोकरंजनी कार्यक्रम लेकर के।
1: बिल्कुल अतुल भाई, और देखिए आज का हमारा लोकरंजनी कार्यक्रम जो होगा ना, थोड़ा सा खास होगा, क्योंकि भादों का महीना चला हुआ है और भादों के महीने में जो है

0: गोगा जहारवीर की जो है गाथा गाई जाती है और बहुत उन्हें सराहा जाता है, माना जाता है। तो आज कुछ भजन अपने सभी बहन भाइयों के लिए हम लेकर आए हैं गोगा जहारवीर के ही।
1: बिल्कुल
0: और जैसा कि मौसम बदल रहा है, हमारे सभी भाई बहन जानते हैं कि मौसम बदल रहा है, ऐसे में भाई अपना ख़ास तौर से बच्चों का और भाई बुज़ुर्गों का जो है थोड़ा सा ख्याल रखें
1: जी
0: और
1: बिल्कुल।
0: अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
1: देखिए बदलते मौसम में अपना और अपने भाई परिवार के सभी सदस्यों का जो है आप स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि बदलते मौसम में कई बार जो है बीमारियां हमें घेर लेती हैं।
0: बिल्कुल
1: बातचीत हम और भी करेंगे अपने कार्यक्रम के मध्य में। तो सुनवाते हैं सबसे पहले विनोद नाथ और भूदेव नाथ की आवाज़ में ये गोगा जहारवीर भजन।

0: बागड़ के महाराज तेरी माया जब निराली है। बहुत ही बढ़िया बाबा जहारवीर का भजन हमने सुनवाया अपने सभी बहन भाइयों को। और अतुल भाई आगे आप क्या सुनवाएंगे?
1: तो अगला अभी हम बाबा जहारवीर का ही भजन सुनवा रहे हैं ब्रह्मपाल नागर की आवाज में।
2: आ

तेरे दर पे आई है गोगा मेडी के वीर। अभी हमारे सभी बहन भाई सुन रहे थे ब्रह्मपाल नागर की आवाज़ में ये जहारवीर बाबा का भजन। और अब चलते चलते अपने भाइयों का मनोरंजन करवाते हैं और सुनवाते हैं सुभाष नाथ की आवाज़ में ये गुरु गोरखनाथ का भजन।

तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे सुभाष नाथ की आवाज़ में गुरु गोरखनाथ का ये भजन, और इसी भजन के साथ आज का हमारा लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी नमस्कार। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी। शाम के 5:30 बजने वाले हैं। आइए अब आप सुनेंगे खेल जगत की खबरों से जुड़ा कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनु गुप्ता और मेरे साथ हैं
3: कविता शर्मा।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में क्रिकेट से लेकर टेनिस, हॉकी और फुटबॉल तक कई अहम खबरें रहने वाली हैं। विमेन्स T20 एशिया कप में नजर रहेगी इंडिया और बांग्लादेश के बीच होने वाले सेमीफाइनल पर। घरेलू क्रिकेट में बात होगी दिलीप ट्रॉफी फाइनल के 5वें और आखिरी दिन की। साथ ही हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑस्ट्रेलिया के ए के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए घोषित इंडिया ए स्क्वाड पर नजर। यूएस ओपन 2026 में क्वार्टर फाइनल्स में क्या कुछ हुआ और अब सेमीफाइनल की तस्वीर कैसी है, इसकी भी चर्चा करेंगे। जूनियर एशिया कप हॉकी में विमेन्स कैटेगरी के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्वार्टर फाइनल की रिपोर्ट, जबकि मेंस कैटेगरी में कल होने वाले इंडिया वर्सेस मलेशिया सेमीफाइनल का प्रीव्यू भी आपको सुनाएंगे। फुटबॉल में सुब्रतो कप अंडर 15 फाइनल का हाल जानेंगे और इसके अलावा देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरें भी कार्यक्रम में शामिल रहेंगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खेल खिलाड़ी कार्यक्रम और चलते हैं कविता शर्मा के पास विमेन्स T20 एशिया कप की रिपोर्ट के लिए।
3: जी हाँ,

0: सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत होगी क्रिकेट के साथ, और क्रिकेट में हम बात कर रहे हैं भारतीय महिला टीम की, जिनका सामना होगा आज सेमीफाइनल में एशिया कप में बांग्लादेश के साथ। ये मुकाबला दुबई में खेला जाएगा। रिकॉर्ड और इतिहास को देखें तो भारतीय टीम का पलड़ा काफी मजबूत है, लेकिन हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम कोई भी जोखिम यहां उठाना नहीं चाहेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक अनु भारत और बांग्लादेश के बीच T20 के जो कुल मैचेस हैं वो 24 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 21 जीते हैं और 3 बांग्लादेश ने जीते हैं। तो इस लिहाज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय महिला टीम की जो मौजूदगी है और जो दावेदारी है वो बहुत मजबूत है, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है तो कुछ भी किसी भी बॉल पर हो सकता है। महिला T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 3000 रन पूरे करने वाली विस्फोटक बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने टीम को अच्छी शुरुआत देकर पावर प्ले में विरोधी टीमों में जो एक दबाव बनाया है वो दबाव शायद आज भी यहां देखने को मिलेगा। मध्यम क्रम में कप्तान हरमनप्रीत कौर, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष, आखिरी ओवर में अच्छे रन बनाने वाली जो ये दो खिलाड़ी हैं ये भी पूरा दबदबा बनाएंगी। और गेंदबाजी में भारत के पास बहुत सारी विविधता और गहराई है। दीप्ति शर्मा महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। उन्होंने राधा यादव और श्री चरणी के साथ मिलकर हर मैच में स्पिन का जाल बखूबी बिछाया है। तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर के पास भी नई गेंद से टीम को शुरुआती सफलताएं दिलाने की क्षमता है। अगर बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश ने UAE को 34 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। बांग्लादेश के बल्लेबाजों को भारतीय स्पिन और तेज आक्रमण के सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा। गेंदबाजी में राबिया खान, नाहिदा अख्तर और मारूफा अख्तर के लिए भी भारतीय बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने की एक चुनौती होगी। और फिलहाल जिस तरह से आंकड़े हैं और मौजूदा फॉर्म है, भले ही भारत के पक्ष में हो लेकिन T20 प्रारूप, जैसे मैंने कहा कि अप्रत्याशित होता है और विरोधी बिल्कुल हल्के में नहीं लिए जा सकते। भारत ने अब तक 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है, जबकि श्रीलंका और बांग्लादेश एक एक बार जीत चुके हैं। श्रीलंका मौजूदा चैंपियन और बांग्लादेश ने 2018 में ये खिताब जीता था। तो फिलहाल अगर बात करें भारतीय टीम की जो बदलाव है उनकी संभावनाओं की, तो बहुत कम संभावनाएं जो है इस टीम में बदलाव की लग रही हैं, और अब तक शानदार प्रदर्शन यहां पे रहा है। तीनों ही मैचों में भारतीय टीम जब उतरी है तो काफी अच्छा प्रदर्शन यहां पे किया है, और सेमीफाइनल में भी टीम प्लेइंग 11 में यहां कोई बदलाव नहीं करना चाहेगी और ये मुकाबला रात को 8 बजे खेला जाएगा।
1: ये तो आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी महिला क्रिकेट टीम की। तो आइए अब चलते हैं घरेलू क्रिकेट की ओर। 5 दिनों के खेल के बाद दिलीप ट्रॉफी फाइनल का फैसला हो चुका है। मुकाबले भले ही ड्रॉ रहा हो लेकिन ट्रॉफी किसके हाथ आई और आखिरी दिन क्या हुआ, आइए जाने इस रिपोर्ट में। चेन्नई के चेपॉक मैदान पर आखिरकार घरेलू क्रिकेट के बड़े मुकाबले का फैसला हो गया है। 5 दिनों की कड़ी धूप और उमस के बीच खेला गया दिलीप ट्रॉफी 2026 फाइनल भले ही ड्रॉ पर समाप्त हुआ हो, लेकिन ईशान किशन की कप्तानी वाली ईस्ट जोन ने पहली पारी में हासिल की गई 372 रनों की विशाल बढ़त के आधार पर दिलीप ट्रॉफी 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया। 5वें और आखिरी दिन जब खेल शुरू हुआ तो चेपॉक की सब पार्ट पिच पर बॉलर्स के लिए बहुत ज्यादा मदद नहीं नजर आ रही थी। ईस्ट जोन ने अपने पिछले दिन के स्कोर 212 रन पर 5 विकेट के आगे खेलना शुरू किया। कैप्टन ईशान किशन की टीम के पास पहले से ही मजबूत बढ़त थी और उसने साउथ जोन को मुकाबले में वापसी का कोई मौका नहीं दिया। आखिरी दिन ईस्ट जोन की तरफ से मोहम्मद कुनैन कुरैशी और अनुकूल रॉय ने शानदार बैटिंग की। दोनों ने साउथ जोन के बॉलर्स को लंबे समय तक विकेट के लिए तरसाए रखा। मोहम्मद कुनैन कुरैशी ने मैदान के चारों तरफ अच्छे शॉट्स लगाए और अपना शानदार शतक पूरा किया। वो 116 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी ओर अनुकूल रॉय ने भी उनका बखूबी साथ दिया और 63 रनों की नाबाद पारी खेली। दोनों ने मिलकर ईस्ट जोन की बढ़त को लगातार मजबूत किया और साउथ जोन के कैप्टन तिलक वर्मा के लिए मुश्किलें बढ़ाते रहे। दोपहर के सेशन में ईस्ट जोन ने अपनी दूसरी पारी 388 रन पर 7 विकेट के स्कोर पर डिक्लेयर कर दी। इसके साथ ही साउथ जोन के सामने कुल 760 रनों की विशाल बढ़त हो गई थी। उपलब्ध समय में इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचना लगभग नामुमकिन था। आखिरकार दोनों कप्तानों की सहमति के साथ मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ और पहली पारी की बढ़त के आधार पर ईस्ट जोन को दिलीप ट्रॉफी 2026 का चैंपियन घोषित किया गया। इस फाइनल की कहानी काफी हद तक ईस्ट जोन की पहली पारी में ही लिखी जा चुकी थी। टीम ने 708 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था। कैप्टन ईशान किशन ने 270 रनों की शानदार डबल सेंचुरी खेली, जबकि कुमार कुशाग्र ने 101 रन बनाकर उनका बेहतरीन साथ दिया। इन दोनों की पारियों ने साउथ जोन को शुरुआत से ही भारी दबाव में डाल दिया था। जवाब में साउथ जोन अपनी पहली पारी में 336 रन ही बना सके। की। देवदत्त पडिक्कल ने 62 रन बनाए जबकि कैप्टन तिलक वर्मा शतक से सिर्फ एक रन दूर रह गए और 99 रन बनाकर आउट हुए। ईस्ट जोन की ओर से मुकेश कुमार ने 3 विकेट लेकर साउथ जोन को बड़ा स्कोर बनाने से रोका। मुकाबला भले ही ड्रॉ रहा लेकिन 5 दिनों के खेल में ईस्ट जोन का दबदबा साफ नजर आया। पहली पारी में 708 रन, ईशान किशन की 270 रनों की यादगार पारी और फिर 372 रनों की निर्णायक फर्स्ट इनिंग्स लीड, इन सब ने ईस्ट जोन की जीत की नींव रखी और आखिरकार ईशान किशन की टीम ने दिलीप ट्रॉफी 2026 अपने नाम कर ली। तो जी हाँ, दिलीप ट्रॉफी का रिजल्ट आ चुका है। और एक और खबर क्रिकेट से ही, ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज के लिए इंडिया ए स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। किन खिलाड़ियों को मौका मिला और टीम की कमान किसके हाथ में होगी, आइए जानते हैं कविता से।
0: तो अब बात करते हैं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ आगामी घरेलू सीरीज के लिए टीम ए का ऐलान किया है। पुरुष चयन समिति ने पांडुचेरी में होने वाली इस सीरीज के लिए 2 मल्टी डे मुकाबलों और 3 वनडे मैचों के लिए अलग अलग टीम चुनी है। मल्टी डे मुकाबलों में देवदत्त पडिक्कल को कप्तान जबकि साई सुदर्शन को उपकप्तान बनाया गया है। टीम में अमन मोखाड़े, आयुष पांडे, यश राठौर, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र विकेटकीपर, शम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुन कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदीशनन विकेटकीपर, नचिकेत भुट्टे और वी व्यस्क शामिल हैं। वहीं भारत ए की वनडे टीम की कमान ऋतुराज गायकवाड़ को सौंपी गई है जबकि देवदत्त पडिक्कल उपकप्तान होंगे। टीम में साई सुदर्शन, रजत पाटीदार, कुमार कुशार, विकेटकीपर निशांत सिंधु, विपज्र निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अर्शद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या, प्रभ सिमरन सिंह विकेटकीपर, गुरजपन नीत सिंह और यश ठाकुर के साथ प्रियंश आर्य को शामिल किया गया है। अब बात करते हैं मुकाबलों के इस पूरी ही क्रम की। तो भारत ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच पहला मल्टी डे मुकाबला 22 से 25 सितंबर तक पांडुचेरी में खेला जाएगा। इसके बाद दूसरा मल्टी डे मैच 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक होगा। 3 वनडे मुकाबलों की शुरुआत 6 अक्टूबर से होगी, दूसरा वनडे 9 अक्टूबर और तीसरा आखिरी वनडे 11 अक्टूबर को खेला जाएगा। तीनों वनडे मुकाबलों में भी ये जो मुकाबले हैं पांडुचेरी में ही आयोजित होंगे। ये सभी चयन फिटनेस के अधीन हुए हैं। कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ ये सीरीज भारतीय युवा और उभरते खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा दिखाने और राष्ट्रीय टीम के लिए दावेदारी मजबूत करने का एक अहम मौका होगा।

0: और श्रोताओं, अब समय हो गया है हमारी खास एशियन गेम्स स्पेशल सीरीज का कविता एपिसोड 2 में। आज का हमारा फोकस रहेगा आर्चरी, रोइंग, कायाकिंग और केनोइंग पर। इन खेलों में इंडिया का पिछला प्रदर्शन, मौजूदा तैयारी और इस बार की उम्मीदें, आइए जानते हैं विस्तार से।
1: एशियन गेम्स यानी एशिया के सबसे बड़े खेल मंचों में से एक, जहां हर खिलाड़ी सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश के गौरव के लिए मैदान में उतरता है। यहां जीत सिर्फ पदक की नहीं होती, जीत होती है वर्षों की मेहनत की, अनुशासन की, आत्मविश्वास की और उस तिरंगे की, जिसके लिए हर खिलाड़ी अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करता है। हमारी एशियन गेम सीरीज के एपिसोड 2 में आज बात करेंगे 3 ऐसे खेलों की जिनमें शरीर की ताकत के साथ साथ एकाग्रता, तालमेल, संतुलन और रफ्तार की भी बड़ी भूमिका होती है। पहले चलेंगे उस खेल की ओर जहां एक छोटा सा निशाना पूरे मुकाबले का फैसला कर सकता है। फिर पहुंचेंगे पानी पर, जहां खिलाड़ियों की हर स्ट्रोक एक नई उम्मीद पैदा करती है। और आखिर में बात होगी उन खेलों की जहां लहरों को चीरती नाव और खिलाड़ी की रफ्तार जीत की कहानी लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एशियन गेम्स एपिसोड 2, जिसमें सबसे पहले बात तीरंदाजी की। तीर कमान और निशाने पर पूरी तरह केंद्रित नजरें। तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जहां जीत के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि एकाग्रता, धैर्य और सटीकता भी जरूरी होती है। एशियन गेम्स में तीरंदाजी की शुरुआत 1978 के बैंकॉक एशियन गेम्स में हुई थी। शुरुआती दौर में जापान ने पहला स्वर्ण पदक जीता था, लेकिन इसके बाद दक्षिण कोरिया ने इस खेल में लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा। भारत ने एशियन गेम्स में तीरंदाजी का पहला पदक 2006 के दोहा एशियन गेम्स में जीता। भारत के लिए 2006 का एशियन गेम्स तीरंदाजी में ऐतिहासिक रहा। मंगल सिंह चंपिया, तरुणदीप राय, जयंत तालुकदार और विश्वास की पुरुष रिकर्व टीम ने कांस्य पदक जीतकर एशियन गेम्स में भारत का तीरंदाजी का पहला पदक हासिल किया। यही वो शुरुआत थी जिसने भारतीय तीरंदाजों को एशियाई मंच पर एक नई पहचान दी। 2010 में भारत ने अपना प्रदर्शन और बेहतर किया और कुल 3 पदक जीते। तरुणदीप राय ने पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में रजत पदक जीतकर भारत के लिए तीरंदाजी में पहला व्यक्तिगत एशियन गेम्स मेडल हासिल किया। इसके अलावा पुरुष रिकर्व टीम और महिला रिकर्व टीम ने भी कांस्य पदक जीते। 2014 भारतीय तीरंदाजी के लिए एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ। इसी संस्करण में कंपाउंड तीरंदाजी को एशियन गेम्स कार्यक्रम में शामिल किया गया और भारतीय तीरंदाजों ने इसका पूरा फायदा उठाया। रजत चौहान, संदीप कुमार और अभिषेक वर्मा की पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर भारत के लिए तीरंदाजी का पहला स्वर्ण पदक जीता। वहीं अभिषेक

0: पदक अपने नाम किए। 2018 में भारतीय कंपाउंड तीरंदाजों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। भारत की पुरुष और महिला कंपाउंड टीमों दोनों ने रजत पदक जीतकर भारत की पदक संख्या में दो और पदक जोड़ दिए। और फिर आया एशियन गेम्स 2022, भारतीय तीरंदाजी के लिए अब तक के सबसे शानदार संस्करणों में से एक। भारत ने यहां कुल 9 पदक, 5 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। ओजस देवताले ने पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि ज्योति सुरेखा वैनम ने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत ने पुरुष और महिला कंपाउंड टीम, मिश्रित कंपाउंड टीम स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीते। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने तीरंदाजी की पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया था। इसके बाद अब बात करते हैं 2026 के एशियन गेम्स पर, जहां भारतीय तीरंदाज एक बार फिर निशाना साधेंगे और उम्मीद होगी इस बार भी सीधे तौर पर पदकों की। एशियन गेम्स में इस बार भारतीय तीरंदाजी टीम में शामिल है धीरज बम देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे, कीर्ति शर्मा, कुमकुम मोहोद, अंकिता भगत, साहिल जाधव, कुशल दलाल, गणेश मणिरत्नम, ज्योति सुरेखा वैनम, चिकिता तनिपर्थी, प्रतिका प्रदीप। भारतीय तीरंदाजों के लिए एशियन गेम्स में कैसा रहने वाला है सफर, इस पर पूरी जानकारी के लिए हम जुड़े सीनियर खेल पत्रकार जी राजा रमन के साथ।
1: तीरंदाजी में भारत हमेशा कंपाउंड आर्चरी में अच्छा ही करता है। भारत के जो तीरंदाज है, दे हैव डन वेल इन कंपाउंड इवेंट। लेकिन हमारे अगर रिकर्व टीम की बात करें, उनसे उम्मीदें हमेशा रहती है, लेकिन एक नई टीम जा रही है रिकर्व में, और देखना यह है कि वो टीम कैसे करेगी। लेकिन अगर आप इतिहास की बात करें, तो अभी तक भारत के पास 19 पदक है एशियन गेम्स में। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के प्रदर्शन भारत का रिकर्व में अच्छा हो। कंपाउंड में तो हम एक्सपेक्ट ही करते हैं कि कंपाउंड आर्चरी में नतीजे अच्छे आएंगे, खास करके महिलाओं में, लेकिन रिकर्व पे नजर रहेगी। रिकर्व पे बिल्कुल नया सा टीम है और इन पे कितना दबाव रहेगा ये देखने वाली बात है, और उस दबाव को कैसे झेलेंगे ये और आगे कैसे निकल के आएंगे ये देखने वाली बात है। अगर आप अनुभव की बात करें, तो सिर्फ ज्योति सुरेखा वैनम है मेरे अपने जानकार में जो जिनके पास एशियन गेम्स खेलने का अनुभव है। उनके साथ जो महिला जा रही है वो शायद उनका फर्स्ट गेम्स है, तो दबाव रहेगा, उस दबाव को कैसे हैंडल करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। और अगर रिकव की बात करें, उसमें दो खिलाड़ी हैं, धीरज बोम्मदेवराया और फिर अंकिता भगत, दो खिलाड़ी जो एशियन गेम्स में भी, ओलंपिक गेम्स में भी अच्छा प्रदर्शन किए थे, वहां पे ये फाइनल में भी अच्छा खेल के आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल का प्ले ऑफ खेले हैं धीरज और अंकिता। लेकिन एशियन गेम्स एक चैलेंजिंग स्पोर्ट है, जहां पे चाइना और साउथ कोरिया और जापान, क्योंकि वो मेजबान है, इनका दबदबा रहेगा, वहां से उभरना फिर मेडल लाना, ये शायद रिकर्व के जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं इन लोगों पे चैलेंज है। लेकिन मेरा मानना यह है कि धीरज के पास अब वो अनुभव है और अंकिता के पास भी अनुभव है, जो कुछ करिश्मा कर दिखा सकते हैं। पुराने खिलाड़ी तो यही है, और बहुत ज्यादा अनुभव भी इनके पास नहीं है, एक एशियन गेम्स खेलोगे इससे पहले। लेकिन इन तीनों खिलाड़ियों पे प्रेशर ज्यादा रहेगा, ज्योति सुरेखा वैनम कंपाउंड में महिला, और फिर धीरज मेंस रिकर्व में, और फिर अंकिता भगत विमेंस रिकर्व।
0: अब बात उस खेल की, जिसमें जीत का फैसला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि तालमेल, धैर्य और हर स्ट्रोक की सटीक लय से होता है। बात हो रही है भारतीय रोइंग की। शांत पानी पर जब नाव पूरी रफ्तार से आगे बढ़ती है, तो उसके पीछे होती है खिलाड़ियों की घंटों की मेहनत, बेहतरीन फिटनेस और एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कला। रोइंग यानी नौकायन, जिसमें नाव की गति जितनी अहम है, उतना ही जरूरी है टीम के हर खिलाड़ी का एक ही लय में स्ट्रोक लगाना। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रोइंग ने एशियाई स्तर पर अपनी पहचान मजबूत की है। अब भारतीय खिलाड़ी सिर्फ प्रतियोगिता का हिस्सा बनने नहीं, बल्कि पदक की दावेदारी पेश करने के इरादे से उतरेंगे। एशियन गेम्स के बड़े मंच पर इस बार भी भारतीय रोइंग टीम से उम्मीदें बढ़ी हैं। खास तौर पर पुरुष लाइटवेट डबल स्कल्स में भारत की अनुभवी जोड़ी पर निगाहें रहेंगी। भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस, आपसी तालमेल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अनुभव को देखते हुए भारत की पदक की उम्मीदें पहले से कहीं मजबूत नजर आती हैं। हालांकि एशियाई रोइंग में मुकाबला आसान नहीं है। चीन, जापान और उज्बेकिस्तान जैसी टीमें लंबे समय से मजबूत दावेदार रही हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियां भी पूरी है। आइए अब सुनते हैं रोइंग फेडरेशन के प्रमुख बालाजी को क्या कह रहे हैं एशियन गेम्स की तैयारियों को लेकर।
2: इंडिया इज अ सुपर पावर इन एशियन गेम्स। हम गोल्ड मेडल जीतेंगे इस बार 100%। ओके।

0: हम दो गोल्ड मेडल के लिए देख रहा हूँ, जीतेंगे, देश का झंडा वहाँ ऊपर जाएंगे, उसके बाद नेशनल एंथम भी सुनाएंगे।
1: आइए सुनते हैं अंशिका भारती को, जो अपनी तैयारियों पर बता रही हैं।
2: मेरा नाम अंशिका भारती है, मैं गेम रोइंग से हूँ और मेरा इवेंट वुमेन्स फोर है और मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ 2026 एशियन गेम्स। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे सेकेंड टाइम भी चांस मिला और मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था, इंजरी के बाद भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था और मुझे चांस मिला एशियन गेम्स वापस सेकेंड बार खेलने के लिए, और मैं वुमेन्स फोर में हूँ और मैं मेडल लाने की पूरी कोशिश करूँगी।
1: भारत का रोइंग से पुराना रिश्ता रहा है, भारतीय सेना के जवानों की वजह से भारत का रोइंग में बेहतरीन इतिहास रहा। भारत ने 1982 में अपना पहला रोइंग पदक कांस्य जीता था। इसके बाद बजरंग लाल ताखर, जिन्होंने 2010 में स्वर्ण पदक जीता, स्वर्ण सिंह और हाल ही के वर्षों में अर्जुन लाल जाट, अरविंद सिंह और बलराज पंवार जैसे नाविकों ने भारत की पदक यात्रा को आगे बढ़ाया। इस सफर और इस खेल के बारे में ज्यादा बेहतर जानने के लिए हम जुड़े सीनियर खेल पत्रकार जी राजा रमन के साथ।
3: रोइंग में भी भारत हमेशा अच्छे नतीजे आते हैं। अफसोस वाली बात यह है कि हमारी नजर हमेशा शूटिंग और एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग, रेसलिंग में ज्यादा हो जाता है और रोइंग जैसा खेल पीछे रह जाता है, हमारी नजर नहीं पड़ती है रोइंग में। दो स्वर्ण पदक है हमारे पास, 28 मेडल है एशियन गेम के इतिहास में, और फिर अब की बार भी उम्मीद यह है कि भारत के जो रोअर्स है कुछ अच्छे रिजल्ट लेकर आएंगे।
1: अब बात करते हैं कयाकिंग और कैनोइंग की। ये दोनों खेल एक ही श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इनमें बैठने की पोजीशन और चप्पू यानी पैडल के इस्तेमाल में अंतर होता है। कयाकिंग और कैनोइंग को एशियाई खेलों में काफी बाद में शामिल किया गया। 1990 के बीजिंग एशियन गेम्स में इन्हें आधिकारिक प्रतियोगिता के रूप में जगह मिली। इन खेलों में मुख्य रूप से दो तरह की रेस देखने को मिलती है, स्प्रिंट यानी शांत पानी में सीधी और तेज रेस, और स्लैलम जिसमें तेज बहाव वाले पानी में रुकावटों को पार करते हुए खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं। एशियाई स्तर पर इस खेल में चीन, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसी टीमों का दबदबा रहा है। भारत की बात करें तो इस खेल में देश का सफर थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। भारत ने एशियन गेम्स में कयाकिंग और कैनोइंग का पहला पदक 1994 के एशियन गेम्स में जीता था। पुरुषों की C2 1000 मीटर स्पर्धा में भारत ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके बाद लंबे समय तक भारत को इस खेल में पदक का इंतजार करना पड़ा, लेकिन 2023 एशियन गेम्स में इंतजार खत्म हुआ। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम की जोड़ी ने कैनोए डबल 1000 मीटर में कांस्य पदक जीतकर भारतीय कयाकिंग और कैनोइंग को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया था। अब 2026 के एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के सामने चुनौती है रफ्तार बढ़ाने की, तकनीक को मजबूत करने की और एशिया की मजबूत टीमों को पीछे छोड़कर पदक तक पहुंचने की। तो कह सकते हैं कि तीरंदाजी में जहां नजरें निशाने पर होंगी, रोइंग में हर स्ट्रोक पर नजरें होंगी, वहीं कयाकिंग और कैनोइंग में मुकाबला होगा रफ्तार, संतुलन और तकनीक का। अब इंतजार है आईची नागोया में आयोजित हो रहे एशियन गेम्स की, जहां भारतीय खिलाड़ी एक बार फिर तिरंगे के साथ उतरेंगे और कोशिश होगी कि भारत की पदक तालिका में कुछ और सुनहरे अध्याय जुड़ सकें। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारतीय जो क्रिकेट टीम है उनकी भी एशियन गेम्स के लिए जो टीम है उसका जो एक चयन है वो हो चुका है। श्रेयस अय्यर जिन्हें कैप्टन बनाया गया है, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेट कीपर, ईशान किशन और शिवम दुबे, तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यश ठाकुर, हर्षित राणा को बाहर किया गया है, तो यश ठाकुर ने यहां पर जगह बनाई है। और अब यूएस ओपन की खबर के लिए चलते हैं अपने सहयोगी अनु के पास।
4: यूएस ओपन 2026 अब अपने सबसे रोमांचक दौर में पहुंच चुका है और इस बार क्वार्टर फाइनल में न्यूयॉर्क के आर्थर एश स्टेडियम में कुछ ऐसे मुकाबले देखे जिसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। पुरुष सिंगल्स में सबसे पहले बात फ्रांसिस टियाफो और एलेक्स मिशेलसन के ऑल अमेरिकन मुकाबले की। शुरुआत में मिशेलसन पूरी तरह हावी नजर आए और उन्होंने पहले दो सेट 7-5 और 6-3 से जीत लिए। तीसरे सेट में भी ऐसा लग रहा था कि टियाफो की चुनौती बस खत्म होने वाली है, लेकिन यहीं से मैच ने करवट ली। घरेलू दर्शकों के जबरदस्त समर्थन के बीच टियाफो ने खुद को संभाला और अगले दो सेट 7-5 और 6-3 से जीतकर मुकाबला पांचवें सेट तक खींच दिया। निर्णायक सेट भी टाई ब्रेकर तक गया, जहां टियाफो ने 10-6 से बाजी मार ली। 4 घंटे 38 मिनट से ज्यादा चले इस मुकाबले को उन्होंने 5-7, 3-6, 7-5, 6-3, 7-6 से जीतकर अपने करियर में तीसरी बार US ओपन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लेकिन न्यूयॉर्क की सबसे नाटकीय रात अभी बाकी थी। अमेरिका के बेन शेल्टन के सामने थे डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्कराज। 5 सेट तक चले इस मुकाबले में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कोई मौका आसानी से नहीं दिया। पहला सेट अल्कराज ने टाई ब्रेकर में जीता, लेकिन इसके बाद शेल्टन ने जोरदार वापसी करते हुए अगले 2 सेट अपने नाम कर लिए। अल्कराज ने 4th सेट 6-1 से जीतकर मैच को निर्णायक सेट तक पहुंचाया, लेकिन आखिरी सेट के टाई ब्रेकर में शेल्टन ने दबाव को बेहतर तरीके से संभाला और मुकाबला 6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 से जीत लिया। मैच खत्म हुआ 3:33 US ओपन के इतिहास में किसी मैच के खत्म होने का ये सबसे देर का समय है। दूसरी ओर जर्मनी के टॉप सीड अलेक्जेंडर ज्वेरेव का रास्ता अपेक्षाकृत आसान रहा। उन्होंने नीदरलैंड्स के बॉटिक वैंडी जेंशल्प को 6-2, 7-5, 6-1 से सीधे सेटों में हराकर अंतिम 4 में जगह बना ली। सेमीफाइनल में उनका सामना रूस के करेन खाचानोव से होगा। खाचानोव ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के अलेक्जेंडर ब्लॉकक्स चोट के कारण मुकाबला पूरा नहीं कर सके। अब बात महिलाओं के मुकाबले की जाए, यहाँ भी क्वार्टर फाइनल किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। दुनिया की नंबर 1 और 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन अरीना साबालेंका को लिंडा नोस्कोवा ने कड़ी चुनौती दी। तीसरे सेट में एक समय साबालेंका 2-4 से पीछे थी, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए मुकाबला 7-6, 3-6, 7-6 से अपने नाम किया और खिताब की हैट्रिक की उम्मीदों को जिंदा रखा। कोको गाफ की जीत भी कम दिलचस्प नहीं रही। मीरा एंड्रीवा के खिलाफ गाफ पहला सेट 2-6 से हार गई थी और दूसरे सेट के टाई ब्रेकर में उन्होंने 2 मैच पॉइंट भी बचाने पड़े, लेकिन घरेलू दर्शकों के सामने गाफ ने हार नहीं मानी। दूसरा सेट टाई ब्रेकर में जीतने के बाद उन्होंने निर्णायक सेट 6-2 से अपने नाम किया और 2-6, 7-6, 6-2 की जीत के साथ सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। एलेना रायबाकिना के लिए यह क्वार्टर फाइनल जीत और भी खास रही। चीन की झेंग किनवेन के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद रायबाकिना ने शानदार वापसी करते हुए मुकाबला 3-6, 6-1, 6-4 से जीत लिया। इस जीत ने उन्हें न केवल US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचाया, बल्कि पहली बार दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी बनना भी सुनिश्चित कर दिया। टूर्नामेंट के बाद जारी होने वाली नई रैंकिंग में वे अरीना साबालेंका की जगह शीर्ष स्थान संभालेंगी। वहीं जेसिका पेगुला ने हमवतन एमा नावारो के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद वापसी की और 3-6, 6-4, 4-6-3 से मुकाबला जीत लिया। इसके बाद ही पेगुला लगातार तीसरे साल US ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। अब नजर सेमीफाइनल पर डालें। पुरुष वर्ग में अलेक्जेंडर ज्वरेव का मुकाबला करेन खाचानोव से होगा, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में 2 अमेरिकी खिलाड़ी बेन शेल्टन और फ्रांसिस टियाफो आमने सामने होंगे। यानी अमेरिकी दर्शकों के लिए यह घरेलू खिलाड़ी का फाइनल में पहुंचना तय है। महिलाओं में अरीना साबालेंका के सामने जेसिका पेगुला की चुनौती होगी, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में नई वर्ल्ड नंबर 1 बनने जा रही एलेना रायबाकिना और घरेलू स्टार कोको गॉफ आमने सामने होंगी। कुल मिलाकर इस बार न्यूयॉर्क में टेनिस सिर्फ शानदार नहीं रहा, बल्कि बेहद अप्रत्याशित भी रहा। देर रात तक चले मुकाबले, 2 सेटों से पिछड़ने के बाद वापसी, मैच पॉइंट बचाकर जीत और एक नई वर्ल्ड नंबर 1 US ओपन 2026 ने क्वार्टर फाइनल में ही दर्शकों को लगातार हर तरह का रोमांच दे दिया है। तो काफी रोमांचक रहा है US ओपन और ये इस मोड पर आ गया है कि कुछ भी हो सकता है। और अब चलते हैं टेनिस कोर्ट से हॉकी के मैदान पर और जानते हैं विमेंस क्वार्टर फाइनल में किसने मारी बाजी।
5: तो बात करते हैं जूनियर एशिया कप में भारत की जो महिला टीम है उन्होंने पाकिस्तान पर ऐतिहासिक 19-0 की जीत जो है वो हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी से भारतीय हॉकी के लिए बड़ी और शानदार खबर है। महिला जूनियर एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने ऐसा आक्रामक प्रदर्शन किया कि मैदान पर गोलों की बारिश ही हो गई। भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यहां पर ये जो पूरा ही मैच है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा, जहां पर क्वार्टर फाइनल में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शानदार शुरुआत से ही पाकिस्तान पर एक जो दबदबा है वो बनाए रखा। भारतीय खिलाड़ियों ने पहले ही 5 मिनट में 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए, हालांकि दोनों मौकों को गोल में नहीं बदला जा सका। लेकिन 6 मिनट में भारत ने गोल किया, लेकिन रेफरी के बाद उसे रद्द कर दिया गया। ये शुरुआती चुनौतियां थी। उसके बाद भारत का जो एक लय उसको मिला, उसके बाद उन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा और पाकिस्तान के लिए जो चुनौतियां थी, मुश्किलें थी, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिले, जिसे सुखवीर कौर ने 13वें मिनट में आसानी से गोल में बदल दिया। इसके बाद सानिका चंद्रकांत माने ने फील्ड गोल किया, मधु सिदार ने भी 16वें मिनट में गोल किया। इसके बाद गीता यादव ने भारत को 7-0 से बढ़त दिला दी, पूजा मलिक ने भी गोल किया। इसके बाद कुल 8 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक हासिल हो गए। यहां पर तीसरे क्वार्टर में बहुत रफ्तार जो है वो टीम ने अपनी बढ़ा दी और ये जो रफ्तार है लगातार चलती गई, जिसकी वजह से भारत ने इस मुकाबले को इतने शानदार तरीके से जीता अनु कि यहाँ पर जो एक आंकड़ा है वो ही पूरा बदल गया, कहानी बदल गई। आंकड़े भी भारत के दबदबे की इस पूरी कहानी को बता ही रहे हैं। भारत ने मुकाबले में 18 पेनल्टी कॉर्नर और एक पेनल्टी स्ट्रोक हासिल किया, जबकि

0: पाकिस्तान को ना तो कोई गोल मिला, ना पेनल्टी कॉर्नर मिला और ना ही पेनल्टी स्ट्रोक मिला। तो 19 गोल शानदार आक्रमण और शून्य गोल के साथ जीत भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में पहुंचकर खिताब की ओर अपना एक और मजबूत कदम बढ़ा दिया।
1: बहुत ही शानदार खबर। और हॉकी के ही मैदान से खबर आ रही है मेंस कैटेगरी की, आइए डालते हैं। इंडिया फाइनल से सिर्फ एक जीत दूर है और सामने है मलेशिया। सुनते हैं एक रिपोर्ट। अब बात हॉकी की, जहां डिफेंडिंग चैंपियन इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम जूनियर एशिया कप के फाइनल में बस एक जीत दूर है। शुक्रवार 11 सितंबर को चाइना की मौकी में खेले जाने वाले सेमीफाइनल में इंडिया के सामने मलेशिया की चुनौती होगी। इंडियन टीम जिस अंदाज में अब तक खेली है उसे देखते हुए उनका पलड़ा जरूर भारी नजर आता है, लेकिन नॉकआउट मुकाबले में मलेशिया को हल्के में लेने की गलती इंडिया बिल्कुल नहीं कर सकता। इंडिया ने पूल ए में 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ 10 पॉइंट्स हासिल किए और अपने ग्रुप में पहले स्थान पर पहुंचते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत इंडोनेशिया के खिलाफ 14-0 की बड़ी जीत से की। इसके बाद जापान के साथ मुकाबला 3-3 से बराबर रहा। साउथ कोरिया के खिलाफ इंडिया ने 7-3 से जीत दर्ज की और फिर अपने आखिरी पूल मैच में चाइनीज ताइपे को 15-0 से हराकर सेमीफाइनल का टिकट पक्का किया। यानी 4 मुकाबलों में इंडियन टीम ने कुल 39 गोल्स किए, जो उसके अटैकिंग गेम की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। इंडिया के लिए सबसे अच्छी खबर कैप्टन अनमोल इक्का की फॉर्म है। चाइनीज ताइपे के खिलाफ उन्होंने अकेले 6 गोल दागे और खास बात ये रही कि ये सभी गोल्स पेनल्टी कॉर्नर से आए। इस प्रदर्शन के बाद टूर्नामेंट में उनके गोल्स की संख्या 14 हो गई है। उनके अलावा प्रभदीप सिंह, आर्यन जैस, गुरुसेवक सिंह, अजीत यादव और लवनीर सिंह जैसे खिलाड़ियों ने भी समय समय पर इंडिया के लिए गोल्स किए हैं। ऐसे में मलेशियन डिफेंस के सामने सिर्फ किसी एक खिलाड़ी को रोकने की चुनौती नहीं होगी। दूसरी तरफ मलेशिया ने पूल बी में दूसरा स्थान हासिल कर अंतिम 4 में प्रवेश किया है।
0: तो इसी के साथ, क्योंकि जो मुकाबला है वो भारत का होना है, अब ये निर्धारित होगा कल के मैच में। लेकिन अब बात कर लेते हैं फुटबॉल की। चलिए सुनते हैं सुब्रतो कप पर ये रिपोर्ट।
1: अब बात फुटबॉल की, जहां 65वां सुब्रतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट अंडर 15 बॉयज कैटेगरी में वेस्ट बंगाल ने खिताब अपने नाम कर लिया है। बेंगलुरु के सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड में खेले गए फाइनल में मानिकपारा विवेकानंद विद्यापीठ वेस्ट बंगाल ने कामरूप मेट्रोपॉलिटन सीनियर सेकेंडरी स्कूल असम को बेहद करीबी मुकाबले से 1-0 से हराया। फाइनल में दोनों ही टीम्स ने शुरुआत से संभल कर खेल दिखाया। असम ने वेस्ट बंगाल को आसानी से मौके नहीं दिए और मुकाबला लंबे समय तक बेहद कड़ा बना रहा, लेकिन आखिरकार वेस्ट बंगाल एक जरूरी गोल हासिल करने में कामयाब रहा और यही दोनों टीम्स के बीच अंतर साबित हुआ।
0: तो अब क्योंकि समय जो है वो इस कार्यक्रम को हमें आगे ले जाने की अनुमति नहीं दे रहा, लेकिन फिलहाल एक खबर एथलेटिक्स ग्राउंड से। सीरीज है फाइनल और इसमें 100 मीटर में विमेंस में जो विनर है वो है हरिता और मेंस में है अनिमेश कुजूर। इसी के साथ मुझे कविता शर्मा को मेरे सहयोगी अनु गुप्ता के साथ प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
3: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
4: इंडिया अप्रोच इज रूटेड इन वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दिस स्पिरिट मस्ट नाउ ट्रेवल बियॉन्ड अर्थ। वी सपोर्ट अ सेफ, सिक्योर पीसफुल एंड सस्टेनेबल स्पेस डोमेन एंकर्ड इन इंटरनेशनल लॉ डायलॉग एंड मल्टीलेटरल कोऑपरेशन. साइंटिफिक डेटा मस्ट सर्व द कॉमन गुड विद ओपननेस एंड इंटीग्रिटी. इंडिया स्पेस जर्नी रिफ्लेक्ट दिस फिलोसॉफी.
3: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना. उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आएंगे. चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति शी 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है. इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से सोमवार तक राजधानी में ड्रोन और अन्य छोटे हवाई उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ये आदेश जारी किया है. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है. श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने दूरदराज और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में भरोसेमंद बिजली विकल्प उपलब्ध कराने में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के महत्व पर बल दिया है. नई दिल्ली में श्री नाइक ने आज भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी के पूर्वावलोकन कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में उल्लेखनीय बदलाव आया है. और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे. भारत ने ग्रुप चरण के अपने तीनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह बनाई है. और भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में भी अपना स्थान पक्का कर लिया है. अब 12 सितंबर को सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला दक्षिण कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
5: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the International Space Summit at Paris in France today.
4: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
5: Highlighting the remarkable growth of country's space journey, Mr. Modi said, India aims to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. Prime Minister Modi said, the country's guiding principle is clear, their benefits must reach all humanity. Lauding the role of ISRO in space journey, Mr. Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. New Delhi is gearing up to host the 18th BRICS Summit this weekend with heightened security, infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit beginning at Bharat Mandapam on Saturday brings together the world's major

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिना शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। पेरिस नगरे अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्ष सम्मेलनं सम्बोधितवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। वैज्ञानिक तथ्यानां उपयोगे पारदर्शितायाः सत्यनिष्ठायाश्च आवश्यकतामपि प्राधान्येन असौ प्रास्तौत्। नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः लोकहितैषिणा प्रिंस रहीम आगा खान पञ्चमेन सह संजाता मन्त्रणा। अत्रावसरे स्वास्थ्यरक्षायां ग्रामीणाभिवृद्धौ युवमहिला सशक्तिकरणे च सहभागितायै जातः विचार विनिमयः। मातृशिशु कल्याण क्षेत्रे अथ असंचारी रोगाणां नियंत्रणे भारतस्य अभूतपूर्व स्वास्थ्योपलब्धिः भूरिशः प्राशंसयत् विश्व स्वास्थ्य संघटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ। अद्य ओडिशा राज्ये तीव्रात् अतितीव्रवृष्ट्यै ऋतु विज्ञान विभागेन रक्त संचेतना प्रख्यापिता। अपि च महिला एशिया चषक प्रतियोगितायाः उपान्त्यचक्रे भारतीय दलं दुबई नगरे अद्य सायं बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उद्घोषितं यत् भारतं अन्ताराष्ट्रिय विधेः संवादस्य बहु

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम, राम। अतुल भाई
1: जी, पायल बहन
0: भाई, आज बृहस्पतिवार का दिन है और आज हमारा जो खास कार्यक्रम होता है, जो होता है SMS पर आधारित लोक संगीत का कार्यक्रम, और इसमें हमारे सभी भाई बहन अपनी फरमाइश के कलाकार को सुनते हैं और उसके लिए भाई हमारे पास SMS भी आते हैं, लेकिन हर दिन कोई ना कोई अपने बात अपने आप में खास बात ली होता है। और कहते हैं ना, जान है तो जहान है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है वो आत्महत्या के मामलों को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना और लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाना होता है।
1: बिल्कुल, और देखिए इसकी शुरुआत जो हुई थी वो पहली बार वर्ष 2003 में अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से की गई थी।
0: बिल्कुल, और इसका अपने आप में एक खास महत्व भी है अतुल भाई।

0: दिन इस बात पर जोर देता है कि सही समय पर बातचीत और सहयोग से कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। और खास दिन की बात हो रही है तो
1: बातचीत हम और भी करेंगे, लेकिन भाई जैसा कि हमारा फरमाइश का कार्यक्रम है तो भाई आज के जो हमारे कलाकार हैं वो हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। इनके लिए हमारे पास में काफ़ी SMS आ चुके हैं। पहले बहन, ये SMS हमें मिला है चंडीगढ़ सिटी से, भेजने वाले हैं सतीश अनेजा, विमला अनेजा और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से, भेजने वाले हैं मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और इनका पूरा परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से फरमाई भेज रहे हैं PS नाहवकर और इनका पूरा परिवार। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से फरमाई भेज रहे हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा और इनका पूरा परिवार।
0: ऋषिपाल और कौशिंदर खदाना को ही सुनने के लिए हमारे पास ये फरमाइश भेजी है एकता कॉलोनी रोहतक से, भेजने वाले भाई हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट और परिवार के सभी सदस्य। ये फरमाइश हमें मिली है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले भाई हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और परिवार के सभी सदस्य। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हमें फरमाइश भेजी है अनिल मोहन, उषा मोहन परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा से भी फरमाइश भेजी है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और परिवार के सदस्यों ने। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बनने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजने वाले भाई हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से फरमाइश भेज रहे हैं रामशरण विश्वकर्मा उनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नूरमहल मैसोल सीतामढ़ी बिहार से, भेजने वाले हैं मुर्शद जहानाज और इनका पूरा परिवार। पठान टोली कलेर से फरमाइश भेज रहे हैं निखत परवीन और इनका पूरा परिवार। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश भेज रहे हैं अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है राशिद हुसैन अंसारी की, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रजाक मोहम्मद, सबीम बेगम और इनका पूरा परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं लालगिरी गोस्वामी और इनका पूरा परिवार। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं भाई मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और इनका पूरा परिवार। ताज मोहम्मद अंसारी हमें फरमाइश भेज रहे हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है कबीर रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से फरमाइश भेज रहे विक्रम कडवासरा, सचिन कडवासरा और इनका पूरा परिवार।
0: ग्राम पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें आई है गांधीनगर गुजरात से, भेजने वाले भाई हैं सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़ और परिवार के सभी सदस्य। मेरठ कैंट से भी हमें फरमाइश भेजी है कविता गौड़ और दिग्दर्शन गौड़ ने। ये फरमाइश हमें भेजी है बेहरवाला खुर्द सिरसा से, भेजने वाले भाई हैं बलवंत जाखड़, ममता जाखड़ और परिवार के सभी सदस्य। हनुमानगढ़ टाउन से हमें ये फरमाइश भेजी है सुल्तान सिंह टाड़, मुकेश कृष्ण और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमें ये फरमाइश भेजी है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह गिल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें भेजी है वडिंगखेड़ा पंजाब से, भेजने वाले भाई हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमें भेजी है कुगदा कुम्हारी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले भाई हैं बलराम बया, दामिनी बया और परिवार के सभी सदस्य।
1: सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर ऋषिपाल और कौशिंदर खदाने की आवाज में ये रागनी।
2: अकल भंग हुई सौदागरी

0: जो है फरमाइश आ चुकी है, जो है करमवीर। और करमवीर को सुनना चाहा है गांव लोहडाड़ा जिला बागपत से भेजने वाले भाई हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, प्यारी पोती भुवनेश्वरी और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमें भेजी है करावल नगर दिल्ली से भेजने वाले भाई हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन जी और इनका पूरा परिवार। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से ये फरमाइश हमें भेजी है रमेश कुमार कंबोज, पिंकी और पूरे परिवार ने। ये फरमाइश हमें भेजी है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से भेजने वाले भाई हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा और इनका पूरा परिवार।
1: ये SMS हमें मिला है पलारी छत्तीसगढ़ से, भेजने वाले हैं नीतीश कुमार देवांगन और इनका पूरा परिवार। साहू नगर यवतमाल से फरमाइश भेज रहे हैं राहुल मनवर और इनका पूरा परिवार। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से फरमाइश भेज रहे हैं मोहम्मद सईद अब्बासी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये पायल बहन गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं वेद मिड्डा, अलका मिड्डा और इनका पूरा परिवार। पटेल नगर मैलोट से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजौरिया और इनका पूरा परिवार। साले भाटा महासमुंद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं जीतू ध्रुव और इनका पूरा परिवार। गाँव खोकरावली श्री गंगानगर से फरमाइश भेज रहे विनोद बारसा और इनका पूरा परिवार। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से भी हमारे पास में SMS आया है, भेजने वाले हैं राष्ट्रपाल गजबिये और इनका पूरा परिवार। जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश भेज रहे हैं जॉन डिकेस्टो और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है खुर्जा उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले हैं तिलक राज अरोड़ा और इनका पूरा परिवार।
0: गांव डाडी लाल खां नोहर से हमें ये फरमाइश भेजी है जावेद खां, अरमान खां और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर से भी हमें फरमाइश भेजी है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें भेजी है कुलाम रोड हर गोविंद नगर नवाशहर पंजाब से, भेजने वाले भाई हैं सुरेंद्र संधु, अनीता संधु और परिवार के सभी सदस्य। बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से भी हमें फरमाइश भेजी है, भेजने वाले भाई हैं सुरेश ग्रोवर, बेबी ग्रोवर और परिवार के सभी सदस्य। गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से ये फरमाइश भेजी है, भेजने वाले भाई हैं सतबीर सिंह विजारनिया और देवेंद्र और इनके परिवार के सभी सदस्य। और ये फरमाइश हमें भेजी है भोपालगढ़ राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और परिवार के सभी सदस्य। रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश भेजी है खिलेश कुमार साहू, चित्र रेखा साहू और परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमें भेजी है जलालपुर जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, भेजने वाले भाई हैं श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम प्रजापति और परिवार के सभी सदस्य।
1: MLB रोड ग्वालियर से फरमाइश भेज रहे हैं सुरेश खुराना पप्पी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है पिंगा वाला चौक गोरैया जलंधर से, भेजने वाले हैं संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और इनका पूरा परिवार। जिला नादेड़ येताला महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं शंकरलाल जायसवाल और इनका पूरा परिवार। सादुल शहर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं रामकुमार रेवाड और इनका पूरा परिवार। और छत्तीसगढ़ दतरंगी से फरमाइश भेज रहे हैं भागवत वर्मा, शांति देवी और इनका पूरा परिवार। गाँव गोविंदगढ़ मांझी वाला श्री करणपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं राजू टूटेजा, खुश दिल और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है कोटवा नारायणपुर बावापट्टी बलिया से, भेजने वाले हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है बक्सर बिहार से, भेजने वाले हैं सरफुद्दीन अंसारी और इनका पूरा परिवार। डुमरा बिहार से फरमाइश भेज रहे हैं डॉक्टर W अंसारी और इनका पूरा परिवार। सारेपुर बक्सर से भी हमारे पास में ऐसे मैसेज आया है, भेजने वाले हैं राजा HD अंसारी और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर क्रमवीर सिंह की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो पायल बहन अभी हमारे भाई सुन रहे थे करमवीर सिंह की आवाज़ में ये रागनी और किस्सा था गोपी चंद। और भाई अगले जो हमारे कलाकार हैं वो हैं बल्ले कल्याण। इनके लिए भी हमारे पास में काफ़ी SMS आ चुके हैं और ये SMS हमें मिला है गांव
1: गांव राजौरी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से भेजने वाले भाई हैं उदय भानपाल और इनका पूरे परिवार। ये फरमाइश हमें भेजी है कुमार हेड़ा सहारनपुर से। भेजने वाले भाई हैं सैयद मसरूर और इनका पूरा परिवार। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से ये फरमाइश भेजी है निसार सलमानी और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। पद्मा टॉकेज नेपा नगर मध्य प्रदेश से ये फरमाइश भेजी है सुदर्शन शाह और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। भटिंडा रोड मंडी वाली डब्बाली से ये फरमाइश भेजी है राजेंद्र नारंग और परिवार के सभी सदस्यों ने। जलालाबाद वेस्ट से भी फरमाइश हमें भेजी है सुरेश गगनेजा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। गांव चौलदा बागपत उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश भेजी है संजय ढींगिया और परिवार के सदस्यों ने।
0: जितेंद्र दास हमें SMS भेज रहे हैं आसाम से, ये भी सुनना चाहते हैं भाई बल्ले कल्याण की आवाज़ में कोई रागनी। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेज रहे हैं हीरा मणि वर्मा और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में ये है कलानौर से भेजने वाले नरेंद्र शर्मा और इनका पूरा परिवार। दुर्गा कॉलोनी हांसी से फरमाइश भेज रहे हैं राजू मिगलानी और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है जसपुर उत्तराखंड से भेजने वाले हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है सार्थक एलोकिक चंसौलिया की और सत्येंद्र कुमार चंसौलिया की, गांव पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। और ये फरमाइश हमारे पास में आई है पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से भेजने वाले हैं मेहर अरोड़ा ममता अरोड़ा इनका पूरा परिवार। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से फरमाइश भेज रहे हैं अभिजीत गवानकर राही और इनका पूरा परिवार। दादीगेट भिवानी से फरमाइश भेज रहे हैं कृष्ण मेहरा और इनका पूरा परिवार। संबलपुर कांकेर से फरमाइश भेज रहे हैं फागुराम यादव और इनका पूरा परिवार। और ये फरमाइश हमारे पास में आई पायल बहन सूरतगढ़ राजस्थान से भेजने वाले हैं भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार।
1: ये फरमाइश हमें भेजी है राज नंदगांव छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं बबलू शाहू और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमें भेजी है रामगढ़ कैंट से भेजने वाले भाई हैं महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और इनका परिवार। गांव नथाना पंजाब से फरमाइश भेजी है हरजिंदर छिंदा और इनके परिवार ने। और ये फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से हमें फरमाइश भेज रहे हैं नासिर शेख और परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मॉलआउट पंजाब से फरमाइश भेज रहे हैं राज शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य। राजू अग्रवाल और परिवार के सभी सदस्यों ने फरमाइश भेजी है चौधरी वास हिसार से। और ये फरमाइश हमें

0: भेजी है जीटीबी मार्केट अहमदनगर अहमदगढ़ मंडी पंजाब से भेजने वाले भाई हैं मोहम्मद अनवर और इनके पूरे परिवार के सदस्य। गांव फरांसी जिला हिसार से भी हमें फरमाइश भेजी है राजकुमार डूडी और परिवार के सभी सदस्यों ने। दादा बाबू रोड झारखंड से फरमाइश भेजी है मोहम्मद यासीन और इनके परिवार के सदस्यों ने।
1: ये फरमाइश हमारे पास में गांव चौधरीवास हरियाणा से भेजने वाले हैं मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। ढाना नारसन भिवानी से फरमाइश भेज रहे हैं जगदीश चिंडालिया और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है भोला कलोनी गरौना जिला करनाल हरियाणा से भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार जयजान और इनका पूरा परिवार। तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर बल्ले कल्याण की आवाज़ में ये रागनी।

0: तो अतुल भाई, अभी हम सभी अपने भाई बहनों को सुनवा रहे थे चंद किरण के किस्से से, ये रागनी और भाई हमारे कलाकार थे आज के बल्ले कल्याण।
1: और इसी के साथ आज का हमारा ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी बहन भाइयों को हमारी राम राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाने रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज Space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग इस सप्ताह नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति जिनफिंग 12 और 13 सितंबर को 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वैश्विक अस्थिरता, पश्चिम एशिया में संघर्ष और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह यात्रा ब्रिक्स सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल मानी जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस के सुरक्षा प्रभाग के विशेष आयुक्त

0: नीश कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले विशिष्ट अतिथियों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है।
1: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं, और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में प्रसिद्ध समाजसेवी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान विकास नेटवर्क के समाजसेवी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार के साथ मिलकर काम करने वाले गैर लाभकारी संगठन लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार ला सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भी प्रिंस रहीम आगा खान पंचम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने पानी और साफ सफाई, महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों, शिक्षा और सामुदायिक विकास में आगा खान विकास नेटवर्क के योगदान पर चर्चा की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में उभरते विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सम्मेलन 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चीन के पूर्वी बंदरगाह शहर चिंगदाओ में एक मरम्मत के लिए खड़े विदेशी ध्वज वाले मालवाहक जहाज में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई। सरकारी प्रसारक सीसीटीवी के अनुसार लाइबेरिया के ध्वज वाले बल्क कैरियर ओशन मेलोडी में आज सुबह आग लगी। और खेलों में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में आज रात 8 बजे दुबई में भारत और बांग्लादेश आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम किसान वाणी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाई बहनों को नमस्कार। रजनीश, जब भी हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं हमारे श्रोताओं के साथ साथ हम भी बड़े ही प्रसन्न होते हैं और हमारी प्रसन्नता का कारण यही होता है, इसमें हम बात करते हैं खेत खलियान की, मौसम की, क्या क्या नई तकनीक हमारे किसान भाई अपना रहे हैं।
4: कमलेश, इस कार्यक्रम में हमारा यह प्रयास रहता है कि हम अपने किसान भाई बहनों से जुड़े हर विषय पर बात करें ताकि उनका उत्पादन भी बढ़े और आमदनी भी दोगुनी हो।
3: और जब आप बात करते हैं आमदनी दोगुनी करने की, उसमें हम उन्हें

0: नई नई जो जानकारियां होती हैं वो हम उन्हें उपलब्ध कराते
1: जी,
0: हैं।
1: और यही बात है कि आज हम इस विषय पर बात करेंगे, जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। और साथ ही हम चर्चा करेंगे कृषि विज्ञान केंद्र पर, बताएंगे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव, देंगे मौसम की जानकारी के साथ कृषि सलाह। और सबसे पहले चर्चा करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पर।
0: भारत में जिला स्तर पर कार्यरत प्रमुख विस्तार संस्थान है ये, जिनका उद्देश्य अनुसंधान विस्तार संबंधों को मजबूत करना है और किसानों को वैज्ञानिक ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाना है। इनकी उत्पत्ति शिक्षा आयोग से मानी जा सकती है।
1: आज भारत में 638 ग्रामीण जिलों को कवर करने वाले 731 केंद्रों का एक नेटवर्क है, जिनमें से पहला केंद्र 1974 में पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। और इनका जो उद्देश्य है वो है कृषि प्रौद्योगिकियों का मूल्यांकन और किसानों के खेतों में उनका प्रदर्शन, ताकि उनका उपयोग किया जा सके और उनसे प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके। किसानों, महिला किसानों, युवाओं और विस्तार कार्यकर्ताओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता का विकास करना भी इनका एक उद्देश्य है।
0: किसानों और अन्य हितधारकों को निदान और कृषि संबंधी सलाह प्रदान करने के लिए एक सूचना और ज्ञान केंद्र के रूप में भी ये कार्य करता है। किसानों को उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज, रोपण सामग्री और अन्य तकनीकी इनपुट का उत्पादन, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विभिन्न विभागों और संगठनों की कृषि संबंधी चल रही योजनाओं और कार्यक्रमों के साथ समन्वय और साझेदारी विकसित करता है।
1: तो भाई, ये तो बात थी कृषि विज्ञान केंद्र की। और देखिए कमलेश, आज पूरी दुनिया में बहुत तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है।
0: जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनके पास से इतनी तकनीक होती है कि उन तकनीक को अपनाकर वो अपने कृषि कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और अब ये जरूरी भी हो गया है कि हमारी खेती भी बदलती जलवायु के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़े। आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं, जलवायु सहनशील कृषि भविष्य में खाद्य सुरक्षा की कुंजी। हमारे आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अनंता वशिष्ठ, प्रधान वैज्ञानिक कृषि भौतिकी संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली।
1: डॉक्टर अनंता, आपका बहुत बहुत अभिनंदन।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर अनंता। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ये जलवायु सहनशील कृषि है क्या?
2: तो इसे हम एक टाइप से कहेंगे कि एक पद्धति है जिसमें खेती की हम तकनीक है, डिफरेंट तकनीकों को हम अपनाते हैं। जैसे फसल का चयन कैसे करना है, हमको डिफरेंट जो संसाधन है हमारे, चाहे वो इरिगेशन का है या अपनी मृदा है, उसको किस प्रकार से हमको रखना है, इन सबको हम अपनाते हैं। इसको अपनाने से जो कृषि प्रणाली है जिसमें जो प्रतिकूल प्रभाव हो रहे हैं, जैसे कि आप देख ही रहे कि आज दुनिया के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जलवायु परिवर्तन है और उससे उत्पन्न होने वाली खतरे हैं। जैसे आप देखते हैं बेमौसम वर्षा हो रही है या बहुत ज्यादा वर्षा हो जाती है, कई जगह आप देख रहे हैं कि बाढ़ जैसी समस्या आ जाती है, कई जगह सूखा आ जाता है, ये सब जो जलवायु परिवर्तन से जो चरम मौसमी घटनाएं हो रही हैं, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसमें हमारी जो कृषि है, जो हम खेती कर रहे हैं, इसका जो असर है उसको हम कम से कम करें या ना के बराबर करें, तो हम इसके लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं और हम उसको कहते हैं जलवायु सहनशील कृषि कर रहे हैं। और इसको अपनाना हमारे लिए आज के दौर में बहुत जरूरी है। तो अगर हमको अपना कृषि का उत्पादन बढ़ाना है, ये जलवायु सहनशील जो कृषि है इसकी पद्धतियों को हमको अपनाना ही है।
1: डॉक्टर अनंता, कि आपने जैसे अब बताया कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो अगर मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारतीय कृषि और खाद्य सुरक्षा पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है?
2: जी, जैसे कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, आज से कुछ सालों पहले हम कहते थे कि होगा, लेकिन आज के दौर पे हम देख रहे हैं हो रहा है। तो इसका सीधा प्रभाव जो है हमारे कृषि पे पड़ता है, जो हमारी कृषि की उत्पादकता है, उसका जो गुणवत्ता है उस पे इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा बारिश हो गई तब भी हमारी खेती इस पे असर करती है, कम बारिश हो गई, सूखा जैसी स्थिति आ गई, तो हमारी फसलों को इससे असर पड़ता है। जो फसल होती है उसके जो विभिन्न चरण होते हैं, चाहे वो बुआई से पहले या बुआई का चरण है, उसके बाद उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, वनस्पतिक वृद्धि होती है, उसका रिप्रोडक्टिव स्टेज है, फूल लगना, फल लगना, उसका मैच्योरिटी आना, इवन उसके बाद भी ट्रांसपोर्ट में रखना है, स्टोरेज करना है, ईच एंड एवरी स्टेज पे हमको एक उपयुक्त वातावरण की जरूरत होती है अगर हमको उसकी गुणवत्ता बनाई रखनी है। लेकिन आज के दौर में आप देख रहे हैं कि ये जलवायु परिवर्तन के वजह से आप हर दिन देख रहे हैं कि मौसम अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है। कभी सामान्य से तापमान ज्यादा चला जाता है, कभी कम चला जाता है, कभी आपकी बारिश अधिक हो जाती है, उसका वितरण नहीं हो रहा है, तो हमको फसलों का जो विभिन्न चरण है उसमें उसका उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है, तो इसका सीधा असर उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्पादकता पर पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन का जो सीधा असर है वो आपकी खेती पे होता है, मौसम का काफी असर उस पर पड़ता है। और इसको कम करने के लिए हमें जो जलवायु अनुकूल खेती या जलवायु सहनशील कृषि को अपनाना होगा, जिसकी जो पद्धतियां हैं उनको हमको अपने

0: खेती में लाना होगा, जिससे हमारी जो कृषि है और जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है उसको झेल सके और अपनी उत्पादकता को हम स्थिर रख सके।
1: डॉक्टर अनंता, कि क्या इसमें पशु स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य पर भी कुछ दुष्प्रभाव पड़ते हैं जलवायु परिवर्तन से?
0: क्योंकि जलवायु परिवर्तन मीन्स आपके जो चरम मौसमीय घटनाएं है उसमें आपकी बढ़ोतरी हो रही है, चाहे वो आपका हीट वेव है, गर्म हवाएं चलना है, शीत हवाएं अभी आएंगे, या बेमौसम बारिश है, तो इस वजह से खेती तो प्रभावित होती है। इसके साथ साथ जो हमारे पशुधन है उन पे भी इसका असर पड़ता है, हमारे मानव स्वास्थ्य पे भी इसका असर पड़ता है।
1: और खाद्य सुरक्षा किस तरह से प्रभावित होती है?
0: जी, जैसे कि हमारे अगर पशुओं पे इसका असर पड़ेगा तो जो पशुओं से दूध का प्रोडक्शन है या आपका फिशरी से है तो इन सब पे आपका असर पड़ेगा। तो जो आपके खेती में जो उत्पादकता गुणवत्ता पे असर पड़ रहा है, ऐसे ही आपका जो है हमारे पशुओं से जो उत्पादन मिलता है, चाहे वो दूध है या आपका मांस है या आपका अंडे है, इन पे भी असर पड़ता है।
1: डॉक्टर अनंता, आपने बड़े विस्तार से दुष्प्रभावों पर तो बात की कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं, लेकिन अब इन चुनौतियों को जो हमें सामना करना है, तो जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को हम किस तरह से अपना सकते हैं, ये क्या पद्धतियां होती हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
0: जी, इसमें तो सबसे पहले हमारा फसल प्रबंधन आता है। जैसे हमको मौसम के अनुसार जलवायु सहनशील किस्में लगानी है, जैसे जहाँ पे हमको पता है कि यहाँ सूखा ज्यादा आता है या यहाँ पे बाढ़ की स्थिति ज्यादा बन जाती है, तो हम सबसे पहले फसल को अपनाना है और उनकी किस्मों को अपनाना है। जैसे अगर हमको पता है कि हमारा जो एरिया इसमें ज्यादा बारिश होगी, जो वाटर लविंग क्रॉप होती है, जैसे हम खरीफ में ही कहेंगे कि धान को जो है पानी ज्यादा पसंद है, तो हम फसल लगा सकते हैं। उसके बाद हम उस किस्म को अपना सकते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो विभिन्न संस्थान है उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों की कई प्रजातियां, कई किस्में जो है डेवलप की हैं, जो सूखा को भी सहन कर सकती है, बाढ़ जैसी स्थिति को भी सहन कर सकती है, इवन आपकी कई बार जैसे टर्मिनल हीट स्ट्रेस आता है, मैं कहूंगी जैसे आपका गेहूं का ही है, गेहूं की आपकी बुआई हो जाती है नवंबर में, आपकी बुआई हो जाती है फरवरी मार्च में, भी आपने अक्सर देखा होगा उस समय टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता, तो उसको हम कहते हैं कि टर्मिनल हीट स्ट्रेस आ जाता है। उस समय आपकी जो गेहूं की फसल है वो आपकी दुधिया अवस्था में रहती है या आपकी ग्रेन बनने की अवस्था में रहती है। तो अगर आप जो है टर्मिनल हीट स्ट्रेस वाली जो वैरायटी है जो हमारे संस्थान ने उसको डेवलप किया, वो अगर आप वैरायटी लगाते हैं तो उस पर असर कम पड़ेगा या ना के बराबर पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले तो फसल का चयन करना है, उसके बाद उसकी किस्मों का चयन करना है, उसके बाद अगर आपने ये चयन कर दिया तो उसके बाद आपने डे टू डे मौसम आधारित खेती पे ध्यान देना, मौसम पूर्वानुमान का नजर रखते हुए उस पर किस टाइप के आपको प्रबंधन करने हैं आपकी फसलों पे, क्योंकि फसल को जो है ईच एंड एवरी चरण जो उसके बुआई से लेकर कटाई तक का जो समय होता है उसमें उसको उपयुक्त वातावरण देना होता है
1: जी।
0: तो उस समय भी आप देखते हैं कि मौसम में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है, तो उतार चढ़ाव मौसम को देखते हुए अगर मौसम आधारित आप खेती कर रहे हैं, उसमें उस आधार पर प्रबंधन कर रहे हैं, तो आप अपनी फसलों को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं, तो आपकी फसल की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, उत्पादन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको फसल विविधीकरण करना है, आपको एक ही फसल पर निर्भर नहीं रहना, आपको मिश्रित खेती आपको करनी है, आप उसमें दलहनी फसलें भी आप लगाइए, आप उसमें सब्जी वगैरह मतलब अन्य फसलें भी लगाइए, मिश्रित आप खेती कीजिए। तो इसमें क्या है, कई बार आपका मौसम में बदलाव आता है, तो अगर आपका फसल पर असर पड़ता है तो आपका जो दूसरी फसल से कंपनसेट आप कर सकते हैं। इसके अलावा फसल चक्र को अपनाना है, क्रॉप रोटेशन आप कर सकते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि अगर आप एक ही फसल को लगातार लगा रहे हैं तो उसके जो कीड़े और बीमारियां आती हैं, एक बार आ गए तो आपने फिर दोबारा वही फसल आपने लगा ली तो ज्यादा नुकसान करती है। अब जैसे आपने सपोज इस समय एक फसल लगा दी, आपने गेहूं लगा लिया, उसका नेक्स्ट बार आपने दलहनी फसल लगा दी या मस्टर्ड लगा दिया, सरसों लगा दिया, तो उसमें क्या मृदा की भी उर्वरकता बनी रहती है और आपको जो बीमारी या कीड़े आने हैं उससे भी आपको राहत मिल जाती है, क्योंकि एक फसल की बीमारी कीड़े दूसरी फसल पर नहीं आते। तो अगर इस बार आपकी बीमारी उससे थोड़ा नुकसान हो रहा तो अगली बार आपने दूसरी फसल लगा ली तो उस पर उसका असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा आप कैश क्रॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं, कम अवधि की अच्छी किस्में उनको आप लगा के कम समय पे ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। इसके अलावा आपको जल प्रबंधन करना है, जैसे जल प्रबंधन भी आपके काफी जरूरी, आजकल देख ही रहे हैं कि जो बारिश होती है वो एकदम ऐसी हो जाती है कि बारिश से सारा पानी बह जाता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जरूरत। तो मैं तो ये कहूंगी कि आपको एक सरोवर या तालाब जो है खेत के आसपास आप बना लीजिए, जो सरोवर है उसमें आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और जब आपका ड्राई पीरियड होता है उस समय आप उसको किसी पंप के जरिए फिर से खेतों में डाल सकते हैं, तो आपका एक तो खेत का पानी फिर से खेत में आ जाता है, तो जो खेत से आपका जो उर्वरक बह के उसमें चला गया वो फिर से खेत में आपको मिल सकता है। इसके अलावा आपको जैसे ड्रिप इरीगेशन है उसको भी आप कर सकते हैं, या आपका स्प्रिंकलर इरीगेशन है, इससे आपकी पानी की भी बचत हो सकती है। इसके अलावा आप हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, तो हरी खाद का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करोगे, गोबर की खाद है आपकी, जैविक खाद है, तो उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने से मृदा की उर्वरकता बढ़ती है। दूसरा जो है उसमें पानी को अपने अंदर होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। ये सारी तकनीकें आप अपना सकते हैं। इसके अलावा जैसे अभी जो विभिन्न ऐप है, डिजिटल तकनीकी है या प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, इसको भी आप अपना सकते हैं अपनी खेती में। जैसे आप डिजिटल तकनीकी का अगर आप अपना रहे हैं तो आपके ऐप हैं, आपके डिफरेंट मौसम आधारित ऐप उसमें उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आपको सटीक जानकारी समय रहते मिल जाती है। अगर आपको सटीक जानकारी समय रहते मिल जाती है, जैसे मौसम की जानकारी है उसके आधार क्या कृषि प्रबंधन आपको समय रहते करना है, तब वो समय रहते वो प्रबंधन कर देते हैं, तो आपका नुकसान ना के बराबर हो जाता है और आप अच्छा वातावरण फसल को मिल जाता है, तो आपकी उत्पादकता भी अच्छी होती है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है। इसके अलावा प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर से भी आप प्रिसाइज जैसे कह रहे हैं ना, सेंसर तकनीकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, AI आधारित आप IoT बेस्ड जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर अगर आप खेती करते हैं तो आपको सही समय पर सही मात्रा में आप उसमें उर्वरक भी डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, तो इससे आपका क्या रिसोर्स की सेविंग होती है, साथ में आपका फसल में जो हानि है चाहे वो कीड़े आने या बीमारी आने या आपको सॉइल मॉइस्चर के डिप्लीशन हो रहा है, कमी हो रही है, तो आप सही समय पर उसको प्रबंधन करके आपकी फसल को अच्छा बना सकते हैं, उसमें उत्पादकता अच्छी ला सकते हैं और साथ में आपको रिसोर्स का भी सेविंग कर सकते हैं।
1: डॉक्टर अनिता, जैसा कि अभी आपने डिजिटल तकनीक की बात की, आजकल ड्रोन के द्वारा भी खेती हो रही है, तो क्या ड्रोन के द्वारा जो खेती होती है वो भी इसमें सहायक है?
0: जैसे अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी है, जैसे आपका ऑर्चर्ड नहीं है बड़े हैं, कई बार उनमें पानी डालना है या आपको कीड़े बीमारियों की निगरानी करनी है, उसमें स्प्रे करना है, तो इसमें भी आपका ड्रोन की जो तकनीकी होती है वो काफी लाभकारी होती है। जैसे लार्ज एरिया आपका है तो आपका ड्रोन में क्या होता है कि सेंसर कैमरे फिट होते हैं उसमें, थर्मल कैमरा भी आपका होगा, हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा आप उसमें लगा सकते हैं, तो उसको एक बार आप पूरे खेत में लार्ज एरिया पे आप उसको सर्वे कर सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि किस पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम है। आपकी ये प्रॉब्लम न्यूट्रिएंट की भी हो सकती है, आपके डिजीज भी हो सकता है या वाटर की कमी भी हो सकती है, तो आपको जैसे कमी पता चल गई कि मेरा इस एरिया पे ये कमी है, तो आप उसको प्रोग्रामिंग दे सकते हैं। आपको उसको प्रोग्रामिंग देना, अगर फर्टिलाइजर आपको चाहे तब उसमें दे दे कि भाई आपका ये फर्टिलाइजर की कमी है, वो जाके उसी पॉइंट पे आपका स्प्रे कर लेगा, तो इसमें एक तो आपके समय की बचत हो जाती है। आप जैसे पेस्टिसाइड अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो कई बार क्या होता है जो भी कोई लेबर कर रही है तो उसको हेल्थ का भी इश्यू हो जाता है स्प्रे करते समय, तो आप एक तो सेव कर रहे हैं इसको, या आपका ऑर्चर्ड ही है, ऑर्चर्ड में आपका करना है ड्रोन के जरिए अगर आप कोई भी स्प्रे कर रहे हैं तो आप कम समय में प्रिसाइज करके आप लागत में भी कमी कर सकते हैं और प्रिसाइजली उसको करके आपके समय की भी बचत हो सकती है।
1: अच्छा, मौसम जो सहनशील वाली जो किस्में हैं इस तरह की डेवलप की जा रही है पूसा केंद्र में, तो हमारे जो किसान भाई बहन है वो जो अच्छी किस्में हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, कहाँ से ले सकते हैं?
0: जी, इसके लिए जो अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र है उसके संपर्क में रहना चाहे, जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली पूसा के भी संपर्क में रह सकते हैं, हमसे समय समय पर आप जानकारी ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप या जो हमारा इंस्टीट्यूट का नंबर है उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, और हमारा जैसे फरवरी में जो मेला लगता है हर बार पूसा कृषि विज्ञान मेला लगता है, उसमें भी आप आके जो वेरायटी होती है किस्में होती है वो आप परचेज कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन पोर्टल है, आप भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के ऑनलाइन संपर्क में रहिए, हम वहाँ से भी समय समय पर कौन सा बीज उपलब्ध है, या कई बार होता है कि समय से पहले डिमांड ज्यादा होती है तो बीज खत्म हो जाता है, तो आपको पहले वो जानकारी भी मिल जाएगी कि बीज उपलब्ध है या नहीं है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं, ले सकते हैं।
1: डॉक्टर अनिता, हमारे जो किसान भाई बहन है या हम सभी आम जन हैं, तो जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम क्या क्या एहतियात बरत सकते हैं?
0: जी, जैसे कि आप देख ही रहे कि जो जलवायु परिवर्तन अभी हो रहा है उसका जो मुख्य कारण है जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हो रहा है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ है, तब से इसमें बढ़ोतरी ज्यादा हो गई है। जो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार है, हमने ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट लिया, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री लगा ली, तो हमको इसको अब कम करने के लिए जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है उसको कम से कम करना है, तो इसके लिए एक तो हम पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, और हम इसको कृषि में भी कई पद्धतियां हैं उसको अपना के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं संरक्षित खेती कीजिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर करिए, तो इसे अगर हम अपनाते हैं तो इससे भी खेती में जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन होता है वो कम से कम होगा। आप जैसे राइस ही आपको धान को लगाना है, पडली लगा के आप उसको डायरेक्ट सीडेड राइस भी आप कर सकते हैं। विभिन्न पद्धति अगर हम खेती में करते हैं तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है वो कम से कम होगा, और हम जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कम से कम करने में हमारा इसमें सहयोग रहेगा।
1: डॉक्टर अनिता, आज आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: दिनांक 10 सितंबर 2026 से 12 सितंबर 2026 तक नई दिल्ली के नाश

0: कॉम्प्लेक्स में इक्रीसेट द्वारा ट्रांसफार्मिंग ड्राई लैंड एग्रीकल्चर विथ साउथ साउथ कोऑपरेशन विषय पर दो दिवसीय ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में कहा,
1: यहाँ उपस्थित 25 देशों से आए हुए वैज्ञानिक किसान और ड्राई लैंड के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं भारत की ओर से ग्लोबल ड्राई लैंड कांग्रेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और भारत की एक बात और है, अब तो साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत तो पूरी दुनिया को अपना परिवार मानता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, हमारे ऋषियों ने कहा, फिर कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, और फिर उसी में कहा वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया ही एक परिवार है। और मुझे बता दो, खुशी है कि पिछले 50 वर्षों में ड्राई लैंड के क्षेत्र में किसानों की आजीविका के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, नई वैरायटीज के लिए, नई कृषि पद्धतियों के लिए जो काम दोनों ने मिलकर किया है, मैं ICAR को भी और ग्रीसेट को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे बुजुर्ग कहते थे कि चार कोनों में चार चीज वो हो, एक नहीं बोला है। डाइवर्सिफिकेशन हमारी जड़ों में था, हमारे मूल में था। सचमुच में जो वर्षा आधारित खेती है वहीं दलहन तिलहन और मिलेट्स होते हैं। देश के लगभग 85-87% तक मिलेट्स हो, पोषक अनाज हो या दलहन हो या तिलहन हो, इन्हीं क्षेत्रों में होता है और पशुधन भी इन्हीं क्षेत्रों में बचता है। मैं देखता था कि ड्राई लैंड के कई फायदे भी थे जहां ड्राई लैंड थी। ये बात सही है कि उत्पादन बढ़ाने के जो प्रयास हुए, हमारा भी लक्ष्य प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 हमारे बड़े टारगेट, बड़े लक्ष्य हैं। एक, फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करना, खाद्य सुरक्षा चाहिए, भोजन चाहिए लेकिन पोषक चाहिए, शरीर को सारे पोषक तत्व तो मिलना चाहिए। और तीसरी, किसानों की आमदनी बढ़ना चाहिए, सबको खिलाने वाला बदहाल ना रह जाए। उसके लिए सुविचारित नीति भारत सरकार की, उस पर बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, नुकसान हो तो भरपाई, और हम डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में भी लगे हुए, कृषि का विविधीकरण जरूरी है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, आग्निक कार्बन की कमी आप ड्राई लैंड में बता रहे थे, लेकिन अब तो जहां पानी है और जहां खाद है वहां भी कहां आर्गेनिक कार्बन बचा है, लगातार कम होता जा रहा है, वो एक बड़ी समस्या बन गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि ड्राई लैंड कोई हमारी कमजोरी नहीं है, सही विज्ञान, सही नीति और सही बाजार मिले तो ये ड्राई लैंड भारत की और अफ्रीका की भी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। और इसलिए वैज्ञानिकों से और जितनी संस्थाएं आ जाए इकट्ठा है, उनसे मेरी अपील है कि इस बदलाव को हमको करके दिखाते। अभी उत्पादन बढ़ा है ड्राई लैंड में भी, ऐसा नहीं कि दालों में भी बढ़ा है, तिलहन में भी बढ़ा है, लेकिन अपेक्षित नहीं बढ़ा। मैं समझता हूं ये कोई वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, पर्याप्त अगर ध्यान दिया जाएगा तो इनका उत्पादन और बढ़ेगा।
2: और रजनीश, पूरा यकीन है कि जो हमारे किसान हैं वो बहुत ही खुश हो रहे होंगे, उनके खिलखिलाते चेहरे हम स्टूडियो में बैठकर महसूस कर सकते हैं।
3: बिल्कुल सही कहा कमलेश, और जब इतना बढ़िया आपने बात कह दी तो ऐसे में अगर एक लोकगीत हो जाए खुशी दोगुनी हो जाए। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: रजनीश, जैसे ही इस लोकगीत को सुना सच में आनंद ही आ गया, और मुझे लगता है कि जो हमारे किसान हैं वो भी इसके साथ साथ गुनगुना रहे होंगे।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, जब हम गुनगुना रहे होते हैं साथ में, हमें बहुत सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है, और ये भी पता होना चाहिए कि मौसम के क्या हाल रहेंगे। तो भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कल दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में दिन भर आसमान में बादल छाए रहने की संभावना है और अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने की संभावना है।
0: मौसम पर आधारित कृषि संबंधी वैज्ञानिक सलाह क्या है? वर्षा के पूर्वानुमान को ध्यान में रखते हुए सभी किसानों को सलाह है कि किसी प्रकार का छिड़काव ना करें तथा खड़ी फसलों, दलहनी फसलों, मक्का आदि और सब्जी नर्सरियों में जल निकास का उचित प्रबंधन रखें। किसान इस समय अगेती मटर की बुआई के लिए बीज की व्यवस्था करें। उन्नत किस्में हैं पूसा प्रगति, पंत मटर 3 तथा आर्किल, और खेतों को तैयार करें।
1: और साथ ही किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि कद्दू वर्गीय सब्जियों को ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें ताकि वर्षा से सब्जियों की लताओं को गलने से बचाया जा सके। और साथ ही भिंडी, मिर्च तथा बैंगन की फसल में माइट, जेसिड और होपर की निरंतर निगरानी करते रहें।
0: एक बात और रजनीश
1: जी,
0: इस समय कीटों की रोकथाम के लिए प्रकाश प्रपंच का भी इस्तेमाल हमारे किसान भाई कर सकते हैं। इसके लिए एक प्लास्टिक के टब या किसी बर्तन में पानी और थोड़ा कीटनाशक मिलाकर एक बल्ब जलाकर रात में खेत के बीच में रख दें। इस प्रपंच से अनेक प्रकार के हानिकारक कीटों का नाश होगा।
1: तो भाई, ये तो थी कृषि सलाह। और कमलेश, अब बता देते हैं आजादपुर मंडी में फल और सब्जियों के क्या भाव रहे। आज जो भाव चल रहा है, आलू का भाव चल रहा है 15 से 18 रुपए किलो, प्याज का भाव चल रहा है 35 से 40 रुपए किलो, टमाटर बिक रहा है 30 से 35 रुपए किलो, वहीं बीन्स का भाव है 40 से 45 रुपए किलो, और खीरा बिक रहा है 25 से 30 रुपए किलो।
0: जब आपने सब्जियों की बात बताई, फलों के बारे में भी हमारे जो किसान भाई हैं उनको मालूम होना चाहिए कि उनका क्या भाव चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं सेब की, तो सेब का भाव चल रहा है 100 रुपए से लेकर 120 रुपए प्रति किलो। केले का भाव है 20 से 25 रुपए किलो। अमरूद की बात करें 60 से 75 रुपए किलो। और पपीते की अगर हम बात करते हैं, उसका भाव है 25 से 30 रुपए किलो।
1: और कमलेश, ये थे आजादपुर मंडी से फल और सब्जियों के भाव।
0: और जब हमें अपने किसान मित्रों को ये कहना है कि उनको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, और ये तभी पता चलेगा जब वो अपने सुझाव हम तक पहुंचाएंगे।
1: और भाई देखिए, उनके फीडबैक जो भी आते हैं हम उनको अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और अपने कार्यक्रम को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो अपना फीडबैक हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं, feedback@gmail.com।
0: आज के कार्यक्रम का सफर यहीं तक। हमारे सभी भाई बहनों को नमस्कार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए
2: कोई डर नहीं,
3: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
4: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
5: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
6: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
5: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
6: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
5: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवरेज।
7: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं गजलें जगजीत सिंह जी के स्वरों में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गजलें जगजीत सिंह जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। अठारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान और यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में कल से आयोजित होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी पूरी तरह तैयार है और विदेशी मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद द्वारा कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई हैं। इसका उद्देश्य सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संचालित करना और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
2: सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के करीब 15,000 जवान और पैरामिलिट्री फोर्स की 200 कंपनियां सुरक्षा व्यवस्था में तैनात रहेंगी। साथ ही दिल्ली पुलिस ने सम्मेलन की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तुगलक रोड क्षेत्र में लगभग 500 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सुरक्षा इंतजामों के बारे में जानकारी देते हुए प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल पुलिस कमिश्नर मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि आने वाले गणमान्य व्यक्तियों की ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करने और साथ ही आम जनता को कम से कम असुविधा पहुंचे, इसके लिए इंतजाम किए गए हैं।
3: आप लोगों को जानकारी हर्ष होगा कि कम से कम 16 जो है हेड ऑफ द स्टेट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। इसके लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत व्यापक अरेंजमेंट किए हैं। इन अरेंजमेंट्स को ड्रॉ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: इसके अलावा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC द्वारा अपने हरित क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों, चौराहों, गोलचक्करों और सार्वजनिक स्थलों पर लगभग 15,000 गमलेदार पौधे लगाए गए हैं। वहीं 17 प्रमुख गोलचक्करों पर भव्य सजावटी रोशनी और 11 प्रमुख होटल परिसरों में आकर्षक रोशनी लगाई गई है। 10 NDMC भवनों और स्थलों पर सजावटी प्रकाश व्यवस्था तथा 9 स्थानों पर आकर्षक पुष्प फव्वारे

0: भी लगाए गए हैं। राष्ट्रपति भवन, संग्रहालय, अमृत उद्यान और दिल्ली मेट्रो संग्रहालय रविवार तक बंद रहेंगे। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
1: वहीं दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आज से 14 सितंबर तक राष्ट्रीय राजधानी में ड्रोन और कई अन्य छोटे हवाई प्लेटफार्मों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने शिखर सम्मेलन के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के अंतर्गत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत यह आदेश जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: ये प्रतिबंध ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन, मानव रहित विमान प्रणाली, क्वाडकॉप्टर, रिमोट से संचालित विमान, पैराग्लाइडर, पैरामीटर, हैंग ग्लाइडर, मैक्रोलाइट विमान, छोटे संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे और विमान से पैरा जंपिंग सहित कई हवाई प्लेटफार्मों पर लागू होता है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि यह निर्णय खुफिया जानकारी के आधार पर लिया गया है, जिसमें यह संकेत मिला था कि असामाजिक तत्व या आतंकवादी समूह इस अवधि के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा, वीआईपी और महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों के लिए खतरा पैदा करने के लिए ऐसी हवाई प्लेटफार्मों का दुरुपयोग कर सकते हैं। पुलिस ने ये भी चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। राष्ट्रपति सचिवालय ने बताया है कि इस शनिवार को राष्ट्रपति भवन के फोर कोर्ट में होने वाला चेंज ऑफ गार्ड समारोह भी आयोजित नहीं किया जाएगा। दिल्ली सरकार अब अपनी राज्य आपदा मोचन बल SDRF का गठन करेगी। इससे आपदा की स्थिति में प्रशिक्षित और विशेषज्ञ बल को घटनास्थल पर शीघ्र पहुंचाने, राहत तथा बचाव कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने और जान माल के नुकसान को कम करने में सहायता मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें SDRF गठन करने का निर्णय लिया गया। इसमें अधिकतम 1100 जवान होंगे। यह बटालियन राज्य सरकार के अधीन कार्य करेगी और आपदा की स्थिति में घटना स्थल पर तेजी से पहुंचकर प्रभावी राहत तथा बचाव कार्य कर सकेगी। इसके गठन के साथ ही दिल्ली सरकार अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को भी विशेष प्रशिक्षण दिलाएगी। इसका उद्देश्य आपदा की स्थिति में उपलब्ध स्थानीय मानव संसाधन, आवश्यक कौशल और बेहतर समन्वय के साथ राहत तथा बचाव कार्यों में योगदान देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी में SDRF का गठन लंबे समय से अपेक्षित था और ऐसे में प्राकृतिक तथा मानवीय आपदा की स्थिति में गंभीर क्षति की आशंका को देखते हुए पहले से मजबूत तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र जरूरी है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: दिल्ली सरकार में उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के अधिकारियों के साथ मास्टर प्लान और पारगमन उन्मुख विकास नीति को लेकर बैठक की। श्री सिरसा ने बताया कि बैठक का उद्देश्य मेट्रो और रैपिड रेल जैसे सार्वजनिक परिवहन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करना है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बेहतर संपर्क मिलेगा और रोजमर्रा की जरूरतों तक पहुंच सुविधाजनक होगी। बैठक में गैर मानक औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्विकास, बाजारों और गोदामों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने पर भी चर्चा की गई। दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा आज मदनलाल खुराना चौक दुर्घटना संभावित क्षेत्र पर सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि इस कार्यक्रम में लगभग 2000 लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया और यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हों expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के लिए सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। याचिका में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अनुबंध करने से रोकने की मांग की गई है।
5: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका पर केंद्र और अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा गया है कि बाल यौन शोषण संबंधी सामग्री पर रोक के लिए कड़े कानून होने के बावजूद इंटरनेट प्लेटफॉर्म ऐसी सामग्री की स्वचालित निगरानी और उपयोगकर्ताओं की उम्र की पुष्टि

0: की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। याचिका के अनुसार फेसबुक और स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म 13 वर्ष की उम्र से खाते बनाने की अनुमति देते हैं, जबकि भारतीय कानून में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति नाबालिग माने जाते हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
1: दिल्ली विधानसभा के युवा संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने आज दिल्ली विधानसभा का दौरा किया। इनमें करोड़ीमल कॉलेज, सुखदेव कॉलेज, लॉ सेंटर 1 और 2 तथा शहीद भगत सिंह कॉलेज के विद्यार्थी शामिल हुए। विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आए विद्यार्थियों को लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सार्वजनिक जीवन तथा युवाओं की जिम्मेदारियों से जुड़े विषयों पर विधानसभा अध्यक्ष से संवाद का अवसर मिला। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने आज सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी एससीएल दास को दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। श्री दास ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस अवसर पर श्री सूद ने श्री दास को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी और उम्मीद व्यक्त की कि उनके व्यापक प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिल्ली के विद्युत क्षेत्र को मिलेगा। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार बिजली क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध मादक गोलियां की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 किलोग्राम 832 ग्राम से अधिक वाणिज्यिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद की। पुलिस ने आरोपी के पास से 4-पहिया वाहन भी बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
2: आपको हर खबर से रखें अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधू ने आज दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट का शुभारंभ किया है। इस वेबसाइट के जरिए लोग टो की गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान की स्थिति और उसके भुगतान तथा यातायात अपडेट आसानी से देख सकेंगे। लोगों की मदद के लिए इसमें ट्रैफिक सारथी नाम का AI चैटबॉट भी शुरू किया गया है, जो तुरंत जानकारी और सहायता देगा। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि ये वेबसाइट सिर्फ सरकारी सेवाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने का भी माध्यम बने। उन्होंने कहा कि तकनीक और नागरिकों को साथ लेकर चलने से दिल्ली को और सुरक्षित, स्मार्ट और बेहतर बनाया जा सकता है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह सिंधू ने आज टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराज्यपाल ने कहा कि क्षय रोग से प्रभावित लोगों के संपर्क में आए पात्र परिवारों में क्षय रोग से बचाव के इलाज का दायरा 55% और डिफ्रेंशिएटेड टीबी केयर 74% तक पहुंच गया है। साथ ही 980,000 से ज्यादा चेस्ट एक्सरे किए गए हैं और निक्षय मित्रों के जरिए 1,15,000 से अधिक फूड बास्केट बांटी गई है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बचाव के लिए इलाज को तय समय सीमा में हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन आकलन के क्षेत्र में स्वदेशी क्षमताओं को मजबूत करने के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के इस्तेमाल पर बल दिया। श्री यादव ने आज नई दिल्ली में वन और वृक्ष संसाधनों के आकलन में नवीनतम तकनीकों के उपयोग विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित किया। श्री यादव ने कहा कि मनुष्य प्रकृति से ऊपर नहीं है और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व के लिए उसका सम्मान करना जरूरी है। उन्होंने स्वदेशी तकनीकों और वन कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के महत्व पर भी बल दिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में विकास को तेज करने के लिए संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण को अपनाया है। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में इमर्जिंग साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2026 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सम्मेलन में स्टार्टअप, वैज्ञानिक, उद्योग, उद्यमी और नीति निर्माताओं सहित विभिन्न हितधारक एक मंच पर आएंगे। उन्होंने कहा कि आज विज्ञान केवल वैज्ञानिकों तक सीमित नहीं रह सकता, वैज्ञानिक अनुसंधान को सफल, टिकाऊ और व्यवसाय

व्यावसायिक रूप से उपयोगी बनाने के लिए संचार प्रबंधन और कार्बन सिंक बनाने के देश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए तकनीकी नवाचार के साथ मजबूत संस्थागत क्षमता भी जरूरी है। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के वन विभागों, वैज्ञानिक संस्थानों, वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसमें वन सीमाओं के डिजिटलीकरण, वन और वृक्ष आवरण के आकलन तथा कार्बन भंडार के अनुमान पर 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय तेज धूप रही। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल राजधानी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए राष्ट्रीय राजधानी तैयार, वैश्विक नेताओं का आगमन कल से शुरू। दिल्ली सरकार आपदा की स्थिति में राहत और बचाव कार्यों को तेजी से संचालित करने के लिए राज्य आपदा मोचन बल का गठन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सुरक्षा उपायों की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। टोकी गई गाड़ी की ट्रैकिंग, चालान भुगतान तथा यातायात अपडेट के लिए दिल्ली यातायात पुलिस की नई वेबसाइट शुरू। और 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान लोगों के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, आइए चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। कार्यक्रम का नाम गीत मालिका। श्रोताओं, मैं हूं रचना अग्निहोत्री और आज की गीत मालिका लेकर आई हूं एक ऐसे छोटे से शब्द की बड़ी सी दुनिया जिसका नाम है काश। काश वो शाम फिर लौट आती, काश वो इंसान फिर मिल जाता, काश कहे बिना ही दिल की बात समझ आ जाती, काश बीता हुआ कल आज की तरह हमारे सामने बैठा होता। मगर जिंदगी में कुछ चीजें सिर्फ याद बनकर रह जाती हैं और फिर वही यादें कभी गीत बनकर, कभी खामोशी बनकर हमारे दिल के दरवाजे पर दस्तक देती रहती हैं। तो आज के ये गीत सिर्फ गीत नहीं है, ये उन तमाम काश की आवाज है जिन्हें हमने कभी कहा ही नहीं, बस महसूस किया। चलिए शुरुआत करते हैं उस एहसास से जहां कुछ पल कुछ बातें आज भी दिल में वैसी ही ठहरी हुई हैं।

कुछ लम्हे गुजर जाते हैं लेकिन उनका असर नहीं गुजरता। वक्त आगे बढ़ जाता है मगर दिल कभी कभी वहीं खड़ा रह जाता है और फिर मन पूछता है, काश उस वक्त हम थोड़ा और ठहर जाते, काश जो कहना था उसी वक्त कह देते। लेकिन मोहब्बत में सबसे मुश्किल बात शायद यही है, हम अक्सर उस पल की कीमत तब समझते हैं जब वो पल हमारे पास नहीं रहता। और अब अगला गीत उसी टूटे हुए दिल की आवाज़ है जो बहुत कुछ सहकर भी उसी शख्स को याद करता है।

दोस्तों, जिंदगी का सबसे खूबसूरत और शायद सबसे मुश्किल सच ये है कि समय कभी वापस नहीं आता। बचपन के दिन, पुराने दोस्त, पहली बारिश, पहली मोहब्बत और वो शामें जिनसे किसी का नाम शामिल हो। आज सब कुछ बदल गया है। बस कभी कभी मन कहता है, काश आने वाला पल नहीं, जाने वाला पल रुक जाता। इसी एहसास के साथ सुनिए एक बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, कभी आपने गौर किया है किसी की याद कितनी अजीब चीज होती है? वो सामने नहीं होती, फिर भी हर जगह दिखाई देती है। किसी गीत में, किसी खुशबू में, किसी रास्ते में, और कभी कभी बिना किसी वजह के। और तब दिल बस इतना कहता है, काश वो एक बार सामने आ जाए। इसी याद को लेकर अगला गीत, एक ऐसी पुकार जिसमें प्रेम भी है और इंतजार भी।

दोस्तों, शाम का अपना ही जादू होता है। सूरज ढलता है, आसमान का रंग बदलता है और मन के किसी कोने में दबी हुई पुरानी यादें जागने लगती हैं। शायद इसीलिए कुछ शामें हमें आज भी याद रहती हैं और हम सोचते हैं, काश वो शाम कुछ और देर ठहर जाती। तो आइए उस अजीब सी खूबसूरत शाम को फिर महसूस करते हैं।

0: श्रोताओ, कुछ शामें सचमुच अजीब होती हैं। ना कोई खास वजह, ना कोई खास बात, बस दिल थोड़ा सा उदास होता है और यादें थोड़ी ज्यादा करीब। कभी किसी की कमी महसूस होती है, कभी अपने पुराने रूप की ही कमी महसूस होने लगती है और दिल धीरे से कहता है, काश हम फिर उसी शाम में लौट पाते। आइए सुनते हैं इसी एहसास से भरा ये गीत।
1: वो शाम

लेकिन दोस्तों, हर काश का मतलब सिर्फ पछतावा ही नहीं होता। जब कोई दिल को छू ले तो भी तो इंसान कह उठता है, काश ये एहसास कभी खत्म ना हो। आइए सुनते हैं एक ऐसा ही गीत जिसमें मन को छू लेने वाली सादगी है।

दोस्तों, जिंदगी भी कितनी अजीब पहेली है। कभी लगता है सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, और कभी लगता है कि हम लाख कोशिश करें फिर भी कोई जवाब नहीं। कुछ रिश्ते मिलते हैं, कुछ छूट जाते हैं, कुछ सवाल रह जाते हैं, और फिर दिल पूछता है, काश जिंदगी की इस पहेली का जवाब थोड़ा पहले मिल जाता। सुनते हैं अब वही गीत जो जिंदगी को एक मासूम सा सवाल बना देता है।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: श्रोताओ, और फिर आता है वो काश जो सबसे ज्यादा मासूम होता है। काश मुझे भी कोई प्यार करता। कभी किसी की आंखों में अपने लिए मोहब्बत ढूंढना, कभी किसी के संदेश का इंतजार करना, और कभी अकेले में मुस्कुराकर सोचना, क्या मुझे प्यार है। इसी खूबसूरत उलझन के साथ अगला गीत।

दोस्तों, आज की हमारी गीत मालिका अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज हमने कई काश महसूस किए। काश वो लम्हे लौट आते, काश वो शाम फिर आ जाती, काश कोई अपना फिर मिल जाता, काश वक्त थोड़ा ठहर जाता, काश कुछ बातें कह दी जाती। लेकिन शायद जिंदगी का नाम ही आगे बढ़ते रहना है। हर बीती हुई चीज को वापस पाना जरूरी नहीं, कुछ यादों को बस अपने दिल में सम्मान से रखना भी जरूरी होता है। और अगर कभी मन में कोई पुराना सवाल उठे तो खुद से नाराज मत होना, क्योंकि कुछ रिश्ते हमें खुशी देते हैं, कुछ सबक देते हैं और कुछ हमें खुद से मिलवा जाते हैं। आज की आखिरी पेशकश शायद इसी भावना की सबसे खूबसूरत आवाज है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। तो आइए आज के सारे काश को एक तरफ रखकर जिंदगी को फिर से थोड़ा प्यार करें।

श्रोताओं, मैं हूं रचना अग्निहोत्री और आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका आकाशवाणी दिल्ली के EIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल पर। फिर मिलेंगे किसी एक नए एहसास, किसी नई कहानी और कुछ पुराने प्यारे गीतों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और हाँ, जो आज आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि कल शायद उसी के लिए आपका दिल कहे काश।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। आइए अब चलते हैं समाचार संध्या की ओर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृहमंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत और रूस ने यात्री विमानों के संयुक्त उत्पादन और भारतीय ऑपरेटरों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की डिलीवरी की दिशा में कदम बढ़ाया। केंद्र सरकार ने मूल्य पारदर्शिता, प्रायोजित लिस्टिंग और खोज परिणामों में हेरफेर पर नियमों को सख्त करने के लिए ई कॉमर्स नियमों में संशोधन किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना पर आधारित है और अब इस भावना को पृथ्वी से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने की आवश्यकता है।
2: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देश की अंतरिक्ष यात्रा की उल्लेखनीय प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा कि चंद्रयान 3 के माध्यम से

0: भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट उतरने वाला पहला देश बना। उन्होंने कहा कि भारत का लक्ष्य वर्ष 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना और वर्ष 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है। उन्होंने कहा कि भारत का स्पष्ट सिद्धांत है कि अंतरिक्ष से मिलने वाले लाभ संपूर्ण मानवता तक पहुंचने चाहिए।
1: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टैब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी।
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफ्रॉन स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध भी शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेकमी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत इस शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन से अलग ब्रिक्स नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के महत्व और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता का संदेश देंगे। उनका कहना है कि इन संस्थाओं में आज की वैश्विक परिस्थितियों को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को लेकर नई दिल्ली में तैयारियां जोरों पर हैं।
2: राष्ट्रीय राजधानी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों से आने वाले शीर्ष नेताओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय सहित संबंधित मंत्रालयों, दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर समन्वय के साथ काम कर रहा है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विदेशी मेहमानों के अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ आम जनता को कम से कम असुविधा हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। दिल्ली में करीब 15,000 पुलिस कर्मियों और अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस में प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी डिवीजन के विशेष आयुक्त मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि विदेशी गणमान्य अतिथियों के गुजरने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी कैमरे भी लगाए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेकर ट्रैफिक से लेकर लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की अध्यक्षता 4 प्रमुख स्तंभों लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर आधारित है। ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने के बाद से अब तक 350 से अधिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया।
0: ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान 11 से 13 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के

0: उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलिखानोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर विचार विमर्श किया। प्रस्तावित समझौतों में पिनकल एयर, एयर केरल और स्लीक एविएशन सहित भारतीय विमानन कंपनियों को 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति और इससे जुड़ी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। दो दिन का इनोप्रोम इंडिया कार्यक्रम कल नई दिल्ली में शुरू हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से अधिक रूस और भारत की कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: एवरी ग्रेट जर्नी बिगिंस विद पीपल कमिंग टुगेदर टू लिसन, टू लर्न, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और अब किसी के हताहत ना होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार 3 प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य आपदा रोधी गांव और शहर तैयार करना है। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। नए नियमों से ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता केंद्रित व्यवस्था सुनिश्चित होगी। ये नियम अगले वर्ष 1 जनवरी से लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, झारखंड, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी कल तेज बारिश की संभावना है। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोन में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन आज 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोना अग्रवाल, अवनी लेखरा, मिली शाह की टीम ने महिलाओं की R2 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग महिला SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने R1 श्रेणी की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 टीम स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। चीन के मोकी में आज भारत ने पाकिस्तान को 19-0 से हराया। उधर दुबई में महिला एशिया कप क्रिकेट के पहले सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पर 78 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून पर आधारित सुरक्षित और टिकाऊ अंतरिक्ष क्षेत्र का समर्थन करता है। पेरिस में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी को तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के कल पहुंचने की संभावना। गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा तैयारियों की समीक्षा की। शून्य हताहतों के लक्ष्य के अंतर्गत आपदा रोधी गांव और शहरों के निर्माण का आह्वान किया। भारत ने विश्व पैरा शूटिंग चैंपियनशिप के पहले दिन 1 स्वर्ण सहित 4 पदक जीते और महिला हॉकी जूनियर एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को रिकॉर्ड 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India supports a safe and sustainable space domain. Virtually addresses first international space summit in Paris. New Delhi gears up to host world leaders at 18th BRICS summit this weekend. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to arrive tomorrow. Home Minister Amit Shah reviews disaster preparedness, calls for climate-resilient villages and cities under zero-casualty vision. India and Russia step forward on joint production of civil passenger planes and deliveries of 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Centre amends e-commerce rules to tighten norms on price transparency, sponsored listings and search result manipulation. India Open campaign at World Para Shooting Championship in South Korea with 4 medal haul including a gold. And in Women's Junior Asia Cup Hockey, India storm into semi-final with record 19-0 win over Pakistan in China. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of International Space Summit at Paris in France today.
6: India's approach is rooted in Vasudhaiv Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
5: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
6: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
5: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions.
6: ISRO, which stands at the heart of this journey has earned global admiration for its excellence and cost-effective mission. Its capability to serve farmers and fishermen, weather forecasting, disaster management and navigation. More than 430 satellites from 34 countries have traveled to space aboard Indian rockets. ISRO's technologies and partnerships serve not only India but the wider world.
5: New Delhi is geared up to host world leaders at the 18th BRICS summit this weekend, with heightened security infrastructure upgrades and extensive preparations across the national capital. The two-day summit, beginning at Bharat Mandapam on Saturday, brings together the world's 11 major emerging and developing economies. India is the current chair of the influential grouping. Several world leaders will participate in the summit, including Russian President Vladimir Putin, Chinese President Xi Jinping, South Africa President Cyril Ramaphosa, Iran President Masoud Pezeshkian, and Crown Prince of Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping are expected to arrive tomorrow. The BRICS summit will get underway on Saturday with a closed session for BRICS member countries on inclusive global governance and strengthening multilateralism. Our correspondent reports that preparations are underway in full swing ahead of the prestigious event.
7: The national capital is all decked up to welcome world leaders for the summit, with Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping expected to touch down in Delhi tomorrow. The Delhi police has made elaborate arrangements in order to ensure maximum security for visiting dignitaries while causing minimum inconvenience to the public. Around 15,000 Delhi police personnel and 200 companies of paramilitary forces have been deployed in the national capital. Special Commissioner of Police, Protective Security Division, Manish Kumar Agrawal, said that specialized surveillance cameras have been deployed along routes to be used by the visiting dignitaries.
8: At least 16 heads of state or heads of international organizations are participating in the event. The Delhi police has made extensive arrangements for this occasion. To put these arrangements in place, we have ensured multi-agency coordination and paid close attention to traffic management. We have made detailed deployments covering security, traffic management and law and order. Our objective is to ensure that we organize a safe, secure and seamless event.
7: India's chairship is centered on the four pillars of the theme: resilience, innovation, cooperation and sustainability. Since assuming the chairship, over 350 meetings have been held. With Anand Kumar, Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
5: Prime Minister Modi today spoke to German Chancellor Friedrich Merz. In a social media post, the Prime Minister said, as India and Germany celebrate 75 years of their diplomatic relations, both the countries reaffirm their commitment to further strengthen strategic partnership across trade and investment, defense, clean energy, advanced technologies and talent mobility. This is Akashwani giving you the news.
9: Stay updated, stay ahead. Follow us on X at AIR News Alerts and on Instagram at AIR News Alerts.
5: President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi met eminent philanthropist Prince Rahim Aga Khan V in New Delhi today. During the meeting at Rashtrapati Bhavan, President Murmu appreciated the work undertaken by the Aga Khan Development Network in areas such as water and sanitation, education, maternal health and employment generation. Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi-led government has completely transformed the country's disaster management system and set the goal of zero casualty. Mr. Shah was speaking while chairing the third meeting of the governing body of the National Institute of Disaster Management in New Delhi. Mr. Shah said the government is focusing on three pillars, which are risk reduction, early warning systems and zero casualty. He stressed that the zero casualty approach should not be limited to disaster sites but should also focus on preventing disasters. He said the government's goal is to create disaster resilient villages and cities. India and Russia today held talks on joint production of civil passenger planes and potential deliveries and arrangements for 105 regional turboprop aircraft to Indian operators. Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu held discussions with Russia's Industry and Trade Minister Anton Alikhanov in New Delhi on joint manufacturing of civil passenger aircraft to meet the country's demand for regional air connectivity. Discussions and proposed deals also cover potential deliveries and arrangements for 105 regional turboprop aircraft to Indian operators, including Pinnacle Air, Air Kerala, and Sleek Aviation.

0: और क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
1: भारत के खलाई सफर में होने वाली नुमाया पेशरफ्त का जिक्र करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि चंद्रयान स्वयं ने भारत को चांद के कुतुब जनूबी के करीब उतरने वाला दुनिया का पहला मुल्क बनाया, जबकि आदित्य L1 सूरज के राजों से पर्दा उठाने के अमल में मसरूफ है।
0: चंद्रयान 3 मेड इंडिया द फर्स्ट नेशन टू लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। आदित्य L1 इज अनलॉकिंग द सीक्रेट्स ऑफ द सन। लास्ट ईयर एन इंडियन विजिटेड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लुकिंग अहेड वी एम टू एस्टेब्लिश एन इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035 एंड सेंड एन इंडियन टू द मून बाय 2040। इन ऑल दिस एफर्ट्स आवर गाइडिंग प्रिंसिपल हैज बीन क्लियर दैट बेनिफिट्स मस्ट रीच ऑल ह्यूमैनिटी। अलोंगसाइड इसरो, India's private space sector is also surging in a big way. The energy of enterprise is joining the excellence of ISRO.
1: वजीर आजम ने खलाई सफर में इसरो के रोल की सताइश करते हुए कहा कि इसरो ने अपनी शानदार कारकर्दगी और कम लागत वाले खलाई मिशनों के जरिए आलमी सतह पर काफी तारीफ हासिल की है। उन्होंने कहा कि इसरो की सलाहियतें किसानों और माहीगीरों की मदद, मौसम की पेशगोई, कुदरती आफात से निमटने और जहाजरानी समेत मुख्तलिफ शोबों में काम आ रही हैं। वजीर आजम ने कहा कि 34 ममालिक के 430 से ज्यादा सेटेलाइट भारतीय रॉकेटों के जरिए खला में भेजे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसरो की टेक्नोलॉजी और बैन अलावामी शराकतदारी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए फायदेमंद है। जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों, इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन की कई नस्लों की खिदमात, लगन और मेहनत को सराहा। वजीर आजम ने कहा कि इसरो ने मिशन दर मिशन और कामयाबी दर कामयाबी अपनी साख कायम की है और भारत को खलाई सफर करने वाले मुल्कों में बाईस इफ्तिखार बनाया है। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में 18वीं ब्रिक्स सरबराह मीटिंग की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। कौमी राजधानी में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाया गया है और वसी पैमाने पर तैयारियां की गई हैं। भारत मंडपम में हफ्ते के रोज शुरू होने वाली दो रोजा सरबराह मीटिंग दुनिया की 11 बड़ी उभरती और तरक्की पजीर मईशतों को एक प्लेटफॉर्म पर यकजा करेगी। इब्तदा में ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल थे। 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब को शामिल किए जाने के बाद ब्रिक्स में तौसी हुई, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम ब्रिक्स शराकतदार ममालिक की हैसियत से सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। ब्रिक्स ममालिक मजमुई तौर पर दुनिया की तकरीबन 49% आबादी और आलमी मजमुई घरेलू पैदावार GDP के तकरीबन 40% की नुमाइंदगी करते हैं। चीन की वजारत खारजा ने आज ऐलान किया कि सदर शी जिनपिंग इस हफ्ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए भारत पहुंचेंगे। उनका ये दौरा आलमी सतह पर गैर मुस्तहकम सूरतहाल, मगरबी एशिया में जारी तनाजे और रूस यूक्रेन जंग के दरमियान हो रहा है। तकरीबन 7 बरसों में ये सदर शी जिनपिंग का भारत का पहला दौरा होगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: कौमी राजधानी ब्रिक्स सरबराह मीटिंग के लिए आलमी रहनुमाओं के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल दिल्ली पहुंचने की तवक्को है। यह एक बड़े पैमाने की लॉजिस्टिकल मशक रही है, जिसमें वजारत खारिजा ने वजारत दाखिला और दीगर वजारतों के साथ साथ दिल्ली पुलिस से भी करीबी राबता और ताउन किया है। दिल्ली पुलिस ने आने वाले मुअज्जज़ मेहमानों को ज्यादा से ज्यादा तहफ्फुज़ फराहम करने और आवाम को कम से कम दुश्वारी के लिए वसी इंतजाम किए हैं। कौमी राजधानी में दिल्ली पुलिस के तकरीबन 15,000 अहलकारों और नीम फौजी दस्तों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। दिल्ली पुलिस के खसूसी कमिश्नर हिफाजती सिक्योरिटी डिवीजन मनीष कुमार अग्रवाल ने कहा है कि मुअज्जज़ मेहमानों की आमदोरफ्त के रास्तों पर खसूसी निगरानी के कैमरे भी नस्ब किए गए हैं।
3: दिल्ली पुलिस ने मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन किया है, ट्रैफिक मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखा गया है। हमने सिक्योरिटी से लेके ट्रैफिक से लेके लॉ एंड ऑर्डर संबंधी काफी डिटेल्ड में जो है डिप्लॉयमेंट किए हैं और हमारा मकसद यही है कि हम एक सेफ, सिक्योर और सीमलेस जो है इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं।
2: भारत की सदारत का महवर मौजू के चार सुतून, मजबूत, اخترا تعاون اور پائیدار ترقی کا قیام ہے۔ صدارت سنبھالنے کے بعد سے اب تک 350 سے زیادہ میٹنگیں منعقد ہو چکی ہیں، جس میں برکس وزرائے خارجہ کا اجلاس، برکس قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس، وزارتی اجلاس، شیرپا اور ادارے کے سربراہ سطح کا اجلاس، ورکنگ گروپ سطح کا اجلاس اور عوام سے

0: आवाम और कारोबार से कारोबार के रवाबित शामिल हैं। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान।
1: इस दौरान दो रोजा ब्रिक्स सरबराह मीटिंग से कबल दिल्ली पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर आइंदा पीर तक कौमी राजधानी में ड्रोन्स और दीगर छोटे फजाई प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ब्रिक्स सरबराह मीटिंग 2026 के पेश नजर राष्ट्रपति भवन म्यूजियम और अमृत उद्यान कल से 13 सितंबर तक आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सदर जमहूरिया के सेक्रेटरिएट ने कहा है कि इस हफ्ते राष्ट्रपति भवन के सब्जाजार में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब भी मुनाकिद नहीं की जाएगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रिंस रहीम आगा खान पंजुम से मुलाकात की। राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग के दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात को सराहा। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और प्रिंस आगा खान के दरमियान हुई बातचीत में पानी, सफाई, सुथराई, खवातीन की क्यादत में अपनी मदद आप ग्रुपों, तालीम, माशरती तरक्की के तई आगा खान तरक्याती नेटवर्क की खिदमात के बारे में तबादले ख्याल किया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने हिफ्जान सेहत, ज़राअत, देही तरक्की, नौजवान और ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने में आगा खान तरक्याती नेटवर्क के साथ भारत के इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कहा कि नरेंद्र मोदी की क्यादत वाली हुकूमत ने मुल्क के कुदरती आफात से निमटने के निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है और इसका हदफ जानी इतलाफ को सिफर तक लाना है। जनाब शाह नई दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट NIDM की गवर्निंग बॉडी के तीसरे इजलास की सदारत करते हुए खिताब कर रहे थे। जनाब शाह ने कहा कि हुकूमत तीन बुनियादी सतूनों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जिनमें खतरात में कमी, कबल अज़ वक्त इंतबाही निज़ाम और सिफर जानी नुकसान शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिफर जानी नुकसान का नुक्ता नज़र सिर्फ कुदरती आफत के मकाम तक महदूद नहीं रहना चाहिए बल्कि आफात की रोकथाम पर भी तवज्जो मरकूज की जानी चाहिए। भारत और रूस ने आज सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को इलाकाई परवाजों के लिए 105 टर्बोप्रॉप तैयारों की मुमकिना फराहमी और इससे मुतालिक इंतजामात पर बातचीत की। शहरी हवाबाजी के वजीर राममोहन नायडू ने नई दिल्ली में सनत व तिजारत के रूस के वजीर एंटन अलीखानोव के साथ मुल्क में इलाकाई फजाई राबते की बढ़ती हुई जरूरत को पूरा करने के लिए सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी के सिलसिले में तबादले ख्याल किया। बातचीत में मुजवजा मुआहदों में भारतीय ऑपरेटर्स जिनमें पिनाकल एयर, एयर केरला और स्लीक एविएशन शामिल हैं जिनके लिए 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारियों की मुमकिना फराहमी और उसके इंतजाम भी शामिल हैं। हुकूमत ने सारिफीन के तहफ़ ई कॉमर्स जवाबित 2020 में तरमीम की है ताकि कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग, सर्च रिजल्ट में हेरफेर और गलत तौर तरीकों से मुतालिक जाब्तों को मजीद सख्त किया जा सके। तरमीम शुदा जवाबित के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को कीमत में कटौती के ऐलान के वक्त कम की गई कीमत और उससे पहले की कीमत के बारे में जानकारी देना पड़ेगी। इन जवाबित के तहत ई कॉमर्स कंपनियों की सर्च रिजल्ट में हेरफेर पर पाबंदी लगाई गई है जो सारिफीन को गलत मालूमात फराहम करती हैं या सर्च क्वेरी के नतायज को मुतासिर करती हैं। तरमीम शुदा जवाबित से ज़्यादा शफाफ, जिम्मेदाराना और सारिफीन पर मरकूज ई कॉमर्स इको निज़ाम कायम होगा। ये तरमीम शुदा जवाबित आइंदा बरस 1 जनवरी से नाफिजुल अमल होंगे। आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने जनूबी कोरिया के चंगबोन में पहले दिन 1 सोने का, 2 चांदी के और 1 कांसे का तमगा जीता है। मोना अग्रवाल, अवनी लखियारा और मिली शाह पर मुश्तमिल भारतीय खवातीन टीम ने सोने का तमगा जीता। मोना अग्रवाल ने चांदी का तमगा जीता जबकि अवनी ने कांसे का तमगा हासिल किया। खवातीन के जूनियर हॉकी एशिया कप में भारत आज चीन के मौके में पाकिस्तान को 19-0 से जबरदस्त शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने शुरुआत से ही अपना दबदबा बरकरार रखा और इस टूर्नामेंट में बड़ी जीत दर्ज की। भारत ने 19 गोल किए, उसे 18 पेनाल्टी कॉर्नर और 1 पेनाल्टी स्ट्रोक मिला जबकि पाकिस्तान 1 भी गोल नहीं कर सका। भारत की तरफ से पूजा मलिक ने 3 गोल करके हैट्रिक लगाई। भारतीय जूनियर खवातीन टीम हफ्ते के रोज सेमीफाइनल में जनूबी कोरिया और मलेशिया के दरमियान मैच जीतने वाली टीम का सामना करेगी। भारतीय मर्दों की जूनियर हॉकी टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। आखिर में खास खास खबरें एक बार

और फिर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक महफूज और पायदार खलाई शोबे की हिमायत करता है। उन्होंने वर्चुअल तौर पर पेरिस में मुनक़िदा पहले बैन अल-अक़वामी खलाई समिट से खिताब किया। नई दिल्ली इस हफ्ते के आखिर में होने वाली 18वीं ब्रिक्स सरबरा मीटिंग में आलमी रहनुमाओं की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग के कल भारत पहुंचने की तवक्को है। वजीर दाखला अमित शाह ने कुदरती आफात से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोई भी हलाकत न हो के नजरिए के तहत आबोहवा की तब्दीलियों का मुकाबला करने वाले मजबूत गांव और शहर बनाने पर जोर दिया। भारत और रूस ने सिविलियन मुसाफिर तैयारों की मुश्तरका तैयारी और भारतीय ऑपरेटर्स को 105 इलाकाई टर्बोप्रॉप तैयारों की मुमकिन फराहमी के सिलसिले में पेशरफ्त की है। मरकज ने ई कॉमर्स जाब्तों में तरमीम करते हुए कीमतों में शफाफियत, स्पॉन्सर शुदा फहरिस्तों और तलाश के नतज में हेरफेर से मुतालिक जवाबित मजीद सख्त कर दिए हैं। जनूबी कोरिया में जारी आलमी पैरा शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार आगाज करते हुए 4 तमगे हासिल किए। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम countrywide. इसके अंतर्गत सुनिए शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा. इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICARIARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार.
1: आज हमारे साथ है वरिष्ठ वैज्ञानिक RS बाना जी. RS बाना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: धन्यवाद.
1: बाना जी, सबसे पहले एक बेसिक सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि शुष्क भूमि क्या है, इस पर किस तरह की खेती होती है और इसमें चुनौतियां किस तरह की हैं?
2: अगर हमारे देश के हम कुल कृषि रकबे की बात करें तो उसमें 45% के आसपास ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिंचाई के साधन या तो उपलब्ध है ही नहीं और है भी तो बहुत सीमित. और जो सिंचित क्षेत्र है बाकी का 55%, उसमें भी काफी बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सिंचाई के साधन सीमित है. और जो कम बरसात वाला ऐसा क्षेत्र है, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, रायलसीमा, तो ये ऐसे क्षेत्र है जहां पर बरसात कम होती है. अमूमन 750 मिलीमीटर से कम बरसात वाले क्षेत्रों को अर्धशुष्क क्षेत्र और जो 250 मिलीमीटर से कम वाले हाइपर एरिड क्षेत्र उनको बोलते हैं, यानी कि बहुत ही शुष्क क्षेत्र. तो जो ये शुष्क क्षेत्र है उनमें चुनौतियों की अगर हम बात करें तो पानी की उपलब्धता नहीं है, वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती है. उत्पादन स्तर काफी कम रहता है फसलों का. गरीबी बहुत बड़ी एक समस्या है. तो कई तरह की सामाजिक आर्थिक विषम परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से, क्योंकि ये जितना भी हमारा जो ड्राईलैंड क्षेत्र की हम बात करते हैं, करीब करीब 40% आबादी इसमें रहती है
1: जी.
2: और जो पशुधन है, हमारे देश का आधे से अधिक पशुधन इस क्षेत्र में है. तो चारे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है, अनाज की उपलब्धता, माइग्रेशन, रोजगार के अवसर के लिए, कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है. तो ये इस तरह की जो समस्याएं हैं वो है. इसके अलावा जलवायु संबंधित, मृदा संबंधित समस्याएं हैं. मृदा की उर्वरा शक्ति कम है, जैविक कार्बन कम है और चूंकि पशुधन है तो जितनी भी वनस्पति होती है उनको पेट भरने के लिए खिलाना जरूरी है. और जलवायु संबंधित चुनौतियों की अगर हम बात करें तो कभी तो बरसात आती नहीं, आती है तो बहुत कम आती है. कई बार बरसात के बीच में काफी सारा अंतराल आ जाता है, उस दौरान फसलें खराब हो जाती है चूंकि पानी की कमी है.
1: तो वैसे मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि जो शुष्क भूमि है और जो आर्द्र भूमि है, इनमें खेती में क्या अंतर होता है?
2: शुष्क भूमि में जो ऐसी फसलें होती है मुख्यतः जिसमें बहुत कम पानी में ही वो पैदा हो सकती है. और जो हमारे शुष्क क्षेत्र है उनकी अगर हम फसलों की बात करें तो मिलेट्स एक बहुत बड़ा समूह है जो बारानी क्षेत्रों में होता है, यानी कि जो जैसे कि बाजरा है, ज्वार है
1: और
2: जी मोटा अनाज वाली फसलें जिनको श्री अन्न भी बोलते हैं. और मिलेट्स के अलावा दलहनी फसलें, तिलहनी फसलों का भी काफी बड़ा क्षेत्र, यानी कि करीब करीब दलहनों की बात करें तो 85-90% के आसपास दलहन भी बारहनी क्षेत्रों में होती है और तिलहनी जो फसलें हैं वो भी करीब करीब 80% के आसपास इन क्षेत्रों में ही होती है. तो ये इस प्रकार

0: की फसलें होती है, जबकि आर्द्र क्षेत्र ऐसे हैं जो धान वाले क्षेत्र है जहाँ पर जल भरा होता है, ज्यादा बरसात होती है, तो वहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की होती है।
1: आज के समय में अगर हम बात करें तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो ऐसे में जलवायु परिवर्तन के साथ साथ जब हम देखते हैं कि किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी सरकार सहायता प्रदान कर रही है और शुष्क क्षेत्रों में ये पहल कुछ ज्यादा हो रही है।
0: सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसानों की आमदनी बढ़े, किसानों का जीवन स्तर उच्च हो, उसमें कोई संदेह नहीं है। और सरकार और जो सरकारी संस्थान है उसमें वो लगे हुए हैं, और जो जलवायु है उसमें जो परिवर्तन आ रहा है वो शुष्क क्षेत्रों में ज्यादा होने की प्रबल संभावनाएं हैं। परंतु जैसे जैसे ये वैज्ञानिक विकास हो रहा है, अगर हम आज के एक या दो दशक पहले की हम बात करें, तो यदि 10% बरसात में कमी आती थी, मानसून 10% कमजोर रहता था, तो करीब करीब 13-13.5% से भी ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन कम हो जाता था। अब उसी 10% में 0.22% तक ही कमी आती है। हमारा खाद्यान्न उत्पादन स्तर हम बना के रखते हैं क्योंकि जो वैज्ञानिक विकास हुआ है और जो सरकार के प्रयास है और हमारे जो किसानों की मेहनत है, उससे हम जलवायु परिवर्तन को काफी हद तक मात दे पाए हैं। परंतु यदि दीर्घकाल की बात करें तो हमें जलवायु सहनशील किस्मों, जलवायु से संबंधित जो रेजिलिएंट टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, उनको उत्पादन करके सरकार, विज्ञान, वैज्ञानिक और किसानों को मिलकर काम करना होगा ताकि हम निरंतर आगे बढ़ सके।
1: डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, फसल विविधीकरण करना, अंतर फसल करना और कृषि वनीकरण जैसी जो प्रणालियां होती है, ये शुष्क भूमि में कितनी लाभदायक हो सकती है?
0: जो बारानी क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र है, उनमें फसल की फैल होने की संभावना ज्यादा होती है। जैसे आपने पूर्व में कहा फसल विविधीकरण, और ये जो अंतर फसलीकरण है यानी कि जो इंटरक्रॉपिंग है, एक ही साथ दो से अधिक प्रकार की फसलें लगाएं, बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री या फसलों को अदल बदल कर बोना, बहुत सारी फसलें एक साथ खेतों में लगाना, उसका फायदा ये है कि यदि एक फसल फैल हो जाती है तो दूसरी फसल एक तरह से इंश्योरेंस होती है। यही इंटरक्रॉपिंग का सबसे बड़ा फायदा है। इसी तरह से जो हमारा शुष्क क्षेत्र है वहाँ पर पशुधन एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय है और वो एक बारानी क्षेत्रों की जीवन रेखा है, जीवन की आधारशिला है। तो जो एग्रोफोरेस्ट्री है वो पशुधन के लिए एक चारे का वैकल्पिक स्रोत तैयार करती है, वर्ष भर किसानों की आमदनी होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि बागवानी, एग्रोफोरेस्ट्री, अंतर फसलीकरण का समावेश हमारी फसल प्रणालियों में हो और फसल विविधीकरण को हम बड़े पैमाने पर अपनाएं।
1: डॉक्टर बाना, अभी ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है जिसमें साउथ साउथ कोऑपरेशन को विशेष तौर पे महत्व दिया जा रहा है, तो भारत का ये जो सहयोग की भावना है भारत की, इसके माध्यम से शुष्क भूमि की खेती के क्षेत्र में भारत के साथ साथ दूसरे देशों को भी कैसे महत्व दिया जा रहा है, खासतौर पर जब हम अनुभव की बात करते हैं, तकनीक साझा करने की बात करते हैं, इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें।
0: जी, भारत सरकार का जो ICAR है, कृषि मंत्रालय का, और ICRISET जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान है हैदराबाद, ये दोनों मिलकर जो ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस 10-11-12 सितंबर 2026 का आयोजन कर रहे हैं, उसमें दुनिया भर के विश्व स्तर के जो वैज्ञानिक गण हैं, किसान हैं जो बारानी खेती से संबंधित, वो सब एकत्रित हुए हैं और राजनीतिक नेतृत्व भी वहां पे आया है। माननीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आज वहां पर आके और एक अपना विजनरी टॉक दी है। तो ये क्योंकि भारत अब दुनिया में एक राह दिखाने वाला उस पे चल रहा है, और हम जो विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, हमें बारानी क्षेत्रों को, ड्राईलैंड्स को विकसित करना है, और जो ग्लोबल साउथ की जो हम बात करते हैं, यानी कि दुनिया का वो दक्षिणी हिस्सा जो जिसमें लैटिन अमेरिका भी है, अफ्रीका है, एशिया पैसिफिक के जो देश हैं, जो विकास की राह पर आगे बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से, उनमें भारत एक लीडर की भूमिका में है। और ये जो ड्राईलैंड से संबंधित अनुसंधान है भारत में, ICAR में, IARI जो पूसा संस्थान है उसमें, और ICAR के इंस्टीट्यूट है जैसे कि काजरी है जोधपुर में, क्रीडा है हैदराबाद में, ये जो तकनीकियों का विकास किया है वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। और जो दुनिया भर के संस्थान है, वैज्ञानिक है जो आज एकत्रित हुए हैं, वो सब उन पे मंथन करेंगे। और ICRISET का और ICAR का ये 50 साल का सहयोग हुआ है, उसको भी एक मनाया जा रहा है 2026 में। तो उस पे मंथन होगा, क्या क्या तकनीकियां हो सकती है जो भविष्य में जलवायु परिवर्तन के परिदृश्य में हमारे किसानों की आजीविका और आय बढ़ाती रहे, और जो ये फसल प्रणालियां हैं बारानी क्षेत्रों की, शुष्क क्षेत्रों की, उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, सतत विकास कैसे हो, उस पे मंथन होगा।
1: डॉक्टर साहब, ग्लोबल ड्राईलैंड कांग्रेस जो हो रही है इसमें शोध, उद्योग, स्टार्टअप, सरकार और किसान संगठनों को एक साथ लाने पर जोर दिया गया है, तो आपको लगता है कि सभी पक्षों के बीच में जब सहयोग बेहतर होगा तो फिर शुष्क भूमि के किसानों की आय बढ़ेगी और खेती की संभावनाएं जो कम होती हैं उनमें भी बढ़ोतरी होगी?
0: बिल्कुल, इसमें हमें साथ मिलकर काम करना होगा, और जो थीम है ड्राईलैंड कांग्रेस की साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब दुनिया भर के जो ग्लोबल साउथ के देश हैं यदि साथ मिलकर काम करते हैं तो वो एक बड़ी दीर्घकालिक सोच होगी, और साथ ही जो ये हमारे अलग अलग पार्टनर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, अनुसंधान करने वाले, पॉलिसी बनाने वाले, स्टार्टअप्स, एंटरप्राइजेज, यूथ, महिलाएं, ये सब अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं, और ड्राईलैंड कॉन्फ्रेंस का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि जो जलवायु परिवर्तन के दौर में किस तरह से खेती को सतत उत्पादन मिलता रहे, शुष्क क्षेत्रों में किसानों की आय निरंतर बढ़ती रहे, और जो जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कई बार नुकसान हो जाता है, बहुत तगड़ा ड्राउट, सूखा आ जाता है, उससे माइग्रेशन बढ़ जाता है, उन सबको रोकने के लिए हम सबको मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर काम करना होगा।
1: डॉक्टर बाना, कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को किस तरह की फसलों को अपनाना चाहिए, कैसी पद्धति अपनी रखनी चाहिए?
0: हमारे जो ड्राईलैंड्स है उनकी अलग ही प्रकार की फसलें भी होती है, कुछ ऐसी फसलें होती है जो दूसरी जगह पे उतनी नहीं होती, बीजीय मसाले होते हैं जिसमें कि जीरा है, सौंफ है, धनिया है, मेथी है, नागोरी पान मेथी है, तो ये एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं। यदि गुणवत्तापूर्ण उत्पादन करें तो यूरोपीय बाजार या अमेरिकी बाजार में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और कुछ किसान और जो आजकल युवा उद्यमी विशेषकर एफपीओ का निर्माण करके और अपनी आमदनी में वृद्धि कर रहे हैं, और भारत में भी जो किसानों की आयु बढ़ रही है, युवा कम आकर्षित हो रहा है, तो ये जो इस तरह की एक्सपोर्ट पोटेंशियल वाली फसलें हैं और जो एंटरप्रेन्योरशिप है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, उसके जरिए हम युवाओं को खेती की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और जो बारानी क्षेत्रों की फसलें हैं उनमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है अगर युवा इसमें आगे आते हैं और एक्सपोर्ट हब बना के, और इसमें न केवल युवाओं का बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र है बारानी क्षेत्रों के उनके किसानों की आय बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब, किसानों के हित की जब बात कर रहे हैं तो कोई किसान यदि मदद लेना चाहे तो ICAR की बात हो, पूसा संस्थान हो, और ICRA SAT हो, जिनकी साझेदारी के 50 वर्ष अब पूरे हो रहे हैं, कैसे उनकी मदद ले सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं शुष्क भूमि में अपनी खेती को बढ़ाने के लिए?
0: ICRA SAT जो कि दुनिया भर में सेमी एरिड ट्रॉपिक्स में काम कर रहा है, और ICAR का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का जिसकी पहुंच, जहां बोलते हैं ना रेयरेस्ट ऑफ जो जगह है, सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ अरुणाचल के दिरांग से लेके अंडमान के पोर्ट ब्लेयर तक, और सब जगह देश भर में हर जगह ICAR के संस्थान मौजूद है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र मौजूद है जो किसानों के साथ निरंतर काम कर रहे हैं, उनकी सिर्फ समस्याएं नहीं जाती, उनको लैब तक लाया जाता है और लैब में उनका समाधान खोजा जाता है, और वापस लैब से लैंड को वो ट्रांसफर होती है। और अब तो जो हमारी सरकार है वो निरंतर प्रयास रहता है, भले ही वो विकसित कृषि संकल्प अभियान हो या जो किसानों के साथ जुड़कर बैलेंस फर्टिलाइजेशन का जो अभियान चलाया है अभी इस वर्ष, तो उसके थ्रू हम जो ग्रामीणों तक पहुंच रहे हैं, युवाओं तक पहुंच रहे हैं, महिलाओं तक पहुंच रहे हैं, और ICAR का और जो ICRA SAT का जो 50 वर्ष की जो ये गोल्डन जुबली है उसमें जो युवा और महिला किसान है उनको सम्मान मिल सके, उस पे बड़ा एक फोकस है।
1: डॉक्टर साहब, अभी आपने युवा और महिला किसानों की बात की, थोड़ा सा छोटे और सीमांत किसानों की अगर हम बात करते हैं तो जलवायु परिवर्तन का असर भी उन पर जाहिर सी बात है पड़ता ही है, तो महंगी तकनीक भी है और जानकारी की कमी की भी बात कह सकते हैं हम, संसाधनों की कमी है, तो ये सारी जो बातें हैं इन पर अगर थोड़ा सा हम फोकस करें तो कैसे इनसे निपटा जा सकता है?
0: छोटे किसानों के लिए हमारे संस्थान है या हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ICAR और IARI, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, निरंतर प्रयासरत है छोटी मशीनरी, किसानों के लिए कम लागत वाली तकनीकियां, संरक्षण कृषि जिसको कंजर्वेशन एग्रीकल्चर कहते हैं, जीरो टिलेज या नोटिल फार्मिंग भी बोला जाता है, जिसमें बिना जुताई किए ही खेती करें, फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उनको खेतों में ही उपयोग करें ताकि मृदा की उर्वरा शक्ति भी बढ़े और जो जलवायु को प्रदूषण होता है, उसका नुकसान होता है, उन सबको बचा जाए। तो स्मॉल स्केल मशीनरी, कम लागत वाली जो सस्य तकनीकियां हैं, उनका विकास हम निरंतर कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा देश तो छोटे किसानों का देश ही कह सकते हैं, तो उनके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और जुड़ के और खेतों में काम कर रहे हैं हमारे किसान वैज्ञानिक मिलकर साथ में, और जो तकनीकी का विकास हो रहा है उसी का परिणाम है कि आज हम दुनिया में धान उत्पादन में एक नंबर पर पहुंच

चुके हैं, हम फूड सिक्योरिटी में सेल्फ सफिशियंट है, आज हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे अनाज होते हैं उनमें ज्यादा सांद्रता में पोषक तत्व हो उसकी बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, और डिजिटल एग्रीकल्चर और जो एक मौसम सेवा है जिसमें किसान मौसम आधारित तकनीकियों से जुड़ा है, निरंतर हम प्रयासरत हैं कि हमारी तकनीकी उन तक पहुंचे, जिसमें हमारे जो सोशल मीडिया सहित जो

रहे थे शुष्क क्षेत्रों में कृषि की नई संभावनाओं और जलवायु अनुकूल समाधान पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR IARI में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कंट्री वाइड

0: focus on these aspects which will help in carrying it forward.
1: Ambassador Sikri, thank you so much for your time and also giving us such deep insights on the BRICS WBA Women-Led Development Conference. Thank you so much for joining us for the program tonight.
0: Thank you.
2: You were listening to a discussion on unlocking new opportunities for women in BRICS economy. The participants were Veena Sikri, former ambassador, and Deeksha Saxena, Akashwani correspondent. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashwani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: Insights.
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रहे हैं। ऐसे में टकराव की बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव की बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
5: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
4: भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे दो दिन के शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतेह अल सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को सदस्य देशों के लिए समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करना विषय पर सत्र से होगी। रविवार को प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स के साझेदार देशों और आमंत्रित देशों के नेताओं का स्वागत करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान कल से 11 सितंबर तक राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति भवन संग्रहालय और अमृत उद्यान आम जनता के लिए बंद रहेंगे। भारत और रूस ने आज यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण और भारतीय विमानन कंपनियों के लिए 105 क्षेत्रीय टर्बोप्रॉप विमानों की संभावित आपूर्ति पर चर्चा की। नई दिल्ली में नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अलीखनोव के साथ बैठक में देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागरिक यात्री विमानों के संयुक्त निर्माण पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने देश की आपदा प्रबंधन व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया है और किसी के हताहत न होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के शासी निकाय की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि सरकार तीन प्रमुख स्तंभों पर ध्यान दे रही है, जोखिम में कमी, पूर्व चेतावनी प्रणाली और किसी के हताहत ना होने देना। भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य कीमतों में पारदर्शिता, प्रायोजित उत्पादों की सूची, खोज परिणामों में हेरफेर और डार्क पैटर्न से जुड़े नियमों को सख्त करना है। संशोधित नियमों के अंतर्गत किसी उत्पाद की कीमत कम करने पर ई कॉमर्स कंपनियों को घटी हुई कीमत के साथ उसकी पिछली कीमत भी बतानी होगी। भारत ने दक्षिण कोरिया के चांगवोंग में आयोजित विश्व पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप

दीपक सिंह कोस्ता की आवाज में आप सुन रहे थे गजलें, कार्यक्रम गुलदस्ता में। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अरुण देवनाथ का राग जोग कोस में गायन।

0: संगीत के कार्यक्रम राग रंजन में अभी आप सुन रहे थे अरुण देवनाथ का राग चोक कोस में गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 है, 7 चैनल है और 11 बजने का। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे इट सेव्स लाइफ ऑन अर्थ, फ्रॉम क्लाइमेट एंड क्रॉप्स टू ओशंस एंड कम्युनिटीज। द प्रॉमिस ऑफ स्पेस इज इनफाइनाइट, अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कलेक्टिव। एज ऑर्बिट्स बिकम मोर क्राउडेड, टेक्नोलॉजीज मोर पावरफुल एंड एक्टर्स मोर न्यूमरस।
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। एक अन्य प्रमुख समझौते में फ्रांस की प्रक्षेपण सेवा कंपनी राइड भारत की कंपनी टेक मी टू स्पेस के 2 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगी। भारत शनिवार से नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2 दिन के सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 11 सदस्य देश शामिल होंगे। ब्रिक्स के साझेदार देशों के रूप में बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम भी सम्मेलन में भाग लेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस और ब्राजील के राष्ट्रपति आज रात नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि कई अन्य नेता कल राजधानी पहुंचेंगे। शिखर सम्मेलन की शुरुआत शनिवार को समावेशी वैश्विक शासन और बहुपक्षवाद को मजबूत करने विषय पर चर्चा के साथ होगी। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में कल दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 की अंग्रेजी, कॉमर्स और समाज शास्त्र की दोबारा हुई परीक्षाओं की प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर दी है। उम्मीदवार 13 सितंबर तक UGC नेट की आधिकारिक वेबसाइट पर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन 3 विषयों की दोबारा परीक्षा प्रश्न पत्रों में कई गलतियों की शिकायतों के बाद आयोजित की गई थी। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर को, जबकि समाजशास्त्र की परीक्षा आज हुई। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत

0: The Indian women's team stormed into the semi-finals of the Junior Asia Cup with a ruthless 19-0 demolition of Pakistan in quarter-final at Mochi in China today. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त प्रिया। फिल्म संगीत आपकी फरमाइश पर आपका स्वागत है। रात की इस खामोशी और कुछ नगमे ऐसे होते हैं ना दोस्तों, जो सीधे दिल तक पहुंचते हैं। तो आज इस हसीन रात को बनाते हैं और भी यादगार आपके पसंदीदा गीतों के और आपकी फरमाइश के साथ। तो देर करते नहीं है और शुरू करते हैं पहला कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम का पहला गीत।

जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ख्वाबों में आते हैं, कुछ दिल में बस जाते हैं। उनकी एक झलक से ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोहब्बत भी इतनी खूबसूरत चीज है दोस्तों, कभी किसी को अपना ड्रीम गर्ल बना लेती है। किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म ड्रीम गर्ल से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तर प्रदेश से बैनी सिंह सागर, पन्नी लाल, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना श्रीमती ओमवती भारती, कनक, शुगुन, सारांश, आयांश, आदिति, शिवांश, प्रथम सिंह। आइए सुनते हैं अगला गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म लूटमार से। इस गीत की फरमाइश की थी श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीसा नायाब और लड्डू ने। साथ ही पंजाब से खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु विशाल, लाडी शालनी, पीवानाशी वाणी, आरबी खेड़ा, जीवन सिंह और समस्त खेड़ा परिवार ने। शास्त्री नगर से भीड़ शहर से किशन सपकाल, आशा सोनिया विशाल सपकाल ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। और ये गीत उस प्यारी सी गुड़िया के लिए जिसका कल मतलब 12 बजने को जन्मदिन आने वाला है, और उसको विश करते हैं। उसके लिए एक मैसेज आया प्यारी वेदांशी के लिए, और उनको बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। तो आइए सुनते हैं उस गुड़िया के लिए ये गीत।

ये दिल्ली से फरमाइश आई थी, और एसपी सिंह, बेबी विदांशी और प्रियाशी। बेबी विदांशी के लिए लिखते हैं, बेटा तुम्हारी मुस्कान हमेशा बनी रहे, छोटी छोटी खुशियां तुम्हें दुगनी मिले, ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे और अच्छी सेहत बने। मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत, आप आए बाहर आए से, फिल्म से। और इस गीत की फरमाइश और की थी चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा। और नागचून रोड संजय कॉलोनी से अब्दुल गफ्फार, अब्दुल हक, जियालू हक डावर, मोहम्मद उमर, राजेंद्र कटारे ने।

पार्वती खान की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म डिस्को डांसर से। इस गीत की फरमाइश की थी उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश, साथ ही सोनीपत से सुदर्शन मुखी, अनीता, सिमरन, और दिल्ली से चारू, दिनेश और ऋषभ ने। दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल का पता नोट कीजिए IP रेडियो दिल्ली @gmail.com। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

हाँ दोस्तों, जब इतने हंसी सवाल हो ना तो जवाब देने में देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जवाब दे देना चाहिए। और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म मैंने प्यार किया से। इस गीत की फरमाइश की थी संभल से छोटे अंसारी, आलम अंसारी, असद अंसारी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकर, अमर, दिलीप, राजू, रजक, संजीव, विपिन, अरुण, संजय, पवन, सुनील, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सोमिया ने और उनके मम्मी पापा, मारा से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, सुमेघ कुमार, साधना।

अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे ये खूबसूरत गीत फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। इस गीत की फरमाइश की थी पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन, मध्य प्रदेश से ए के पांडे और अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक और गाजीपुर से आज़ाद अली अनवर, रिजवान परवीन अब्दुल्ला आज़ाद ने।

अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण के आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म बेटा से। इस गीत की फरमाइश की थी दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से रेखा बसंत कुमार।

चित्रा और कुमार सानू की आवाज में आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म क्रिमिनल से। इस गीत की फरमाइश की थी पचकूला सेक्टर 9 से आशुचुग अश्वनी, गोविंद टोनी, लव दीवाना, राधे भाविका डिंगरा। और सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत अब।

0: चित्रा और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में आप सुन रहे थे कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म लव से। इस गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यही संपन्न होता है। मैं आपकी दोस्त प्रिया आपसे विदा लेती हूँ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 386.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, TRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है। अब समाचार होंगे। इन मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होंगे 4:50 पर। आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे AIR लाइव न्यूज 24/7 पर। हमारे प्रसारण जारी है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष

0: संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इनमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ता असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबू धाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे और सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी। यात्रियों को ताजा जानकारी के लिए DMRC की वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दिल्ली मेट्रो सारथी ऐप देखने की सलाह दी गई है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूखा प्रभावित इलाकों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान, बेहतर नीतियों और बाजार सहयोग के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल दिया है। नई दिल्ली में ड्राई लैंड कांग्रेस 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि कृषि व्यवस्था में बदलाव का मुख्य उद्देश्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि किसानों की आय, आजीविका और समृद्धि में सुधार होना चाहिए। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। क्रिकेट में दुबई में खेले जा रहे महिला एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 150 रन का लक्ष्य रखा है। इससे पहले बांग्लादेश की महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually

ये आकाशवाणी दिल्ली का यह लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 12:10 हुए हैं।

श्रोताओं, आप जुड़ चुके हैं अब अपनी दोस्त सरिता के साथ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आकाशवाणी का ये विशेष कार्यक्रम सुरों का सफरनामा लेकर आज मैं आपकी अपनी दोस्त सरिता हूँ आपके साथ। करती हूँ आपका तहे दिल से स्वागत। हिंदी सिनेमा, उर्दू शायरी, भारतीय जनजीवन और इन सब से जुड़े एक ऐसे रचनाकार जिनके शब्द कई पीढ़ियों से हमारे साथ चलते आ रहे हैं और चलते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम सुरों का सफरनामा में बात करेंगे जावेद अख्तर साहब की। कुछ लोग कहानियाँ लिखते हैं, कुछ गीत लिखते हैं, कुछ कविताएं लिखते हैं, लेकिन जावेद साहब उन चुनिंदा रचनाकारों में से हैं जिन्होंने इन सभी क्षेत्रों में अपनी कलम का लोहा मनवाया, अपनी एक अलग पहचान बनाई। जावेद साहब ने ऐसे कई फिल्मी पात्र गढ़े जिन्हें हम हमेशा याद रखते हैं। उन्होंने ऐसे संवाद लिखे जो आम बोलचाल का हिस्सा बन गए। उन्होंने ऐसे गीत लिखे जिनमें प्रेम था, उम्मीद थी, देश की मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू थी और जीवन के कठिन सवाल भी थे। तो आज के कार्यक्रम में हम जीवन यात्रा पर चलेंगे, सुरों का सफरनामा में जावेद साहब के। हम जानेंगे कि किस तरह से ग्वालियर में जन्मा एक छोटा सा बच्चा अपने जीवन की कठिनाइयों से गुजरते गुजरते मुंबई पहुंच गया फिल्मों के काम की तलाश में, और आगे जाकर फिल्मी सिनेमा में उसने इतना प्रभावशाली लेखन किया कि लोग उनकी कलम का लोहा मानते। दोस्तों, आज के शुरू के सफरनामा में बहुत सारी बातें हैं जावेद साहब से जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम का आगाज इस खूबसूरत से गीत के साथ।

दोस्तों, आज के सुरों के सफ़रनामा में हम बात कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब की। तो जावेद साहब का जन्म 17 जनवरी 1945 को मध्य प्रदेश ग्वालियर में हुआ था। उनका पूरा नाम जावेद अख्तर था। परिवार में साहित्य का गहरा वातावरण था और उनके पिता जानिसार अख्तर उर्दू के प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। उनकी माता सफिया अख्तर शिक्षिका और लेखिका थी और इस तरह से भाषा और साहित्य से उनका परिचय बहुत छोटी सी उम्र में हो गया था।

श्रोताओं, उनका परिवार उर्दू अदब की समृद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ था। उनके परदादा मुस्तर खैराबादी भी प्रसिद्ध शायर थे। घर में शेर व शायरी, कविता, किताब और विचारों पर चर्चा हमेशा होती रहती थी और साहित्यिक परिवार में जन्म लेने का अर्थ ये नहीं है कि जीवन की राह बहुत आसान है। जावेद अख्तर के बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था और ये घटना उनके जीवन में बहुत गहरा खालीपन छोड़ गई थी। बचपन और किशोरावस्था का एक बड़ा हिस्सा उन्होंने रिश्तेदारों के साथ साथ अलग अलग शहरों में बिताया, कभी लखनऊ, कभी अलीगढ़ या फिर कभी भोपाल। जगह बदलती रही पर पढ़ने और सुनने की आदत हमेशा था उम्र उनके साथ थी, है और रही। उन्होंने भाषा को केवल किताबों से नहीं सीखा, लोगों की बातचीत, शहरों का रंग, बाजारों की आवाजें और रोजमर्रा के संघर्ष भी उनके लिए एक खुली किताब की तरह थे। उनकी शिक्षा भोपाल में हुई। छात्र जीवन में उन्होंने बहस, भाषण, साहित्य में रुचि ली। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी थी और वे संवादों तथा शेरों को ध्यान से सुनते थे और उनका यही अभ्यास आगे चलकर उनके लेखन में काम आया। एक लेखक के लिए केवल शब्द जानना पर्याप्त नहीं होता, उसे मनुष्य के भीतर उठने वाली भावनाओं को पूरी तरह से गहराई से समझना होता है और ऐसी समझ जावेद अख्तर साहब के पास थी। उनके बचपन में सुख और सुरक्षा तो कम थी लेकिन अनुभव बहुत ज्यादा थे और दोस्तों यही कारण है कि उनके लेखन में अकेलापन भी मिलता है, आत्मसम्मान भी मिलता है, रिश्तों की गर्माहट भी मिलती है और अपने पैरों पर खड़े होने की इच्छा भी। कठिन परिस्थितियों ने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को उन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ति का हिस्सा बना लिया।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों का सफरनामा अपनी दोस्त सरिता के साथ। और हमने जैसा कि आपको बताया कि आज के कार्यक्रम में हम जिस कलाकार के सुरों के सफर पर चले हैं वो हैं जावेद अख्तर साहब। दोस्तों जैसे जैसे जावेद अख्तर युवा हुए उनके मन में फिल्मी दुनिया में काम करने की इच्छा जागृत हो गई। साल 1964 के आसपास वो मुंबई पहुंच गए और यकीन मानिए ये वो समय था जब उनके पास ना कोई स्थायी काम था, ना पर्याप्त पैसा और ना कुछ रहने का ठिकाना। मुंबई तो है ही सपनों का शहर, लाखों सपनों को परख चुकी है ये मुंबई। जावेद अख्तर का सपना भी इसी शहर की कठिन परीक्षा से गुजरा। शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे छोटे काम किए, कभी किसी फिल्म के सेट पर सहायक का काम किया, कभी संवाद लिखने में मदद और कभी ऐसी जिम्मेदारियां जिनका नाम पर्दे पर कभी दिखाई ही नहीं देता था। कई बार रहने और भोजन की समस्या भी सामने आई, पर उन्होंने इस शहर को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। दोस्तों जावेद अख्तर साहब के संघर्ष के दिनों का सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि उन्होंने सिनेमा को बहुत ही करीब से समझा, परखा, जाना। उन्होंने जाना कि एक कहानी किस तरह से दृश्य बनती है, अभिनेता किस तरह से संवाद बोलता है और दर्शक किस बात पर हंसता है, किस बात पर रोता है और कहां तालियां बजाता है। यहां हम आपको बता दें कि उनकी रुचि केवल कहानी लिखने में नहीं बल्कि ये भी समझना चाहते थे कि पर्दे पर कहानी को कितना प्रभावशाली बनाया जा सकता है, किस तरह से उसे प्रस्तुत किया जा सकता है कि वो दर्शकों को बटोर कर सिनेमा हॉल तक ले आए। इस समय उनका आत्मविश्वास कई बार परखा गया लेकिन वे पढ़ते रहे, लोगों से मिलते रहे, अपने विचार लोगों के साथ साझा करते रहे। और यहाँ हम आप बता दें आपको कि आप भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं अपने ईमेल्स के जरिए। हमारा मेल आईडी है ipradio@delhi@gmail.com। जी हाँ, ipradio@delhi@gmail.com। ये वो माध्यम है जिसके जरिए आप अपने दिल की बात साझा कर सकते हैं अपनी दोस्त सरिता के साथ।

दोस्तों, शुरू के सफ़रनामा में हम आज जिस सफ़र पर चले हैं वो है जावेद अख्तर साहब का सफ़र। इस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कलम पर उतारा। और आगे हम आपको बताएं कि फिल्मों में काम करते हुए जब जावेद अख्तर साहब की मुलाकात सलीम खान से हुई तो वो परवान चढ़ गई। सलीम खान उस समय अभिनय से जुड़े थे, पर उनकी रुचि कहानी और पटकथा में भी थी। सलीम साहब और जावेद साहब की जो सोच थी वो लगभग एक जैसी थी। दोनों को लगता था कि फिल्मों की जो कहानियां होती हैं वो मजबूत होनी चाहिए,

और साथ ही साथ लेखक को उचित पहचान मिलनी चाहिए। धीरे धीरे उन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। और इस साझेदारी को दुनिया ने सलीम जावेद का नाम दिया। हिंदी सिनेमा में लेखक की जोड़ी का ये नाम अपने आप में एक पूरी की पूरी संस्था बन गया है। उस समय फिल्मों के प्रचार में लेखक का नाम बहुत प्रमुखता से तो नहीं दिखाया जाता था, लेकिन सलीम जावेद के लेखकों की भूमिका और सम्मान को सामने लाने के लिए इन दोनों ने ही बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उन्होंने यह स्थापित किया कि कोई भी फिल्म सफल होने के पीछे उसकी पटकथा, संवाद और निर्णायक भूमिका, ये सब जरूरी है। और फिलहाल तो जरूरी है हमारे जो श्रोतागण हैं, जो संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं ईमेल के जरिए, तो हम आपको बता दें कि संभल से हम तक एक ईमेल पहुंचा है छोटे अंसारी जी का। जावेद अख्तर पर कार्यक्रम सुन रहे हैं, कार्यक्रम सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे अंसारी जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है, कार्यक्रम की तारीफ कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, कार्यक्रम का आनंद लीजिए। आज हम चले हैं सफर पर जावेद अख्तर साहब की।

दोस्तों जावेद अख्तर साहब के काम करने का तरीका बहुत ही रोचक और प्रभावशाली था। उन्होंने अपनी पहचान विशेष रूप से उस नायक से बनाई जो अन्याय के विरुद्ध हमेशा खड़ा रहता था। पात्र की पृष्ठभूमि, उसका स्वभाव, उसकी भाषा, उसका उद्देश्य हमेशा वो तय करते थे, जिसे केवल घटना बताने के लिए नहीं होता था बल्कि पात्र के बारे में भी कुछ नया बताता था। यही कारण था कि उनके लिखे पात्र दर्शकों को हमेशा सच्चे और प्रभावशाली लगते थे। उनकी कहानी का नायक हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ा होता था। यह नायक व्यवस्था से नाराज था पर भीतर से संवेदनशील भी था। कभी वो बेरोजगारी, कभी असमानता, कभी निराशा का वातावरण जो बनता था, उसकी झलक इनकी कहानियों में हमेशा दिखाई जाती थी। दो व्यक्तियों के साथ सफल तभी होते हैं जब वे दोनों एक दूसरे की ताकत को समझें। सलीम खान और जावेद अख्तर की साझेदारी में विचार, कहानी, दृश्य, संवाद, ये सब एक दूसरे के पूरक हो गए और एक दूसरे को मजबूती प्रदान करने लगे और यही साझेदारी आगे बनकर भारतीय सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बन गई।

दोस्तों, जावेद अख्तर साहब को समझने के लिए केवल उनका किसी एक फिल्म गीत या वक्तव्य को देखना पर्याप्त नहीं है। उनके लंबे काम को साथ रखकर देखने में एक ऐसे व्यक्तित्व की तस्वीर नजर आती है जो भाषा से प्रेम करता है, लोकप्रिय माध्यम की शक्ति को समझता है और अपने समय के प्रश्नों से दूर नहीं रहना चाहता। और फिलहाल मैं दूर नहीं रहना चाहती हूँ अपने श्रोताओं के संदेशों से। तो हम तक जो अगला ईमेल पहुंचा है, भेजने वाली हैं समता सिंह, और इन्होंने जावेद साहब की एक गीत की फरमाइश की है। तो बिल्कुल ज़रूर आपकी फरमाइश को पूरा किया जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और संदेश पहुंचा है छोटे अंसारी साहब का। कह रहे हैं उन्हें कार्यक्रम पसंद आ रहा है और जावेद अख्तर ने गीत लिखा है 1 2 3। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्त। और इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए अपने संदेशों के माध्यम से, अपने ईमेल्स के माध्यम से। श्रोताओं, जावेद साहब की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसने कम उम्र में माँ को खोया, अलग अलग शहरों में अपना जीवन बिताया, कठिन अनुभवों के बीच भाषा से अपना रिश्ता बनाए रखा। ये कहानी दो लेखकों की साझेदारी की भी है जिसने हिंदी सिनेमा को मजबूत कहानियां, यादगार पात्र और असरदार संवाद दिए। और श्रोताओं, फिलहाल तो घड़ी की सुइयां मुझे इशारा कर रही हैं कि सुरों का सफरनामा कार्यक्रम संपन्न करने का वक्त आ गया है, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर किसी दिन फिर किसी मोड़ पर होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, जुड़े रहिए एआर लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ। फिलहाल समता के जो फरमाइशी गीत है उसके साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। इंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। रात के 1 बजने को है, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: फॉर सेंचुरीज स्पेस इंस्पायर्ड अवर इमेजिनेशन, टुडे It saves life on earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। कल से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अस्सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपद, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा धारकों को नौकरी जाने के बाद मिलने वाली 60 दिन तक की राहत अवधि समाप्त करने का प्रस्ताव दिया है। मौजूदा नियम के तहत नौकरी जाने के बाद कर्मचारी को नया नियोक्ता तलाशने या इमिग्रेशन का दूसरा विकल्प अपनाने के लिए 60 दिन तक अमेरिका में रहने की अनुमति होती है। गृह सुरक्षा विभाग के प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने पर यह सुविधा खत्म हो सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ भोकर मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा सीताखंडी घाट के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने एक टाटा मैजिक यात्री वाहन को टक्कर मार दी। टाटा मैजिक नांदेड़ से भोकर जा रही थी। क्रिकेट में भारत ने महिला एशिया कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 40 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। दुबई में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट पर 149 रन बनाए। सैफ अली वर्मा ने 40 गेंदों पर 64 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। ये मुकाबला आज रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को फाइनल में भारत से खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे कार्यक्रम अपनी दोस्त सरिता के साथ। नीचे सुनिए अगला गीत फिल्म तुम बिन से। आवाजें चित्रा की हैं और संगीत दिया है निखिल विनय ने।

दोस्तों, गीत सुनेरे कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पहले हम एक संदेश ले लेते हैं। भेजने वाले हैं छोटे अंसारी और आलम अंसारी। कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनते हैं अगला गीत फिल्म मासूम से। आवाजें हैं अनूप घोषाल की, संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और गीतकार हैं गुलजार।

दोस्तों गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए अब अगला गीत। गीत से पहले इस गीत की फरमाइश की है समता सिंह ने द्वारका से, तो फिल्म ब्लैकमेल का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को। और इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमारे साथ अपने ईमेल्स के ज़रिए। हमारा मेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। जी हाँ, ipradiodelhi@gmail.com ये वो माध्यम है जिसके ज़रिए आप अपने दिल की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल ये खूबसूरत सा म्यूजिकल ट्रैक आपके लिए।

नीचे सुनिए अगला गीत फिल्म शोर से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीतकार हैं संतोष आनंद।

नीचे सुनिए अगला गीत, फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तो गीत सुनहरे कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम है अपनापन, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: गीत सुनाई कार्यक्रम में लीजिए पेशकश अगले अंतिम गीत की है। फिल्म का नाम है अराउंड द वर्ल्ड। आवाजें मुकेश और शारदा सिन्हा की हैं। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने और गीतकार हैं हसरत जयपुरी।
1: चले जाना जरा ठहरो किसी।
0: दोस्तों इसी गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए AI लाइव न्यूज 24x7 चैनल के साथ। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे गीत सुनहरे कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का एआई लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने को है। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाव के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और

माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। इसमें फ्रांस की सफरान स्पेस और भारत की ध्रुव स्पेस के बीच 50 लाख यूरो से अधिक के अनुबंध शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे दो दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात UAE सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियान और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान शामिल होंगे। ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंच गए हैं। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली में ब्राजील के विदेश मंत्री का स्वागत किया। मंत्रालय ने कहा है कि भारत और ब्राजील के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध हैं और दोनों देश ग्लोबल साउथ के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड, जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और रूस के बीच आर्थिक और औद्योगिक साझेदारी को तेज करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों का लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब और निवेश को $50 अरब तक पहुंचाना है। श्री गोयल ने नई दिल्ली में रूस के उद्योग और व्यापार मंत्री एंटोन अली खानोफ के साथ इनोप्रोम इंडिया 2026 को संबोधित करते हुए ये बात कही। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच चौथे द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: जी, थोड़े घर क्या देख रहे हैं आप?
1: कमाल है, उस चांद को घंटों देखता रहा, उसने एक बार भी नहीं टोका।
0: तो चांद को ही देखिए ना।
1: मगर वो सांस नहीं लेता।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ है गीत बहार नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। जुड़े रहिए एआई लाइव न्यूज 24x7 के साथ। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसमें अधिक देश और संस्थाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में टकराव के बजाय सहयोग, अल्पकालिक लाभ के बजाय टिकाऊ विकास और अलगाववाद के बजाय समावेश को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
1: भारत और फ्रांस अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहे हैं। दोनों देशों की कंपनियों ने 3 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में इन समझौतों की घोषणा की गई। इनमें उपग्रह प्रक्षेपण, अंतरिक्ष निगरानी और माइक्रो सैटेलाइट तकनीक से जुड़े समझौते शामिल हैं। भारत नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार है। शनिवार से शुरू हो रहे 2 दिन के इस शिखर सम्मेलन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त

0: अरब अमीरात यूएई सहित 11 प्रमुख विकासशील अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह असीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजश्कियन और अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शामिल होंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बारखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस एनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने स्पष्ट किया है कि अगले आदेश तक सभी मेट्रो स्टेशन खुले रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत को वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन बताया है। IMF के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था दूसरी तिमाही में 7.8% की दर से बढ़ी है, जो उम्मीद से बेहतर है। IMF के संचार विभाग के निदेशक जूली कॉजेक ने कहा है कि भारत के बेहतर आर्थिक प्रदर्शन में सेवा क्षेत्र और निर्यात का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है जब अर्थव्यवस्था को ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा। नौसेना का पोत INS मैसूर मलेशिया के लुमुट पहुंच गया है। पोत भारत और मलेशिया की नौसेनाओं के बीच 4th द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण में शामिल होगा। इस अभ्यास में बंदरगाह और समुद्र दोनों स्तरों पर पेशेवर गतिविधियां होंगी। इनमें एक दूसरे के पोतों का दौरा, संचालन संबंधी गतिविधियां और खेल प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कांगो के पूर्वी हिस्से के बुकाबू शहर में 2 स्कूलों में भीषण आग लगने से कम से कम 26 छात्रों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने आशंका जताई है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi said that India supports a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Mr. Modi stated this while virtually addressing the first edition of the International Space Summit at Paris in France yesterday.
2: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey.
2: Chandrayaan 3 made India the first nation to land near the lunar South Pole. Aditya L1 is unlocking the secrets of the sun. Last year, an Indian visited the International Space Station. Looking ahead, we aim to establish an Indian space station by 2035 and send an Indian to the moon by 2040. In all these efforts, our guiding principle has been clear that benefits must reach all humanity. Alongside ISRO, India's private space sector is also surging in a big way.
1: Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. India is all set to host the 18th BRICS Summit beginning this Saturday at Bharat Mandapam in New Delhi. The two-day summit will bring together 11 major emerging and developing economies, including Brazil, China, Egypt, Ethiopia, Indonesia.

श्रोताओं, गजलों की दुनिया में पंकज उदास साहब का भी बहुत नाम है। उन्होंने गजलों की दुनिया में एक अलग ही मुकाम बनाया था। आइए सुनते हैं उनकी प्यारी सी आवाज में ये प्यारी सी गजल।

0: श्रोताओं, अगली गजल आइए सुनते हैं भूपेन हजारिका साहब की आवाज में।
1: भूपेन दा का परिचय कराना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इस एक शख्सियत में, इस एक पर्सनैलिटी में बहुत सी शख्सियतें हैं। वो संगीतकार भी हैं, गायक भी हैं और शायर भी हैं। ये सारे गीत जिनका मैं हिंदी में परिचय कराने की कोशिश कर रहा हूं, ओरिजिनली उन्होंने असमिया भाषा में लिखे थे। इनके बंगला अनुवाद भी वो गा चुके हैं और अब ये हिंदी अनुवाद मैं पेश कर रहा हूं। भूपिंदा के गीत निजी कम हैं और आवाम के ज्यादा हैं, लोगों के ज्यादा हैं। उनकी धुनों में वहां के लोक गीतों की खुशबू बसी हुई है, इसलिए इनका अनुवाद और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने कोशिश की है कि जबान और अल्फाज का मुहावरा ज्यादा से ज्यादा उनके ओरिजिनल एक्सप्रेशन के पास पास रहे, क्योंकि ये ना हुआ तो ये गीत आसाम के बजाय किसी और इलाके के महसूस होंगे, जैसे पहाड़ी चढ़ते हुए पालकी उठाने वालों की हैया ना में वहां के मजदूर की फूली हुई सांस भी सुनाई देती है और इस शायर के सीने में उठती हुई टीस भी।

0: श्रोताओं, अगली गजल भी आइए सुनते हैं भूपेन हजारिका साहब की ही आवाज में।
1: ये शायर जिसका नाम भूपेन हजारिका है, कितनी आसानी से अवाम के दिलों की आहट सुन लेता है। ये रात जो लोगों के दर्द की रात है, अवाम के गम की रात है, जब उसके सीने में गूंजती है तो वो तलाश करने लगता है यह आवाज कहां से आ रही है, इनकलाब किस रास्ते से आ रहा है और दर्द किस रास्ते से आगे बढ़ रहा है। वो कान लगाए सुन रहा है और वक्त से पूछ रहा है, ये किसकी सदा है।

श्रोताओं, इसी के साथ गजलों और गीतों के कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये अंतिम गजल भूपेंद्र साहब की आवाज में।

0: आप सुन रहे हैं
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर।
2: सुबह के 4 बजे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
3: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:20 हुए हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 20वीं तिथि तदनुसार 11 सितंबर सन 2026 सुबह के 4:54 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज शुक्रवार है,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक सुबह 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। सुबह 5:10 का समय होगा कार्यक्रम आओ योग करें का। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन। 5:20 पर समय होगा देशभक्ति गीतों का। सुबह 5:30 पर आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय कार्यक्रम का हिंदुस्तानी शास्त्रीय कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह ठीक 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 का समय होगा कार्यक्रम भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन और 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस।

0: चरितमानस में आज आप सुनेंगे अयोध्या कांड का भाग 45। सुबह 6:55 पर आप सुन सकते हैं संस्कृत में समाचार। सुबह 7 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 7:05 पर आप अंग्रेजी समाचार सुनेंगे। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी। 8 बजे समय होगा हिंदी समाचार प्रभात का। सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार और 8:30 पर आप उर्दू समाचार सुन सकते हैं। सुबह 8:45 पर समय होगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का और 9:15 पर आप सुनेंगे गांधी चर्चा। सुबह 9:30 का समय होगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक का और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5 बजने वाले हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कल से भारत मंडपम में शुरू होगा। 2 दिन चलने वाले इस शिखर सम्मेलन के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ब्रिक्स में 11 प्रमुख उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी है, जिसमें ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, भारत, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। शिखर सम्मेलन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति सी चिनफिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फताह सीसी, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन हिस्सा लेंगे। अबूधाबी के युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इथियोपिया के प्रधानमंत्री आबी अहमद अली भी सम्मेलन में भाग लेंगे। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हंग भी सम्मेलन में भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरस, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ समेत कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन से अलग कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे से रात 8:30 तक कई प्रमुख सड़कों पर यातायात में बदलाव और आवाजाही नियंत्रित रहेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सरदार पटेल मार्ग, 3 मूर्ति मार्ग, 30 जनवरी मार्ग, राजेश पायलट मार्ग, मथुरा रोड जनपथ, अशोका रोड, बाराखंबा रोड, नीति मार्ग, पंचशील मार्ग और प्रेस इनक्लेव रोड समेत कई प्रमुख मार्ग प्रभावित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े अभियानों को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और टिकाऊ बनाए रखने के पक्ष में है। श्री मोदी ने कहा कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून, संवाद और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने क्षेत्रीय स्वास्थ्य साझेदारी को मजबूत करने और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री नड्डा ने तिमोर लेस्ते में आयोजित विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति के 79वें सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने और लोगों तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने पर लगातार काम कर रहा है। दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन के लिए ई संजीवनी जैसी तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सत्र में भारत को WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र पुरस्कार से सम्मानित

0: Big data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
1: Mr. Modi highlighted the remarkable growth of country's space journey. Lauding the role of ISRO in space journey, Prime Minister Modi said, ISRO has earned global admiration for its excellence and cost-effective missions. The National Testing Agency, NTA, has released provisional answer keys for retest of English, Commerce and Sociology papers of UGC NET, June 2026. Candidates can challenge the answer keys online through the official UGC NET portal till the 13th of this month. NTA announced retest for three papers following complaints about several errors in these papers. In cricket, India thrashed Bangladesh by 40 runs in the first semi-final of the Women's Asia Cup 2026 at Dubai International Cricket Stadium, securing their place in the final. India made a strong start at the World Para Shooting Championship, bagging four medals, including one gold, two silver and one bronze on the opening day of the event at Changwon in South Korea. The Indian women's team of Mona Agarwal, Amani Lekhara and Milisha clinched gold in the R2 10-meter air rifle standing SH1 team event. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग गोमुखासन।
3: आओ योग करें। आज हम जिस आसन को ले रहे हैं उसका नाम है गौमुख आसन। संस्कृत में गौमुख का अर्थ होता है गाय का चेहरा या गाय का मुख। इस आसन में पांव की स्थिति बहुत हद तक गौमुख की आकृति जैसी होती है, इसलिए इस आसन को गौमुख आसन कहा जाता है। यदि इसका अंग्रेजी में अनुवाद करें तो इसे काउ फेस पोज भी कहा जाता है। गौमुख आसन महिलाओं के लिए अत्यंत लाभदायक आसन है। यह गठिया, शाइटिका, अपचन, कब्ज, धातु रोग, मधुमेह, कमर में दर्द होने पर यह आसन बहुत अधिक लाभप्रद है। चलिए गौमुख आसन की विधि को जान लें और अगर हो सके तो साथ में कर भी सकते हैं। सबसे पहले अपने आसन पर दंडासन अर्थात दोनों पैरों को सामने सीधे एड़ी और पंजों को मिलाकर बैठें। यानी आसन पर आप सीधे बैठें और अपने पैरों को सीधे ले जाएं अपने सामने, एड़ी और पंजों को आपस में मिलाकर बैठें। हाथ कमर से सटे हुए और हथेलियां भूमि पर टिकी हुई, नजरें एकदम सामने। अब अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें, दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी जो त्रिकोण आकार में नजर आएंगी। आप समझ रहे हैं ना, सबसे पहले अपने बाएं पैर को मोड़कर एड़ी को दाएं नितंब के पास रखें। अब दाहिने पैर को मोड़कर बाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। इस स्थिति में दोनों झंगाएं एक दूसरे के ऊपर रखी जाएंगी और दिखने में ये त्रिकोणाकार नजर आती हैं। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे

पीठ की ओर ले जाएं। इसके बाद बाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे लेकर दाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें। गर्दन व कमर सीधी रखें। फिर श्वास भरते हुए दाहिने हाथ को ऊपर उठाकर दाहिने कंधे को ऊपर खींचते हुए अब एक ओर से लगभग एक मिनट तक करने के पश्चात दूसरी ओर इसी प्रकार करें, यानी वापस अपने हाथों को नीचे ले जाएं, वापस दंधासन में जाएं और अब बाएं पैर की जगह दाएं पैर को मोड़कर एड़ी को बाएं नितंब के ऊपर रखें। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर के ऊपर एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखें। फिर श्वास भरते हुए बाएं हाथ को उठाकर बाएं कंधे को ऊपर खींचते हुए हाथ को पीछे पीठ की ओर ले जाएं। आपकी कोहनी आपके बाएं कान के साथ मिल रही होगी। अब दाएं हाथ को पेट के पास से पीठ के पीछे से लेकर बाहिने हाथ के पंजे को पकड़ें और इस अवस्था में भी लगभग एक मिनट श्वास लें। कुछ देर बाद धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों के लॉक को खोल दें और पुनः दंड आसन की स्थिति में आ जाएं। इस तरह आपका एक चक्र पूरा हुआ। हाथों के पंजों को पीछे पकड़े रहने की सुविधा अनुसार 30 सेकंड से एक मिनट की स्थिति तक रह सकते हैं। इस आसन के चक्र को 2 या 3 बार दोहरा भी सकते हैं। गोमुख आसन करते हुए कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, जैसे किसी भी अन्य आसन को करते समय। यदि आपके हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी में कोई गंभीर रोग हो तो गोमुख आसन न करें। इसी तरह जबरदस्ती पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ने का प्रयास न करें। जब आप इस आसन को करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि ये प्रक्रिया इतनी आसानी से न हो पाए। जब धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ता चला जाए और शरीर को कष्ट ना हो तब कोशिश करें कि पीठ के पीछे हाथों के पंजों को पकड़ा जाए। चलिए अब इस आसन के लाभ से आपको अवगत करवाया जाए। गोमुख आसन करने से हाथ और पैरों की मांसपेशियां चुस्त और मजबूत बनती हैं। योग करें, हर रोज करें और अपने चेहरे पर योग करते समय मुस्कान को बनाए रखें, क्योंकि ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपके जीवन को सुखमय बना देगी, रोग से दूर कर देगी। कल सुबह इसी समय इसी चैनल पर आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।